0: यानी असर के वक्त की नींद जिस्म में थकावट और सुस्ती पैदा करती है। बंदा असर के बाद सोने से थकावट या सुस्ती का शिकार हो जाता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, पानी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है। पानी जो बज़ाहिर आम है मगर हकीकत में जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। पानी हमारी सेहत, हमारी स्किन, गुर्दों, दिमाग, हर चीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है। एक मरीज जो रोज़ 2 गिलास पानी पीता था, थकावट और स्किन का खुश्क होना और इसके अलावा कब्ज जो है वो भी उसको थी, और फिर ये हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि आप पानी को ज़्यादा कर दीजिए। तो एक हफ्ते के बाद ही बहुत ही हैरत अंगेज़ फ़र्क जो है वो सामने आया। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी है, तो नींद, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, दिल, दिमाग सब पानी से बेहतर काम करते हैं। अगर आप कम पानी लेते हैं तो थकान होती है, सर में दर्द हो सकता है, हमारी जिल्द खुश्क हो सकती है। और इसी तरह एक रिसर्च के मुताबिक जो अगर रोज़ जो शख्स जो हैं वो 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो किडनी की डिजीज का ख़तरा जो है 40% तक कम हो जाता है। उसके लिए करना फिर ये है कि सुबह उठकर 1 गिलास नीम गर्म पानी लीजिए, खाने से 30 मिनट पहले आप पानी लीजिए और पानी की बोतल अपने साथ रखिए। पानी हमारे जिस्म की जो मशीन है उसका ऑयल है, और जब ये कम हो जाए तो फिर तमाम सिस्टम का जो काम है वो रुकने लगता है। तो पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसको जगाने के लिए भी है। तो पानी पीजिए, सेहत जो है वो बेहतर बनाइए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियां नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। एक दिन एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, जिनमें बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई से बदसलूकी करता था। वो दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन बड़े भाई का दिल बहुत सख्त और खुदगर्ज था। बड़ा भाई अक्सर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता ताकि वो पैसे कमा सके। छोटा भाई हमेशा उसके पीछे पीछे रहता था और उसे बताने की कोशिश करता था कि वो अपने काम में मुखलिस हो, लेकिन बड़ा भाई

उसकी बातों को कभी भी संजीदगी से नहीं लेता था। एक दिन बड़ा जब जंगल में लकड़ियां काटने गया तो एक अजीबोगरीब दरख के पास पहुंचा। वो दरख्त दूसरे दरख्तों से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी टहनियां चमकदार थीं और उसके पत्तों में हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे वो किसी से बात कर रही हूं। दरख्त ने बड़े भाई को देखा और कहा, देखो बराहे करम मुझे ना काटो, मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। मेरे पास सोने के सेब हैं जो तुम्हें तब मिलेंगे अगर तुम मुझे जिंदा रहने दोगे। बड़ा भाई दरख्त की बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, सोने के सेब मैं उनका क्या करूंगा भाई, मुझे तो पैसे चाहिए और तुम्हारी ये बातें ना सिर्फ मेरा वक्त जाया कर रही हैं। ये बोलकर उसने दरख्त की टहनियों को काटना शुरू कर दिया। दरख्त की आंखों में दुख और अफसोस था, लेकिन वो खामोश रहा और फिर थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, लेकिन मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि तुम्हें किस तरह किससे बात करनी चाहिए। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। अचानक इस दरख से सैकड़ों छोटी छोटी सुइयां निकलकर बड़ी तेजी से उसके जिस्म पर चिपक गईं। सुइयां लगते ही बड़ा भाई दर्द से कराहने लगा। बड़ा भाई जमीन पर गिरा हुआ था और उसका जिस्म सुइयों से भरा हुआ था। छोटा भाई जो करीब खेतों में काम कर रहा था, जब उसने अपने भाई की आवाज सुनी तो वो फौरन जंगल की तरफ दौड़ा और अपने भाई को इस हालत में देखकर इंतहाई परेशान हो गया। मगर उसने हौसला ना हारा, उसने अपने बड़े भाई की मदद की। छोटे भाई ने बड़ी महारत से एक एक सुई निकालना शुरू कर दी और उसके बड़े भाई की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। सुइयां निकालने के बाद उसने अपने भाई का ख्याल किया। जब उसने आखिरकार अपने भाई के जिस्म से तमाम सुइयां निकाल दी तो बड़ा भाई दर्द से कराहते हुए उठा और अपने छोटे भाई को देखते हुए कहा, मेरे छोटे भाई मुझे तुम्हारी मेहरबानी का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरा सलूक किया करता था ना, और तुमने फिर भी मेरी मदद की। मेरी इतनी बुरी हालत में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जबकि ये सुइयां निकालते हुए तुम खुद भी जख्मी हो सकते थे, लेकिन तुमने मेरा एहसास किया। तुम्हारी मोहब्बत और मेहरबानी ही सच्ची चीज है मेरे भाई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। दरख्त जो इस सारी सूरत हाल को देख रहा था बड़े भाई की माफी पर खुश हो गया। उसने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, अब जबकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत और मेहरबानी देख ही चुके हो, तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें और ज्यादा सोने के सेब दूंगा। उसके बाद दरख्त की टहनियों से सोने के सेब गिरने लगे। ये सेब निहायत ही खूबसूरत और चमकीले थे। दोनों भाइयों ने खुश होकर इन सेबों को उठाया और अपने गांव वापस जाकर इन्हें बेचने के बजाय लोगों में बांटने का फैसला किया। उन्होंने ये सीखा था कि मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारा ही सबसे कीमती चीज होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं और मोहब्बत दिखाते हैं तो हमें हमेशा अच्छा इनाम मिलता है। ये याद रखें कि मेहरबानी हमेशा इनाम देती है।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकॉनमी, बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टर्म की। ये नया इकोनॉमिक टर्म है ओलिगोपॉली। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्म शायद बिल्कुल नई हो। ये टर्म शायद आपने पहले ना सुनी हो। बेसिकली ओलिगोपॉली का मतलब है एक ऐसा मार्केट जहां कुछ ही बड़ी कंपनीज या फिर फर्म्स डोमिनेट करती हैं और उनका मार्केट पे पूरा कंट्रोल होता है। चलिए

0: आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर एक कंट्री में सिर्फ 3 से 4 कंपनीज हैं जो कि कार बनाती हैं और उन्हीं के बीच कंपटीशन होता है तो ये है ओलिगोपोली। जी हाँ, इनमें कंपनीज अपनी प्राइसेस और प्रोडक्ट्स का डिसीजन एक दूसरे को देखकर करती हैं। अगर एक कंपनी प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरी कंपनी भी प्राइस बदल सकती है ताकि वो मार्केट शेयर ना लूज करे। फॉर एग्जाम्पल, और सिंपल वर्ड्स में और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, कुछ ही कंपनीज का अगर कंट्रोल है मार्केट पर तो ये कंट्रोल बेसिकली कहलाता है ओलिगोपोली। इसका एक एग्जाम्पल है ओपेक। जी हाँ, ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की है। ये बेसिकली वो ग्रुप है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को मिलता है और इसमें ऑल टुगेदर 13 कंट्रीज शामिल हैं, एज फार माई नॉलेज। ओपेक का मेन गोल ये है कि ये ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करके प्राइसेस को स्टेबल रखे। ये कंट्रीज मिलकर डिसाइड करती हैं कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है ताकि प्राइसेस ना ज्यादा बढ़े ना गिरे। वैसे एक न्यूज बिल्कुल पक्की है कि कतर पहले ओपेक का मेंबर था, फिर 2019 में कतर ने ये मेंबरशिप विथड्रॉ कर ली। तो चलिए, आज ये नई टर्म आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली इस टर्म का मतलब ये है ऐसा मार्केट जहां कुछ कंपनीज या फर्म्स ही डोमिनेट करती हैं, या कुछ कंपनीज और फर्म्स का ही एक मार्केट पर कंट्रोल होना ओलिगोपोली कहलाता है। वेल, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, नए एपिसोड में एक नए टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकामे खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन, रूह परवर सुन्नतों में अफू और तवाजो का एक खास मकाम है और इन अफो तवाजो के मावरा एक अहम शय निहफ्ता है, पोशीदा है, और वो है कुर्बानी। इंसान जब अपनी दौलत, अपने ताकत को दूसरों के लिए कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला उसको मजीद अता फरमाता है। यही है सुन्नत तज़हिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, घटता नहीं, और जो बंदा माफ़ करता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है, और जो अल्लाह के लिए तवाज़ु करता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है या बुलंद मकाम अता फरमाता है। जमीन, जरा सोचिए ये तीन जवाहरात एक साथ कितने हसीन नजर आती हैं। सदका बज़ाहिर आप देते हैं मगर हकीकत में अल्लाह बढ़ाता है। अफू बज़ाहिर आप किसी अपने हक से नज़रअंदाज कर रहे होते हैं लेकिन अल्लाह आपकी इज्जत अफजाई करते हैं। तवाज़ु, आप झुकते हैं अल्लाह की तरफ लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला आपको बुलंद करते हैं या बुलंद मकाम अता फरमाते हैं। आइए हम भी अपनी जिंदगियों में अफू और तवाज़ु की सुन्नत को कायम करें।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले, मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत

0: से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो
1: and he's hooked that away. That's four runs.
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
3: की। Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

फुटबॉलर्स, क्या आपको यासीन मोनो याद है, मोरक्को के स्टार गोलकीपर, जिन्होंने अपनी गोलकीपिंग टेक्निक की मदद से अपने मुल्क को 2022 फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स और बाद में सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। उन्होंने स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मुकाबले में दो पेनल्टी शॉट्स सेव करके कतर और अपने मुल्क में ओवरनाइट हीरो बन गए थे। क्वार्टर फाइनल्स में मोरक्को ने पोर्चुगल को 1-0 से मात देकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली अफ्रीकन टीम बनी। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में पैदा होने के बावजूद मोरक्को के स्टार गोलकीपर ने अपने पुरखों के मुल्क के लिए खेलना पसंद किया। व्हाट अ चॉइस। उन्होंने अपना पहला मैच 2013 में खेला जब राशिद तौसी कोच थे और कनाडा से खेलने की पेशकश को ठुकरा दी जहां पर वो पैदा हुए थे। वर्ल्ड कप 2018 जब रशिया में मुनाकिद हुआ था और उस वर्ल्ड कप ने साबित किया है कि मोरक्को के गोल पोस्ट के अहम पहरेदार कौन हैं। स्पेन के टॉप क्लब्स मसलन एथलेटिको मैड्रिड की बी टीम, जिरोना और सेविया में खेलने के बाद उन्होंने 2023 में सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल को ज्वाइन किया। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक के तमाम 71 मैचों में अपने मुल्क के लिए खेलने वाले गोलकीपर यासीन बोनो हर कोच की पहली पसंद है।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और लाइफ हैक्स के पिटारे से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा ही कमाल का आज का लाइफ हैक, जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाने वाली है। दिस इज 1 मिनट रूल, यस, जो कि आपके आलस को छू करके भगा देगा। तो सिंपल है कि अगर कोई भी काम 1 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे फौरन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेट अगर सिंक में रखना है तो वो कर दो, कीस को उसकी जगह पे टांगना है तो वो रख दो, बैग्स को अपनी जगह पे रखना है। ये सारी चीज जब आप करोगे तो आपका जो प्रोलॉन्ग्ड वर्क होता है ना, या यू कहें सीरीज ऑफ काम बढ़ते जाते हैं, उससे छुट्टी हो जाएगी और घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हैक आज का ये है कि आपको 3 अच्छी चीजों को ख्याल में रखना है, एंड इंग्लिश में इसे 3 good things रिचुअल कहते हैं। और ये है, रात को सोने से पहले जस्ट टेक 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सोचें, थोड़ा इत्मीनान से सांसें भरें और सोचें कि वो कौन सी 3 चीजें अच्छी हुई हैं दिन में आपके साथ। हो सकता है कि ऑफिस में किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो, या फिर आपने अपनी फेवरेट डिश लंच में या डिनर में खाई हो जिसकी वजह से आपका मूड बहुत अच्छा रहा हो, या कोई अमेजिंग सा म्यूजिक या कोई अमेजिंग सी कॉल जिसने आपके माइंडसेट को टोटली पॉजिटिव किया हो। तो इन 3 अच्छी चीज़ों का ख्याल रख के जब आप सोएंगे और ग्रेटफुल रहेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और जब आप सुबह उठेंगे तो कम्प्लीटली पॉजिटिव उठेंगे। यस, ये बड़े ही कमाल के लाइफ हैक्स हैं, इन्हें ट्राई जरूर करना, काफी मदद होगी। फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
1: Assalamualaikum listeners, आप सुन रहे हैं Green Path, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में. हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क. तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड. आज हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी डेली लाइफ को ग्रीन बना सकते हैं. अप्लायंसेस जैसे LED लाइट्स, एनर्जी सेविंग रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं. सोलर चार्जर्स और सोलर पावर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं. कुछ एप्स आपको अपने कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद करती हैं. ये एप्स आपको ग्रीन चॉइसेस लेने के लिए गाइड करती हैं. नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की जगह रिफर्बिश्ड गैजेट्स का इस्तेमाल करें जो आपको एक ही परफॉर्मेंस दे सकते हैं और वेस्ट को भी कम करते हैं. इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपनी डेली लाइफ को एनवायरनमेंट के लिए सेफर बना सकते हैं. तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे. अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज. खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें. अल्लाह
2: हाफिज़. रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है.
3: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूर इस्लाम.
4: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107. दिल से देसी.

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिकराम, प्रोग्राम तफहीमुल कुरान में आप सबको खुश आमदीद। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे सामिने कराम, इसका तज़किरा पहले भी एक हल्के में हो चुका है,

0: आज हम उसी मौजू को एक नए जाविये से देखने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या हमें किसी खालिक की ज़रूरत है या क्या ये कायनात खुद ही अपनी वजह बन सकती है। तो ये सदियों से इंसान इस पर गौर करता आया है, ये सवाल कोई नया सवाल नहीं। अंबिया इकराम की दावत के मुकाबले में भी यही बुनियादी सवालात उठाए जाते रहे और आज के दौर में भी मुल्हिदीन और एथिस्ट की जानिब से उठाए जाने वाली अक्सर बेशतर गुफ्तगू इसी नुक्ते के गिर्द घूमती है। सामने के नाम, जब हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हैं तो एक अजीब नज़म और तरतीब नज़र आती है। ये माइक्रोफोन, ये कैमरा, ये रोशनी, ये इमारत, ये सड़कें, ये गाड़ियाँ, ये मोबाइल फ़ोन, क्या इनमें से कोई चीज़ खुद ब खुद वजूद में आ गई? नहीं, हर चीज़ के पीछे एक बनाने वाला है। अगर कोई शख्स आपके सामने एक खूबसूरत घड़ी रख दे और कहे कि ये घड़ी किसी ने नहीं बनाई, बल्कि लोहे के टुकड़े खुद ब खुद जमा हो गए और घड़ी बन गई, तो आप शायद इस बात पर मुस्करा दें, क्योंकि अकल फौरन फैसला करती है कि जहां तरतीब है वहां तरतीब देने वाला भी होगा, जहां निज़ाम है वहां निज़ाम कायम करने वाला भी होगा, जहां तख्लीक है वहाँ खालिक भी होगा। अब सामने कराम, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अगर हम कहते हैं कि हर बनाई हुई चीज़ का कोई बनाने वाला है, तो फिर खालिक को किसने बनाया? यही वो सवाल है जो एथियस्ट की जानिब से बार बार दोहराया जाता है। और बज़ाहिर सवाल बहुत मंतिकी मालूम होता है, लेकिन हकीकत में इस सवाल को समझने के लिए पहले हमें ये समझना भी होगा कि हम खालिक से मुराद क्या लेते हैं। कुरान करीम जब अल्लाह का तारुफ़ कराता है तो उसको ऐसी हस्ती के तौर पर पेश करता है जो हर चीज़ की इब्तिदा से पहले भी मौजूद थी। सूरह इखलास में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है और न किसी से पैदा हुआ है। गोया कुरान का बुनियादी तसव्वुर ही ये है कि अल्लाह ताला किसी का पैदा किया हुआ नहीं, बल्कि वो खुद तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ का कोई खालिक होता है, बल्कि हम ये कहते हैं कि हर वो चीज़ जो वजूद में आई है, जिसकी इब्तिदा हुई है, उसकी कोई वजह और सबब ज़रूर होता है। ये फ़र्क बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हर चीज़ का खालिक होना ज़रूरी है, तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि खालिक का खालिक कौन है, फिर उसके खालिक का खालिक कौन है, फिर उसके बाद कौन, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। फ़लसफे की ज़बान में इसे इन्फिनिट रिग्रेस यानी लामुतनाही सिलसिला कहा जाता है। अक़ल ये कबूल नहीं करती कि असबाब का सिलसिला बग़ैर किसी इब्तदाई नुक्ते के हमेशा चलता रहे, लिहाजा किसी न किसी मकाम पर एक ऐसी हस्ती का होना ज़रूरी है जो खुद किसी की मोहताज न हो, जो खुद किसी की पैदा करदा न हो, जो खुद इब्तिदा और इंतहा से मावरा हो। और यही वो हस्ती है जिसे कुरान अल्लाह कहता है। सामने कराम, कुरान करीम इंसान को बार बार कायनात पर गौर करने की दावत देता है। आसमान की वसतों पर गौर करो, ज़मीन की साख्त पर गौर करो, रात और दिन के निज़ाम पर गौर करो, अपनी तख्लीक पर गौर करो। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और फिर सोचो क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? अल्लाह ताला फरमाता है, अम खुलिकु मिन गैरी शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो बग़ैर किसी चीज़ के पैदा हो गए हैं या वो खुद अपने खालिक हैं? यह दरअसल अकल को खबरदार करती है कि क्या कोई चीज़ खुद अपनी तख्लीक कर सकती है। अगर कोई चीज़ खुद को पैदा करती है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो पैदा होने से पहले भी मौजूद थी और पैदा होने के बाद भी, और ये एक वाज़ अकली तजाद है। इसीलिए कुरान इंसान को ये सोचने की दावत देता है कि कायनात खुद अपनी खालिक नहीं हो सकती, उसके पीछे एक हकीम, कादिर और अलीम हस्ती का होना ज़रूरी है। سامعین کرام، آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، کائنات کی ایک ابتدا ہے، وقت، مادہ، توانائی اور خلا سب کی ایک شروعات ہے، اور جب شروعات ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شروعات کا سبب کیا ہے، وہ کون ہے جو وقت سے پہلے موجود تھا، وہ کون ہے جو مادے کا محتاج نہیں، وہ کون ہے جو خود کسی قانون کا پابند نہیں بلکہ تمام قوانین کا خالق ہے۔ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، یعنی وہ ہر چیز سے پہلے بھی تھا، وہ ہر چیز کے بعد بھی ہوگا۔ سامعین کرام، یہی ایمان کی بنیاد ہے، اور عقل، فطرت، مشاہدہ سب اسی ایمان اور اسی وحی کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی اور نہ ہی خود اپنے خالق ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم، حکیم اور قادر مطلق خالق موجود ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے انفینٹ ریگریس کے حوالے سے کہ اگر اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو اللہ کی ذات جو ہے اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے سورۃ الاخلاص کی آیات سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور ویسے یہ فلسفے کی ایک بہت بڑی بحث سے جڑا ہوا سوال ہے، اور انفینٹ ریگریس کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے اس کی تعریف بھی پیش کی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لامتناہی سلسلہ اسباب جس کو عقل خود باطل کہتی ہے، یعنی عقل یہ قبول نہیں کرتی کہ اسباب کا سلسلہ بغیر کسی ابتدائی نقطے کے ہمیشہ چلتا رہے۔ کسی نہ کسی مقام پر ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو خود کسی کی محتاج نہ ہو، جو خود کسی کی پیدا کردہ نہ ہو، جو خود ابتدا اور انتہا سے ماورا ہو، اور یہی وہ ہستی ہے جسے قرآن اللہ کہتا ہے۔ اب انفینٹ ریگریس کو سامنے کرام آسان انداز میں ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک فوجی کھڑا ہے اور اسے گولی چلانی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تب گولی چلاؤں گا جب میرا افسر اجازت دے گا۔ افسر کہتا ہے میں تب اجازت دوں گا جب میرا افسر اجازت دے گا۔ پھر اس کا افسر بھی اپنے افسر سے اجازت مانگتا ہے، اور وہ بھی اپنے اوپر والے سے، اور پھر وہ بھی، اور پھر وہ بھی۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور کبھی ختم ہی نہ ہو تو بتائیے کیا وہ فوجی کبھی گولی چلا سکے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اجازت کا سلسلہ کبھی مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اب یہی مثال کائنات پر لاگو کیجئے۔ اگر ہم کہیں کہ ہر خالق کا ایک اور خالق ہے، پھر اس خالق کا بھی ایک خالق ہے، پھر اس خالق کا بھی ایک خالق ہے، معاذ اللہ، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چل رہا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پہلی تخلیق کب ہوئی، کائنات وجود میں کیسے آئی؟ کیونکہ اگر ہر مرحلے پر ایک اور خالق کا انتظار کرنا پڑے تو پھر تخلیق کا عمل کبھی شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سلسلے کے آغاز میں ایک ایسی ہستی ہو جو خود کسی کی پیدا کی ہوئی نہ ہو، جو خود کسی سبب کی محتاج نہ ہو، جو خود ابتدا اور انتہا سے ماورا ہو۔ قرآن کریم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے سورہ اخلاص، اس کے اندر توحید کا پورا فلسفہ سمو دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ यहाँ एक ऐसा जुमला है जो इस पूरी बहस का फैसला कर देता है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप है और न किसी से पैदा हुआ है। तो ये आयत सिर्फ एक अकीदा बयान नहीं कर रही बल्कि एक अजीम अकली हकीकत भी बयान कर रही है, क्योंकि जो चीज़ पैदा होती है उसका एक आगाज होता है, और जिसका आगाज होता है वो मोहताज होती है, और जो मोहताज हो वो खुदा नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह ताला के बारे में कुरान वाज़ह ऐलान करता है कि वो न किसी से पैदा हुआ और न उसकी कोई नस्ल है, वो अजली भी है और अबदी भी, वो अव्वल भी है और आखिर भी, वो हर चीज़ से पहले भी था और हर चीज़ के बाद भी रहेगा। सबने कराम मुफस्सरीन किराम ने लम यलिद व लम यूलद की बड़ी खूबसूरत तशरीह की है। इमाम सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कामिल गनी और बेनियाज होने का तकाजा है कि वो न किसी का मोहताज हो और न कोई उसका मोहताजी के माने में वारिस या जानशीन हो। इमाम बगवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसका कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई शरीक हयात नहीं। समय कराम यहाँ एक और नहायत अहम नुक्ता है, और वो ये कि बाज़ लोग ये पूछते हैं कि आखिर अल्लाह कहाँ से आया, यानी कब से। लेकिन ये सवाल दरअसल उसी वक्त पैदा होता है जब हम अल्लाह ताला को मखलूक के पैमाने पर नापने लगते हैं, माज़ अल्लाह। और फिल हकीकत ये सवाल तो बनता ही नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम वक्त के अंदर रहते हैं, हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, हमारी हर चीज़ का एक आगाज़ और इख्तिताम होता है। लिहाजा हम लाशोरी तौर पर यह समझने लगते हैं कि हर चीज़ के साथ यही उसूल होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला वो खालिक है, वो मखलूक की तरह तो नहीं, वो वक्त का खालिक है, वो जमानो मकान का खालिक है, वो इस निज़ाम से बाहर है जिसे उसने खुद पैदा किया है। जिस हस्ती ने वक्त को पैदा किया हो उसके बारे में ये पूछना कि वो कब पैदा हुई खुद एक गलत सवाल है, क्योंकि कब का ताल्लुक ही वक्त से है और वक्त तो खुद अल्लाह की मखलूक है। इसीलिए कुरान बार बार अल्लाह ताला की अजलियत और अबदियत बयान करता है, वल अव्वल वल आखिर, वही अव्वल है और वही आखिर है, यानी इससे पहले कोई नहीं और उसके बाद भी कोई नहीं। यही वजह है कि जब मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अपने रब का नसब बयान कीजिए, तो अल्लाह सुबहानहु तआला ने सूरह इखलास नाजिल फरमाई। कोई अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया कि मेरा मामला मखलूकात जैसा नहीं है। समय कराम कुरान का जवाब वाज़ह है कि अल्लाह वही खालिक है, वही अव्वल है, वही समद है, वही बेनियाज है, और इसीलिए वो किसी खालिक का मोहताज नहीं। यही तौहीद का बुनियादी पैगाम है और यही सूरह इखलास की रूह है। अल्लाह ताला हमें अपनी मारिफत नसीब फरमाए, हमें सही अकीदा और सही फहम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। समय कराम अब आगे बहुत ही दिलचस्प हिस्सा आ रहा है प्रोग्राम के इस हल्के का, वो ये कि हम मजहबी जो लोग होते हैं जब किसी चीज़ की वजाहत नहीं कर पाते तो फौरन कह देते हैं कि ये अल्लाह ने किया है। अब फिर इस पर एक मशहूर एतराज़ सामने आता है जिसे फ़लसफे में आर्ग्यूमेंट फ्राम इग्नोरेंस या गॉड ऑफ द गैप्स कहा जाता है, यानी आप जिस चीज़ को नहीं जानते वहाँ खुदा को लाकर खड़ा कर देते हैं। समझ कर हम पहली बात तो ये है कि यह आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। बात बिल्कुल ऐसी नहीं कि हम खुदा को हम अपनी लाइलमी की वजह से साबित कर रहे हैं, बात ऐसी नहीं। इस मौजू की वजाहत ज़रा एक मिसाल से करते हैं, वो ये कि आप किसी सुनसान सहरा में जा रहे हों, अचानक आपकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है, आप देखते हैं कि वहाँ एक जदीद तरीन स्मार्टफोन पड़ा हुआ है। अब ज़रा सोचिए कि आप ये कहेंगे कि चूंकि मुझे मालूम नहीं ये फ़ोन किस फैक्ट्री में बना, किस शख्स ने उसे यहाँ रखा या किस मुल्क से आया, इसलिए इसका कोई बनाने वाला भी नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। बल्कि आप फौरन कहेंगे उसका कोई डिज़ाइनर ज़रूर है, उसका कोई इंजीनियर ज़रूर है, उसका कोई बनाने वाला ज़रूर है। क्यों? क्योंकि उसके साख्त, उसका निज़ाम, उसकी तरतीब और उसकी पेचीदगी खुद इस बात की गवाही दे रही है कि हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आया। समय किराम अहले ईमान भी कायनात के बारे में यही बात कहते हैं। وہ خدا کو اپنے لاعلمی کی وجہ سے ثابت نہیں کرتے، وہ خدا کو کائنات کی ترتیب

0: जरूर हुआ है। जनरल रिलेटिविटी, कायनात की तौसी और फलकियाती मुशाहदात सब इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं कि कायनात हमेशा से मौजूद नहीं थी बल्कि एक आगाज रखती है। और जब आगाज है तो सवाल पैदा होता है कि आगाज किसने किया, पहला सबब क्या था। तो यहाँ अकल भी हमें यही बताती है कि असबाब की जंजीर हमेशा पीछे नहीं जा सकती, किसी न किसी मकाम पर एक ऐसी हकीकत होनी चाहिए जो खुद गैर मोहताज हो और बाकी सबकी इल्लत हो। सामने कराम, आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अकल और साइंस दोनों हमें एक फर्स्ट कॉज यानी पहली इल्लत की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ तक पहुँच कर एक और अहम सवाल पैदा होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने ये मान लिया कि एक खालिक मौजूद है, हमने ये भी मान लिया कि वो वक्त और मकान से मावरा है, हमने ये भी तस्लीम कर लिया कि वो गैर मखलूक और अज़ली है, लेकिन वो सवाल क्या है? क्या सिर्फ इतना मान लेना काफ़ी है? क्या उससे ये साबित हो जाता है कि वही अल्लाह है जिसका जिक्र कुरान में है? क्या उससे ये साबित हो जाता है कि उसने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे? क्या इससे ये साबित हो जाता है कि उसने किताबें नाजिल फरमाईं? क्या उससे ये साबित हो जाता है कि आखिरत हिसाब और जजा व सजा भी हक है? शबन कराम, ये एक अलग और नहायत अहम मरहला है। पहला मरहला ये था कि खालिक के वजूद को अकल के ज़रिए समझा जाए। दूसरा मरहला ये है कि उस खालिक की पहचान की जाए, उसके औसाफ को जाना जाए, उसके पैगाम को समझा जाए। यही वो मकाम है जहाँ वही नबुव्वत और कुरान की बहस शुरू होती है। यानी अकल हमें दरवाजे तक ले जाती है और वही हमें मंजिल का तारुफ कराती है। इसीलिए कुरान बार बार इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है कि पहले आसमान और ज़मीन में गौर करो, फिर अपने दिल में झांको, फिर अल्लाह के कलाम को सुनो और फिर फैसला करो। हमें सुनने वाले जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, आप लोगों की खिदमत में भी एक ख़ास गुजारिश रहेगी कि जिस तरह हमने दलाइल जिक्र किए, मिसालें पेश की, तो आप भी ज़रा आसमान और ज़मीन में गौर करते हुए अपने दिल में झांकें, फिर ज़रा इस कुरान को सुने और फिर फैसला करें। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इन सवालात का, फ़लसफ़ियों के बहस मुबाहसे का, तो आज भी इंटरनेट पर आपको हज़ारों मज़ामीन, लेक्चर्स और मुनाज़रे मिल जाएंगे। हर दलील के जवाब में एक और सवाल मौजूद होगा, हर एतराज़ के जवाब में एक और एतराज़ पेश किया जाएगा। लेकिन एक संजीदा तालिब हक का मकसद सिर्फ एतराज़ात जमा करना नहीं होता बल्कि हकीकत तक पहुँचना होता है। और हकीकत तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि इंसान तासुब से आज़ाद हो, इंसाफ के साथ सुने, गौर करे और दलील को दलील की बुनियाद पर परखे। اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله हमें हक को हक समझने, उसे कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इन्हीं दुआओं के साथ मेज़बान तलहा शरफुज़्ज़मान और टेक्निक के मुआविन शकीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

दोस्तों, आपका ट्रेन से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को

तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।

Assalamualaikum and good morning Qatar. आप सुन रहे हैं Summer Morning with RJ Mahavish. छह बज के हो गए दो मिनट और मैं आ गई हूँ आपके साथ. 9 बजे तक मेरा आपका साथ रहना है और आज भी बहुत कुछ होगा. न्यूज अपडेट्स, आपकी कॉल्स, एक टॉपिक अच्छा सा और इसके साथ और भी डेफिनेटली बहुत कुछ. जी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे. आज अच्छी सी सुबह का आपका आगाज हो गया होगा, सब कुछ एकदम से सेट होगा, मामला बिल्कुल ठीक होंगे. जिन लोगों को निकलना था वो नाश्ता वाश्ता करके निकल गए होंगे और जो अभी घर पे तैयार हो रहे हैं तो चले जी तैयार हो जाएं आराम से.

तू चले रही बकायदा फोकस कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें मैं इधर उधर देख रही थी उसके साथ में आपसे बात कर रही थी। खैर जी सिलसिला ये है कि समर मॉर्निंग का एक दफ़ा फिर हो गया आगाज़ और आज आपका दिन मतलब कल का कैसे गुजरा ये भी आप मुझे बताइएगा। 4434377 पे आप थोड़ी देर में हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ 6666210107 पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप ज़रूर कॉल भी कीजिएगा, मैसेज भी कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी का सिलसिला, क्या कुछ हो रहा है, कैसी गुजर रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हमारा सिलसिला होता है ये कि हम अस्कार से पहले एक अच्छी सी तहरीर शामिल करते हैं। अच्छा आज मेरे पास ना तहरीर नहीं है बेसिकली, आज कल जो हमने बात की थी ना नमाज के हवाले से सलाह के हवाले से, तो वो मेरे दिमाग में मैंने जब से ये बात सुनी है कि नमाज अल्लाह ताला ने पढ़ने का नहीं कहा बल्कि अल्लाह ताला ने नमाज को कायम करने का हुक्म दिया, तो जब से मेरे दिमाग में ये बात अटकी हुई है और मैं उसके हवाले से जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि कल भी मैंने तहरीर शामिल नहीं की थी, कुछ इधर उधर से चीज़ें देखी थी वही आपसे शामिल की थी वही शो शामिल किया था आपको बताया था, और आज भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है क्योंकि वही है कि जब आप किसी चीज़ की तलाश में होते हो ना तो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें वो जब तक आप सोचते नहीं हो। आपने हमेशा नोट किया होगा कि एक तो कहते हैं कि आजकल एल्गोरिथम का मामला होता है कि आप जो बात बोल रहे हो कुछ कर रहे हो कुछ सर्च कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, एक ये वाला मामला भी है और दूसरा भी कुछ एक अलग सा ये कनेक्शन होता है कि आप जो है वो जो चीज़ जो है वो सोचना शुरू करो उसके हवाले से उस सवाल के जवाब आपके सामने खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह का कुछ मामला हुआ अभी मैंने कल ही मतलब जब ये बात हुई थी तो उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इस चीज़ को और ज़्यादा मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया था और ये एक दूसरे स्कॉलर कह लें आप प्रोफेसर कह लें रिसर्चर कह लें एक हैं जिनको कल मैंने देखा, तो अगर आप लोगों को होगा इंटरेस्ट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा मैं नाम आपको बता दूंगी। फिर उनका क्या कहना था उनका एक अलग मतलब सलाह के बारे में एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वो ये कि कुरान मजीद में सलाह का जो लफ्ज़ है और जो इससे जो मिलते जुलते मतलब जिस जो रूट वर्ड से जो निकले हुए लफ्ज़ हैं वो 99 मरतबा आए, और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर इसका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ मायने के साथ हुआ है। जैसे अल्लाह की तरफ से जब सलाह है तो उसका मतलब होता है रहमत और इनायत, और जब फरिश्तों की सलाह से मुराद जो है दी गई है तो उस वक्त दुआ और इस्तग़फ़ार होता है इसका मतलब, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाह से मुराद दुरूद और रहमत भी है। फिर जबकि मोमिनीन के लिए सलाह अक्सर मकामात पे अल्लाह से ताल्लुक़ बंदगी और उसकी इताअत के इजहार के तौर पर आता है, और अरबी ज़बान में सलाह का जो बुनियादी मफहूम है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू ताल्लुक़ वाबस्तगी और इताअत है। इसे कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि नमाज पढ़ो बल्कि बार बार फरमाता है कि अकीमुस सलात यानी सलात को कायम करो। राइट, तो यहाँ पे ये जो अकामत का लफ्ज़ है यही एक जो चीज़ है ना जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, तो उसके हवाले से मज़ीद इसमें मुझे पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए कि यहाँ पे अकामत का मतलब सिर्फ अदा करना नहीं बल्कि किसी चीज़ को मज़बूत बुनियादों पर कायम करना, बरकरार रखना, उसे एक ज़िंदा हकीकत बनाना है। इनके मुताबिक सलाह जो है वो नमाज पढ़ो, अच्छा ये भी ये कह रहे थे कि नमाज का लफ्ज़ नहीं आया कहीं पे भी, ना हदीस में है ना कुरान में है, बल्कि हर जगह सलाह का लफ्ज़ ही आया है। तो इनके मुताबिक अकीमुस सलाह जब फरमाया गया तो ये एक ऐसा इज्तमाई निज़ाम है जो कि अल्लाह की बंदगी अदल निज़म और इखलाक को माशरे में कायम करें। रिवायती जो मतलब है हमने अलग तरीके से हमेशा इस चीज़ को लिया है, लेकिन हमें ये जो मिलता है ज़िक्र वो ये है कि सलात इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और ज़कात इंसान को माशरे से जोड़ती है, मतलब दोनों का ज़िक्र साथ साथ आता है ना, तो मैं आपको थोड़े से उसके पॉइंट्स बताती चली जाती हूँ। एक अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करती है जबकि दूसरी बंदों के जो हुकूक हैं उनकी हिफाजत करती है। कुरान के मुताबिक इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा हज या चंद मजहबी रस्मात का नाम नहीं है, जैसे कल भी हमारी कॉलर से भी बात हो रही थी। इबादत का असल मतलब है कि ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह की मुकम्मल अताअत, जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है तो वो हकीकी इबादत बन जाती है। और इन्होंने कहा कि इस्लाम ना ज़िंदगी को अगर आप इंसानी ज़िंदगी को देखें तो इसमें पांच आपके शोबे होते हैं, पांच स्फीयर होते हैं, और वो जो सबसे पहला है वो आपका आइडियोलॉजिकल होता है यानी नज़रियाती शोबा,

जी राइट, वेलकम बैक समर मॉर्निंग में एक दफा फिर से आप लोगों को हम खुशामदीद कहेंगे और इसी के साथ आपसे शेयर करेंगे कि आज है भाई 29 जून और 29 जून को क्या क्या होता है। तो मैं आपको बताती चलूं भाई कि आज 29 जून को भी बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं आज 29 जून को दुनिया भर में, और उसमें से कुछ बड़े मज़ेदार दिन भी हैं। तो सबसे पहले जो दिन मनाया जाता है वो है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से, और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। और ये बेसिकली उन इलाकों को कहा जाता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाकई हैं, जिनमें एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ओशियाना के बहुत से मुल्क इस ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। और इस दिन का मकसद बेसिकली लोगों को बताना है कि ट्रॉपिकल इलाके दुनिया की बायोडाइवर्सिटी, जंगल, समंदरी जिंदगी और क्लाइमेट के लिए कितने ज़्यादा अहम हैं। और साथ ही ये भी याद दिलाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज, डीफॉरेस्टेशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन इलाकों के लिए बड़ा चैलेंज है। तो ये सबसे पहला दिन है जो कि 29 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जो दूसरा दिन है वो है उन तमाम लोगों के लिए जिनको तस्वीरें लेना बहुत पसंद है, जो फोटोग्राफी से मोहब्बत रखने वाले हैं, तो उनके लिए बेसिकली एक फन डे है, नेशनल कैमरा डे। और इस दिन लोग अपने जो कैमरा स्किल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, यादगार तस्वीरें लेते हैं और फोटोग्राफी की हिस्ट्री को याद करते हैं। ठीक है, और आज के दौर में स्मार्टफोन कैमराज ने उस तरह से, मतलब जो ना एक तरह हर बंदे की रसाई में, पहले लोगों को कैमरे लेना पड़ते थे और उसके बाद फिर ये शौक पूरा करना पड़ता था, इस वक्त हर बंदे के हाथ में कैमरा है मोबाइल फोन की सूरत में। तो इसलिए ये दिन और ज़्यादा खूबसूरत लम्हों को महफूज करने की अहमियत भी याद दिलाता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग दिन भर में कितनी तस्वीरें लेने के आदी हैं। मैं सेल्फीज़ की बात नहीं करी, वैसे ही मतलब कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आई, कोई अच्छी चीज़ नज़र आई तो आपने उसकी तस्वीर ले ली, तो कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा होता है कि आप तस्वीरें लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। अच्छा, इसके अलावा जो एक और दिन है वो भी बड़ा ख़ास है, बड़ा मज़ेदार दिन है, और वो ये कि अब तो ज़रा रुझान इस चीज़ का कम हो गया, लेकिन इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये एक तरह से कहा जाता है कि हमारे यहाँ एक तरह हमारी तारीख में भी मिलता है कि करना चाहिए, बच्चों को ख़ास तौर पे करवाना चाहिए। क्या है ये? आज मनाया जाता है दुनिया में इंटरनेशनल मर्द डे। ठीक है, और ये दिन ख़ास तौर पे बच्चों के लिए मनाया जाता है, और इसका मकसद होता है कि बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन से दूर रख के नेचर के करीब लाना, मिट्टी में खेलना, गार्डनिंग करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की सेहत, क्रिएटिविटी और लर्निंग को बेहतर बनाती है। तो इसके काफ़ी मतलब बेनिफिट्स हैं वाकई मर्द के, आप जब बच्चे मर्द में खेल रहे होते हैं तो उनका एक कनेक्शन बनता है एक तो अर्थ के साथ, और फिर उसके बड़े जो है ना बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में एक बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है। खैर जी, एक और जो दिन 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वो है हग हॉलीडे, और ये एक मतलब फन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मोहब्बत, दोस्ती, इंसानी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का इससे मैसेज मिलता है, और एक मुस्लिम के लिए एक मुखलिस हग स्ट्रेस कम कर सकता है, खुशी का एहसास बढ़ा सकता है और लोगों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन को मजबूत बना सकता है। तो ये दिन याद दिलाता है कि छोटी सी मेहरबानी भी किसी की ज़िंदगी में खुशी ला सकती है। ठीक है, एक और जो दिन है वो दिन पढ़ के, और वो उसकी उर्दू पढ़ के ना मुझे मतलब याद आ गया, खैर ये पहले दिन बता दूं मैं आपको, इंटरनेशनल फिशरमैन डे मनाया जाता है, और ये दिन जो है ना मछेरों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, फिशिंग कम्युनिटीज़ की मेहनत को सलाम पेश करता है बेसिकली, और दुनिया भर में लाखों अफराद की रोज़ी रोटी फिशिंग इंडस्ट्री से वापसता है। तो ये दिन सस्टेनेबल फिशिंग और समंदरी माहौल की हिफाजत की तरफ भी तवज्जो दिलाता है। खैर मतलब मुझे याद क्या आ गया था, मेरा कोई पता नहीं, आई थिंक जब मैं कॉलेज में थी तो उस वक्त कोई मेरा सब्जेक्ट वो था, चैप्टर था जिसमें यही फिशरमैन्स का जिक्र था, मच्छरों का जिक्र था, और मैं अब मेरी आदत थी कि जो भी मैं पढ़ रही होती थी तो वो मैं अपनी अम्मी को सुना रही होती थी, तो कोई चैप्टर था उसके हवाले से मैं उनको बता रही थी जो तैयारी मैंने अपने तौर पर की थी, तो मछेरे जो हैं उसको मैं बार बार मछवारे मछवारे मछवारे पढ़ रही थी, तो अम्मी मुझे दो तीन दफ़ा तो वो चुप रही कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा मछवारे क्या
आता है. मैंने कहा अम्मी आपको ये नहीं पता जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं. मैंने अपने तौर पर मतलब मैं बड़ी मतलब ना काबिल बनने की उसमें आ गई थी. ये वो अम्मी को ये नहीं पता, मैं बताती हूँ. तो अम्मी ने कहा भाई मछुआरे नहीं होता, मछेरी होता है. तो मुझे हमेशा अभी भी जब भी मैं ये पढ़ती हूँ लफ्ज आते हैं कहीं पर सामने तो मुझे वो बात याद आ जाती है और मुझे खुद बड़ी हंसी आई थी क्या मछुआरे मछुआरे कह रही हूँ. खैर जी, इसके साथ ही एक और जो दिन है वो है नेशनल वेफल आयरन डे और ये एक फूड फन डे है. इस दिन वेफल आयरन की इजाद को सेलिब्रेट किया जाता है और लोग घरों में वेफल्स बनाकर फैमिली और दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं. ऐसे वेफल्स पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. फिर एक और जो दिन है वो है नेशनल डार्ट्स डे और ये दिन डार्ट्स के मशहूर इंडोर स्पोर्ट्स

0: सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर सवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें कि आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
5: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: ऑलराइट राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM समर मॉर्निंग और मैं आपके साथ आपकी आरजे महावश 9 बजे तक मेरा आपका साथ रहना है. कॉल आप करना शुरू कर चुके थे तो जो कॉल कर रहे थे वो आप कॉल कर लें, क्योंकि ब्रेक में मेरा मतलब मूड ये था कि मैं एक कप कॉफ़ी पी लूँ ताकि मेरी आँखें ज़रा सही तरह से खुल जाएँ और पूरा जो टाइम है वो फिर आराम से गुजर जाए, बात बात हो सके, आँखें खुल जाएंगी तो फिर आराम से हो जाएगा. तो खैर जी, कॉफ़ी मैंने पी ली है, अब आप मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल कीजिए, शामिल होइए और बताइए कि वो छोटी सी बहुत ही मामूली सी चीज़ कौन सी ऐसी है जो कि आपको बिल्कुल जेन्युइन खुशी देती है. ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह.
0: वालेकुम सलाम, क्या बात है भाई, कौन है हमारे साथ?
1: जो नफीस, मैं जो आप कॉफी की बात कर रही है ना, मैंने भी जाके पीनी है.
0: आपने पीनी है? मुझे मिल गई थी, वैसे मैं बोलती हूँ 7 बजे के बाद दो, लेकिन ये कि आ गई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्रेक लंबा करते हैं और पहले कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि कॉफी ठंडी हो जाए तो नहीं पी जाती.
1: कौन से वाली,
0: ब्लैक कॉफी? अल्लाह ना करे, मैं ब्लैक कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीती. हाँ, विदाउट शुगर पीती हूँ.
1: ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, मतलब सॉरी, आप दूसरी कॉफी विदाउट शुगर पीती हैं, ब्लैक कॉफी नहीं पीती?
0: ब्लैक कॉफी नहीं पी सकती, इतनी कड़वी नहीं हुई होगी वे.
1: सेहत के लिए
0: अच्छी होती है. नाजिया पीती है भाई, नाजिया पीती है. मैं कहती हूँ भाई अभी इतना कड़वा दौर नहीं चल रहा हमारा.
1: नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि सुबह सुबह आपने लोगों में खुशियाँ और मिठाइयाँ बखेरनी होती हैं. हाँ, ब्लैक कॉफी से थोड़ा सा ये ना हो कि उसके असरात कहीं बाहर निकले, तो अच्छी बात है. हम ब्लैक कॉफी पिए.
0: अच्छा, मैं ना बचपन में, मुझे बिल्कुल भी मिठाइयाँ पसंद नहीं थी और मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ी बच्चों के मुकाबले में कम गो रही हूँ, तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है. हमारे एक नेबर में हुआ करते थे, बहुत बोलते थे. मतलब वो मेरी बेसिकली फ्रेंड के ना वो थे, क्या कहना चाहिए उनको, बहनोई, मतलब बहन के शौहर थे. तो वो बहुत बोलते थे और मैं थोड़ा सा इरीटेट होती थी. तो वो एक दफ़ा मैं उनके घर पर गई ना, तो वो मुझे कहने लगे कि मिठाई खा लें. मैंने कहा नहीं, मैं मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है. तो कहने लगे मीठा खाया करे, मिजाज मीठा होता है. हमेशा ये बात याद आती है, ये तो मतलब कस के ताना मारा था.
1: क्योंकि आपके एक्सप्रेशन फील करवाते होंगे ना कि इरिटेट हो रही है. नहीं, बात करता है इंसान के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब आप वैसे अभी जैसे मुझे फील होता है कि काफी ज्यादा अच्छी मूड और गुफ्तगू को पसंद करने वाली हैं, लेकिन बाद ऐसे होता है कि साइकोलॉजिकल कुछ इंसान जेन पे नहीं बैठ रहे होते तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता. ये नेचुरल है, हालांकि वक्त की कैफियत है. अच्छा, मेरा बेसिकली कॉल करने का मकसद भी इसी के ऊपर था थोड़ा सा, कि मैं आपका टाइम लूंगा तो कुछ सुनने वाले और शायद जिनके लिए ये कहना चाहता हूँ वो भी, क्योंकि सुनते हैं आपको काफी लोग और मुझे आइडिया है कि मेरे करीबी दोस्त भी सुनते हैं.
0: अच्छा अच्छा, ग्रेट.
1: तो ये जो करवाट होती है ना आपके माइंड में, आपकी किसी भी रिलेशन में, मैं कह लूँ आप अभी आसान करने के लिए हम कहेंगे दोस्ती में कह लें करवाट आती है.
0: हाँ.
1: तो ये वक्त की हैसियत है महविश में, जितना मुझे लाइफ में ना मैंने एक्सपीरियंस किया है. एक मर्तबा एक कदम उठाएं तो सही, कोई भी, जैसे मैं और मेरा दोस्त अगर थोड़े से अच्छे मूड में नहीं है, ताल्लुक अच्छे में नहीं है सॉरी, तो कोई एक अगर कोशिश कर देगा ना, मैं विश आप बिलीव करें कि लम्हा भी नहीं दरकार होगा कि आप पहले से भी ज्यादा अच्छे ताल्लुक में आ जाए.
0: हाँ,
1: ये किसी के लिए भी है, मियाँ बीवी है, फ्रेंड्स हैं, कुछ कुलीग्स हैं, ये सब के लिए ऐसा है कि एक स्टेप सिर्फ मुश्किल होता है, वो वजनी हो जाता है. वरना तो मैं कहता हूँ कि ऐसे एक मिठास फैलती है ना, दोस्ती पहले से अच्छी हो जाती है.
0: ऐसे ही है. और पता है कि हम लोगों की गलती क्या होती है ना नफीस, के हम बहुत सारी जगहों पे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रख लेते हैं. मतलब जहाँ पे भी हम थोड़ा सा हमारा रिश्ता मजबूत होता है ना किसी से, तो वहाँ पे हमारी तवक्कात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से अमूमन हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं. तो हमें सबसे अच्छे से मतलब हर बंदे को ना एक तो ये समझना चाहिए कि हमारे जैसा कोई होगा नहीं, मतलब हम जैसे अपने जैसा किसी को बना नहीं सकते, और वो हमारे जैसा हो जाएगा तो हम बोर हो जाएंगे, तो इसलिए हर बंदे को वही रहने दो.

0: जो वो है
1: क्या बात,
0: और जो उसकी वीकनेस है कुछ है उसको नजरअंदाज करना वाकई हमें ना चाहिए, लेकिन ये चीजें ना आपको बाय द टाइम समझ में आती हैं, आपको फौरन से नहीं जिंदगी में समझ में आती,
1: फौरन से समझ नहीं आती, वो एक वक्त की कैफियत दिमाग के अंदर उस वक्त गुस्से और नाराजगी की तरफ ले जाती है ना। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, बिलीव करें सारी जड़ जो है ना वो अना है, सारी लाइफ आपको नहीं पता चलता कि यार थोड़ी सी अना थी, वो किसी ठंडे टाइम में, चाहे ज्यादातर ऐसे होता है कि वक्त गुजर चुका हो तो फिर अना जब ठंडी होती है ना तो वो फिर खुद ही बता रही जाती है कि ये मेरी वजह थी, वरना कुछ नहीं था। यार आपने इतनी प्यारी बात की कि अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत में हर एक को डिफरेंट पैदा किया है, कोई दो बंदे एक जैसे नहीं है दुनिया में, भाई बहने हम चार चार पांच पांच बहने भाई होते हैं, कोई दो एक जैसे नहीं होते,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कैफियत और पसंद नापसंद तो इसी के चलना होता है, यही खूबसूरती है गुलदस्ते की, जब मुख्तलिफ फूल हों और इकट्ठे एक जगह से खुशबू दे रही हो अपनी अपनी, तो ये बड़ी खूबसूरती का एक वो है।
0: और
1: FM 107 के तमाम सुनने वालों के लिए बहुत ज्यादा सुबह खैर, क्योंकि ये कहना भूल गया था मैं आपके कॉफी के चक्रों में असल में।
0: अच्छा ये तो बताएं नफीस साहब कि आपको कौन सी सी छोटी सी चीज है जो आपको खुशी देती है, मतलब वो छोटी है बहुत मामूली है लेकिन आप उससे खुश हो जाते हैं दिन में अगर वो हो जाए तो।
1: सुभान अल्लाह, मैं यकीन माने यही, अच्छा मेरी ना यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड में ऐड करूंगा कि मुझे यकीन माने मुझे डेली में मेरी जिंदगी बन जाती है कुछ छोटी छोटी खुशियों से। आप दिन कह रही थी ना मेरे मन नहीं है कुछ, वो कहते हैं ऐसे कभी कभी कि यार हाँ जिंदगी बढ़ गई, वो पंजाबी में हम लोग कहते हैं ना कि यार जिंदगी बढ़ गई यार। तो मेरे तो लाइफ में बड़ी ऐसी चीजें हैं, मुझे मैं स्टार्ट करूंगा चार पांच चीजें आपको यहाँ बताऊंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं।
1: मैं तो जैसे होटल पे खाना खाने गया हूँ ना तो मुझे सैलड के ऊपर उसने नींबू भी रख के दे दिया ना, तो मुझे लगता है यार जिंदगी बन गई यार, लाइफ बन गई यार, क्या बात है, मतलब वेटर से रुक के कहता हूँ यार क्या बात है, लाइफ तुझे मेरी बुला रही है,
0: जबरदस्त
1: सही बात है। ऐसे ही साइड से कभी गए हैं कि साथ कोई गया गाड़ी में तो आधा घंटा जरा थोड़ा सा आउट, जैसे आजकल वेदर चल रहा है तो आधा घंटा 45 मिनट विदाउट एसी कहीं बाहर काम किया तो वो मतलब माथा से हर जगह से पसीना चोरा और आप गाड़ी में आके बैठे हो तो गाड़ी एकदम ठंडी है तो मतलब ऐसे लगता है यार लाइफ बन गई यार, इसकी लाइफ हो सकती है।
0: वेरी गुड, जबरदस्त,
1: सही बात है। तो कई चीजें हैं यकीन मानने
0: में, मतलब वैसे मेरे साथ भी ना नफीस साहब,
1: हाँ जी लाइफ बन गई,
0: हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ भी वैसे ऐसे ही है, मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं छोटी छोटी सी चीजों को एंजॉय करती हूँ। अभी मेरा बेटा जो है ना अभी उसने कल से एक जगह पे वो वॉलंटियर कर रहा है तो मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा कैसा रहा, कहना नहीं कुछ इतना सीखने को नहीं था, मैंने कहा फिर भी मतलब तुम वहाँ पे मौजूद हो तो तुम ना मतलब ये सोचते रहोगे ना कि मेमोरीज बनानी है तो उसके लिए क्या करोगे, तो मैं इतना मतलब वो बच्चे बड़े लड़के वैसे भी शायद प्रैक्टिकल होते हैं शायद ना, तो कह रहे नहीं इसमें मेमोरी बनाने वाली क्या बात है, बस मैं जा रहा हूँ और ये वो है वो हो जाएगा मुकम्मल। मैंने कहा मैंने तो ना जिंदगी में, अच्छा अभी तक मेरे साथ ये है कि मैं रोजाना अपना दिन यादगार बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे याद रखनी है ये कि अच्छा इतना अच्छा मैं अपने तौर पे आज का दिन गुजारूं, इतनी अपने तौर पे छोटी छोटी खुशियां जैसे आप कह रहे हैं ना इसको मैं एंजॉय करूं कि ये मुझे याद रहे, तो ये एक मेरी अब तक एफर्ट होती है, मतलब बाय पर्पस मैं करती हूं ये।
1: अविश लाइफ बेसिकली हम लोग आपको पता ही है कि स्वर्ग या जन्नत में तो रह नहीं रहे, दुनिया में रह रहे हैं, तो इसी को ही हमने खूबसूरत बनाना है ना जितना हो सके, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा होगी कि यार हाँ अच्छा हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कसम खुदा की, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन के भी कि आप तो यादगार चले, वो आपकी बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी मेहनत चाहिए होगी, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि लम्हा यादगार बनाने के लिए ना उसमें मेहनत लगती है। इसी तरह आम लोग हम सब कोशिश करनी चाहिए कि यार कोई छोटी सी खुशी मिले ना बिलीव करें उसको प्रॉपर उसका मजा लें, एक एक ड्रॉट वाटर जो है ना अल्लाह की एक नेमत है उसका हमें वो मजा लेना चाहिए। और ये बात मेरे टीचर कहते होते थे। अच्छा एक बात तो मैं आपको ऐड करना भूल गया जिससे मुझे बड़ा अम्यूजमेंट मिलती है, मेरे दोस्त भी बड़े खुश होते हैं कि जैसे अभी हम लोग ना ऑफिस इकट्ठे हैं, एचआर ऑफिस इकट्ठा है, हमारे डायरेक्टर साहब का ऑफिस इकट्ठा है, हम
0: जी जी
1: देखिए सबसे बड़ी खुशी मिलती है ना ऑन द डे, जैसे आप खुशी की बात कर रही थी, तो ऐसे किसी ऑफिस में जाता हूँ ना जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्तों के ब्रेक हुई है चलो

0: मस्त होते हैं वो बनाना चिप्स और इस तरह के चिप्स ना. अच्छा वो हम लोग वैसे नहीं खाते थे लेकिन अब उन लोगों की वजह से उनके आने का इंतजार होता है, ये आएंगे तो बनाना चिप्स लेकर आएंगे. तो ये मतलब होती है आगे छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं, बड़े मजेदार
1: छोटी छोटी सी खुशियां. और यकीन माने कसम से दिल खुश भी होता है और बड़ा एक बाकी कम टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है जितना भी हो. तो लाइफ इन्हीं चीजों से बड़ी पड़ी है.
0: बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा नफीस साहब आपने ही मुझसे जिक्र किया था ना आपके बॉस का, आप ही थे ना वो?
1: जी जी.
0: हाँ हाँ तो आप मुझे प्लीज उनका नंबर व्हाट्सएप कीजिए क्योंकि मेरी नाजिया से बात हो गई थी और नाजिया ने कहा था भाई मुझे तो तलाश होती है तो मुझे नंबर लेके दे दो. आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए हमारे 666-22-107 पे, तो वो नंबर मैं फॉरवर्ड कर दूंगी नाजिया को. ठीक है इंशाल्लाह. तो फिर वो जरूर उनका रखेंगे. और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करके. सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि जब आपने बॉस की बात की तो वो जब भी आपने उनकी तारीफें की कि बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है. पता है कि जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई बच्चा बंदा अच्छा लग रहा है तो आपने उसको खुल के अप्रिशिएट किया कि हाँ ये बात जो है ना मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगती है. अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही रखे नफीस साहब और हम सब लोगों को भी ऐसे ही बनाए क्योंकि ज़िंदगी वाकई यही है जहाँ पे तशक्कुर हो, जहाँ पे इंसान ना छोटी छोटी अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं ना उसको ऐसी एंजॉय करें कि जिंदगी बन गई भाई मेरी तो.
1: अच्छा बड़ा अच्छा लगा यार मेरे दोस्त सुन रहे होंगे आपने जो वर्ड बोले हैं ना ये जो अल्फाज बोले हैं मुझे सुनने को मतलब दूसरों से भी मिलते हैं. हाँ जिंदगी बन गई तो बड़ा अच्छा लगता है.
0: मुझे भी याद रहेगा हमेशा अपना फीस साहब की जिंदगी बन गई माशाल्लाह. बिल्कुल जब मुझे आप जरूर नंबर भेजिएगा उनका. ठीक है चले ख्याल रखिएगा और जरूर जब भी मौका मिला करे कॉल किया करे, मुझे भी आपसे बड़ी एक पॉजिटिविटी मिलती है. थैंक यू जी.
1: बिल्कुल. और आज का कॉल ही पे एंड करूंगा कि आज आप लोगों से ऐसा हमसे बात हो के ना जिंदगी बन गई यार
0: हमारी भी जिंदगी बन गई, दिन तो बन ही गया भाई. थैंक यू नफीस भाई. थैंक यू
1: जी.
0: बहुत ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज रही जी. तो अल्लाह हाफिज रही जी. तो हमारे साथ थे भाई नफीस और जबरदस्त इंसान भाई, बहुत ही नफीस इंसान है ये कहना चाहिए. बहुत ही मतलब खुश मिजाज माशाल्लाह से. तो मतलब की बड़ी अच्छी चीज है कि आप ना चीजों को छोटी छोटी चीजों को. मैं सोच रही थी कि जब मैंने ये सवाल किया कि बहुत छोटी सी मामूली सी बात कोई हो जिस पे आप खुश होते हैं तो मैं सोच रही थी कि शायद लोगों के दिमाग में ना मतलब नहीं आ रही होगी कि क्या बात हुई, मतलब इतनी छोटी सी बात को क्या हम इंजॉय करें क्या करें. लेकिन देखिए माशाल्लाह मतलब उनकी छोटी एक लेमन रखने पे जिंदगी बन जाती है. तो ये होती है भाई ये मतलब ना इस तरह के लोगों को सुनकर सीरियसली मुझे मजा आता है कि जो इतना इंजॉय करते हैं जिंदगी को, इतना खुश रहते हैं और मुतमईन रहते हैं, शुक्रगुजारी इनके अंदर जो है ना हर चीज़ में नजर आ रही होती है. तो मैं आपकी कॉल का भी वेट कर रही हूँ, आप भी कॉल कीजिएगा. लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं.
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
3: दोस्तों मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है. जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें. अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं. हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी. वजारत दाखिला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो. FM 106

0: सेवन आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।

0: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रही हैं 107 FM समर मॉर्निंग और कॉल एक्टिव हो चुकी है. नफीस नहीं पूछा था पहले, मैसेज करके भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सुबह खैर, और कॉल कब एक्टिव होगी. तो कॉल तो एक्टिव हो गई और नफीस से मेरी बात भी हुई है, तो अब आप लोग भी कॉल कर सकते हैं. अच्छा जी, इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. और ये कहते हैं कौन, नाम नहीं लिखते, और कहते हैं प्रे ट्रस्ट एंड वेट, अल्लाह इज ऑलवेज परफेक्ट. हैप्पी और सैड Always say Alhamdulillah. So many times Allah saved me from difficulty. Alhamdulillah. Okay जी, thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अगर नाम लिख दिया करें तो बहुत ही अच्छा हो जाए. खैर जी, हमारे साथ हैं एक और कॉलर, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. हम बोले अपने सुबह का मुकम्मल भाई, हमने अभी शुरुआत किया तो मैं बोला चलो अभी शुरू हो जाते हैं.
0: चलें जी, गुड, जबरदस्त. रईस भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप?
1: जी जी, अल्लाह का करम है. आप सुनाए अपना.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र.
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो आज आपने किस मौजू पे कहा?
0: आज मैंने सवाल किया है कि कोई छोटी सी बात, बहुत मामूली सी बात, लेकिन अगर वो हो जाए तो आप खुश हो जाते हैं. जैसे मैंने कुछ मिसाल के तौर पे कुछ बातें की थी, उसके बाद नफीस भाई तो जो आए हैं उन्होंने तो भाई बहुत ही मतलब वो आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया. जैसे अब वो सब सिग्नल्स खुले मिल जाएं, जैसे अभी नफीस भाई ने कहा कोई आता है कभी तो मिठाई लेकर आ जाता है, तो मेरा तो भाई ज़िंदगी बन जाती है. तो इस तरह की कोई चीज़ आपके पास हो, छोटी सी मामूली सी, लेकिन वो हो जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हो.
1: जी, जिंदगी की बहुत सी एक्टिविटी में बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी को खुश करने के लिए, सही बात है. और आदमी को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए.
0: हाँ.
1: ये भी एक चीज है कि उसको खुश रहने के लिए हमेशा अपनी पॉजिटिविटी एक्टिव करके रखना चाहिए. हमेशा मतलब ये हो कि अपना मतलब चेहरा और अपना कुछ किसी का चेहरा भी ऐसा बना के रखते है कि पता ही नहीं चलता कि ये खुश है कि ना खुश है भैया. तो थोड़ा सा अपने आप को, और बहुत सी छोटी चीजें हैं जो कि मतलब हम रस्ते में जा रहे हैं, अगर कोई मजदूर परेशान है, अगर मतलब पानी, अगर हमारे पास ठंडा पानी है तो हम उसको मतलब दे दें पानी, या कुछ जूस है या कोई भी चीज, या रस्ते में कहीं बेचारा मतलब रुका हुआ तो उसको थोड़ी दूर तक अगर पहुंचाना है तो उसको अपने मंजिल तक तकरीबन वहां पे छोड़ दें. या कोई भी चीज, बहुत सी चीजें हैं जो कि मतलब आदमी को खुशी, जैसे किसी को किसी का मदद कर देना, छोटा छोटा चीज अल्लाह के नाम से.

0: एक खजूर की गुठली से, मतलब खजूर के उसके अगर आदमी चाहे तो अपने मतलब जन्नत और जहन्नम इतनी बड़ी चीज मतलब ये किया गया। इस्लाम के अंदर कोई चीज मतलब ये गैर मतलब अहमियत नहीं दिया गया है, सब चीज का अहमियत दिया गया है कि छोटी छोटी चीज का मतलब सदका है। किसी को सलाम आप कर लिए, मतलब चाहे आप किसे पहचाने या ना पहचाने, अगर आप देख रहे हैं तो उसको आप अगर आगे बढ़ के सलाम कर रहे हैं, उसका हाल पूछ लिए, तो ये भी एक आदमी का मतलब दिल को सुकून मिलता है। या किसी का मदद कर दिए थोड़ा सा, और खास कर किसी का मतलब कोई परेशान हाल है अपने करीब के या हो, और खास कर अब ज्यादा पता अपने करीब के लोगों का पता चलता है, तो अगर हम उनको उसमें थोड़ा तकलीफ में शामिल हो गए या उनका थोड़ा मदद कर दिया तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। खास कर अगर मैं किसी को सदका करके और किसी के ऊपर थोड़ा सा ये कर लेता हूँ तो फिर मैं उनसे बड़ा मशकूर होने लगते हैं। तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई, बहुत ज्यादा मतलब आप शुक्र अल्लाह का शुक्र करें कि हमें अल्लाह ने उस लायक रखा, हमने आपका मदद किया। ऐसा मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा मतलब मेरा तारीफ का फुल पाने और ऐसा वैसा कुछ नहीं, फिर मेरे अंदर हो सकता है कि कुछ अजब किस्म का मतलब फील आए, गुरूर आए, बस अल्लाह ताला उससे बचाए और अल्लाह ताला को ना पसंद है। तो ये सब चीजें जो है ना कि बहुत आदमी के दिल को सुकून मिलता है, खास करे सदका अगर आदमी कर।
1: अच्छा, यहाँ पे एक पॉज, ठीक है, आते हैं एक मिनट में।

0: FM 107. Time check.
1: राइट, 7:01 और हमारे साथ रईस भाई, तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से। जी
2: जी, और मैं एक बात और ऐड करूंगा, अगर आदमी अल्लाह पे तवक्कल करके सुबह शाम के जो अज़कार हैं,
1: हाँ,
2: वो अल्लाह के उस पे जो, अगर वो सुबह फजर के बाद में अगर अल्लाह पे तवक्कल करके अपने काम को हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कल तो हुवा रब्बुल, मतलब ये सब जो दुआएं हैं अज़कार के, वो सब अगर पढ़ ले तो उसके दिल को सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला जरूर आसान करेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। और ये कोई छोटी छोटी अगर परेशानी हल्का फुल्का अगर सामने जिंदगी में आती है या बड़ी परेशानी आती है, तो ये अल्लाह का मतलब ये है, कोई जरूरी नहीं है कि आदमी को उससे घबराना चाहिए। उसमें इम्तिहान भी है, बड़े बड़े लोगों से भी अल्लाह ताला ने लिया है, खासकर अंबिया कराम से भी, तो हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि आदमी को दिल को सुकून मिलता है, जैसे आप भाई ने कहा कि मतलब दिल, हाँ ये सब तो बातें बिल्कुल वाजे है कि आदमी सोच के निकलता कि यार आज हमारा काम अल्लाह से, अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरे काम को, तो ये भी दुआ करना चाहिए और बिल्कुल आसान हो जाता है। ये मैं बिल्कुल आजमाया हूँ कि मैं कहीं कहीं ऐसे मुश्किल में आया हूँ कि मैं दिल में यार पता नहीं आगे क्या हो क्या हो, लेकिन मैं अल्लाह को जिक्र किया तो अल्लाह, मैंने पाया है कि वो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से मुझे, मेरे लिए आसानी जरूर मतलब ये कर दिया, मुहैया कर दिया है बिल्कुल। तो मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह के उससे कभी भी, और हमारे सामने एक हदीस भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक जूते का चश्मा भी अगर टूट जाए बंदे का, तो अल्लाह से मांगे, मतलब तो बंदे को उससे हमेशा ये करना चाहिए, वो कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई सबब हमारे लिए
1: बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही बना देता है, बेशक ऐसे ही।
2: तो आदमी को खुशी और अल्लाह के उससे हमेशा मतलब ये होके रहना चाहिए कि अल्लाह जो कोई हमारे से कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा आजमाइश किया, तो ये हमारे गुनाहों के लिए या हमारे कोई उसके लिए, ये हमारे एक

0: जरूरत था अल्लाह ताला वो हमें इसको समझाने के लिए भी कोई चीज को थोड़ा सा तकलीफ में डालता है. बहुत सी बातें हैं जो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो फाइन ये किया गया है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि कतर गवर्नमेंट को कम आने का मकसद है, नहीं, बहुत से लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए
1: बेसिकली वाकई ऐसे.
0: तो ये सब चीजें बहुत मतलब समझ लो खास है कि जो कि हमें उससे, हाँ अगर हम अच्छे से अपने उसको एक्टिव करके रखेंगे तो नहीं गलती होगा. मतलब तकरीबन मैं देखता हूँ कि फाइन और ये सब चीजों से आदमी महफूज रहेगा. लेकिन अब अगर हम अपने गलत तरीके से ये करते हैं तो फिर हमारे सारी खुशियाँ महीनों भर की बर्बाद हो जाती, पूरे मेहनत जाएगा, वो जाहिर सी बात है.
1: सही सही सही सही. तो ये जो चीजें हैं मतलब अल्लाह पे तवक्कुल खास तौर पे, और फिर वो चीजें जो हो जाती हैं वो आपको खुशी देती है. चलें जी, गुड, जबरदस्त रईस भाई, बहुत आला. तो बहुत बहुत शुक्रिया
0: भाइयों का भी, मतलब इंशाल्लाह मैंने बस अभी ट्रेनिंग किया है, गाड़ी लोडिंग हो रहा था मेरा तो.
1: अच्छा अच्छा, चले चले,
0: मैं बोला चलो शुरुआत कर देते हैं कुछ ना कुछ.
1: नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा किया आपने कॉल कर ली, और इंशाल्लाह हम और लोगों को भी सुनते हैं.
0: हम सोचते हैं कि जिस दिन हम बात कर लेते थोड़ा सा कुछ अपने हक, मतलब जो सही बातें हैं कुछ लोगों तक
1: पहुंचाते हैं,
0: तो हमें खुशी, ये भी बहुत बड़ी खुशी का मतलब एक जरिया है.
1: जी जी,
0: ये भी बहुत बड़ा खुशी महसूस होता कि कुछ अपने तरफ से अच्छी बातें भाइयों तक पहुंचा देते हैं, मतलब अपना भी अपने आप को भी उसमें एक्टिव कर लेते हैं तो दिल को सुकून मिलता है.
1: जबरदस्त, बहुत आला रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. इंशाल्लाह फिर बात होती है, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है. थैंक यू जी, थैंक यू रई जी. तो हमारे साथ थे रईस भाई, और इसके साथ ही देखते हैं कि कौन है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? बड़ी अरसे के बाद आए भाई आप तो.
2: आप भी गायब थी ना?
1: नहीं, मैं तो इधर उधर हो रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, लेकिन आप तो बहुत अरसे के बाद आज बात हो रही है.
2: जी जी.
1: तो कहाँ थे?
2: मुख्तसर सी बात और छोटी सी एक बात, यहाँ ही थे, दोहा में छुट्टी गए थे छोटी सी.
1: अच्छा अच्छा.
2: तो छोटी सी बात सबके लिए और अपने लिए भी, बी हैप्पी.
1: तो ये हैप्पीनेस कैसे मिलती है? किसी चीज से तो मिलती होगी ना?
2: नहीं, जो अगर नहीं भी तो कोशिश करें खुश रहने की और दूसरों को भी खुश रखने की.
1: वेरी नाइस, गुड गुड
2: जी, बस इतना शॉर्ट वन. ओके,
1: थैंक यू अब्दुल रऊफ साहब, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू जी, बाय बाय, लव इज रई जी. तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स आ रहे हैं, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर आपको पता है 4434377, और साथ ही साथ 6662107 पे आपने हमें मैसेज भेजना है. मैसेजेस आपके आए हुए काफ़ी सारे, लेकिन ऐसा करते हैं इस वक्त एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपके मैसेजेस भी शामिल करते हैं, कुछ मैं आपको अपडेट्स वगैरह भी बताऊंगी. तो बस साथ रहें, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, the ultimate mind workout as pure fun. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कांटेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है, साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।

0: रेडी राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान, और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ म्यूजिकल ब्रेक के बाद. और आप लोगों से आज मैंने सवाल किया है कि वो कौन सी चीज़ है छोटी सी जो कि आपको खुशी देती हो. तो आप मुझे कॉल कीजिए 4434377 और साथ ही साथ 6622107 पे मैसेज कर सकते हैं. अच्छा, मुझे जो खुशी देता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है आप लोगों की जब कॉल आती है और आप लोग अच्छी अच्छी सी डिफरेंट डिफरेंट सी बातें करते हैं, तो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. तो ये होता है, मतलब एक हर दफा ना रोजाना मैं देखती हूँ कि एक बंदा आता है, उसका एक अलग सोचने का अंदाज है, दूसरे का एक अलग सोचने का अंदाज है. और कभी कभी कोई बिल्कुल वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने पहले कॉल नहीं की होती, कभी कभी उनकी कॉल मिलती है और वो फिर कॉल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं किसी चीज़ के हवाले से, तो मज़ा आता है. मतलब मुझे ये चीज़ भी बहुत खुशी देती है. और मैं हमेशा ही इस बात को कहती हूँ कि जो भी हो ना, आपको नींद आ रही हो, कोई चीज़ हो, कोई परेशानी हो, लेकिन यहाँ पे आके ये स्टूडियो मुझे इतनी खुशी देता है रोज़ाना, कि जैसे ये माइक मुझे इतनी खुशी देता है कि जैसे ये ऑन होता है उसके बाद फिर आप अपने सारे गम भूल जाते हो, सारी जो है ना नींदें वींदे सब पीछे हो जाती हैं, सिर्फ याद रहता है तो ये कि भाई मैं बहुत खुश हूँ. तो ये वाला सिलसिला भाई मेरे साथ है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मुझे खुशी देती हैं. खैर जी, इसके साथ ही आ जाते हैं, हमारे साथ हैं कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, क्या हो गया भाई, क्या चल रहा है पीछे? रेडियो ऑफ कर दीजिए. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे?
1: मोहम्मद दिलनवाज बात कर
0: रहा हूँ. मोहम्मद
1: दिलनवाज.
0: दिलनवाज, ओके. मोहम्मद दिलनवाज, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: आप बताइए. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. पहली दफा बात हो रही है आपसे?
1: जी, पहली दफा बात हो रही है.
0: हाँ, पहले कभी कॉल की नहीं, मिली नहीं, क्या हुआ?
1: मोबाइल भी मांग के कॉल की है.
0: हाँ, सॉरी,
1: मोबाइल भी मेरा अपना नहीं है, आपकी आवाज से बात की है.
0: अच्छा, मोबाइल अपना नहीं, किसी से लेके अभी कॉल की है. अच्छा अच्छा, चले गुड, जबरदस्त. आपने कॉल की, लेकिन मोबाइल क्यों नहीं है अपना?
1: मोबाइल है, रिचार्ज नहीं है.
0: अच्छा अच्छा, चार्ज नहीं है. ओके. सही सही. तो खैर जी, क्या कहना चाहेंगे भाई?
1: फिर भी यही कहना चाहूंगा, देखो

0: आपसे बात हो गई, ये छोटी सी बात है कि आपके कॉल मिली है, ये आपसे बात हो गई, बहुत खुशी मिली है,
1: बहुत खुशी मिली है। अच्छा ये तो बताएं आप कहाँ से हैं?
0: मैं इंडिया से हूँ।
1: कौन सी जगह से?
0: यूपी सहारनपुर।
1: यूपी से हैं, ओके गुड, जबरदस्त भाई। और मुझे भी बड़ी खुशी मिली है, आपका नाम सुनते ही बड़ी खुशी मिली है, इतना प्यारा सा नाम है आपका।
0: बहुत शुक्रिया।
1: सही, और क्या कहना चाहेंगे भाई?
0: बस मैम कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुन ली है और आप ऐसे मुस्कुराते रहते हो, और हमारे भाई बैठे हैं पास में बोल रहे हैं इनका आवाज अच्छा है, फोन करना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छी बात है,
1: चले नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सब लोगों का, जिन लोगों ने भी कहा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आपने जो बात बोली ना, आपकी आवाज़ सुन ली, खुशी मिल गई, मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, तो थैंक यू सो मच भाई। और कुछ कहना चाहेंगे, या फिर अगर कभी हो ना दिल नवाज, आपके पास बैलेंस ना हो कुछ, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, 6622107 पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगी, ठीक है? अपने नंबर के साथ नाम लिख दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगी, ठीक है? चले जी, और कुछ कहना चाहेंगे या बस?
0: गाना सुना दीजिए अच्छा सा।
1: अच्छा कौन सा सुनाऊं, कौन सा पसंद है आपको?
0: कोई भी जो आपको अच्छा लगे।
1: अच्छा चले ठीक है, चले मैं आपके लिए लगाती हूँ नेक्स्ट, ठीक है? जो होगा वो आप ही के लिए होगा। चले नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ ही दिल नवाज, और इसके साथ ही आपके मैसेजेस हैं मेरे पास, तो उनकी तरफ भी मैं आ ही जाऊं। अच्छा एक दो मैसेजेस पढ़ती हूं, फिर उसके बाद ना फिर मैं कॉल ले लेती हूं। अच्छा जी, तो ये है तौफीक, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं अलवकरा से, और इसके साथ ही तौफीक के अलावा मेरे पास मैसेज है एक है, इनको उन्होंने शायद मुझे मेरा ख्याल है ये बताया कि इनको इससे खुशी मिलती है, शिपमेंट आउट फॉर डिलीवरी, इससे खुशी मिल जाती है। हाँ ये भी खुशी की बात तो है वैसे, मतलब आपने कोई ऑर्डर किया वो, क्योंकि मैं तो बताती रहती हूँ ना, मैंने ज़्यादातर मतलब मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, तो जब ये आता है कि शिपमेंट आउट फॉर डिलीवरी, तो खुशी तो मिलती है, एक्साइटमेंट हो जाती है कि अब आने वाला है अपना सामान। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, नाम देऊ मैं हाजिर।
1: हाँ क्या बात है तौफीक भाई, क्या हाल चाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरा नाम पहले ले लिया, मैं फोन कर रहा था वही।
1: अच्छा अच्छा सही, तो क्या है भाई सिलसिला? तौफीक भाई को तो पराठों से खुशी मिलती है।
2: पराठा छोड़ो, वो तो इसी घर का है, वो अपने हाथ बाएं हाथ रखे।
1: अच्छा,
2: तो मुश्किल नहीं।
1: फिर किस चीज से खुशी मिलती है, कौन सी चीज है ऐसी?
2: मुझे कोई दुआ देता है, कोई बुजुर्ग मुझे दुआ देता है, मैं कुछ करता हूँ उसके लिए, मुझे दुआ देते हैं, पर बहुत खुशी।
1: जबरदस्त, वेरी नाइस, ये अच्छी बात है।
2: बस मुझे दुआ चाहिए, मेरा दिल खुश होता है।
1: दुआ से तो हर किसी का खुश हो जाता है दिल, और वो भी होता है ना कि अगर मतलब आप किसी को बोलो नहीं दुआ करने के लिए, उस बंदे के अपने मुंह से आपके लिए दुआ निकल जाए तो बहुत खुशी होती है।
2: नहीं मैं नहीं बोलता हूँ,
1: वही तो वही मैं कह रही हूँ। हाँ मैं समझ रही हूँ कि वो जब आपको दुआ देता है, हाँ
2: वही काम आ जाता है। हाँ
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जी। और भाई तौफीक भाई क्या चल रहा है आजकल?
2: नाइट ड्यूटी है डेली, वही चल रहा है, तो नाइट ड्यूटी करो, आ जाओ फिर बेटी को ड्रॉप करो, फिर आओ फिर वापस लाओ। नींद बाय बाय, थोड़ा रेडी के साथ बिजी हो जाओ।
1: सही सही, तो बड़ी मतलब बिजी बिजी लाइफ चल रही है आपकी।
2: बस खुश हुई इसी से।
1: चले जी गुड, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सोने का टाइम मिल रहा है ना, सो रहे हैं आप? अच्छी बात है, तो बस अपना ख्याल रखें तौफीक भाई, और ख्याल मतलब नाश्ता वाश्ता करें, सो जाएं, ठीक है? इंशाल्लाह। चले जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी कॉल का, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो तौफीक हमारे साथ थे, इसके साथ ही अली का मैसेज है मेरे पास, और अली कहते हैं कि मुझे कॉल कीजिएगा, तो मैंने आपको कॉल कर दी है अली। हेलो अस्सलाम वालेकुम अली हमजा।
3: वालेकुम सलाम, कैसे
1: क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं भाई?
3: जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, और सुबह का आगाज कैसा हुआ, क्या हुआ आज?
3: हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, जो वो देते है बेहतरीन होती है।
1: जबरदस्त भाई जबरदस्त, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और बताएं भाई क्या हो रहा है, और क्या कहेंगे आज के सवाल के बारे में हमारे?
3: आज का सवाल आपका है, कौन सी छोटी चीज आपको खुशी देती है? वैसे तो कौन सी चीजें जो इंसान को खुशी देती हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब दिन का आगाज होता है और नमाज पढ़ के सुकून मिलता है, तो खुशी मिलती है ना, उससे ज्यादा

0: कोई चीज है ना आपके दिल को तसल्ली नहीं देती।
1: हाँ।
0: अब मेरा कुछ इस तरह का सीन है कि दो तीन दिन ऐसा हुआ कि पिछले दिन मैं उठा नहीं ना कदर के लिए, थोड़ा रात को देर से शायद तकरीबन 1-2 बजे, तो सुबह देर से तकरीबन 6:30 बजे उठा हूँ, इस तरह का कोई सीन रहा ना, तो कदर की नमाज मेरी मिस हो गई उसमें, तो वो सारा दिन एक दिल में ऐसे बोझ रहा ना
1: रहता है।
0: नहीं हुआ आज नमाज नहीं पढ़ी, देखे सारा दिन में दिल पे ऐसे बहुत सा रहता है, आज ये काम है तो अजीब सा कुछ लग रहा है। तो एक दिन ये चीज है कि अगर नमाज नहीं पढ़े तो फोन नहीं मिलता ना। बाकी इसके अलावा ये है कि अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है, सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं और मिलजुल के रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है आपके ना, फोन वाली बात, वरना आजकल के दौर में तो कुछ भी नहीं है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अगर आपको कोई ख्याल रखने वाला है ना, आपकी किसी को फिक्र है, तो आप बड़े लकी भी हैं और माशाल्लाह से ये बड़ी खुशी की बात है।
0: ऐसी है, और खास करके फिर आप जब फॉरेन चले जाते हैं, अब्रॉड में आप लोग होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की फैमिली तो होती नहीं है, तो ये आपके रूममेट्स हैं या जो आप लोग ये वाले यही आपकी फैमिली है, अगर ये सपोर्टिव है, ये आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी उस वक्त में किसी की बात नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अली, सही बात है, सही कह रहे हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल, बस ये है कि ये वक्त का जो है ना एक तरीका है, यहाँ कह लें कि आप लोग जो दोस्त बना रहे होते हैं, कम से कम उनको देखभाल के सोच समझ के बनाएं, क्या किस तरह के बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लोग आजकल आजकल जो है ट्रेंड चल गया हुआ है कि जो लोग खूबसूरत है या जो सफेद कलर के हैं उनको लग जो है ना मोस्टली मैंने देखे है, नो डाउट कि मैं ब्लैक काला हूँ, मैं काला नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की है कि मोस्टली जो है वो ये देखते हैं कि जी ये कितना गुड़ है, ये सफेद है, ये वाइट है,
1: इससे दोस्ती कौन करता है,
0: लोग आजकल ये देखते हैं, ये नहीं देखते होते कि ये जो है इसका दिल कितना अच्छा है और ये कितने शख्सियत का मालिक है, ये नहीं देखते, वो जब उसके साथ 4 दिन दोस्ती बना लेते हैं पता चलता है ये तो भैया बस तेरे की खूबसूरत है, देव इसका काल है, थोड़ी में समझ आती है या इसमें तो बहुत
1: सही सही सही। अच्छा ये बड़े मजे की बात बताई आपने, इस तरह से दोस्तियां हो रही हैं आजकल।
0: दुनिया की दोस्ती जो है वो बेफिजूली है, इससे आप लोग कितना भी फायदा उठा लो, वो ऐसे एक इंसान की मोहब्बत में जैसे आप लोग पागल हो जाते हैं तो वो बेजोड़ा आपसे छोड़ देते हैं, इसी तरह दुनिया की मोहब्बत है, आप जितना मर्जी दुनिया की मोहब्बत कर लें एक दिन ये भी आपको छोड़ देगी, अल्लाह मोहब्बत है तो कभी इंसान को छोड़ती नहीं है, वो तो मर्जी से पकड़ के रख लेती है। तो
1: अली हम साहब की एज कितनी है?
0: मेरी एज 25 है।
1: हाँ चलें गुड, जबरदस्त, तो अच्छी बात है भाई। लेकिन ये मुझे अच्छा, मुझे अभी आपने जब ये वाली बात बोली ना, मुझे लगा शायद आपकी एज और कम होगी जो दोस्तों वाली बात बोली आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें नहीं गुड, जबरदस्त अली, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, और आपने अब हमारी मालूमात में इजाफा भी किया है।
0: अब
1: तो खुद गोरे हैं, आपसे तो लोग दोस्ती करते होंगे फिर इसलिए।
0: मेरे दोस्त कैसे हुआ ना, तो उसकी बात सुनकर ना बड़ा परेशान हुआ।
1: अच्छा।
0: वो कैसे सामला ना बेचारा, मतलब इतना घोड़ा की टर्निंग का सामला।
1: अच्छा,
0: तो उसने अपनी बात बताई, कहते यार मैंने ना देखा मेरा ही दोस्त है, पहले मेरे साथ था वो, मुझे ना मेरे फेस पे मुझे उसने कुछ मुझे बात की है, मैं क्या रंग मुझे जो है ना ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ कैसे लेके जाऊँ,
1: मेरे दोस्तों मतलब कौन सा चल रहा है मामला,
0: उनके साथ से बैठा वो बात, सिर्फ उनकी मेंटेलिटी का उसे पता चला, तो उसने उसको बताया, फिर उसने मुझे सारी बात बताई ना कि ये सीन हुआ है मेरे साथ। मैं सुन के बहुत हैरान हुआ कि यार इस तरह के मतलब चल रहा
1: है, अजीब बात है वाकई, बिल्कुल अजीब बात है वाकई में, तो बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन खैर होता होगा, ऐसा भी होता होगा। चलें जी, तो थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, कल बात करते हैं, ठीक है, चलें जी, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना। रही जी, तो अली हमजा ने हमारी जो है मालूमात में इजाफा किया, और ये पता चला कि लोग आजकल ये देख के दोस्ती कर रहे हैं, दूसरा गोरा है कि नहीं है, बड़ी अजीब सी बात पता चली।

0: एक कहना था कि एक दौर था हम क्रिकेट का एक बैट लेना होता था तो हमारे जो पेरेंट्स थे मेरे अबू जो थे दो दो तीन तीन दिन जो है ना खूब से यानी ऑफिस के चक्कर लगवाना अपने काम वाम करवाना फिर जाके बैट दे के देना होता था तो और आज जो है ना आप बड़ी से बड़ी भी चीज बच्चे को ले देते हैं ना और थोड़ी दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं वो एक कोने में पड़ी होती है बच्चा कहीं और होता है।
1: हाँ ऐसे ही है भाई,
0: कदर नहीं होती बच्चों को चीजों की अहमियत का। वो जो है ना चाहे आप इतनी बड़ी चीज लेके देते हैं वो पेरेंट्स की कितनी मेहनत की कमाई होती है। वो मुझे ये बात बड़ी वो खलती है कि ये देखो इतनी बड़ी चीज लेके दी है इसको यानी एहसास ही नहीं है कि कोई संभाल के रखे।
1: नहीं वैसे पता है क्या आपको ना वैल्यू दिलानी पड़ती है खलील भाई, मतलब आपको ना बच्चों को एहसास दिलाना पड़ता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आप अगर अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो ना ये नहीं कि एहसान जताओ कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए कितना करें, ये वाला रवैया नहीं, लेकिन हाँ ये वाला आपको एक बताना जरूर चाहिए कि ये जो चीजें हो रही है ना ये ऐसे ही नहीं हो रही इसके पीछे।
0: आजकल आजकल भाई यहाँ जो पेरेंट्स रहते हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं।
1: नहीं आप अफोर्ड तो कर सकते हो लेकिन फिर भी बच्चे को बताना चाहिए कि ये जो है ना सारी मेहनत हो रही है और ये सब कुछ है ये ऐसे ही तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उस चीज को ऐसे ना लो क्योंकि ये कितने लोगों को मिलती नहीं है, तुम्हें मिली शुक्र करो। हाँ तो ये जो चीज है ना और ये खास तौर पे माओं का बड़ा किरदार है इसमें कि वो ये बच्चों को बताएं क्योंकि बाप बेचारा अपने मुंह से बोलता नहीं है वो करता ही रहता है जो कुछ भी होता है, लेकिन माओं को बताना चाहिए बच्चों को कि ये जो चीजें हैं तो इसके लिए तुम्हारा बाप जो है ना चाहे वो ऑफिस में ठंडे ऑफिस में बैठा हो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो पूरा दिन रात अपनी लगाता है मेहनत करता है, तो ये जो चीजें हैं वो बतानी चाहिए बच्चों को उनके अंदर जब कदर पैदा होती
0: है। आजकल के पेरेंट्स में ये चीज नहीं है मैंने देखा है या मुझ में नहीं है। बहरहाल हमने जो जिंदगी गुजारी लाइफ गुजारी तो हमने देखा कि हमारे तो अब्बू दो एक बैट क्रिकेट का लेने के लिए इतनी यानी चार चार पांच पांच दिन उनके ऑफिस के चक्कर लगाना खूब से उनके काम करना उनको खुश करना ये हमें खामी है या उनमें खामी थी समझ नहीं आ रही। तो एक छोटी सी मेरी बात थी मैंने कहा मैं शेयर करूं ताकि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों को एहसास दिलाएं क्योंकि यहाँ जो है ना मैं देखता हूँ पुरकशिश लाइफ है और माशाल्लाह गाड़ी तो यहाँ अहमियत ही नहीं रखती। हमारे मुल्कों में तो गाड़ी एक बहुत बड़ी अहमियत है, यहाँ तो हर तरफ एक से एक गाड़ी खड़ी हुई है तो इन चीजों की तो अहमियत ही बच्चों के सामने खत्म हो जाती है क्योंकि वहाँ वो लाइफ उन्होंने वहाँ देखी नहीं होती, वो तो यहाँ की जनरेशन है वहाँ की थोड़ी।
1: सही बात है बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो ये एहसास दिलाना पड़ता है आपको बच्चों को और ये कह के कही नहीं कि कोई हम अपने तौर पे कोई बंदा भी कोई कुछ भी किसी के लिए नहीं कर सकता, लेकिन असल जो चीज़ है ना वो ये है कि अल्लाह ताला हम पे कितना मेहरबान है कि हमें ये चीज़ें दे रहा है हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वो चीज़ है ना बच्चों को हाँ और ये बच्चों को बताना चाहिए बिल्कुल बताना चाहिए कि हमारे नहीं लेकिन अल्लाह के ज़रूर शुक्रगुजार हों कि ये सब कुछ मिल रहा है क्योंकि जो देता है अगर आप शुक्रगुजारी ना करो तो वो वापस ले भी सकता है, तो इसलिए बच्चों के अंदर शुरू से ये शुक्रगुजारी का जज्बा ना पैदा करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा किया और अच्छा मैंने अभी देखा आपने मैसेज भी किया हुआ है लेकिन इससे पहले मैंने नंबर आपका नोट कर लिया था खलील भाई हाँ तो कभी भी ऐसा हो ना आपको लग रहा हो कॉल नहीं मिल रही है आप मुझे मैसेज पहले ही कर दिया करें ठीक है। ठीक है खलील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज। राइट जी तो हमारे साथ थे खलील भाई और इसके साथ ही हम मूव करेंगे एक गाने की तरफ और ये गाना हम खास तौर पे चला रहे हैं दिल नवाज और उनके दोस्तों के लिए क्योंकि वो सुन रहे हैं बैठ कर, उन्होंने कहा था जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं चला दूँ, तो ये ट्रैक आपके लिए प्ले कर रहे हैं दिल नवाज, इंजॉय कीजिएगा। सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसी, वापस आती हूँ अपडेट्स के साथ आपके मैसेजेस के साथ और कॉल्स के साथ।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: FM 107 par apna business advertise karne ke liye, aaj hi raabta karein.
5: Aaj hi raabta karein.
4: Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
6: Absolute Cinema.
7: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. पर डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.

0: ready, right. Welcome back, summer morning with RJ Mahavish. और आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए शामिल कर लें एक अपडेट. मैं आपको बता दी चलूं कि कतर की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने गर्मी के मौसम में वर्कर्स की हिफाजत के लिए हीट स्ट्रेस अवेयरनेस वर्कशॉप मुनक्कद की, और वर्कशॉप में तकरीबन 160 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स ने शिरकत की. वर्कशॉप का मकसद कंपनीज और एम्प्लॉयर्स को हीट स्ट्रेस के खतरात और उनसे बचाव के तरीकों से आगाह करना था. और हेल्थ प्रमोशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सलाह अब्दुल्ला अल याफे, उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री का मकसद वर्कर्स के लिए ज़्यादा महफूज और सेहतमंद वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है. और वर्कशॉप में कुछ टॉपिक्स डिस्कस हुए, जैसे हीट स्ट्रेस होता क्या है, इसके अलामत और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, हीट स्ट्रेस से बचाव के तरीके, फिर वर्क प्लेसेस में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटर करने का तरीका, और इमरजेंसी फर्स्ट एड जब किसी वर्कर को हीट स्ट्रेस हो. और हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के डॉक्टर्स ने बताया कि 2025 में एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में हीट स्ट्रेस के केसेस पिछले सालों के मुकाबले में कम हुए हैं, लेकिन अगस्त के महीने में अब भी एहतियात की सख्त ज़रूरत है. और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के एक्सपर्ट्स ने याद दिलाया कि 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक हर साल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुली जगहों पर काम करना ममनू है. और एम्प्लॉयर्स को ज़रूरी हिदायत दी गई है कि ठंडा पानी का जो पानी पीने का है वो दस्तयाब हो, और इसके साथ ही शायद रेस्ट एरियाज मुहैया किए जाएं, वर्क और रेस्ट टाइमिंग मुनज़्ज़म हो, वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाए, और हीट स्ट्रेस की अवेयरनेस मटीरियल जो है वो वर्कर्स तक पहुँचाया जाए. तो ये जी सारी चीज़ें, और उसके साथ ही हमारे पास मौजूद हैं कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह. कौन बात कर रहे हैं, जमाल तो नहीं है कहीं?
1: जी
0: जमाल है, जमाल है.
1: अच्छा,
0: आवाज़ आपकी कम आ रही है. मैंने कहा चले तुक्का लगाती हूँ, तो वही जमाल ही हैं आप. ठीक है, क्या हाल है भाई?
1: नहीं,
0: मुझे आवाज़ आपकी ना अभी भी बहुत कम आ रही है जमाल. थोड़ा सा रिसीवर कुछ फोन करीब करें.
1: अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ.
0: हाँ जी, अब क्या कोशिश आपने कर ली है, थोड़ी कामयाब हो गई है.
1: अब आ रही है आपकी आपको आवाज़ में?
0: हाँ हाँ, बेहतर है, बेहतर है. जी जमाल, तो क्या हाल चाल है भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
0: गुड, जबरदस्त.

0: खुशी कम मिलती है ज्यादा। तो एक चीज मैंने नोटिस किया है, उस चीज का इजहार मैं कर देता हूँ आपके सामने। मैं ना पूरे महीने हर दिन जब अपने बच्चों से बात करता हूँ तो उनकी जो भी छोटी मोटी फरमाइशें होती है उनकी लिस्ट बनाता हूँ, जेल में रखता हूँ।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद सैलरी मिलती है और वो मुकम्मल पैसे का भेज देता हूँ। मैं सबको मतलब ये कर देता हूँ, क्या कहते हैं, हिदायत कर देता हूँ घर वाले को या जो लोग थोड़ा जिम्मेदार देते थे, सारे लोग की हमारी चीजें पूरी होनी चाहिए।
1: सही सही। तो मतलब इससे खुशी मिलती है जब दूसरों की चीजें ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। तो हाँ
0: मुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है।
1: सही सही, गुड गुड।
0: क्या कहते हैं, दूसरा या तीसरा दिन होता है दूसरे दिन जब मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि पापा थैंक यू, तब मुझे कहीं ना कहीं इस बात बहुत ही ज्यादा खुशी मतलब मिलती है और ये एहसास भी होता है।
1: जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। तो ये जो एहसास है कि भाई मतलब कर लिया मैंने, जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये आपको खुशी देती है?
0: खुशी देती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको।
1: अच्छा जमाल, थोड़ा सा कुछ फोन का ना अभी भी मसला है, तो आप बात तो कर रहे हैं लेकिन लोगों तक मुझे लग रहा है कि आवाज ना सही से पहुंच नहीं रही, थोड़ा सा और कुछ करीब कीजिए, कुछ कीजिए फोन का।
0: अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, हाँ, एक छोटी सी बात मैं आपसे कर दूं।
1: जी जी जी,
0: हम कुछ करना था मुझे इस साल में 2026 में, एक दूसरा काम पहले हमने डिस्कस कर लिया हुआ था, मैंने अपने बीवी से डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा कि कर देखेंगे। देखिए अचानक से ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे अब हर हाल में घर चाहिए। जिस दिन उन्होंने कहा दूसरे दिन मैंने बिना कुछ सोचे मैंने कहा ठीक है आप कल परसों से शुरू कर दो।
1: अच्छा,
0: तो वो मतलब फिर मतलब सब कुछ हो गया।
1: ग्रेट।
0: 13-14 सालों से मैं सोच रहा था, और मैं आज आपको बताऊ 2011 में मैंने अब्दुल रहमान साहब से रात को रमजान के मौके पर एक दुआ याद किया था, उन्होंने करवाया था, उन्होंने बताया था कि मेरी अपनी ज़ाती जिंदगी पर ये अमल करके मैंने तजर्बा किया है कि ये बहुत परफेक्ट अल्लाह ने मतलब जो चीज मांग रहा था मुझे मिली। तो सभी से जैसे मैंने वो सुना था तो मैं खुद भी उससे मतलब काम कर रहा था, जब भी हाथ उठता था अल्लाह के सामने तो वो दुआ में मांगता। तो अचानक जब सब कुछ होने लगा तो मुझे लगा कि शायद अल्लाह को ये वक्त मंजूर था, वजह से अभी तक नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को मिलता नहीं, तो शायद ये मौके पर वक्त था, मेरे लिए बेहतर वक्त था, तो वो हुआ। हमारी बीवी ने कहा मुझे घर चाहिए, और जब मैंने घर शुरू कर दिया तो हर दिन मैंने उस बंदी को देखा कि कभी जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो वो हमेशा मतलब एकदम खुश हो गया, आशा से बच्चा बीमार भी होती है तो पता नहीं लगने देती है।
1: अच्छा,
0: तो मैंने उससे कहा कि सिर्फ नोटिस नहीं किया, बच्चे जब बच्चे भी वहाँ नहीं है पास में, दूर थोड़े दूर है, वो लोग भी जब फोन वगैरह करते हैं तो उनको भी पता लगता है कि आज कल अम्मी बहुत खुश है।
1: अच्छा, अच्छा माशाल्लाह। चले जी माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: हाँ
1: सही बात है माशाल्लाह से। चले जब मतलब ये बड़ी एक बात है, और वाकई मतलब ख्वातीन के लिए ना घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो माशाल्लाह से मतलब जो ना इस बात पे खुश हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे। और वो दुआ ज़रूर जमाल साहब अगर कोशिश हो मतलब मौका मिल सके तो व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिएगा ताकि हम भी लोगों से भी शेयर कर लें वो, ठीक है?
0: जी मैं बिल्कुल भेज दूंगा, मैं अभी अगर कहें आप तो मैं मतलब वो बोल के भेज देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो लिख के भेज दें
1: या कहीं से शेयर कर दें, ताकि वो क्योंकि आपने जिक्र किया ना मुझे पता है लोग पूछेंगे उसके बारे में, तो आप जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है?
0: और अगर कहें तो मैं अभी अगर मतलब थोड़ा सा उठे तो अभी कर दूं।
1: हाँ हाँ बता दीजिए। जी जी बता दीजिए।
0: ये दुआ मुझे बताया था उन्होंने,
1: अच्छा,
0: रात को रमजान के मौके पे उन्होंने बताया था।

0: रहता हूँ, दुआओं के बीच में भी पढ़ता हूँ, तो अल्लाह ने मुझे जो चीज मैंने सोचा था बहुत बेहतर अंदाज में मुझे दिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और दुआ दो हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा कह दी लंबी उम्र में हमारे लोगों के दरमियान देरपा वो शख्सियत जिंदा रहे
1: इंशाल्लाह। आमीन
0: इंशाल्लाह। आपके उर्दू की आपके उर्दू के उस उर्दू चैनल पर जो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह लोग उन्हें किताबों में पढ़ेंगे
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है।
0: इस्तेफादा वो होता है ना, मेन कहते हैं ना कि आपका अमल जो है ना वो अगर अवामी सतह पर किसी को मुस्तफीद करता है, फायदा देता है हर कशुनाकस को, तो फिर वो समझ लीजिए कि अल्लाह ने एक काम लिया है आपको।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलें दी, बहुत शुक्रिया जमाल, थैंक यू सो मच। आज आपकी आवाज़ आती है फिर उसके बाद फिर दूर चली जाती है, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी बीवी को बड़ी मुबारकबाद दीजिएगा हमारी तरफ से। ठीक है
0: जी, बिल्कुल मैं थोड़ी देर में कॉल
1: करूंगा। बिल्कुल जी, मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया जमाल कॉल करने का। थैंक यू जी, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना, लाफिज अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे, थोड़ी सी आवाज़ में मतलब थोड़ी सी वो थी, मतलब कि आवाज़ आ नहीं रही थी मुझे। अच्छा जी, इसके साथ ही प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इस प्रोग्राम की वजह से मैं टाइम पास कर रहा हूँ ड्राइविंग के दौरान। और ये कहते हैं हतीकुर रहमान, ओके जी हतीकुर रहमान बहुत बहुत शुक्रिया। जसविंदर सिंह कहते हैं गुड मॉर्निंग मंजी, वेरी नाइस प्रोग्राम, वेरी गुड प्रोग्राम। जसविंदर सिंह काला दिल से देसी। और इसके साथ ही हमारे पास मैसेज वॉइस नोट नहीं भेजेगा, ये अमरीक पाल इनका नाम है, तो आप जो है लिख के भेज दीजिए क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही अस्सलामुअलैकुम का मैसेज है मेरे पास, और ये फर्रुख आलम ने किया है। वालेकुम सलाम फर्रुख, क्या हाल चाल हैं आपके, ठीक ठाक हैं। और इसके साथ जो है मेरे पास मैसेज है एस के मजरुद्दीन का, और कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, व्हेन माय सैलरी गेट्स क्रेडिट टू माय अकाउंट इट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, व्हेन माय चाइल्ड सेज पापा आई वांट दिस एंड आई एम एबल टू गिव इट टू देम, सीइंग देयर हैप्पीनेस मेक्स मी ट्रूली हैप्पी, एंड व्हेन माय मदर आस्क me to do something and I do it knowing that she is happy deep inside fills my heart with joy, these are my little moments of happiness. क्या बात है, जबरदस्त, ये जबरदस्त था। अच्छा जी, इसके साथ ही इन्होंने गाने की भी फरमाइश की है, तो मैं गाना जो है चला देती हूँ ताकि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी हैं तो फिर इनको भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए। और ये वाला ट्रैक ये सुनना चाहते हैं, मैं फ़ौरन से आपका गाना ऐसा कर अभी लगाऊँ या फिर थोड़ी देर के बाद लगाऊँ, क्योंकि पूरा नहीं चल सकेगा, तो ऐसा करती हूँ थोड़ी देर के बाद लगाती हूँ। ठीक है, ऐसे कि आपका गाना चल जाएगा थोड़ी देर के बाद, पूरा का पूरा हम चलाएंगे। इसके साथ ही जी हमारे पास है ये बंदा गाड़ी से बाहर बैठ के बातें कर रहा है, ओके गाड़ी से बाहर बैठ के बातें कर रहा है। जमाल क्यों किया आपने ऐसा, गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते आप। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू खादिम भाई कहते हैं, और कहते हैं मावशान बहन ढेर सारी दुआओं के साथ आता और क्लास टाइम शुरू हो गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कॉल थोड़ी सी लंबी हो गई थी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे सलामत रखे। अगर भाई टाइम मिल जाता है किसी वक्त में क्लास टाइम के बाद, तो फिर अगर तो मौका हमारा शो का चलता रहता है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। चले जी, तो इसके साथ ही हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि गाना मैं आपके लिए चलाती हूँ लेकिन दूसरा चला देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो फरमाइश की है फिर वो चले तो फिर पूरा चले ना, तो चलें ये वाला सुनते हैं और वापस आते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक
2: रेडी राइट 8:02 तकरीबन हो ही गए, बल्कि हो ही गए तो हम आपके साथ हैं। 9 तक मेरा और आपका साथ रहना है और आपसे शेयर करनी है कुछ चीज़ें और भी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सवाल आज मैंने ये किया हुआ है आपसे कि वो कौन सी छोटी सी मामूली सी चीज़ है जो कि आपको खुशी देती है, ठीक है? तो इसके हवाले से आपने मुझे बताना है। इसके साथ ही जी मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर कर लेती हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को खुशी देगी, वो ये कि कतर फाउंडेशन का हिस्सा सिदरा मेडिसिन ने हेल्थ केयर वर्कफोर्स को मजबूत बनाने के लिए 2 अहम एजुकेशनल प्रोग्राम्स पेश किए हैं। इनमें नया मेडिकल ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम और पहले से कामयाब फ्यूचर डॉक्टर प्रोग्राम शामिल हैं। अच्छा, सिदरा मेडिसिन के चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर इब्राहिम जनाही ने कहा है कि तालीम उनके मिशन का बुनियादी हिस्सा है और उनके मुताबिक डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एक्सपीरियंस जो डॉक्टर्स हैं, जो टीम है, उसके साथ सीखने का मौका देना मुस्तकबिल के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोग्राम है मेडिकल ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सेस, मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, फेलोज और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और एकेडमिक विजिटर्स के लिए तैयार किया गया है। और प्रोग्राम के दौरान पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम को करीब से ऑब्जर्व करेंगे, क्लिनिकल वर्क फ्लो और पेशेंट सेफ्टी सिस्टम को समझेंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स के साथ किस तरह से वो काम करती हैं तो ये देखेंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस से वाकिफ़ होंगे। तो ये जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है, इसमें पार्टिसिपेंट्स किसी पेशेंट का डायरेक्ट इलाज या क्लिनिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है? और इसके साथ जो फ्यूचर डॉक्टर प्रोग्राम है सिदरा मेडिसिन का, वो सेकेंडरी स्कूल के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्यूचर में डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। और ये 5 दिन का इमर्सिव प्रोग्राम है सिदरा का, जो कि मॉडर्न सिमुलेशन सेंटर में होता है और ये 15 से 18 साल के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें सिमुलेशन बेस्ड मेडिकल लर्निंग हासिल करते हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स का विजिट करते हैं, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से मेंटरशिप लेते हैं, फर्स्ट एड, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन हासिल करने का भी मौका मिलता है। तो ये ज़बरदस्त है, 2 प्रोग्राम सिदरा ने लॉन्च कर दिए हैं। तो जो जो विलिंग है वो डेफिनेटली मतलब यहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और ये जो प्रोग्राम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपसे मैंने सवाल किया है कि कौन सी चीज़ें आपको देती हैं खुशी, मामूली मामूली सी चीज़ें, तो देखते हैं कि हमारे कॉलर क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्या हालचाल
2: है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जावेद साहब आप कैसे हैं?
3: अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने तो मोबाइल का उठाया होता है।
2: अच्छा जी, तो छुट्टी भी खुशी तो देती है। हाँ, छुट्टी खुशी तो दे रही होती है।
3: नहीं, खुशी तो छुट्टी का नो डाउट के, छुट्टी तो मतलब वो जो स्ट्रेस है वो निकल जाता है, लेकिन मतलब उससे ज्यादा जो स्ट्रेस ये है कि यार कॉल करनी है वो क्यों नहीं मिल रही।
2: काफी देर हो गई है नहीं कॉल मिलाते मिलाते।
3: काफी तकरीबन 7:15 से मिला रहा हूँ मैं।
2: ओए होए, अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा तो इंगेज पे जा रहा हूँ क्योंकि नंबर नजर नहीं आया मुझे, अभी पहली दफा नजर आया है।
3: नहीं, वो लाइन बिजी जा रही थी, उसके बाद हाँ। मतलब वही कल वाली बात के फिर 2 हाफ फ्राई और 2 स्लाइस खाए मैंने।
2: नामने के चलो भाई, पहले पेट पूजा हो जाए उसके बाद बात करते हैं। गुड, जबरदस्त जबरदस्त, चले अच्छी बात है। दोनों ने एक बात बोली है, अब किसके घर पे मेहमान आएगा। होता है ना ये।
3: ऐसे ही। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में मेहमान आए। मैं बहुत कम वैसे इनवाइट करते रहते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी होती है कि मेरी तरफ रौनक लगे।
2: चले जी, तो फिर मेहमान पक्का है आपके घर में। क्योंकि एक ही बात दोनों ने एक साथ बोली, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बताएं भाई जावेद साहब कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है?
3: देखिए, खुशी का ताल्लुक तो मुख्तलिफ और मुनफरद चीज़ों से है। आप मतलब इस चीज़ पर एक बात तो नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहले खुशी इस चीज़ की है कि जब हम सुबह उठते हैं, जिंदगी का आगाज होता है और नमाज से हम अपनी जिंदगी का आगाज करके ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद अगर दुनियावी मामलात में अब देखें किसी की मदद करें, किसी की बात को, मैं समझता हूँ कि मदद करना और वो किसी भी तरीके से, वो अच्छी राय से हो, वो फाइनेंशियल हो, जो आपकी आप साहिब इस्तेदात हैं या जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक, क्योंकि हर बंदे की एक लिमिट है करने की। और अगर किसी बंदे को आप मुस्कुरा के देखें, अगर किसी बंदे को बड़ा कोई तकलीफ है, दर्द है, आप उसकी बात बड़े तहम्मुल से सुनते हैं ना, मेरे ख्याल से इसके अंदर इससे भी बड़ी कोई खुशी की इंतहा नहीं होती इंसान के अंदर। छोटी छोटी हम खुशियां तलाश करते हैं बड़ी बड़ी चीजों पर, जबकि पोशीदा हैं वो छोटी छोटी बातों पर।
2: बिल्कुल ऐसे।
3: छोटी सी बात ही करने की मतलब मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि पौने तीन मिनट से पहले पहले तो
2: ये आपने पौने तीन मिनट जो ना रख लिया है
3: मुझे मतलब मैं अमल करता हूँ, कोई भी कोई बात कहे कोशिश करता हूँ कि मैं अमल करूँ।
2: ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है।
3: खुशी का ताल्लुक जो है ना वो छोटी छोटी चीजों में तलाश करना चाहिए और उसी में है। बड़ी तो खैर जो नसीबें वो मिली जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ मैं भी वो पहाड़ का काम करती हैं। आई बिलीव इसको जानता हूँ और मेरे यकीन भी इसके ऊपर। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते भी हैं रास्ते में, मतलब कोई भी अगर कोई बाजुकात कोई बंदा, फॉर एग्जांपल अगर किसी की गाड़ी का कोई मसला हो गया, आप उतर के अगर उस बंदे से पूछ लेते हैं ना कि यार क्या मसला हुआ, क्या आपकी मदद कर सकते हैं, तो यकीन कीजिए आपने दुनिया और आखिरत भी कमा ली। उसी वक्त आपको फील होगा कि आपने कमाई की, आप फील करेंगे इस बात को।
2: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे।
3: हमारी खुशी की तो यही इंतहा है बस।
2: चले नहीं, गुड, जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है कि दूसरों की मदद में अगर आपकी खुशी है। पर सबसे बड़ी की मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है, जैसे आपने भी कहा, एक दो कॉलर्स ने और भी कहा कि जब सुबह की नमाज इंसान पढ़ लेता है ना, तो एक उस दिन आपको ऐसा लगता है आपने मतलब कर लिया है, और जिस दिन छूट जाती है उस दिन आपको लगता है कि मतलब कमी है जिंदगी में, मतलब एक अंदर से एक चीज़ फील होती है। तो ये भी, ये एहसास भी माशाल्लाह से ये भी एक बड़ा ही खुश आइंद मतलब एक चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपकी खुशी अगर इस इन चीज़ों के अंदर होने लगे ना, तो फिर मतलब बेड़ा पार है।
3: देखिए आप महसूस करें इस चीज को कि माशाल्लाह जिस तरह हम फजर की नमाज के लिए उठते हैं, उसके बाद डेफिनेटली ऑफिस पे जाना होता है, कुर्बानी तो वो है जिस दिन आपकी ऑफ डे है और आप उठ के जा रहे हैं।
2: ये बात है।
3: दूसरा, जब आप इशा की नमाज के बाद सारी नमाजों का, आप यकीन कीजिए आजकल तो टाइम थोड़ा लंबा हो गया ना, वरना आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे बहुत बड़ा एक बोझ था वो मेरे बदन से हल्का हो गया, मतलब मेरी रूह को तस्कीन मिल गई है। मैं बिल्कुल किसी चीज की मुझे तलाश या ख्वाहिश या मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुझे मैं किसी दौड़ लूं, बड़ा हल्का फुल्का इंसान। सबके साथ यही मामला है, क्योंकि नमाज फर्ज है, अदा करने के बाद ही उसको सुकून भी मिलता है, उसके अंदर सुकून भी है। तो आज तीन मिनट दस सेकंड हो गए।
2: चले जी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी जावेद साहब, तीन मिनट दस सेकंड लेने के बाद वापस चले गए और हमारे साथ आ गए एक और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नवेश।
2: गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: अजू,
2: हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कि कौन सी छोटी चीज में मिलती है आपको खुशी?
4: Now my mind was thinking for breakfast making me happy.
2: Breakfast?
4: Now my mind was thinking take breakfast make me happy.
2: Okay, good.
4: Oh, see, this is depends on the person. The person, you are doing a job and someone appreciate man. And the guy was thinking only appreciate, no more. Okay, like that. And some guys, okay, thank you very much. It depends on the person, how you make them happy. So, the thing is, feel free and feel talk happy and make them happy and like everyone. The thing is happy.
2: Okay, great.
4: Like, do what you love and understand the others' mentality and walk away like that.
2: Good. Anything else?
4: Thank you, ma'am. No,
2: nothing. Okay, Aju. Thanks a lot. Thank you for your call. Thank you. Take care. जी तो हमारे साथ थे अजू और इसके साथ ही हम मूव करते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ. ये रिक्वेस्ट की थी अभी भाई ने और उन्होंने सुनना चाहता कुछ कुछ होता है तो उनके लिए मैं चला देती हूँ एस के मजहरुद्दीन. राइट तो चलें जी आपका गाना चल रहा है एंजॉय कीजिए अपना गाना. थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं सुनते रहे एफ एम 107 दिल से देसी. अरे ये कौन सा कुछ कुछ होता है लग गया ये तो कोई और ही लग गया. नहीं मैं आपको दूसरा वाला चलाती हूँ यश मूवी का कोई था. नहीं ये वाला नहीं चलेगा आपका वाला ही चलेगा ये सोच के एकदम से मैं परेशान हो गई. अच्छा कुछ गाने ऐसे हैं ना कि वो फ़ौरन से आपको पता चल जाता है कि ये तो वो नहीं है तो ये वाला नहीं चलेगा. मैं थोड़ी देर के बाद आपके क्या सीन क्या है कुछ कुछ होता है इतना मतलब पॉपुलर गाना है वो क्यों नहीं मिल रहा. हाँ ये टाइटल चेंज है बेसिकली इसका. ये हो गया गाना आपका चल गया. इसका टाइटल है तुम पास आए. कुछ कुछ होता है नहीं है. इंजॉय कीजिए सुनते रहे हैं फिर 107 दिल से देसी.

वैसे ये गाना भी ना उन गानों में से एक है जिसको सुन के आपको बिलावल की खुशी होती है ना, मतलब शायद मेमोरीज हैं, यादें हैं बहुत सारी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: राइट वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान और एक दफ़ा फिर मैं आ गई हूँ, माइक खोले बगैर मैं बोले जा रही थी। खैर जी, तो हम आ गए हैं फिर आपके साथ और मेरे पास मौजूद है आपसे शेयर करने के लिए एक न्यूज़ और थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो कि मतलब ये काम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने सोशल मीडिया मिनिमम एज लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज के लिए मैक्सिमम जुर्माना 99 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक रख दिया है। नए कानून के मुताबिक ई सेफ्टी कमिश्नर सोशल मीडिया कंपनीज से सबूत तलब कर सकता है कि उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए क्या प्रैक्टिकल कदम उठाए। तो ये है भाई सिलसिला, मतलब ये बच्चों को आप लोगों को भी दूर रखना चाहिए कि जो भी बच्चे हैं सोशल मीडिया से वाकई दूर रखें। बिला वजह का टाइम वेस्ट होता है और कोई मतलब ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है, तो इसलिए कोशिश पेरेंट्स की भी होनी चाहिए ये कि वो अपने बच्चों को खुद ही मतलब ना सोशल मीडिया वगैरह से दूर रखें। और ये अच्छे कानून है जो कि बनाए जाते हैं इसीलिए ताकि आपके बच्चे प्रोटेक्ट रहें। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मेरे पास एक और आपसे शेयर करने के लिए अपडेट भी है, मौका लगता है तो वो भी शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके मैसेजेस की तरफ मैं आ जाती हूँ। अच्छा, शहजादा सलीम का मैसेज आया हुआ है कॉल का, ये कह रहे हैं, चले मैं आपको मिला लेती हूँ। शहजादा सलीम, थोड़ी देर हो गई मैसेज देखते देखते, लेकिन ये कि आपको हम कॉल कर लेते हैं, थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं जब तक बाकी के मैसेज शामिल करेंगे। अच्छा जी, तो है सिलसिला क्या, मेरे पास है किसका मैसेज, मोहम्मद खान यानी यूसुफ खान, इनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग मामा जी, कैसे हैं आप, होप वेल। और इसके साथ ही आपने कहा है भला क्या, आप कहते हैं कि वेलकम टू समर मॉर्निंग, हैप्पी मंडे मामा जी, जब मेरी बच्ची एक छोटी सी स्माइल मिले ना मुझे बहुत खुशी देती है। ओके सही। अच्छा बच्चे ना, मतलब मैं जब अभी एक भाई से बात हो रही थी, वो तस्वीरों वगैरह की बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में एक तस्वीर आई फ़ौरन। हम लोग गए थे जब गिलगित बल्तिस्तान के टूर पे, तो वहाँ पे एक बच्चा था, वो तस्वीर मेरे पास आज तक है, और वो तस्वीर आज भी जब भी मतलब वो कभी आती है ना, मतलब आप देख रहे हो तो मुझे अभी भी एकदम से ना मतलब मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे हम लोगों के, क्योंकि बच्चे आपको इतनी को खुशी देते हैं। और कुछ मतलब आप एकदम से जा रहे हो, कोई बच्चा एक अलग से एक्सप्रेशन दे दे, कोई लेटा हुआ होता है अपने स्ट्रॉलर में, आप देखो उसको, तो बच्चों को देख के ना मतलब ये वो वाली खुशी है, मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं और इस तरह की खुशी का एहसास आपको नहीं होता जो किसी बच्चे को देख कर होता है, छोटे बच्चे को देख कर होता है। तो ये एक अलग ही खुशी है, अल्लाह ताला ने एक बड़ी मोहब्बत और बड़ी एक ना शफकत वाला मामला बच्चों के साथ खसूसी तौर पर रखा है कि आप बच्चे को देखें। और मुझे लगता है कोई कठोर से कठोर इंसान भी होगा ना, बहुत ही सख्त दिल का भी होगा ना, तो वो भी कम से कम बच्चे को देख के तो मुस्कुरा ही देता होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बच्चे से ज्यादा कोई खुशी आपको नहीं दे सकता छोटे बच्चे से। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अभी काफी देर से मैं आपके गाने सुन रहा था। मैं विश के प्रोग्राम में इतने सारे गाने ऊपर तले बैक टू बैक,
1: 3 घंटे का शो है ना।
2: नहीं माशाल्लाह, आप इनको सेगमेंट्स में या उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने फुल नहीं सुनता हूँ, शायद आप करती हों, करंट सिचुएशन वर्ल्ड कप फुटबॉल का इवेंट रखे हैं, हर एक ही फुटबॉल की।
1: अच्छा पता है क्या, मैं जो सीधी सी चीज़ है ना, मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्पोर्ट्स में, तो वो आपकी जो दिलचस्पी होती है ना वो लाजमी झलकती है। मुझे खुद ही नहीं पता, मैं फॉलो ही नहीं कर रही फुटबॉल को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, थोड़ी बहुत मैं खबरें बताती हूँ लेकिन वो देख के बता देती हूँ, तो उसमें क्या होता है ना वो अपनी वाली फील नहीं आती है, तो बता तो मैं देती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन वो वैसा वाला मेरा शौक है ही नहीं फुटबॉल का।
2: फुटबॉल का नहीं, जैसे एक स्पोर्ट्स इवेंट कोई भी चल रहा हो, इसमें हाँ। ये नहीं है कि आप
1: अमीन भाई है ना।
2: हाँ 3 घंटे में आपके साथ माशाल्लाह इतने कॉलर्स भी जुड़ते हैं, तो एक टॉपिक्स और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो इस वक्त करंटली चल रहा है और जो फॉरएवर नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए।
1: नहीं वो हो रहा है और शोज में हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स के मामले में एक्सपर्टीज नहीं है। पहले कभी हुआ करता था, शौक होता था क्रिकेट का, अब तो वो भी नहीं है, तो फिर वही है कि थोड़ी बहुत खबरें हम शेयर कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करते।
2: हाँ उसमें भी वही वो जो फेमस टीम है उनके प्लेयर्स हैं और उनके साथ जो अपसेट्स हो रहे हैं वो उसी का ज़्यादा मज़ा आता है, कहते हैं ना खबर ये नहीं है कि कुत्ते ने उसको काट लिया, खबर अब आजकल ये है कि उसने कुत्ते को काट लिया। तो है। और इवन सैटरडे को ना आपका रात को, इवन मैंने तो है सेकंड टाइम सुना, फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे थे तो उससे के ऊपर जो चल रहा था ना, आपने एक प्रोग्राम किया हुआ है यानी जिसमें उससे के ऊपर मुख्तलिफ चीजें बता रही थी तो बड़ा मजा आया। तो मिसेज मेरी बार बार कह रही है ये तुम्हारे ऊपर ही किया हुआ है, मैंने
1: कौन सा वाला है ये शो
2: भाई, शो नहीं था जिसमें आप गुस्से को बताती हैं कि गुस्सा के नुकसान फायदे और किस तरह
1: ये हदीस टू हैबिट है,
2: हदीस टू हैबिट, सही। तो उसके ऊपर चल रहा था और बड़ा ही था, यानी अगर ईमानदारी से हर बंदा सोचे, अगर कोई चीज उसके ऊपर गलत है उसको सही करना चाहिए, फिट बैठती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सही है ये पार्ट इस तरह है, करेक्शन होता है। तो बाकी जाहिर है आई एम यूज्ड टू लिसन आपके बड़े प्रोग्राम हैं, तो इसमें मल्टीपल सेगमेंट्स जो हैं, ये गाने सुन सुन के बोर हो गए हैं वही गाने, या गानों के अंदर कोई नया टच डाले,
1: गाने में खुद तो गा नहीं सकती ना ज़ुल्करनैन साहब वरना अगर मैंने गाने शुरू कर दिए तो लोग फिर रेडियो ऑफ कर देंगे
2: एक ज़माना था।
1: अच्छा नहीं, बेसिकली होता क्या है ना कि शुरू का जो पूरा एक घंटा है उसमें हम कोई गाना नहीं चलाते, फिर दूसरे में भी हमारे गाने कम चलते हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं होते। अगर आप देखें तो टोटल शो में मेरा ख्याल है 3 घंटे के शो में 8 गाने चलते होंगे मुकम्मल मिला के,
2: शायद क्योंकि मैंने मुकम्मल नहीं सुना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी ना इंटरेक्शन बहुत अच्छी है लोगों के साथ, यानी काफी सारे हैं जो रेगुलर्स भी कर रहे हैं और इसको और भी हैं कि कुछ लोगों को इस तरह एंगेज किया जाए। जैसे आपका वो जो पहले वाला वो तो हर घंटे का शो था, उसमें तो हम तड़पते रह जाते थे, टाइम ही नहीं आता कॉल करते हुए, सही बात है। और उसमें हर डे को आपने एक मखसूस सेगमेंट के साथ अटैच किया था
1: जी,
2: तो वो भी है, हर 3 घंटे का है इंशाल्लाह। खैर मैं जब भी सुनूं 1-1.5 घंटा तो आई एम एंजॉय टू मच, नहीं कुछ गाने हैं बड़ा मजा आता है सुनने का, और बंदा एक टॉपिक सा था अंगेज करता हुआ लाइटली देख लेता है, भी अल्लाह ताला ने खुश्क नहीं बनाई हाँ नहीं सही है आप हंसते हैं। अभी आप जैसे बच्चों की भी बात कर रहे थे तो इसमें क्या कहते हैं, अच्छा आपने एक ऑस्ट्रेलिया की बात की कि उन्होंने
1: सोशल मीडिया, हाँ जी छोटे बच्चों के लिए,
2: और अभी भी लोग आप देखें जो छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल दे देते हैं कि उनकी तवज्जो हटाने के लिए, और बच्चे वाकई खुश हो जाते हैं, इतने छोटे बच्चे इतने चलाक हो गए हैं कि स्क्रीन ऑन होते ही चुप हो गए बड़ी डेंजरस चीज है, यानी उसको आप शुरू से ही एडिक्शन दे रहे हैं, और उसकी जो वेव्स हैं, वाईफाई तो इतनी नहीं है लेकिन ये जो इसकी 5G वेव्स है ना, और उसके ऊपर फिर बच्चा जो मुसलसल देखता रहता है, आप छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, आप स्क्रीन या किसी चीज़ को जो फोकस करके देखते हैं तो आप जो नेचुरली ब्लिंक करते हैं ना, जो मॉइस्चराइज करते हैं या मसल्स को रिलीफ देते हैं वो नहीं होता, तो वो फिर बच्चों को आप यंग एज में चश्मे लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें भी अवेयरनेस आनी चाहिए इन खबरों से, कम अज़ कम हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम जिनको अंधा होके फॉलो करते हैं लेकिन वो लोग अंधे नहीं है, वो फिर भी चेक करते हैं भाई क्या हो रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके ऊपर वो कानून साजी भी करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं
1: ऐसे ही।
2: तो बाकी बच्चे तो फिर बच्चे हैं, हम भी हमारा भी कहते हैं
1: आप बताएं ज़ुल्करनैन साहब, सवाल ये है कि कौन सी छोटी सी बात है जो अगर हो जाए तो आप खुश हो जाते हैं,
2: कौन सी छोटी सी,
1: छोटी मामूली हो बेशक लेकिन आपको खुशी मिलती है उससे?
2: हाँ खुशी मिलती है अचानक कि अगर किसी वक्त, वैसे तो ठीक ही है तो, लेकिन बच्चे आके या फैमिली आके बैठ जाए बाबा आप कैसे हैं, दिन कैसा गुजरा है, ये इस तरह है, तो ये ऐसी चीज ना बड़ी आपको ना एनर्जाइज करती है कि वो हाल अहवाल ये इस तरह पूछ लें, या जैसे होता है ना कि शाम को आप थके हुए थे तो मैंने कहा पूछ लूं आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, तो ये जो फीलिंग है ना केयरनेस की, एक कनेक्शन जो है, इट्स वर्क अ लॉट।
1: सही, मतलब बच्चे अगर पूछ लें केयर कोई शो कर रहा हो तो उस वक्त जो है वो आपको बहुत खुशी होती है,
2: तो उसमें होता है कि हाँ आप जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसकी सोच में भी आप थोड़े से हैं।
1: हाँ सही, गुड, जबरदस्त, ये अच्छी चीज है, और वाकई मतलब बड़ा अच्छा लगता है आपको।

0: बच्चे खासतौर पे इतने केयरिंग हो कि अगर आपके पास बैठते हैं ना तो वो एक एहसास अलग है।
1: लेकिन ये हर वक्त नहीं होता, जो बात सच है ये किसी कभी कभी कभी कभी उनको ध्यान आते हैं। तो अभी तो हम इंशाल्लाह बेटी का इंतजार कर रहे हैं, तो
0: ब्रेक्स हो गए ना
1: पर रह गए हैं, तो शी विल बी इन 3-4 days थर्सडे।
0: कैसे एग्जाम्स हुए?
1: तो अभी उसके 3 पेपर बाकी हैं जो हो गए हैं। अच्छा ये है कि यहाँ पर जो एग्जाम वो लेते हैं ना ऑनलाइन टाइप का कंप्यूटर में, उसके ऊपर तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं ना यू गेट द रिजल्ट।
0: अच्छा और एक चीज और भी है, कुछ बच्चे जो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है ना उसमें इतने अच्छे नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और उनके जब वैसे रेगुलर वाला जो दूसरा वाला हमारे एग्जाम होता है तो उसमें ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे होते हैं और ऑनलाइन वाले में इतने अच्छे नंबर नहीं आते, ये भी मैंने देखा है।
1: अब तो यही हो गया पैटर्न, जो ब्रिटिश स्ट्रीम या इस तरह है यहाँ पर भी जो बच्चे हैं उनका ऑब्जेक्टिव टाइप ये होता है जिसमें आपने फास्ट टू द पॉइंट जैसे यस नो और एमसीक्यूज हैं तो वो आपने क्लिक करने हैं। हाँ ठीक है, ये उसी वक्त नहीं देते, लेकिन ये जो मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी का शुरू दिन से इनका ऐसे ही है।
0: अच्छा।
1: और उसमें 1 time विद इन वीक या 10 days या कुछ डेज होता है कि आप उसको रीअपियर हो सकते हैं, आप उसमें एक दफ़ा फिर भी दे सकते हैं अगर आप उनकी पासिंग मार्क्स रह गए हैं। तो इसमें ये होता है कि जैसे ही एग्जाम दे के आए सबमिट हुआ तो वो आके बता देती है बाबा मेरे 80% 95 या व्हाटसोएवर मेरा रिजल्ट हो गया।
0: गुड, जबरदस्त, मतलब अच्छा चल रहा है सिलसिला।
1: हाँ तो इस तरह है, ये भी एक अच्छी चीज है। वो टेंशन ये आपको पता है एग्जाम रिजल्ट आना इतने महीने और जब जैसे जैसे डेट आ रही हो तो कई लोगों की काफी टेंशन
0: बुरी हालत हो जाती है। मेरी तो हर दफा खुद होती थी। अच्छा हमारी क्लास में क्या सीन था कि हमारी क्लास में ना अनफॉर्चुनेटली बोलूँ क्या बोलूँ कुछ बहुत ही काबिल तरीन लोग थे ना, तो हमारे 3-3 लोग फर्स्ट आते थे, 3-3 second इस तरह का सिलसिला होता था। तो हम भी खड़े होते थे, हमें भी पूरी उम्मीद होती थी हम भी आ ही जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये होता था 4th या 5th। मतलब मैं हर दफ़ा इंतज़ार में होती थी कि 3rd आता था अनाउंस होता था तो मैं खुश हो जाती थी, अब मेरा नाम आने वाला होगा अनाउंस होने वाला होगा। 3rd बढ़ जाता था और 3 लोग आ गए 3rd में, फिर 2nd अनाउंस होता तो मुझे लगता था हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस इस दफ़ा 3rd से ज़्यादा अच्छी हो, अब 2nd में हो सकता है आने वाला, फिर 1st भी आ जाता था, फिर बाद में क्लास में जाके रिपोर्ट मिलती थी कि भाई 4th आई हो 5th आई हो। तो ये वाला सिलसिला मतलब वो जो इंतज़ार होता और इतनी एक्साइटमेंट एक अपने तौर पर हो रही होती है ना उसका मज़ा भी अलग है लेकिन टेंशन भी है।
1: अच्छा अब आपकी प्रोग्राम सुन के जैसे एक में आपकी पर्सनैलिटी की इमेजिनेशन है, उस वक्त भी आप इतनी वोकल थी क्योंकि आपके प्रोग्राम अभी आपने देखा
0: है, मैं बिल्कुल भी वोकल नहीं थी।
1: वेल रिसर्च करके और उसके इतने एस्पेक्ट हैं, बाकी प्रोग्रामों में हम कहते थे यार कम बोलो हमने भी कुछ बोलना है, इतनी हेल्प
0: नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी वोकल नहीं थी। और मैं इवन अब भी मैं इतनी ज्यादा नहीं हूँ, कुछ बहुत करीब के लोग हैं ना उनके साथ मैं बहुत बोलती हूँ जिनसे बहुत ज्यादा आदत हो, वरना यूजली आप मुझे कहीं पे देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा खामोश मैं ही नजर आऊंगी। मैं उतना ज्यादा नहीं बोलती जितने और लोग बोलते हैं, और बहुत हैं बड़े बड़े हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं।
1: अब आप जैसे प्रोग्राम कर रही हैं तो ये एक आप समझ लें कि आपकी एक जॉब है या आपका एग्जाम है या वो है, तो यू डन गुड जॉब। तो इसी तरह उसमें भी आपने वो अपनी प्रिपरेशन वो कर ली, ओके रेस्ट ऑफ द डे आप बिल्कुल साइलेंट रहें, चुप कर रोजा रख लें, डजंट मैटर, लेकिन जहां आपने लिखना पढ़ना है वहां
0: मेरी पूरी तवज्जो होती है, वहाँ मेरी पूरी तवज्जो हमेशा से होती है, हमेशा से होती है। और मेरी मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं बहुत कोई ब्रिलियंट हूँ या कुछ इस किस्म का, लेकिन हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो चीज़ भी मेरे ऊपर होती है जो चीज़ मुझे करनी होती है तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं यार ये करनी है तो करनी है और तरीके से करनी है।
1: नहीं तो ये इसीलिए ना क्योंकि मैं जिस तरह रेगुलर सुन रहा हूँ 2-3-4 साल हो गए हैं तो हमें पता है कि किस तरह है, तो वो फिर एक अच्छा रिजल्ट में ये भी चीज़ होता है बोर्ड के एग्जाम हो ना तो कई लोग आपके ना रोल नंबर देख के ना वो ढूंढ रहे होते हैं,
0: उन हमसे ज्यादा उनको फिक्र होती है
1: उनको फिक्र होती है
0: तो
1: बता रहे होते हैं इसका रिजल्ट नहीं आया हम ला के देते हैं, ये आया इसका पीसी ग्रेड आया ये
0: सही बात है, बड़ी लोगों को फिक्र होती है और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मालूम करवा लेते हैं, ये भी एक बड़ी मतलब आप बाद में हैरान होते हैं कि भाई इनको कैसे पता चल गया था
1: तो बस फारिग कामों से हम लोग फारिग ही रहे तो अच्छा है। तो बहरहाल अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, कल भी मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बातचीत कई दफा आपकी इतनी अच्छी चल रही होती है फिर बंदा कहता है लास्ट मिनट में क्या डिस्टर्ब करना है, मैंने कहा चलें अभी
0: चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्कर्नैन साहब, आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। रोहित जी इसके साथ ही बस एक ब्रेक लेती हूँ छोटा सा और फिर एक कॉलर हमारे साथ।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर।

0: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM समर मॉर्निंग. और हाँ, आपको चलते चलते जुल्कर डैन साहब ने याद ही दिला दिया, तो मैं कुछ अपडेट्स आपको देती चलूँ स्पोर्ट्स के हवाले से कि कतर फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन के राउंड ऑफ 32 से बाहर होने के बाद अपनी अगली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की तैयारी जारी रखे हुए है. इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान U20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज़ हो रहा है. दोनों टीम्स के नौजवान प्लेयर्स अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे. और इसके साथ ही पाकिस्तान 2026 एशियन गेम्स मैंस क्रिकेट कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर चुका है और इवेंट की तैयारियां जारी हैं. इसके साथ ही इंडिया की तरफ नजर डालें तो इंडियन जो विमेंस क्रिकेट टीम है ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीदें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से शिकस्त के बाद खत्म हो गई हैं. इसके साथ बांग्लादेश की तरफ आ जाएं तो बांग्लादेश यूथ क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जहां इस हफ्ते U20 सीरीज शुरू होगा. तो मतलब ये कुछ खबरें थी जो स्पोर्ट्स के हवाले से थी स्पोर्ट्स लवर्स के लिए. आज जी आ जाते हैं कॉल की जाने. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: जी, हम हैं आपके साथ. क्या हाल है शहजादा सलीम? बहुत देर इंतजार करवा लिया मैंने आपको.
1: कोई बात नहीं, बस यही कि मैं सुबह थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे था ना, उमर खलाल गया था.
0: अच्छा अच्छा.
1: यहाँ से तो मैंने रेडियो सुन रहा था, लेकिन मेरे साथ बंदे भी थे. तो फिर मैं बोला बाद में कर लूंगा, बाद में फिर कॉल नहीं, पे कॉल चलने लगी. मैं बोला मैसेज डाल देता हूँ, जब फिर कॉल आ जाएगा तो बातें हो जाएगी.
0: चले गुड. लेकिन मैंने देर से देखा काफी आपका.
1: हाँ नहीं, मसला नहीं है. मतलब ये है कि बस कॉलें और सब लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं, तो सुनने मिलता है सबके एक एक अंदाज, एक एक अपने ख्यालात और एक एक अपने सब शेयर करते, तो बड़ा मजा आता है. रेडियो तो इसी को तो रेडियो बोलते हैं.
0: हाँ.
1: तो हर तरह से एंटरटेन करे ना. हाँ. तो इसी में मजा है ना. हाँ.
0: सही हो गया.
1: काफी अच्छा. हाँ, काफी अच्छा. मतलब टॉपिक जो था ना.
0: हाँ हाँ, बताए ना इस टॉपिक के बारे में, आपको किस चीज से खुशी मिलती है?
1: हाँ, मेरे को जहाँ तक, मेरा तो काफी अरसा मतलब प्रदेश में ही रहा है ना, तो मैं अपने आप को है ना क्रिकेट के ग्राउंड पे जब मैं देखता हूँ ना मैच खेलते हुए, उसमें रहता हूँ, मशगूल रहता हूँ इसमें, तो सारी चीजें, जॉब ड्यूटीज और घर के कुछ हैपेंस हुए रहते हैं, वो सारे टेंशन पता नहीं कहीं कहाँ दूर गुम हो जाते हैं. बस मैं उसी में अपना इतना खुश रहता हूँ ना, इतना खुश रहता हूँ.
0: अच्छा.
1: कि बड़ा बड़ा मतलब मेरे को बहुत सेटिस्फाई मिलता है उस चीज से. तो मैं अपने आप को, हाँ, बड़ा बहुत अच्छा फील, महसूस, पीसफुल एकदम महसूस करता हूँ वहाँ पे. बहुत खुशी मिलती है कि देखो मतलब मतलब घर से इतने दूर रहने के बाद भी हम इतने अलहमदिल्ला इतने मतलब, यानी एक अपना ही मकाम, अपना ही मोहल्ला, अपना ही जैसा सब सारा कुछ है ना, उसमें हमको नजर आता होता है.
0: सही सही.
1: इस तरह से बड़ी बड़ी खुशी मिलती है. हाँ, मेरे को, मेरा तो बस वही रहता है. और ये एक एक अगर मेरे पास कुछ मतलब आपको तो पहले ही मैं बता सकता हूँ, बर्ड्स और ये जो चरिंदे परिंदे, अपना भेड़ बकरे और तरह तरह के जितने भी एनिमल्स बर्ड्स है ना, इनको मतलब देखना, ये करीब आ जावे, इर्द गिर्द ये घूमने लगे ना, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ कह रहा है, ये कुछ पूछ रहा है, लेकिन वो बेचारा कैसे मतलब हम फील कर सकते हैं. तो फिर अपने तरफ से कुछ उसके सामने केक डाल दिया लेके, या कुछ रख दिया, या कुछ दूध, कभी बिल्ली है तो उसके सामने दूध ला के रख दिया, इसी तरह से ना, तो फिर वो एहसास हो जाता है. तो ये सब छोटी छोटी चीजें बड़े मतमईन, बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ने इतनी इतनी मखलूक बनाई है हर जगह पे. तो हमारा भी मतलब ये ना, अगर हमारे पास कोई इर्द गिर्द चीजें घूम रही तो वो मतलब हम कुछ गेस कर सकते हैं कि मतलब मैं तो मतलब इसमें बड़ा मतलब ये मुतमईन. और मैं तो जब इधर था सऊदी बॉर्डर पे प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ ऊँटे घूमते थे ना, ऊँट होते थे ऊँट. तो हमारी जो मैसौल में ना रात को ना जब मैच बंद होता तो 8-10 पाकिट 15 पाकिट थे ना, ये खोखू से ना बच जाते थे, तो ये लोग थ्रो करते थे डस्टबिन में.
0: अच्छा.
1: तो हाँ, तो मैंने ना, मैं फिर ले लेता था, मैं बोला ये मैं लेके जाऊंगा. बोले क्या करेगा? मैं बोला मैं कुछ भी करूंगा, लेके जाऊंगा, ये देना पड़ता है उधर पर ना, बकरी वगैरह घूमती है ना, उनके काम आ जाएगा. तो मैं जब जाके ना उसको कार्टून में भर के रखता ना, तो भेड़ है ना वो दो जो चल रहे थे ना, जिनको रोज देता ही था मैं तकरीबन हफ्ते में 2-4 दफा है ना, जब भी कबूतर होते तो देता था, तो देखते थे मेरी गाड़ी दूर खड़ी है ना, पूरी फौज मेरी गाड़ी की तरफ दौड़ के आती थी, मैं गाड़ी शुरू करता था. यानी हाँ इतना खुशी अंदर इतनी पहचाने लगे थे जो पढ़ते थे ना वो जबरदस्त यानी सारा देखो इतना मतलब अभी वो डस्टबिन में चला जाता या में चला जाता किसी के पेट में गया वो जानवरों की क्या खुशियाँ तो इस तरह से फराम हुआ इस तरह से
0: जानवरों में भी मतलब ये जो ना चीजें बड़ी मजे की होती हैं। अच्छा मेरा मुझे मेरा बड़ा दिल चाहता है मेरी बड़ी अजीब सी ख्वाहिशात हैं जो कि मतलब मुझे ना आपको जानवरों की बात करें ना तो मेरे जहन में मुसलसल वो जानवर आ रहे हैं जिनको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे हाथी बहुत अच्छा लगता है और अगर मेरा बस चले इतना बड़ा घर हो तो मैं हाथी जरूर रखूं और हाथी की शक्ल देख के भी मुझे बड़ी खुशी होती है। कहीं पे भी हाथी देखूं ना तो मुझे अच्छा लगता है।
1: जी जी जी अभी यहाँ इंडिया में भी ना कई ऐसे लायन सफारी है ना जहाँ टाइगर्स वगैरह है ना आम घूमते हैं तो वहाँ वार्निंग की बोर्ड्स भी लगे होते हैं तो जब कोई गाड़ी जाती ना तो कभी आते हैं वो लेकिन हो सकता है वो कुछ तलब कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं जिंदी मुर्गियाँ वगैरह लेके जाके उनकी तरफ फेंकते हैं तो वो खा लेते हैं वो
0: हाथी खा लेते हैं मुर्गियाँ। पूरी पूरी मुर्गियाँ
1: पूरी मुर्गी खा लेते हैं टाइगर होते हैं ना टाइगर लेपर्ड होते हैं
0: हाँ नहीं वो तो खा लेते हैं।
1: हाँ जो अपना इंडिया में कई ऐसे रूट्स है ना जो मतलब पब्लिक जो जाती है बाय रोड जाती है जंगल को रास्ते से ना तो वहाँ वार्निंग के बोर्ड लगे हुए थे बाकायदा कि आप अपने आप को मतलब संभाल के चलो यहाँ पर इस तरह के मतलब जानवर रहते हैं लेकिन वो कभी अभी आपके रास्ते में बैठे हुए मिल जाते हैं कभी तो वहाँ गाड़ी रुका तो हाँ चीता है टाइगर्स है ये आपके गाड़ी के गिर देना घूमते हो। कई लोग क्या करते हैं उस रूट से जाते हैं ना तो मुर्गियाँ वगैरह लेके जाते हैं फेंक देते हैं तो वो उनपे टूट पड़ते हैं। अब आप आपका वहाँ से आना जाना रहा ना तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जब तक आप उनको नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो वो एक मतलब दोस्ती करने का एक बड़ा जरिया होता है वो उनकी भी मतलब एक
0: चीते से दोस्ती ये चीते से दोस्ती हो रही है। सही
1: कई कई कई इंडिया में ऐसे फार्म है ना जो एक मतलब जानवर से लेके खतरनाक जानवर भी वो पालते हैं बाकायदा उनके साथ बाकायदा उनके साथ शेक हैंड करते हैं बाकायदा उनके साथ बैठते हैं। बहुत ऐसे जो फार्मर है ना अपने घरों पे मतलब उन्होंने रखा हुआ बाकायदा।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ सही सही बताते रहता है वगैरह में तो उन्होंने बड़े मतलब शौकीन होते हैं यानी परिंदे से लेके बर्ड से लेकर और खतरनाक जानवर भी उनके पास है वो उनके पास फैमिलीज है।
0: सही सही चले भाई क्या बात है मतलब ये वैसा खुशी तो होती है जानवरों को इस तरह से। मुझे सारे खैर जानवर अच्छे नहीं लगते लेकिन ये कुछ जानवर हैं शेर को देख के भी बड़ी खुशी होती है। शेर भी कोई एक अलग सी ही है ना कुछ अलग सा लगता है मजा आता है देख के।
1: देखो अगर आपसे किसी अगर लेपर्ड ले लो या टाइगर ले लो अगर आपकी उसके साथ मतलब दोस्ती हो जाती है अगर आप उसके साथ एक तस्वर करें बैठ के उसके घर पे हाथ फिराए कितना उसको खुशी होती है कितना आपको ये रखे लगे।
0: यार मैंने कभी उसे चीते का तस्वर नहीं किया मुझे उससे तो खौफ ही आता है। चीता और बिल्ली एक ही खानदान के बिल्कुल लगते है ना।
1: हैदराबाद के जो पार्क में गया था ना तो वहाँ मतलब मेरा मतलब ऐसे था कि पब्लिक मतलब क्लोज में थी बैठा हुआ था तो मैंने उसके ना पीठ पे हाथ लगाया था।
0: हाय
1: बिल्कुल हाँ मैंने हाथ लगाया था बाकायदा।
0: अच्छा
1: लगाया था मैंने
0: सही सही
1: मतलब और उनको भी एक मसाज मिलता है ना तो बड़ी खुशी होती है उनको भी लेकिन बेचारे बोल नहीं सकते।
0: सही है शहजादा सलीम चले नहीं गुड जबरदस्त। बस आखिर का टाइम है मैसेजेस पढ़ती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपने बड़ी मजेद की बातें बताई मुझे बड़ी खुशी हुई है इससे। अच्छा जी तो हमारे साथ शहजादा सलीम थे और इन्होंने काफ़ी मजे की चीज़ें बताई। अच्छा हमारे ना नेबर में मतलब जब हम लोग पाकिस्तान आ गए थे उसके बाद हमारे नेबर में एक मतलब एक फैमिली थी उनकी बहन से भी मेरी दोस्ती थी शब्बर भाई कहते थे हम उनको मतलब उनका नाम शब्बर था। उन्होंने कोई ऐसा जानवर नहीं होगा कि जो उन्होंने अपने घर में ना पाला हो बकरी बिल्ली मतलब डॉगी इसके साथ ही जो है ना बंदर तो ये सारे के सारे जानवर जो है वो उनके घर पे होते थे हर तरह का मतलब पता नहीं कौन कौन सी ब्रीड जो है ना उन्होंने डॉगीज की पाली है और बड़े मज़े मज़े के होते थे महंगे महंगे वाले ना तो वो उनके घर पे उन्होंने सारे के सारे पाले हैं और वो हमें भी मतलब बंदर हमारे घर भी क्योंकि उसका मज़ा आता था वो हमारे घर आ जाता

चाहिए मिलती, बाकी मुझे और इतना कोई शौक नहीं है किसी जानवर का। हरजी सलाम भाई मैम, हैप्पी मंडे मॉर्निंग एंड वेरी नाइस योर शो, नाइस टॉपिक। मैम जब मैं FM सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, सर जी जब मैं मैसेज देखती हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। एस के मजहरुद्दीन कहते हैं थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया भाई। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बाजी कैसी हैं? मैं अच्छा हूँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं भाई कैसे हैं? आपका मैसेज आरिफ अंसारी आज थोड़ा सा लेट हो गया। इसके साथ ही जी मेरे पास है मैसेज, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इस प्रोग्राम की वजह से मैं टाइम पास कर रहा हूँ ड्राइविंग के दौरान। अच्छा दूसरी दफ़ा फिर लिख के भेजा थी को रहमान ने, ये तो मैंने पढ़ लिया था। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माविश खान, मैं 10 साल से आपको सुन रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैसेज किया, इतना लेट क्यों भाई? और प्ले वन सॉन्ग कुरतुलंद बलोच का, जुबैर बलोच, या जुबैर बलोच कुरतुलंद बलोच का सॉन्ग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल आखिर में मैंने मैसेज पढ़े, कैसे मैं लाइन अप करूँ? अगर तो मौका मिल जाता है तो मैं चलाने की कोशिश करूँगी, वैसे इतनी जल्दी में हो नहीं पाएगा, बिल्कुल आखिर का टाइम रह गया ना। खैर जी, इसके अलावा है कौन? इसके अलावा मेरे पास जुबैर बलोच के अलावा सरदार समी, और ये कहते हैं क्या, ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और ख्याल व्याल रखा है, और कह रहे हैं कि क्या हाल है, ठीक हो, रब को याद करो, एक फरियाद करो, खुदा को याद करो। राइट, सो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई। और इसके साथ कहते हैं कि लॉन्ग टाइम, हाँ जी, अच्छा ये जुल्कनैन साहब जो है अमजद इकबाल साहब के बारे में मालूम कर रहे हैं, तो मैं भी सोच रही थी कि अमजद इकबाल का काफ़ी दिनों से कोई मैसेज नहीं आया, किसी का कोई रब्ता वाबता है तो उनसे पूछ के उनकी खैरियत ज़रूर दरियाफ्त करें भाई, कि क्या हाल चाल है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जी मेरे पास है मैसेज किसका, ये है मुमताज़ अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशहाल रखे। मेरी छोटी सी खुशी जब होती है, जब FM 107 पे नाम वाला प्रोग्राम चलता है ना तो उस टाइम जब आप लोग बोलते हैं कि 3 नंबर पे आज के विनर हैं मुमताज़ अहमद, उस वक्त की खुशी पूछो मत मैम। ओके मुमताज़ अहमद, इंशाल्लाह आपको बार बार इनाम मिलता रहे, और जो इनाम मिला है उसके पैसे भी मिल जाएँ, आरिफ अंसारी को भी मिल जाएँ जल्द जल्द। रईस अहमद कहते हैं क्या पहली बार सुना है कि एलिफेंट भी मुर्गी खा जाता है? मैंने भी पहली दफ़ा सुना है कि एलिफेंट जो है वो मुर्गी खा जाता है, मैंने तो हमेशा केले खाते हुए देखा है उसको, और हाथी पाल लेती है अल्लाह। जी हाँ, मुझे बड़ा शौक है वैसे हाथी पालने का, लेकिन बस क्या करें भाई, इतना बड़ा घर ही नहीं है। सॉरी बाजी यार थोड़ा सा लेट मैसेज किया, कोई मसला नहीं आरिफ अंसारी। और इसके साथ ही अच्छा है, अच्छा है, नसीम कहते हैं। इसके अलावा जी मेरे पास मैसेज है, मेरी दुआ है आप हमेशा सलामत रखो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और ये मोहम्मद शहजाद हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मेरा ख्याल है सबके मैसेज नहीं नहीं एक मैसेज रह गया है असमत आफरीदी का, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, गुड मॉर्निंग, जब सुबह सुबह जॉगिंग के बाद ये ताज़ा ताज़ा ठंडा मैंगो शेक खुद बना के पीता हूँ ना, तो इसकी खुशी का लेवल ही कुछ और होता है, बंदा फुल चार्ज हो जाता है, ओए होए होए। और इसके साथ मेरी छोटी छोटी छोटी छोटी खुशियाँ ये भी हैं कि जो कहानी आप पढ़ रहे हो या ड्रामा फिल्म वगैरह में देख रहे हैं उसका क्लाइमेक्स बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आपने सोचा है। हाँ ओके, अच्छा मुझे खुशी जब मिलती है जब कहानी का क्लाइमेक्स कुछ और हो जो मैंने नहीं सोचा है, जब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अगर पहले से ही सोच लो तो फिर मज़ा क्या आएगा। और किताब की खुशबू और उसके साथ कॉफ़ी या फिर टी की गरम गरम सिप लेना, मतलब ये खुशी आपको कहीं और नहीं मिलेगी माशाल्लाह। अल्लाह सब लोगों को खुश रखे। असमत आफरीदी का किताबों से मोहब्बतों का जो सिलसिला है ना वो इस लेवल पे आ गया है कि मैं क्या बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम मक्खी चीमा, वालेकुम सलाम। और इसके साथ ही रब को याद करो, एक फरियाद करो, बिछड़ा यार मिला दे, गाने की फरमाइश है खुदा गवाह, या अल्लाह ये मैं समझी नहीं थी सरदार कि आपने गाने की फरमाइश की। अच्छा अब तो सीन ऐसा है भाई कि अब नहीं हो सकता कि ये वाला गाना चल सके, बस मैं आखिर में कुरतुलैन बलोच का मैंने गाना लाइन अप कर दिया है, वो मैं चला के जा रही हूँ, और अगर हुआ तो इसके बाद बैक टू बैक आप सुन लेंगे, ठीक है? वरना फिर कल आप रिक्वेस्ट कीजिएगा जल्दी, तो फिर हम आपके लिए चला देंगे। इस वक्त मन मायल का कुरतुलैन बलोच, जुबैर बलोच की रिक्वेस्ट सुनना चाहते थे इनको। इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होती है अब कल। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अपने से वाबस्ता लोगों का। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।

0: गर्मी की लहर के बायस अब तक 1,000 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम गैब्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि यूरोप में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के दौरान 21 जून से अब तक 1,300 से ज़ायद इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त तकरीबन 10 लाख अफराद शदीद गर्मी के हालात का सामना कर रहे हैं, जबकि कई मुकामात पर स्कूल बंद हैं और बिजली के निज़ाम पर शदीद दबाव है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो इसके इंसानी असरात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। WHO के सरबरा ने कहा कि यूरोप दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला बर आज़म बन चुका है, जहाँ दर्जा हरारत में इजाफा आलमी औसत के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना रफ्तार से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो शदीद गर्मी की लहरें कभी एक नस्ल में एक बार आने वाला वाकया समझी जाती थीं, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस अब तकरीबन हर साल का मामूल बनती जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूरोप का बुनियादी ढांचा, जिसमें घरों, काम की जगहों और स्कूल को शामिल किया जाता है, ऐसे शदीद मौसमी हालात को बर्दाश्त करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं, जिसके बायस निज़ाम शदीद मौसमी असरात के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। टेड्रोस एडहानोम गैब्रेस ने कहा कि आलमी इदारे सेहत रुकन ममालिक और दीगर शराकत दारों के साथ मिलकर गर्मी से मुतालिक खतरात से निमटने के लिए तैयारी, रोकथाम और सेहत के निज़ाम की सलाहियत बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया कि वो मौसमियाती बहरान से निमटने और मुस्तकबिल के खतरात को कम करने के लिए हीट हेल्थ एक्शन प्लान्स पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सामईन, खबरों के इस मरहले में अब समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज हेडलाइंस, बिजनेस न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
0: कतर सेंट्रल बैंक QCB के गवर्नर शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन साउद अल सानी ने इटली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन फाबियो पेनेटा से मुलाकात की। ये मुलाकात स्विट्ज़रलैंड के शहर बासिल में 27 और 28 जून को मुनक्किद होने वाली BIS की 96वीं सालाना इजलासों के मौके पर हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बैंकारी और मालियाती शोबों में दोतरफा ताल्लुकात के अहम पहलुओं का जायज़ा लिया गया, जबकि तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजारत तिजारत और सनत ने मालियाती मालूमाती यूनिट और कतर एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के तआवुन से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तदारिक से मुतालिक तकाजों और उनसे निमटने के तरीक़ाकार पर दूसरी डायलॉग वर्कशॉप का इनेकाद किया। वजारत के मुताबिक ये वर्कशॉप ऑडिटर्स की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ कवानीन और जवाबित पर अमल दरामद को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। इसका मकसद मुश्तबा लेन देन की रिपोर्टिंग के मैार को बुलंद करना और मुश्तबा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स के मैार को बेहतर बनाना है। कतर स्टॉक एक्सचेंज QSE का इंडेक्स कल इतवार के रोज 11.91 पॉइंट्स या 0.12% इजाफे के साथ 10,293.72 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 17 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 31 कंपनियों की शेयर्स में कमी रिकॉर्ड की गई और 4 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। रियासत कतर ने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में आलमी कस्टम्स तंजीम WCO के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होने वाले शुमाली अफ्रीका, मशरक़ करीब और मशरक़ वस्ता के खित्ते के कस्टम्स के डायरेक्टर्स जनरल के 64वें इजलास और आलमी कस्टम्स तंजीम की कस्टम्स कॉपरेशन कौंसिल के 147वें और 148वें इजलासों में शिरकत की। कस्टम्स डायरेक्टर जनरल के 64वें इजलास में एजेंडे के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें पॉलिसी कमीशन के नताइज और उसकी सरगर्मियों के अलावा इलाकाई सतह पर कस्टम्स के निज़ाम की तरक्की से मुतालिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर शामिल थे। कतर के मालियाती मालूमाती यूनिट QFIU ने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन

0: एंड टास्क फोर्स FATF के इजलास और वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स के मौके पर कनाडा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर फिनट्रैक के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुफाहमत की यादाश्त का मकसद दोनों इदारों के मुतलका कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक तआवुन को मजबूत बनाना और मालियाती मालूमात और इंटेलिजेंस के तबादले को आसान बनाना है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और उससे मुतालिक दीगर जराइम के खिलाफ कोशिशों को मजीद मौसर बनाया जा सके। कतर में टूरिज्म के शोबे में 2026 के सेकंड हाफ के दौरान एक बार फिर नुमाया तेजी मुतवक्के है, जिसकी वजह टूरिस्ट को रागिब करने के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ पैकेजेस, प्रोग्राम्स और तफरीही सरगर्मियां हैं। कतर टूरिज्म की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2026 की पहली सहमाही के दौरान कतर ने 1.13 मिलियन सयाहों का इस्तकबाल किया। इनमें जनवरी में 646,000, फरवरी में 423,000 जबकि मार्च में 63,000 टूरिस्ट शामिल थे। और ईरान के दरमियान कई रोज से जारी जवाबी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ब्रेंट खाम तेल के मुस्तकबिल में के सौदों की कीमत में 58 सेंट या 0.8% इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 72.57 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। इसी तरह अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI खाम तेल की कीमत 88 सेंट या 1.3% इजाफे के साथ 70.11 डॉलर फी बैरल रिकॉर्ड की गई। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10.6% कमी हुई थी, जो मुसलसल तीसरी हफ्तावार कमी थी। ये कमी इस वक्त आई जब आबनए हुरमस के जरिए खाम तेल की तरसील में इजाफा हुआ और ये मशरक़ वस्ती तनाज़े के फरवरी के आखिर में आगाज़ के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बिजनेस न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब समाप्त कीजिए खेलों की खबरें।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेजबान कनाडा ने साउथ अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर पहली मर्तबा राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक अहम मुकाबले में आज 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन ब्राज़ील का मुकाबला जापान से होगा और ये राउंड ऑफ 32 का मुकाबला है और ये नॉकआउट मैच है। इस मुकाबले में फतेह हासिल करने वाली टीम अगले मरहले यानी राउंड ऑफ 16 में जगह बना लेगी। तीन मैचों की टेस्ट क्रिकेट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के आखिरी दिन मेजबान इंग्लैंड को जीत के लिए कुल 270 रन की जरूरत है। चौथे दिन के खेल के बाद इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं। और दो मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज के आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन इंडिया को 1 रन से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया है। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107 अबव न्यूज हेडलाइंस। समाप्त फरमाइए
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
0: साहिब सुमो अमीर ने मशरकी सऊदी अरब में आरामको के हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक होने वालों पर खादिम हरमैन शरीफैन के नाम ताज़ियती पैगाम इरसाल किया है। कतर की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि खित्ते में जारी फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में उड़ने वाले धाती टुकड़ों यानी शरेपनल की जद में आकर एक कतरी शहरी जान बहक जबकि एक अरब मुकीम शख्स जख्मी हो गया है। रियासत कतर ने बरादर ममालिक मुमलिकत बहरीन और रियासत कुवैत पर ईरान की जानिब से मुतअद्दिद मिज़ाइलों और ड्रोन्स के जरिए किए गए बार बार हमलों की शदीद मुज़म्मत की है।

0: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि 21 जून से यूरोप में जारी शदीद गर्मी की लहर के बायस अब तक 1,000 से ज्यादा अफराद जहां बाक हो चुके हैं। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माऊ नूर और न्यूज स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, युसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे हुमाम अल अमीन के बारे में। हुमाम अल अमीन कतर के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक हैं जो अपनी वर्सैटिलिटी और मेहनत की वजह से मशहूर हैं। हुमाम ज़्यादातर लेफ्ट बैक की पोजीशन पर खेलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मिडफील्ड में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुमाम की फुटबॉल समझ, तेज़ रफ्तारी और डिफेंसिव डिसिप्लिन उन्हें कतर की कौमी टीम का एक कीमती मेंबर बनाती है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगर जो उन्होंने जगह बनाया तो दैट्स द रीज़न कि ही इज़ वेरी मच डिसिप्लिन प्लेयर। हुमाम अल अमीन ने कतर के फुटबॉल सफ़र में कई यादगार लम्हात देखे हैं। उन्होंने AFC एशियन कप 2019 से जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर मुल्क के लिए फ़ख्र हासिल किया और इस टूर्नामेंट में कतर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और एशिया की बेहतरीन टीम बनकर उभरी। हुमाम ने अपनी डिफेंसिव मजबूती और अटैकिंग सपोर्ट से टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में भी हुमाम कतर की टीम का हिस्सा रहे। उनकी क्रॉसिंग, बॉल कंट्रोल और मैच के दौरान लगातार मेहनत कोचेज और सपोर्टर्स दोनों को मुतासिर करती है। क्लब सतह पर भी उन्होंने मुश्तकिल परफॉर्मेंस देकर अपनी अहमियत साबित की है। हुमाम अल अमीन को कतर के मॉडर्न फुटबॉल दौर के नुमाया खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है और वो नए फुटबॉलर्स के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम एक नहायत ही अहम मौजू यानी हीट स्ट्रेस या गर्मी के दबाव के बारे में बात करेंगे, जो ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में हर उम्र के फर्द को मुतासिर कर सकता है। हीट स्ट्रेस इस वक्त पैदा होता है जब जिस्म ज़्यादा गर्मी जज्ब करता है और ख़ुद को ठंडा रखने की सलाहियत खोने लगता है। ये सूरत हाल शदीद गर्मी, नमी, धूप में ज़्यादा वक्त गुजारने या जिस्मानी मुशक्क़त के बायस पैदा हो सकती है। हीट स्ट्रेस की जो चंद अलामत हैं वो ऐसे हो सकती हैं कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा हो, शदीद प्यास लग रही हो, थकावट या कमज़ोरी महसूस हो, चक्कर आना शुरू हो जाएं, सर दर्द और मतली या उल्टी आप आना महसूस करें और आपकी मसल्स में खिंचाव पैदा हो, और अगर फौरन तवज्जो ना दी जाए तो ये हालत हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी ख़तरनाक सूरत हाल में तब्दील हो सकती है। रिस्क पर जो अफराद हैं वो मजदूर जो बाहर काम करते हैं, इसी तरह से जो तामीराती कारकुन हैं, प्लेयर हैं या बुज़ुर्ग अफराद हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या डायबिटीज़ या दिल और गुर्दों के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा ऑन रिस्क होते हैं। गर्मी के असरात से महफूज रहने के लिए चंद बहुत ही आसान सी तदाबीर हैं।

0: they should feel free.
1: They should be given this much of liberty. Right. Okay, Mr. Zaid, tell me, how do you see the role of, you know, the rental car companies evolving in next 5 to 10 years?
0: It will increase only. It will increase. It should. Yeah. I'm not too sure about which all categories, but it is there to stay and it is there to increase.
1: Okay. Now, coming to the closing question, the final one. What advice would you like to give to someone who wants to start a car rental business today?
0: You should do proper groundwork before starting. Mm-hmm. You should analyze the customer budget, the preferences which are changing. The vehicle prices are fluctuating, the availability issues are there. So, you know, whatever you do, it should take all these factors into consideration. And first and foremost, like, you know, you should be sincere to yourself and the stakeholders. Stakeholders means your partners and your staff. And, you know, work hard and believe in yourself. And inshallah, everything will fall into space.
1: That's really a very valuable advice. Thank you so much, Mr. Zaid, for sharing your valuable insight with us today. And it was truly a pleasure having you on Qatar Business 360. Thank you once again. वेल दोस्तों, आज हमने जो है वो बात की मिस्टर जैद उस्मान से और जानने की कोशिश की कि किस तरह से रेंटल कार बिजनेस जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है. वैसे एक चीज़ तो हमें और आपको समझ में आ ही गई कि आज के इस मॉडर्न और फास्ट पेस जमाने में लोग जो हैं वो कन्वीनियंस और फ्लेक्सीबिलिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. अब हम अपने आप को ही देख लें, है ना, हमें भी तो कन्वीनियंस चाहिए, फ्लेक्सीबिलिटी चाहिए. और शायद इसी सोच के चलते रेंटल कार बिजनेस दुनिया भर में तेजी से ग्रो कर रहा है. जी हाँ, और कतर जैसे मुल्क की बात की जाए तो यहाँ ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंटल कार बिजनेस का एक सिंपल सा आइडिया ये है कि आप लोगों को टेम्परेरी बेसिस पर गाड़ी प्रोवाइड की जाए. कोई बाइक का सेलिंग का आपके ऊपर कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं. चाहे फिर वो एक दिन के लिए हो, या फिर एक वीक के लिए हो, या फिर एक महीने के लिए हो. इसमें कस्टमर्स को गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जरूरत के मुताबिक उसे यूज या इस्तेमाल कर सकते हैं. कतर में भी ये इंडस्ट्री काफी फास्ट ग्रो कर रही है, खास तौर पे टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल की वजह से. यहाँ पे मिस्टर जैद उस्मान जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके फादर अर्ली 60-61 में यहाँ पर कतर आ गए थे. उसके बाद एक पर्टिकुलरली एक ग्रुप के साथ एसोसिएट किया, वहां पर जुड़ के उन्हें पता चला कि किस तरह से जो और दूसरे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड ये रहती थी कि क्या कोई गाड़ी अवेलेबल है जो रेंट पे वो ले लें कुछ वक्त के लिए और फिर उसे वापस कर दें. तो ये एक छोटी सी क्वेरी कह सकते हैं, या छोटा सा कोटेशन जो था उस वक्त, इस तरह से जहन में इनके हिट हुआ इनके फादर के, इन्होंने अपना रेंटल कार बिजनेस स्टार्ट किया. अब कतर की बात की जाए तो कतर जो है एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है, जहां टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपैक्ट पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, बिजनेस एक्टिविटीज कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर होते ही रहते हैं. और शायद इसी वजह से लोग टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस प्रेफर करते हैं. रेंटल कार इंडस्ट्री लोगों को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है और कॉस्ट सेविंग भी होती है. ये इंडस्ट्री कतर की इकोनॉमी का भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है और विजन 2030 के अंडर भी मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है. देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस की बात करूँ, थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊँ, तो रेंटल कार बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं. एक तो हाई डिमांड और स्टेबल मार्केट है, रेंट अ कार की डिमांड हर वक्त ही रहती है. टूरिस्ट को ट्रैवल के लिए, बिजनेस लोगों को मीटिंग्स के लिए, रेजिडेंट्स को टेम्परेरी यूज के लिए, और शायद इसी वजह से बिजनेस जो है वो रिलेटिवली कहा जा सकता है कि स्टेबल है. वहीं पर बार बार इनकम होती है, रीअकरिंग इनकम भी होती है. अगर आपके पास फ्लीट है, यानी बहुत सारी कार्स हैं, तो हर गाड़ी मल्टीपल कस्टमर्स यूज कर सकते हैं, है ना. आप एक ही एसेट, जो आपकी एक गाड़ी है वो एक एसेट है, उसे बार बार पैसा कमा सकते हैं. ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल भी है, जिसे गवर्नमेंट लगातार प्रमोट कर रही है. फिर एक और चीज जो मेरे और आपके जहन में आनी ही चाहिए, वो है कि ये मॉडल जो है बिजनेस का काफी फ्लेक्सिबल है. आप अपना बिजनेस डिफरेंट तरीके से चला सकते हैं. आई मीन टू से शॉर्ट टर्म रेंटल्स या फिर लॉन्ग टर्म लीजिंग्स या फिर यू नो कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर लग्जरी कार रेंटल्स. इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स टारगेट भी कर सकते हैं. इसके साथ अगर देखा जाए तो कतर में जैसे हम और आप जानते हैं कि टूरिज्म ग्रो कर रहा है और यहाँ पर टूरिज्म ग्रो जो है वो डायरेक्टली रेंटल कार इंडस्ट्री को बेनिफिट करती है. जितना ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आएंगे उतने ज्यादा रेंटल कार की डिमांड्स भी होंगी. वहीं ये बिजनेस स्केलेबल बिजनेस भी है. आप छोटे स्केल से शुरू कर सकते हैं यानी 2-3-5 कार से स्टार्ट कर लिया और फिर ग्रेजुअली आपने उसको एक्सपैंड कर लिया. वहीं पर एक और चीज जो हमें और आपको समझने की जरूरत है इस बिजनेस के हवाले से जो हमारे गेस्ट ने भी बताया वो ये कि डिजिटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है. ऑनलाइन बुकिंग और एप्स की वजह से कस्टमर्स जो हैं वो इजीली गाड़ी आसानी से घर बैठे बुक करते हैं. बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है. आजकल ज्यादा बुकिंग ज्यादातर मैं कह सकती हूँ बुकिंग जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया कि ऑनलाइन ही होती है. वहीं देखिए इतने सारे फायदे तो मैंने आपको गिना दिए. ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस के अपने चैलेंजेस नहीं है. सिर्फ ये एक बहुत ही अच्छा हेल्दी प्रॉफिटेबल स्टेबल बिजनेस है. लेकिन फिर भी इस बिजनेस के कुछ चैलेंजेस हैं जैसे हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए. ये बिजनेस सस्ता नहीं होता. कार खरीदनी होती है, इंश्योरेंस लेना होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है. जहां इन्होंने बताया कि इनका खुद का अपना इन्होंने गैरेज भी सेटअप किया क्योंकि गाड़ियों की मेंटेनेंस तो फ्रीक्वेंटली होगी ही होगी. अब जब लोग इतना फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो उसको उस तरह से मेंटेन भी करना है तो ये सारी चीजें भी आपके ऊपर ही आ जाती हैं. वहीं पर मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट एडिशनली इस बिजनेस के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है. गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग बड़ी जरूरी है. फिर टायर्स की हो देखभाल, ऑयल चेंज करना है, रिपेयर करना है. अगर आपने मेंटेनेंस को इग्नोर किया तो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है. और यहाँ पे जो ये बिजनेस है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे चलता है, ट्रस्ट पे चलता है. एक बार खराब हो गया नाम मार्केट में आपका, फिर क्लाइंट्स शायद धीरे धीरे जो है वो आपसे हटते चले जाए. वहीं कतर की बात करें तो कतर में बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं. तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स नहीं है. टफ कॉम्पिटिशन है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है. प्राइसिंग प्रेशर भी होता है. डिफ्रेंसिएशन बड़ा ज़रूरी हो जाता है खुद को स्टैंड आउट करने के लिए. वहीं पर एक तरह से कुछ चीज़ों में मैं कह सकती हूँ सीजनल डिमांड्स भी हैं. कुछ मंथ्स में डिमांड जो है वो हाई है यानी जो टूरिज्म सीजन होते हैं और कुछ में होता है कि काफ़ी कम होती हैं. तो इसमें भी एक गुड बैलेंस बनाए रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है. कस्टमर्स जो हैं वो कभी कभी गाड़ी डैमेज कर देते हैं या फिर होता है कि वो यू नो लेट रिटर्न कर रहे हैं. इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कई बार एक्सीडेंट हो गया, वो सारे इश्यूज भी आते हैं जिसके लिए आपको पैरेलली मेंटली खुद को प्रिपेयर भी रखना है. फिर अगर हम कतर की ही बात करते हैं तो कतर में लाइसेंसिंग रूल्स हैं, इंश्योरेंस लॉज हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं. इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं. अब मान लीजिए कि इन सारी चैलेंजेस के बावजूद भी कतर में आप जो है वो रेंटल कार बिजनेस स्टार्ट करना ही चाहते हैं जैसे मैंने अपने गेस्ट से भी पूछा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने वाजे की वो ये कि रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले मार्केट रिसर्च करिए. टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं आपके, डिमांड किस टाइप की कार्स की है, कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए इसी बिजनेस में नहीं बल्कि सारे बिजनेसेस में. फिर आप जानते हैं कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, वो आपको पता ही है कमर्शियल रजिस्ट्रेशन है, ट्रेड लाइसेंस है लेने होते हैं और ये प्रोसेस जो है वो लीगल कंप्लायंस के लिए बड़ा जरूरी भी है. उसके साथ ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन कौन सी कार्स जो है वो चूज करना चाहते हैं. इकोनॉमी कार्स हैं यानी चीप ऑप्शंस आपको रखने हैं, एसयूवीज रखनी है फैमिली के लिए रखनी है या लग्जरी कार्स रखनी है आपको जो कभी आपको अगर प्रीमियम कस्टमर्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वैरायटी तो रखनी ही है. वहीं पर डिफरेंट टारगेट्स करना बहुत ज़्यादा यू नो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप एक तरीके के टारगेट लेके चलते हो तो शायद आप जो है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते. तो ये भी आपको देखना है, ये चीज़ें भी रखनी है. फिर हर गाड़ी का फुल इंश्योरेंस कराइए. ड्राइवर की पॉलिसीज जो हैं वो सारी चीजें, ड्राइवर के लाइसेंस वगैरह की भी कई बार आपको ही देखनी पड़ जाती हैं चीजें, तो ये सारा बड़ा प्रॉपर होना चाहिए. फिर आपका ऑफिस कहाँ हो आइडियली, मतलब कोशिश ये कीजिए कि लोकेशन जो है या सेटअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे तो आज का दौर ऑनलाइन दौर है, डिजिटल दौर है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आपका जो ऑफिस है, जो भी आप बनाते जहाँ भी, वो एयरपोर्ट के आसपास हो या फिर यू नो होटल्स के आसपास हो या

बिजनेस एरियाज हैं जैसे वेस्ट वे है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डिमांड आपकी हाई रहेगी, लोगों को पता जल्दी चलेगा और आपका जो है वो बिजनेस अच्छे से ग्रो भी करेगा। फिर आपको अपने कॉम्पिटिटिव की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को रखना होगा, मतलब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर बड़ा समझदारी से काम करना होता है। डेली रेट्स को मॉनिटर करना, वीकली पैकेजेस को बनाना, फिर मंथली डील्स जो भी हो सकती हैं वो सारी आपको खुद इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह का बिजनेस जो है वो ग्रो करे। वहीं पर मॉडर्न बिजनेस के लिए आज के टाइम में ना डिजिटल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, यानी आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट हो, मोबाइल बुकिंग सिस्टम हो, व्हाट्सएप बुकिंग हो, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्केटिंग, कहने को तो कहते हैं लोग अभी क्या ही जरूरत है इस तरह के बिजनेस में, लेकिन हाँ प्रमोशन जरूरी है, फिर चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप हाँ कोलैबोरेशन कर सकते हैं किसी भी होटल इंडस्ट्री के साथ, किसी भी होटल पार्टनरशिप्स उस तरह के जो होते हैं ऑफर्स वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका फायदा होगा। लेकिन एक चीज जिस पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अगर आप अपना बिजनेस चाहते हैं कि वो कामयाब हो, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र ये है कि सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। सर्विस यहाँ पे फास्ट होनी चाहिए, कार एकदम क्लीन साफ होनी चाहिए और बुकिंग आसान होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करके सस्टेन कर चुका हूँ, ठीक ठाक पोजीशन में आ चुका हूँ, मुझे अब इसे एक्सपैंड करना है, तो अपनी फ्लीट इंक्रीज करने पर भी ध्यान देना होगा, कई नई लोकेशंस पर सोचना होगा और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं उन्हें हर हाल में ऐड करना ही करना है। देखिए रेंटल कार का जो बिजनेस कतर में है काफी प्रॉमिसिंग है, टूरिज्म तो ग्रो कर रहा है, मैंने आपको बताया ईवी कार्स आएंगी, डिजिटल सिस्टम और ज्यादा इंप्रूव होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट मोबिलिटी फ्यूचर का हिस्सा बन चुके हैं और कंपनीज ये इन्हें अडॉप्ट करना ही करना है। तो ऐसे में अगर थोड़ी सी समझदारी से, थोड़े से अच्छे से होमवर्क के साथ आप मार्केट में एंटर करते हैं और इस तरह के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन व्हाई नॉट, कार रेंटल बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग हो, आपकी सर्विस क्वालिटी हाई हो और आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी क्लियर हो। इस बिजनेस में ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और चैलेंजेस भी बहुत है। जो लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी और इनोवेशन अडॉप्ट करते हैं वो इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कतर जैसे मार्केट में इस बिजनेस को स्टार्ट करना, तो आप एक ग्रोइंग सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं जो फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग और एक्सपैंड होने वाला है। जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया कि फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है, जो मैंने पूछा भी, इसीलिए बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि रेंटल कार बिजनेस सिर्फ गाड़ी रेंट देने का नाम नहीं है, ये एक मोबिलिटी सोल्यूशन है। जी हाँ, ये एक मोबिलिटी सोल्यूशन है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। बस अब आपकी और हमारी देर है कि हम इसे अपने बिजनेस का हिस्सा कब, कैसे और किस सिचुएशन में बनाएं। वेल, यहाँ पे सोचने के लिए तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस एक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, एक और चीज चाहिए, पता है क्या, और वो चीज होती है आपके अंदर अगर रिस्क लेने की ताकत है। अब रिस्क हम कब लेंगे, जब हमारे पास कुछ बैकअप में हो, कुछ हमारा कह सकते हैं हल्का फुल्के अंदाज में हमारा फ्यूचर हल्का फुल्का सिक्योर हो, तब हम जो है थोड़ा सा रिस्क ले पाते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छी प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग यू नो विजन के साथ अपना गोल अचीव करने की तरफ आप जाते हैं, भले ही आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है, बट आपका आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका होमवर्क बहुत ही तगड़ा है और आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट उस काम को करने के लिए, देन देयर इज नो एज सच कॉल स्टैग्नेशन, जस्ट गो फॉर इट। मैं तो ये कहूंगी फिर मत रुकिए, मत सोचिए, उस चीज को स्टार्ट कीजिए एंड गिव योर सेल्फ अ चांस। याद रखिए बिजनेस में रातों रात कोई कभी कामयाब नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रहना और खुद पर यकीन करना और अपनी अच्छी टीम बनाना, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, खुद पर यकीन रखना, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखना और बस धीरे धीरे सब्र के साथ, मेहनत से, ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को रन करना। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5-6 साल में आप देखिएगा आप कितने

0: बड़े और कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। चलिए भाई, ये तो हो गया आज का हमारा सेगमेंट। अब मुझे यानी नाजिया को दीजिए इजाजत और हम अपने गेस्ट को एक बार वापस से थैंक यू कहना चाहेंगे। दो हम उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बट यस अगेन वी वुड लव टू थैंक मिस्टर सैयद उस्मान कि उन्होंने वक्त निकाला और इतनी अच्छी और वैल्यूबल इनसाइट हमारे सबके साथ शेयर की। सो थैंक यू वंस अगेन। विद दिस मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: Share Nexus.
1: Number one hits music station.
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
4: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप,
4: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन.
4: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं. याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है. फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए. अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें. आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं. FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
5: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
6: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
2: Aap sun rahe hain FM 107.
1: FM 107.
3: Dil se, desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107
3: Time check. Time check. Hello, hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio ki ghadi mein 11 bajke sahi 2 minute.
4: Aap sun rahe hain Sun and Sound. RJ Server.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوش آمدید, اہلا وسہلا اینڈ ویلکم سبھی کو. بھائی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور آج منڈے آ چکا ہے یعنی ورکنگ ویک کا دوسرا دن. بھائی امید ہے کہ کل کا دن بھی پروڈکٹیو رہا ہوگا, اور آج بھی آپ اپنے نئے جذبات یا جذبے کو اور پازیٹیو انرجی کو ساتھ میں اپنے دن بھر کے آغاز کے لیے شروعات میں بھی رکھا ہوگا اور آگے بھی رکھیں گے. بھائی چاہے آپ آفس کی طرف روانہ ہو رہے ہوں یا لنچ کے لیے نکل رہے ہوں, بزنس میں مصروف ہوں یا گھر سے ہی اپنے دن کی پلاننگ کر رہے ہوں, اب آ گیا ہوں میں جہاں آپ کا آج کا سفر جو ہے انشاءاللہ تعالی اور بھی خوشگوار ہونے والا ہے. امید تو یہی ہے شو میں. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ تازہ خبریں ہوں گی, کرنٹ اپڈیٹس ہوں گی, ٹریفک, ویدرز, ساری چیزیں بتائی جائیں گی آپ کو, اور وہیں ہمارا دلچسپ موضوع بھی ہوگا, انفارمیٹیو باتیں ہوں گی, اور آپ کا پسندیدہ میوزک اور گیم بھی اس پروگرام کا حصہ بنے گا. تو صاحب آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اور بہت ہی آسان سے دو طریقے ہیں, ان سبھی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ساتھ نئے نئے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. واٹس ایپ کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 666-22-107-666-22-107 پہ آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں, وائس نوٹس بھیج سکتے ہیں, اور وہیں کال کرنے کے لیے نمبر ہے 443-443-7-7-4-4-7. تو جناب مسکرائیے, پوزیٹو سوچئے, اور کیوں نہ اس منڈے کو ہم اور بھی زیادہ پروڈکٹیو اور خوبصورت اور یادگار بنائیں ایک ساتھ مل کر. تو صاحب اب سے پورے 2 گھنٹے ہم ایک ساتھ رہنے والے ہیں, جہاں 1 بجے تک میرا آپ کا ساتھ رہے گا, اور پروگرام کا حصہ آپ بالکل بن سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, بالکل آپ لوگ کے میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. موضوع کیا ہے؟ موضوع بھی آج بڑا زبردست ہے اور بڑا ہی دلچسپ بھی ہے. بھائی دیکھیے, اکثر کہا جاتا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, صحیح ہے, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پیسے کے بغیر زندگی چلنا آسان نہیں ہے. دوسری طرف مضبوط رشتے انسان کو سکون, سہارا اور خوشی دیتے ہیں, ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف پیسہ ہو اور دوسری طرف رشتے, تو زیادہ قیمتی کیا ہے آپ کے لیے؟ خاص طور پہ کیا پیسہ رشتے بنا سکتا ہے, یا سچے رشتے وہ دولت ہیں جو ہر مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں؟ تو آج یہی دلچسپ ٹاپک ہے, یہی موضوع ہے, اور اسی پر ہم بات چیت کریں گے, اور آپ کے جذبات احساسات کو قریب سے جانیں گے کہ بھائی آپ کے نزدیک پیسہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا رشتہ, اور کیوں. تو یہ ہمیں ضرور بتائیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 666-22-107, اور وہیں آپ کال کر سکتے ہیں 443-443-7-7 پہ. تو صاحب گرمی زوروں شوروں پر اس وقت, اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب ہم اس خوبصورت ویدر میں اپنے آپ کو کہنا چاہیے سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر دیکھیے, ویدر سارے ہی ضروری ہیں, سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور یہ جو نظام بنا ہوا ہے اس نظام کے لیے یہ سارے ہی موسم ضروری ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں. تو کیوں نہ اس سے پریشان ہونے کے بجائے ہم اس کو اپنا دوست بنا لیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں. تو پانی چھانی پیتے رہیے بھائی, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیے, اور اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی خیال رکھیے, دوسروں کا بھی خیال رکھیے. جتنی بھی چیزیں آپ گرمی سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کا استعمال ضرور کیجیے. سن گلاس کو ہی لے لیجیے, ہم اکثر اوائڈ کر دیتے ہیں, چھوٹی سی چیز لگتی ہے بھائی, ہماری آنکھوں کا بہت بڑا سہارا اور دوست ہے. یہ صرف فیشن نہیں بلکہ پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور یہ آنکھوں کو ہارم فل نقصان دہ یو وی ریز جو سورج سے آتی ہیں ان سے بچاتا ہے. تو صاحب لانگ ٹرم ایکسپوجر سے جو آنکھیں ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں, اس لیے پراپر یو وی پروٹیکشن ضروری ہے, اور اس کے لیے جو آج کل کے چشمے سن گلاسز آ رہے ہیں ان کا استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. آئیے صاحب آج کے پہلے کالر کا استقبال کرتے ہیں, ان کا حال احوال جانتے ہیں, اور ساتھ میں جانتے ہیں کہ رشتہ یا پیسہ زیادہ ضروری ہے, کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب, آج پہلی بار کال لگ گئی, کیا بات ہے سر.
0: اہل وسہل ویلکم, اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ جیز بھائی ہیں کیا؟
1: آپ کو بار بار نام بتانا پڑتا ہے جبکہ آپ کا ریگولر لسنر ہے.
0: शुएब भाई जरा छिड़ा छाड़ी में भी मजा आता है, और माशाल्लाह से डेली हमारे कम से कम 50-60 लिसनर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जरा समझ रहे हैं ना आवाज माशाल्लाह सभी की।
1: यही बात मैं उनको समझा रहा था कबीर भाई को कि अजीज है ना सरवर साहब का शो एकदम हिट चल रहा है कतर के अंदर।
0: अरे और सही क्यों कह दी ये बात शेफ भाई कैसे हैं, खैरियत से? वैसे आपको मैं बता दूं कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, और आप कह तो रहेंगे मुझे पहचाना नहीं, आए आप इतने दिनों बाद हैं।
1: नहीं, मैं रोज आपका रेगुलर शो सुन रहा हूँ, बस कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कॉल करता हूँ बिजी होता है, और ड्राइविंग करते हुए या कुछ काम करते हुए
0: नहीं
1: कर पाता हूँ,
0: नहीं कर पाता हूँ भाई। मैं समझ गया। तो आइए बताइए कैसा रहा आज का दिन, और कैसी हुई सुबह, और सगेरे सगेरे क्या क्या किया, और अभी तक का दिन कैसा गुजरा? सबसे पहले
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छा गया, कसम से सरवर भाई कल का दिन मेरा बहुत खराब था, लेकिन आज का दिन जैसे ही सुबह से उठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया।
0: देखिए ये कितना बड़ा एग्जांपल है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जहाँ सब्र है वहाँ पे हर चीज मुमकिन होती है, और हर परेशानी के बाद अल्लाह ताला ने राहत रखी है। ये कितना बड़ा एग्जांपल है शोएब भाई, हमें खुद ही बता रहे हैं, खुद ही शेयर कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से जैसे ही कोई ना कोई परेशानी या इम्तिहान कह लीजिए वो आता है, तो उसके बाद फौरन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून चैन आराम और वो हमारा इंतजार कर रहा होता, बस समझने वाली बात
1: भाई,
0: बस समझने वाली बात है। तो शोएब भाई आज का मौजू उसके ऊपर आपसे ही शुरुआत कर देते हैं। क्या कहते हैं शोएब भाई, पैसा या रिश्ता? वैसे के मतलब जैसे कि मैंने इससे पहले भी अर्ज किया, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि पैसे के बगैर जिंदगी चलना आसान नहीं है आजकल का दौर, आजकल का जमाना। दूसरी तरफ मजबूत रिश्ते इंसान को सुकून भी देते हैं और खुशी भी देते हैं, दोनों ही चीजें मिलती हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ रिश्ता हो, तो ज्यादा कीमती आपके लिए क्या है?
1: थोड़ा टाइम ले लूँ तो अच्छे से समझा सकूंगा, लेकिन चलो अभी इतना टाइम नहीं लेते हैं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ।
0: ओके।
1: दरअसल कुछ टाइम तक मैं भी यही समझता था कि पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा जो है ना वो बिना पैसे के कुछ नहीं है।
0: ओके ओके।
1: तो लेकिन अभी मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मतलब मैं उस इंसिडेंट से मतलब उससे मेरी सोच एकदम से चेंज हो गई। नहीं भाई,
0: हमारे साथ
1: ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में
0: अच्छा,
1: बता रहा
0: हूँ। हाँ, उसको मतलब किसी और तरीके से शेयर कर दीजिए, गायबाना
1: किसी
0: हाँ, करके
1: ठीक है किसी और। मेरा एक कजन है जिसको बड़े भाई का दर्जा दे रखा था, सब कुछ था, तो मतलब वो हमारे साथ ही पला बड़ा है। तो अब ऐसा टाइम आया कि उसका बिजनेस जो है अच्छा ग्रो करने लगा, सारी चीजें ग्रो करने लगी, तो उसने मुझे वहां से हटा दिया। स्टार्टिंग में जब हम थे साथ में, तो उसने मुझे वहां से हटा दिया। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं अपना स्टार्टअप किया, उसके बाद मैं वो लॉस हो गया कोरोना की वजह से, तो फिर मैं मूव हुआ कतर को, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सही चल पड़ा। ठीक है, तो अभी कुछ मैंने जो है ना उस टाइम पे रिश्तेदारी थोड़ी ज्यादा खराब लगी, वैसे बोलचाल हुई, सारी चीजें हुई, अम्मी पापा ये सारी चीजें वो हुआ, रिश्तेदारी जो है मतलब बिल्कुल एक तरह से मतलब बिगड़ ही चुकी थी। अब ऐसा हुआ कि अब उसके 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जवान होने को आए हैं, और उसका इंतकाल हो गया अभी 2 महीने पहले। तो उस चीज से मेरी सोच बिल्कुल चेंज हो गई। मैंने पैसा आता जाता रहता है भाई,
0: सही,
1: रिश्ता बचा ले तो वो बहुत बड़ी बात है।
0: वाह शोएब भाई, वाह वाह। एक्चुअली इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि आप शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे को एक दूसरे से रिलेट कर सकें और ये बात समझ सकें हमारी डेली की जिंदगी में। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है मसला, हर किसी की जिंदगी में इस तरीके
1: से, हर घर में यही है
0: बिल्कुल, बट जरूरी क्या है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और
1: जरूरी दोनों चीज है, लेकिन रिश्ता जितना जल्दी हो सके बचा सके तो
0: बिल्कुल।
1: मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर आप फंस गए ना, तो आप कहीं भी जैसी कुछ देखो, कुछ चीजें होती है बिना राय मशवरे के आपको नहीं करनी चाहिए, और राय मशवरा आपको सिर्फ आपके घर वाले, आपके जो सगे संबंधी है वही दे सकते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह, जाहिर बात है रास्ता चलता या सलाम दुआ वाला ना हम उनसे मशवरा ले सकते हैं ना वो दे सकते हैं, ये बात हकीकत है। जो दिल के करीब हैं, जो अपने हैं, जो आपके साथ हैं, जरूरी नहीं है रिश्तेदारियों, कुछ मुंह बोले रिश्ते ऐसे हैं भाई जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, हम एक्सपेक्ट जो हैं, जो अपनी अपने घर वालों से, अपनी दुनिया से दूर होके दूसरे मुल्क में आके अपनी दूसरी दुनिया बसाते हैं, तो उनके लिए जो मुंह बोले रिश्ते हैं वही बहुत कुछ होते हैं। और मशवरा जब उनसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल इसके ऊपर भी हमने बात करी थी, बट एनी हाउ तो शुएब भाई का कहना यह है कि भाई पैसा जरूरी है बट रिश्ता बचा लो तो इससे ज्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं है। ऐसा ही है शुएब भाई?
1: जी बिल्कुल, बेशक।
0: क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी कहाँ है इस वक्त, जान सकता हूँ?
1: इस वक्त सर मैं सलवा रोड पर हूँ।
0: क्या हाल है ट्रैफिक का और क्या कह रहा है
1: सूरज? सुबह से बहुत स्मूथ है
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: लेकिन ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ है, कोई इतना वो नहीं है। वैसे भी देखो हम, जैसे कि मैं दिल्ली वाला हूँ तो उसके मुकाबले यहाँ पे मुझे कोई ट्रैफिक फील नहीं होता।
0: दिल्ली में कहाँ से है आप ये बताइए पहले?
1: ओखला शाहीनबाग।
0: अरे तो भैया ये मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर दुनिया में कहीं आपको पैदल के लोगों का जाम देखना है पैदल में जाम है।
1: पांच साल पहले शाहीनबाग में जो 40 फुटा रोड है वहाँ कुछ नहीं था।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: और जब मैं अभी घर वेकेशन पे गया ना, दुनिया के मतलब पूरे दिल्ली के जो फेमस रेस्टोरेंट है वो सब उधर है।
0: मैं तो सबको ही कह के परेशान करता हूँ क्योंकि हमारे जाहिर है, क्योंकि अलीगढ़ से हैं हम, तो हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब लोग वहाँ बसे हुए। मैं कहता हूँ भैया पैदल के जाम में तो कभी नहीं फंसूंगा, गाड़ी स्कूटर रिक्शा में फंसा लो, पैदल के जाम में मेरे बस की नहीं है। चलिए शेफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी आपकी बातें, बहुत प्यारे आप, और बहुत अच्छा लगा कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। वेलकम। तो जनाब ये थे हमारे साथ शुएब भाई, जो कह रहे थे कि भैया रिश्ता अगर बचा लो तो वो ज्यादा बेहतर है, बाकी तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: खादिम भाई की हुई आमद, क्या बात है, कैसे हैं खादिम भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक।
0: अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्लाह का, और यही उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ खैर होगी। और जो जो अपनी परेशानी में है, किसी इम्तिहान में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनके लिए खैर और आफियत का मामला करें, और जरूर करेंगे, अल्लाह ताला रहम ही करते हैं, तो बस थोड़ा सा इंतजार और फिर खैर ही खैर। खादिम भाई कैसी हुई आज की सुबह और कैसा रहा अभी तक का सफर?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और माशाल्लाह हवा चल रही तो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें माशाल्लाह काफी हद तक कमी है
0: भाई। जब हवा चलती है तो ये ह्यूमिडिटी में भी कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से गर्मी में थोड़ा आराम हो जाता है, तो अल्लाह करे कि हवाएं चलती रहें और ये वक्त भी गुजर जाए खैर के साथ।
2: तो ये हवा की वजह से फायदा मुझे ये होता है कि जब गाड़ी से उतरता हूँ तो कम अज कम अपना चश्मा जो है वो क्लीन करना नहीं पड़ता।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वरना तो चश्मे भी एक वाइपर लगाना पड़ता है मिडिल ईस्ट में।
2: हाँ वही बात है, वो वाइपर लगाना पड़ता है फिर, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह भी सही है, इस वजह से थोड़ा सही है
0: माशाल्लाह।
2: अच्छा
0: जी खादिम भाई, तो आज के मौजू के हवाले से क्या कहना है? पैसा सब कुछ
2: सुन रहा
0: है। हाँ, सुन रहे थे। ओके चलिए,
2: मैं सुन रहा हूँ। और शुएब भाई की माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और दिल्ली वाले तो वैसे भी दिल वाले होते हैं माशाल्लाह।
0: क्या बात है, सभी दिल्ली वालों के लिए
2: प्यारी बात है की माशाल्लाह।
0: जी
2: नहीं सही बात है, दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं, ये बात है
0: बिल्कुल सही बात।
2: हाँ अच्छा, ये रिश्ता और पैसा, उसमें ये कि वो हमारे पश्तों में एक मिसाल देते हैं हम लोग।
0: अच्छा पहले तो उसी में ही बोलिए और फिर हमारी ज़बान में भी बोलूंगा
2: फिर तर्जुमा।
0: हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल
2: पश्तों में कहते हैं हम लोग, कहते हैं वही चिल्लास माची नुगाड़ी लगी, जब हाथ टूट जाता है ना।
0: मैं रिपीट भी करूंगा यार, जरा मुझे भी सीखना है ना, लगे हाथों कैसे हल्के हल्के हिज्जे के साथ
2: चिल्लास माची नुगाड़ी लगी।
0: चिल्लास
2: लास लास लास माची नुगाड़े लजी,
0: लास माची लोगाड़े लजी,
2: लास माची नो गाड़े ला जी,
0: नो गाड़े ला जी।
2: हाँ लास माची नुगाड़े लजी, मैं लिख के दे दूंगा।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इसका क्या मतलब हो रहा है?
2: मतलब उसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हाथ टूट जाए ना,
0: ओए होए
2: तो वो अपने अपने ही गले में पड़ जाता
0: है।
2: मतलब ये कि अल्लाह ना करे अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो रिश्तेदार ही काम
0: आए। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाखों से लम्हे नहीं तोड़ा करते।
2: क्या करूं, बहुत दूर आप। नहीं तो दो बार गले लग ये शेर के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा।
0: नहीं हकीकत है, हकीकत है यार। और आपने
2: ये शेर आप मुझे लिख के भेज दो।
0: जरूर जरूर कादिर भाई,
2: आप मुझे लिख के भेज दो, मुझे याद नहीं रहता ना।
0: आपने इतनी अच्छी बात कही है, वाकई ये हकीकत में ये बात इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम समझ जाए तो वाकई हमें बहुत कुछ मिल जाए जिंदगी का। जो एक मसला है वो हम तय कर पाए वाकई।
2: अच्छा सरवर भाई, मैं इधर एक बात और अपनी तरफ से, जो आज का मौजू नहीं है लेकिन अपनी तरफ से शेयर इसमें ऐड करूं।
0: जी जी।
2: और वो है भी रिश्तों से वो जुड़ी हुई बात है। अपने बच्चों को ये तरबियत दो कि अगर आपके बच्चों से ये कहना कि अगर आपके चचाजाद भाई, हाला खालाजाद भाई, यानी उनके बच्चे, उनको अपने भाई समझो।
0: Okay.
2: उनको ये नहीं कि ये मेरे कजन है
0: भाई,
2: कजन
0: ये तो,
2: बिल्कुल नहीं।
0: ये तो इतनी, ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो कुरान है, ये तो अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं। जो रिश्ते अल्लाह ने बताए हैं वो हमारे लिए, अल्लाह ने हमें उनके यहाँ आसानी कर दी है भाई। उनके यहाँ से खाओ, उनके यहाँ से पियो, उसका मतलब क्या है कि वो हमारे माँ बाप की तरह है, हमारे बहन भाई की तरह है। सीधी सी बात,
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल सरवर
2: भाई, मैं देख चुका हूँ मैंने, मेरे सामने ये बात हुई है और मेरे सामने ये सब मैंने सब कुछ देखा हुआ है कि लोग अपने रिश्ते, वो अपने रिश्तों से, रिश्तेदारों से दूर भागते हैं। और हम लोगों ने, मैं कहता हूँ कि हमें ये तरबियत, और फिर उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे इसको बच्चों को दे रहे हैं कि अपने जो कजन होते हैं, चचाजाद भाई, उनको कभी भी ये नहीं कर, किसी को ये नहीं बताना कि ये मेरा चचाजाद भाई है,
0: मेरा भाई है,
2: यानी कजन है मेरा, ये मेरा भाई है।
0: क्या बात है।
2: कोई भी बंदा बाहर से आता है, कोई भी बाहर से बंदा आता है तो हमारे किसी को ये पता नहीं चलता कि ये इसका बेटा या इसका बेटा।
0: माशाल्लाह यार, क्या खूब बात कही है यार, क्या खूब बात।
2: तो इससे रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और ये रिश्ते कभी टूटते ही नहीं है,
0: क्या बात,
2: कभी भी नहीं।
0: और भाई
2: आपसे मैं
0: जी,
2: ये सॉरी मेरी कॉल लंबी हो रही है।
0: नहीं नहीं, नो वरीज, प्लीज बात करें।
2: बांजा, मेरा एक बांजा है और मेरे बच्चे उनको ये नहीं कहते कि ये हमारी फूफी का लड़का है, वो ये नहीं कहते कभी, मैंने सुना ही नहीं है, बोलते ये हमारे भाई है।
0: यार ये आपने बहुत अच्छी बात कही और इंशाल्लाह मैं इस पे अमल करूंगा और दूसरों को भी इस बात की तरकीब करूंगा
2: इंशाल्लाह। ये बात शेयर करना चाहिए
0: भाई, आगे अगर मसला ज्यादा आदमी कोई पूछ रहा है तो बताए, वरना सीधे सीधे कहे मेरा भाई है, मेरी बहन है। सीधी सी बात है यार,
2: मेरा भाई और मेरी बहन, यही बात है। इससे आगे कोई बात करते ही नहीं है हमारे बच्चे।
0: क्या बात है।
2: अगर वो, अगर कोई उससे पूछे ये आपका चाचा, नहीं नहीं ये मेरा भाई है।
0: क्या बात,
2: हम भाई है।
0: क्या
2: ये बात, तो इससे वो रिश्ते और मजबूत होते हैं। ये ऊंच नीच, ये आगे पीछे, ये सब बातें होती रहती है रिश्तों में, ऐसा नहीं है हर घर में ये बातें हैं, लेकिन ये बातों से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं।
0: क्या बात है,
2: ये बात,
0: क्या बात है।
2: ओके, बहुत शुक्रिया आपका टाइम बहुत दिया, लेकिन
0: बहुत बहुत
2: भाई वो शेयर लिख के दे दो मुझे।
0: जरूर जरूर जरूर कादिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखिए।
2: बहुत शुक्रिया आपका,
0: थैंक यू सो मच।
2: और मैं कहता हूँ कि शुक्रिया आपका मैं हमेशा इसलिए अदा करता हूँ कि आप लोग हमें टाइम देते हैं,
0: अरे सर,
2: बात करने का, अपने ख्याल का इजहार का, ये सब
0: मुझे बहुत कुछ आप लोगों से सीखने के लिए मिलता है और जितनी भी बातें होती हैं उसमें हम बहुत कुछ एक दूसरे से सीख के ही उठते हैं भाई। हेलो, सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब खैरियत से हैं?
0: यार मैंने सुबह आपको याद किया है आज, यकीन जानिए
3: भाई, मैंने सुन लिया सबसे पहले जो है मेरे नाम आया।
0: और शुएब भाई नाराज हो गए क्या यार? सरवर भाई तुम मुझे
3: क्या बार बार याद दिलाना पड़ेगा।
0: नाराजगी हो गई भैया, शुएब भाई से बराबर माफी, हाथ कोनी तक जोड़ के माफी भैया। हमसे गलती हो गई, मगर जैस भाई देखिए आप किस तरीके से तेरा नाम लिया, तुझे याद किया यार, क्या बात है
3: भाई। नहीं भाई, मैंने टाइम देखा, मैंने 11 बज गए आज, तो वैसे भी मैं बाहर था ना, तो मैंने कहा भाई से तो जरूर बात होगी।
0: वेलकम,
3: देखा ना कॉल, पहली कॉल स्टार्ट हुई तो सरवर भाई ने सबसे पहले मुझे याद किया, इससे बड़ी और क्या बात
0: बन गया भाई। मेरा भाई कैसा, जैस भाई पे पैसा ही पैसा। जैस भाई का मैं वैसे नाम बता दूं, जहाजेब है ना यार, ये तो याद ही नहीं रहता सही से। जहाजेब नाम है जैस क्या, क्या ये तो आपके प्यार का नाम है जैस?
3: नहीं, जसीम खान।
0: जसीम खान, जसीम खान। ओके ओके ओके, अब तुम मत नाराज हो जाना यार।
3: नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नाम ले लो, बंदा वही बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं।
0: ऑलराइट देन, तो जय साहब, पैसा सब कुछ नहीं होता ये हम जानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि पैसे के बगैर जिंदगी चलना आसान नहीं है। दूसरी तरफ मजबूत रिश्ते इंसान को सुकून देते हैं, सहारा देते हैं, खुशी देते हैं। तो सवाल ये है कि अगर एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ रिश्ता हो तो ज्यादा कीमती आपके लिए क्या है?
3: मेरे नजर में तो भाई और मेरे लिए तो ज्यादातर जहां तक जरूरी है ना, पैसा बहुत जरूरी है आज के दौर में।
0: ओके ओके,
3: क्योंकि मैं इन चीजों से गुजर चुका हूँ। बहुत कम लोग होते हैं वो जिनके जो अपने रिश्तेदार और अपने जो है ना उनको सपोर्ट करते हैं।
0: ओके, हाँ नहीं बिल्कुल, अपना अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का और अपनी अपनी चॉइस है भाई। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताना या शेयर करना चाहते हो कि क्यों ऐसी ये सोच क्यों बनी आपकी, वजह कुछ है ऐसी, कुछ ऐसा ऐसी बात है?
3: ऐसा क्या था मैं बताऊं सरोर भाई, शादी से पहले ना मैं सबसे हर चीज में जो है ना, कोई भी चीज होती थी ना, मैं शादी से पहले हर चीज में सबके लिए सबसे आगे रहता था।
0: ओके ओके,
3: अगर किसी को कोई भी जरूरत है, जसीम को याद करा, जसीम मिनट से पहले हाजिर।
0: ओके ओके,
3: किसी भी चीज की डिमांड करी उसके इसके लिए प्रॉपरली एकदम ओके, कभी मना नहीं करा। मगर भाई वो टाइम आया कि अपनी शादी हुई तो अपनी शादी कर रही, अपनी शादी के लिए हम तो सोच रखे थे कि चलो थोड़ा बहुत होगा हिसाब किताब, मगर भाई सब ने प्रॉपरली हाथ खड़े कर दिए। फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह के रहम करम से जैसे तैसे करके
0: कोई ये बात हर... ये बात कि कोई चीज नहीं रुकती भाई, अल्लाह सुभानहु ताला सबके लिए हर कुछ प्रोवाइड करते हैं, किसी की वजह से कोई चीज नहीं रुकती। बस हम खुद आगे बढ़ के अगर इसमें अपना हिस्सा डाल दें तो फिर वो यही वाली बात हो जाती है कि रिश्ते अजीज।
3: नहीं वही चीज है ना भाई, मैं फिर भी कोई बात नहीं, उधार कर करके जैसे तैसे करके वो निपट, मगर जब देख रहे ना कि हालात नहीं बन पा रहे शादी के बाद में, 3-4 महीने बाद में के हालात नहीं सीधे हो पा रहे, तो फैसला किया कि चलो बाहर चलते हैं।
0: सही,
3: बीवी बच्चों को मनाया, ससुराल वालों को मनाया, वो बोले कि कोई बात नहीं जाओ, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा।
0: अल्हम्दुलिल्लाह
3: निकले भाई, आए यहाँ आने के बाद में 3-4 महीने के बाद में सब कुछ, जिसका जो भी कर्जा वर्जा था सब निपटाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज अपना अपना सब कुछ कर लिया, अपना एक छोटा मोटा प्लॉट ले लिया और अच्छी जो भी है ना
0: कर ली
3: सब कुछ। मगर ये चीज जो है ना, रिश्तेदार भाई के रिश्तेदार वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके रिश्तेदार उनको सपोर्ट करते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं है आज के दौर में, क्योंकि आज के इस दौर में जो है ना, अगर सबसे ज्यादा कोई किसी चीज को इम्पोर्टेंस देता है तो वो देता है पैसे को। अगर तुम्हारे पास ना भरपूर पैसा है, अगर पैसे को पूछेंगे तो सबसे पहले तुम्हारी खैरियत खैर सल्ला, भले से चाहे तुम कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, ना बात करने वाला भी ना तुमसे आके बात करेगा भाई।
0: आजकल तो ये पूछ रहे हैं और भैया कैसे, नहीं कहते और भैया पैसे से।
3: पहले तो होता था और भाई कैसे हो, अब कहते हैं भाई
0: और भैया कैसे है, नहीं भैया और भैया पैसे से। हाँ भाई पैसे से।
3: भाई ये चीज है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गई लोगों के लिए पैसा।
0: आई अंडरस्टैंड, और जाहिर है अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के। हर जो आपने बात बहुत अच्छी अपनी रखी के हर किसी के साथ ऐसा मामला नहीं होता, अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने अपने मामलात हैं, और उन मामलात में इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है भाई, कुछ ना कुछ मिलता ही है और उसी हिसाब से फिर जिंदगी गुजरती भी है
3: भाई। अपनी अपनी जो है ना, मुझे मैंने किसी से कहा, मैंने कहा मुझे जो है ना 1 हफ्ते के लिए 30,000 रुपए दे दो, मैंने कहा मेरी बाइक के मेरी गाड़ी के मेरी बाइक के पेपर आ जाएंगे, मैं अपनी बाइक सेल कर दूंगा और एक अगले 8वें दिन जो है तुम अपने पैसे ले लेने। भाई मेरी बात तक की कम्प्लीट नहीं हो रही, पहले से पहले साफ बता हिम्मत नहीं हुई भाई। उस दिन जो है ना अपनी जिंदगी में मैं ऐसा टूटा था कि कभी कभी टूटा ही नहीं।
0: अल्लाह ताला आसानी करे।
3: किसी ने मुझे देखा, देखने के बाद में उन्होंने फोन करा, बोले कि तुम्हें किसी से नहीं क्या जरूरत है, तुम आओ पैसे लेके जाओ। बड़ी उससे यार कैसे कहूँ क्या कहूँ, मगर फिर भी चलो कोई बात नहीं, पैसे उनसे उठाए اپنی بائک وائک بھیج دی سب سے پہلے ان کے پیسے دے دی اپنا بھی سب کام ہو گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج
0: الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور ہاں یار زندگی میں چیزیں ایک سی نہیں ہوتی ہر کسی کے ساتھ سیم نہیں ہوتی اور یہی ایکسپیرینسز آف لائف ہیں اور اس میں ظاہر ہے سیڈ بھی ہوتا ہے دل بھی پریشان ہوتا ہے بٹ اسی سے ہی آگے نکلنے والے کا نام ہے جیز خان صحیح ہے
3: مجھ سے بھی یہ جو ہے نا میرا تو کچھ بھی نہیں ہوگا مجھ سے بھی جانے کتنے بھائی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہوں گی
0: صحیح بات ہے پریشانیاں سبھی کے ساتھ آتی جاتی ہیں بس اس میں سے نکلنا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا یہی ضروری ہے بالکل بھاوک نہ ہو بالکل سیڈ نہ ہو اور
3: یہ بات
0: کیا بات ہے یار اسی لیے زندہ دل آدمی ہے آپ بہت خوب
3: جو ہو گیا جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو وہ ان کی نیت ہے کہ میری نیت کیا ہے وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے
0: الحمدللہ کیا کہنے یار کیا کہنے جیسا بہت بہت شکریہ اور کہاں ہیں ابھی ایگزیکٹلی باہر گھومنے نکلے چاندنی رات میں
3: پیرل میں تھا کہاں ریڈیو آن کر آپ آئے تو پیرل میں تھا نا
0: اچھا پیرل میں کیا بات ہے
3: فون لگاتے اب میں خالی بھی آ چکا بھائی
0: چلیے ٹھیک ہے صاحب زبردست اپنا خیال رکھیے سفر کو بہت آسان بنائیے اور خوش رہیے بہت بہت شکریہ
3: جڑنے کے لیے تھینک یو سو مچ
0: اللہ حافظ تو بھائی یہ تھے جیز خان صاحب ہمارے ساتھ اور چلیے ایک کال اور اس کے بعد آج کے پروگرام کا میوزک کے سلسلے سے آغاز کرتے ہیں ابھی تک ایک گانا نہیں چلا پائے ہم اوکے یہاں پر ان کی کال لیتے ہیں پہلے ہیلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اہلا وسہلا کون ہے ہمارے ساتھ ارے بھائی آج تو ہر گرمی زیادہ ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے یار بہت بار ایسا ہوا ہوگا دیکھیے آج بھی وہی خالی ہیلو پہ تو مشکل ہو جاتا ہے اللہ ذرا میرے ساتھ سمجھ لا
4: اچھا
0: بہت زیادہ ضروری ہے پانی پیتے رہیے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیے اللہ تعالیٰ خیر
4: یہ بھی نہ دیا
0: کیسے ہیں خیریت سے نہیں ویسے مدثر بھائی ہیں
4: نا
0: صحیح پہچان لیا ہاں اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم
4: میرے بولا کہ مدثر ہو بالکل ابھی آپ کو
0: اوکے تو کیا کہتے ہیں بھائی مدثر صاحب آج بات ہو رہی ہے رشتے اور پیسے
4: سرور بھائی سنو ایک شعر سناتا ہوں
0: ارشاد
4: کہتے ہیں ہم خرابوں میں ایک خوبی ہے
0: واہ واہ واہ واہ کیا باتیں کہتے ہیں کہ ہم خرابوں میں ایک خوبی ہے
4: جی ہم خرابوں میں ایک خوبی ہے ہم مصیبت میں کام آتے ہیں
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یار یہ تو آپ نے یار میرے اوپر لکھ دیا یار تعریف اپنی خود ہی
4: نہیں نہیں وہ خادم بھائی کی بات سنی اور آپ نے وہ شعر سنایا تو میں نے کہا چلو میں بھی ایک شعر سناتا ہوں
0: کہتے ہیں کہ ہم خرابوں میں ایک خوبی ہے
4: ہم مصیبت میں کام آتے ہیں
0: واہ مزہ آ گیا مدثر بھائی کیا ہی کہہ رہے
4: اور سرور بھائی وہ خادم بھائی نے آپ کو پشتوں میں ایک مطلب وہ کہاوت وہ بتائی تھی ہماری پشتوں کا اس کے برعکس میں بھی آپ کو ایک وہی سیم مثال دیتا ہوں لیکن مثال دوسرا ہے سیم اسی کا مطلب ہے
0: ہاں اوکے اوکے پہلے پشتو میں اور اس کے بعد اردو میں
4: جی پہلے پشتو میں پھر اس کے بعد اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر اس نے بولا کہ نا کہ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو وہ گلی تک ہی آتا ہے تو اس کا دوسرا ایک پشتو کا ایک کہاوت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو غوخا نا دے سرو بھائی غوخا ہم گوشت کو بولتے ہیں
0: واہ اچھا
4: وہی کا غوخا اس وجہ ہم صابون خدا
0: اوکے
4: غوخا
0: اس وجہ

0: जी जी, इसका मतलब ये हुआ अगर गोश्त जल भी जाए ना पकाने के टाइम तो फिर भी पालक सी अच्छी होती है।
1: तो फिर भी
0: पालक सी अच्छी होती है जो सब्जी होती है ना पालक।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बात है।
0: समझाता
1: हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है।
0: मतलब ये है अगर गोश्त जल भी जाए ना तो
1: बिल्कुल पालक से भी अच्छी, पालक से तो फिर भी अच्छा ही होता है यार। मुझे तो हंसी आ गई इसको, ये तो मैं अब इस्तेमाल करूंगा हर किसी की बात में।
0: वो खादी पर आपको एक कहावत बताई थी ना हमारे पश्चिम की, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक
1: वाह
0: शरीक कर दो।
1: यार मतलब पश्तो में बहुत कहावतें हैं इस तरीके की, क्या कहने
0: भाई। भाई आप पश्तो सीखे ना, हम लोग सिखाते हैं।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, मुझे बड़ी मीठी जबान लगती है वाकई जो पश्तो है, और बड़ा मजा आता है सुन के, क्योंकि गाने वगैरह हम जब सुनते हैं तो बड़े ही मजे के होते हैं। तो क्या कहना है तो मुदस्सर भाई इस हवाले से, गोश्त जलने के बाद भी पालक से बेहतर है, तो इसका मतलब रिश्ते जो है हर हाल बेहतर है।
0: एग्जैक्टली मैं ज्यादा तशरीह में नहीं जाता क्योंकि खादिम भाई बाकी लोगों ने बहुत अच्छी बात की, सेम में भी उसी तरह मैंने जो मिसाल दिया था मेरे ख्याल में वो मिसाल आपको समझ आई होंगी। तो मेरे ख्याल में पैसा बिल्कुल ठीक है, पैसा सबके लिए है भाई। आपको पता है सर भाई, आप और मैं परदेश के लिए किस चीज के लिए आए हो? यहाँ पे हम लोग गाड़ी गिनने के लिए, लोगों को गिनने के लिए नहीं आए ना, पैसे कमाने के लिए आए ना। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो नजरिया है ना, हर जगह पैसा काम नहीं आता है।
1: सही,
0: हर जगह सर भाई पैसा काम नहीं आता है, ये मेरा सोच है। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास एयर तो होगी,
1: लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं आपकी बात रोक के एक बात कह रहा हूँ, और शायद कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हो, मैं माजरत चाहता हूँ। आप देखिए माशाल्लाह जो हमारे कहना चाहिए जो थोड़े मालामाल या मालामाल लोग हैं, काफ़ी लोग उनके रवैये से भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, काफ़ी लोग उनसे अपने आप को चाहकर भी कहना चाहिए कि बॉन्ड जो है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी बात जो आपने कही है वहाँ मैच हो रही है एक्चुअली, सीधे सीधे तो पैसा सब कुछ
0: नहीं। अगर आप मुझे एक मिनट दे दीजिए, आपको थोड़ा सा बात बता रहा हूँ।
1: बिल्कुल
0: ओके, मैं आपको पैसे और रिश्ते की मिसाल दे रहा हूँ। आपके इंडिया में एक मशहूर वो मुकेश अंबानी, आप उसको जानते हो, बहुत मतलब बिजनेस और पैसे वाला बंदा है। उसके जो बेटा है वो बीमार है, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका जो बेटा है वो पैसे से वो उसकी बीमारी मतलब खरीद नहीं सकते, मतलब उसके पैसे से वो उसकी बीमारी खत्म नहीं कर सकते, मतलब हर जगह पैसा काम नहीं आता है। फिर मैं कोई दूसरा मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदे का जो बेटा था, वो बेटे ने उसकी गाड़ी थोड़ा खराब कर दी, जब बेटे बाप ने उसका गाड़ी दी कि तो बेटे को मारा, जब मारा तो वो थोड़ा सा उसका हाथ मतलब खराब हो गया। तब बेटे ने बाप को कहा कि बाबा मैं मुझे जो हाथ मेरा खराब हो गया ये थोड़ा सा ठीक कर दो, मैं अपनी गाड़ी आइंदा खराब नहीं करता।
1: ओ, ओ, ओ,
0: तो कहने का मतलब है कि हर जगह हर टाइम पैसा काम नहीं आता है। मतलब ठीक है, पैसा आपको मेरे और सबको चीज है कमाने की और जरूरी की, लेकिन हर जगह पैसा काम नहीं आता है। मेरे ख्याल में रिश्तेदारी जो है ना उसको खत्म नहीं करनी चाहिए, रिश्तेदारी को मतलब थोड़ा सा टाइम देना चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात समझाई भी, क्या कहने भाई मुदस्सर भाई, बहुत बहुत खूब और बहुत बहुत।
0: आप जैसे बातें तभी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है तो आप ही शेयर करता हूँ लोगों को, मतलब
1: नहीं आपने बहुत अच्छी बात, आप हमेशा ही अच्छी बात करते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदस्सर भाई ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: खादिनों हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये थे हमारे मुदस्सर भाई और तमाम भाइयों ने जहां तक अभी अभी अपने जज्बात जो हैं वो शेयर किए। फिलहाल पढ़ते हैं आगे, और आपके लिए ये गाना है या FM 107 पे सन साउंड सुन रहे हैं आप, सरवर मिर्जा आपके

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम.
2: इंसान को खुलूस और अच्छाई अपने अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में पैदा करनी चाहिए, ताकि हम लोगों के ऐब नहीं उनकी खूबियां देख पाए. बिलाशुबा ये अमर इंसान की बख्शिश का वसीला है. याद रखिए कि जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो किसी के वहम गुमान में नहीं होती. हमें हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए. शुक्रगुजारी से नेमतें महफूज और रिस्क में कुशादगी पैदा होती है. दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए और हम पर अपनी रहमत का साया कायम रखे.
1: पैगाम ऑन FM 107.
3: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें. सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए. गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा. इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें. हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है. बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें. इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है. दरवाजों को फोर्स ना करें. ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है. ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें. हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें. ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है. पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें. अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं. रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें. सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें. घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें. FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है.
4: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है. आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें. तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक. ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.

0: आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
0: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2020।

0: 26 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: वेदर का हाल 107 दिनाल।
2: मजेदार हो रखा है साहब इस वक्त का वेदर, और क्या ही कहने। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर जो बताया गया है, वैसे तो दोहा का मौसम इस वक्त धूप से भरपूर है और बिल्कुल साफ है, और इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं। इतने तक जाने वाला फील्स लाइक इस 44, फिलहाल इन रिटर्न 42 है। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें जो कल से 5 डिग्री का फर्क है भाई, पूरा का पूरा। हवाएं 21 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसकी वजह से ह्यूमिडिटी के अंदर कमी आई है। कल 35-36% थी, अभी इस वक्त 24-25% बताई जा रही है। मजीद ये कि मिनिमम जो है वो 34 डिग्री तक रहने वाला है अगर हम शाम और रात की बात करें। वहीं आने वाले चंद दिनों में ये जो गर्मी है इसकी शिद्दत बरकरार रहेगी और बढ़ भी सकती है, जो दिन के औकात में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, इम्कान है इस बात के, ठीक है। इसलिए अगर भाई बाहर निकल रहे हैं तो पानी ज़्यादा पिएं, धूप से बचने की कोशिश करें जो मुख्तलिफ तरीक़े हैं, और मुमकिन हो तो 11 बजे से 4 बजे के दरमियान गैर ज़रूरी आउटडोर एक्टिविटीज़ ना करें। छुट्टी छुट्टी है हमें मालूम है भाई, मगर फिर भी और ज़रूरी भी है तो फिर एहतियात करें पूरा पूरा, इंशाल्लाह ताला खैर होगी। तो चलिए साहब, इस वक्त सन एंड साउंड पे सूरज तो अपने पूरे हिसाब किताब पे और साउंड आप लोगों की गूंज रही है, और जहां आज हम बात कर रहे हैं पैसे और रिश्तों के हवाले से, आपके लिए क्या जरूरी है और वो भी क्यों, तो आइए इस वक्त कोई हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे करते हैं बात और जानते हैं कि क्या है उनका हाल। हेलो, सलाम वालेकुम।
3: हाँ जी
2: गावा जी, शाह जी क्या हाल चाल है टुडे? बिल्कुल ठीक।
3: एक चीज की खुशी तो है।
2: अच्छा, माशाल्लाह।
3: जैसे लास्ट वीक ह्यूमिडिटी ने दो तीन दिन आके अपने पूरे जोरों शोरों से दर्शन दिए थे, उसके बाद तो ह्यूमिडिटी अलोप ही हो गई। तो ये चीज देख के सरवर भाई बहुत यार खुशी मिलती है हमको, और हवाओं की रफ्तार आपने बताया 21+ है,
2: बिल्कुल इस वक्त
3: थोड़ा सा सकून मिलता है दिल को।
2: नहीं बिल्कुल भाई,
3: टेम्परेचर डजंट मैटर,
2: एग्जैक्टली हवाएं चल रही होती है
3: टेम्परेचर के साथ में मिल जाती है ना,
2: बिल्कुल।
3: तो इन दोनों का जो सरवर भाई कॉम्बिनेशन होता है
2: वो शीरी वो लज्जम वो गट्टम गट्टा गट हो जाता है, उसके बाद हम झूमने लगते है ज्यादा। बहरहाल अल्लाह ताला भाई वेदर में आसानी करे, यही दुआ भी है, और इससे हमें इंशाल्लाह ताला सुकून भी मिलेगा। गावा भाई, कैसी हुई आज की मॉर्निंग और कैसा रहा अभी तक का दिन?
3: ओके सर।
2: ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। तो भाई आज का मौजू आपने सुना, अभी तक हमारे साथ जो लोग जुड़े आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों और पैसों के हवाले से, जैसे कि पैसे सब कुछ नहीं होता किसी के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन ये भी सच है कि पैसे के बगैर ज़िंदगी चलना आसान नहीं है आजकल के दौर में और ज़िंदगी और दुनिया के हिसाब से देखा जाए। दूसरी तरफ वहीं मजबूत रिश्ते इंसान को सुकून देते हैं, सहारा देते हैं, खुशी देते हैं। तो आपके लिए सवाल ये है कि अगर एक तरफ पैसा और दूसरी

0: की जाए सर्वर भाई सोसाइटी में, तो हर चीज में अपार्ट ऑफ द रिश्तों को छोड़ के हर चीज में सर्वर भाई पैसा ही काम आता है। तो मेरे को ये चीज की वैल्यू कैसे पता चली, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था ना सर्वर भाई, तो मैं वहाँ पे कैब चलाता था।
1: ओके ओके।
0: तो मेरी जो शुरुआत थी वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है PGI।
1: ओके ओके।
0: आपने सुना है उसके बारे में?
1: जी जी, मैंने बिल्कुल नाम सुना है उसका, बिल्कुल सुना है
0: जी। वो नॉर्थ इंडिया का तकरीबन बड़े 4-5 अस्पतालों में उसका नाम आता है सर्वर भाई। उसमें जो केस जाते हैं ना
1: जी,
0: वो लास्ट मोमेंट वाले ही होते हैं, क्रिटिकल।
1: आई अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओहो, तो आपने कभी कोई ऐसी सवारी होगी आपके साथ जो वहाँ पर ड्रॉप करा होगा, है ना?
0: मैं बताता हूँ सर आपको सवारी, आप यकीन मानिए सर्वर भाई, मैं ना एक दो बार रेलवे स्टेशन से बंदों को लेके आया हूँ वहाँ पे।
1: ओहो,
0: वो है सरकारी अस्पताल, वहाँ पे पहुँचने तक का बंदे को अफोर्ड करना पड़ता है। तो बंदे ऐसे भी होते हैं सर्वर भाई, किसी के पास 10-10 रुपए इकट्ठे किए होते चिल्लर, वो बंदा वो पैसे इकट्ठे करके वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आता है। जब सर्वर भाई सर्जरी होती है ना वहाँ पे, जहाँ पे बंदे को रुकना होता है, तो वहाँ पे मैंने जितनी बार भी महसूस किया ना, तो सर्वर भाई उनके पास कोई रिश्तेदार नहीं होता उस टाइम पे, मोस्टली केसेस में। तो वहाँ पे जाके सर्वर भाई मेरे को यार सच में यार बहुत ज्यादा बैड फील होता है। फिर मेरे को समझ आती है भाई, अगर यही कोई बड़ा VIP या कोई मंत्री या कोई और VVIP बंदा होता तो यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं मिलती।
1: बात तो है, हाँ यही जिंदगी की हकीकत है। और बस अब क्या ही कह सकते हैं गावो भाई, भावुक कर दिया आपने।
0: हमारे भी कई बंदे हैं जहाँ, क्योंकि वहाँ पे ना इतना खर्चा नहीं होता, वो सरकारी है ना, तो वहाँ हमारे भी कई रिलेटिव हैं जिनकी सर्जरियाँ हुई हैं। आप यकीन मानिए सर्वर भाई, उनके पास बहुत सारे रिश्तेदार हैं खुशी में खड़ने के लिए, इवन हमारे पास भी हैं। जब वहाँ पे रुकने का टाइम आता है सर्वर भाई, हर कोई खिसक जाता है, कोई ना कोई बहाना मारते। तो यार वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी, यार रिश्ते जरूरी हैं या पैसा जरूरी।
1: क्या बात है यार, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको, यही इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से समझ में आए बात और कैसे समझ में आए बात। बहरहाल मैं समझ सकता हूँ और बात आपकी जायज़ है। वही शुरू से कहना है मेरा इस प्रोग्राम में कि हर किसी का एक्सपीरियंस एक सा नहीं होता और ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट है, बड़ी अलग अलग तरीके की सच्चाई भी है भाई, जो मुख्तलिफ फ्रेम्स में नज़र आती है। हर किसी के साथ अपने मामलात हैं, अपनी चीज़ें हैं, और ये वाकई अल्लाह का एहसान है कि जिनके साथ आजमाइश नहीं हो रही उनको हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए।
0: सर्वर भाई, आप मेरे से चूज करने को बोलोगे ना
1: जी,
0: तो अगर आपका दिल साफ है ना सर्वर भाई, तो मेरे ख्याल से आज का जो माहौल है, सिस्टम चल रहा है, तो मैं पैसे को ही प्रेफरेंस दूंगा सर्वर भाई।
1: अंडरस्टैंड
0: जी, वो प्रेफरेंस इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास पैसा भी होगा ना सर्वर भाई, आप मुंह से लफ्ज कम भी बोलोगे ना, तो वो भी दूसरे बंदे को सुनने में अच्छे लगेंगे। वो तो रिश्ता टूटने की तो बहुत दूर की बात रही सर्वर भाई।
1: अरे आजकल तो मैं खुद अब थोड़ा लाइट कर लेते हैं मामला, मैं तो दुआई यही दे रहा हूँ, मेरा भाई गाबा कैसा, इसमें पैसा ही पैसा
0: पैसा ही पैसा।
1: यार क्या बात है, और समझ में आने वाली
0: ये बात सुन के ना यार मेरे को 2 जेबें एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेगी।
1: ये बात भी देखिए, ये है पॉजिटिव नोट जो इस वक्त लेके जा रहे गाओ भाई, ये होती है बात। और इंशाल्लाह ताला जरूर, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, आप खुश रहिए, आप बड़े ही अच्छे आदमी हैं और बड़े ही अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं लाइफ के जो आप शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाबा भाई, और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं
0: भाई? आप देखो अगर कोई सवाल दागना हो आपने सर्वर भाई।
1: आ जाओ उस तरफ, क्या बात है।
0: नहीं वो नहीं सर्वर भाई, नहीं यार।
1: अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही गाओ भाई, इधर तो आओ, कहाँ जा रहे हो, 2 मिनट। मैं तो भूल गया था
0: यार, भावुक क्या यार सर्वर भाई, यार
1: आपने इतना भावुक कर दिया मुझे कि मैं भूल गया था भाई कि 3 का दम भी शुरू करना है। और इसके हवाले से तो हम बात करते ही रहेंगे, फिलहाल 3 का दम शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, रेडी है?
0: मैं यार सर्वर भाई सोच रहा हूँ, जो आमिर खान की मूवी आई थी ना धूम 3, उसने बोला था हम लोगों को लोग कभी जादूगर बोलते हैं, कभी क्लाउन बोलते हैं, कभी मैजिशियन बोलते हैं,
1: क्या डायलॉग था यार।
0: वही सोच रहा हूँ भी सर्वर भाई का क्या नाम रखूं यार।
1: ये क्या बात हुई। मैं तो सिंपल
0: सा लेते हो ना यार।
1: नहीं नहीं यार, बहुत ही शरीफ आदमी हो, ये तो सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हरकतें भी मेरी बड़ी अच्छी है, ये तो गावा भाई आप भी जानते ही है। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ।
0: शरीफ जादूगर
1: यार, बड़ा ही खूबसूरत आपके लिए एक नया ताजा सवाल निकाल के लाया हूँ।

0: ठीक है
1: जी,
0: चलिए साहब आंते हो। ओके तो गाबा भाई रेडी। गाबा भाई हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं इंसान के?
1: उंगलियां सर हर एक अंगूठा।
0: वेरी गुड। पैर में जूते पहनते हैं या हाथों में पहनते हैं?
1: पैर में पहनते हैं सर जूते।
0: पैर में पहनते हैं। एक से लेके 100 तक 9 नंबर जो है वो कितनी बार आएगा?
1: एक से लेके
0: बहुत आसान है,
1: 9 नंबर कितनी बार आएगा?
0: हाँ
1: एक मिनट जी,
0: टेक योर टाइम बहुत आसान है।
1: 10 बार।
0: एक बार और बताइए कितनी बार?
1: 10 बार।
0: फंस गए। नहीं भाई मैं अब देखो सब लोगों से गुजारिश कर दूं, भाई हजरात बच्चों बुजुर्गों दोस्तों कोई भी इंटरनेट चेक नहीं करेगा प्लीज, और अपनी समझ बूझ से इस बात का जवाब निकालना है और जवाब देना है। गाबा भाई को मैंने फंसा लिया आपने जाल में आज।
1: सरवर भाई यार उस मछली का नाम क्या है जो जाल में सबसे आसानी से फंस जाती है? क्या आइडिया?
0: कुछ नया लाए होंगे आप, वैसे मैं बता दूं।
1: नहीं यार आपके पास पता नहीं कौन सा जाल है यार सरवर भाई, ये कभी ही अब आप 10 बार फेंकोगे ना यार तो 9 बार तो सक्सेसफुल होता ही है।
0: नहीं यार बहुत बढ़िया, और सोचिएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ यार सेम यार गाबा भाई, ऑलवेज ऑलवेज भाई आपसे बात करके और सभी से बात करके बड़ा ही अच्छा लगता है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिएगा और मिल जाए तो इंशाल्लाह जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बस क्यों लोड डालना है अपने लिसनर है ना सर्वर भाई, मजा लेने के लिए।
0: चलिए तो सुनते रहिएगा शायद कोई जवाब दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: लोड ही डालना। ओके ओके
0: गाबा भाई, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी बातें करने के लिए। ख्याल रखिए अपना। तो ये थे प्यारे प्यारे गावा भाई, और आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 443-443-77, और वहीं आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और मैसेज भेजने के लिए नंबर है 666-22-107, जो मैं ज़रूर अभी मैसेज आपके शेयर करने वाला हूं। यहां एक कॉल लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, और वापस आने के बाद मैसेजेस और तीन का दम जारी। और सारी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमजा है हमारे साथ, मैं सबको बता दूं क्या हाल चाल है। हमजा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा कैसा कैसा है अभी तक का दिन और कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सर की जात का बड़ा एहसान है कि इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है।
0: क्या बात है।
2: और सबसे बड़ी बात कि सवेरा देखने को मिला, उस मालिक का बड़ा करम है।
0: वाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या कहने भाई हमजा, क्या कहने, बहुत खूब। तो हमजा सबसे पहले तो आज जो बात चल रही थी अभी तक मौजू था रिश्ते और पैसे के हवाले से, तो पहले तो उस पे कुछ आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या मशवरा?
2: मैं उसी के लिए आया हूँ। आपने ना आज सवाल ऐसा रखा हुआ है, भाई अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने दो समझ लीजिए ह्यूमन बीइंग आते हैं,
0: किसको बचाओगे?
2: एक रिश्तेदार है और एक आपका ऐसा रिश्तेदार है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, और एक है बहुत मासूम जानवर।
0: समझ गया मैं।
2: आप उससे पहले क्या मारोगे?
0: यार उधर मत ले जाओ हमजा भाई, मैं फंस जाऊंगा, उधर मत जाओ। ओके
2: तो बहुत सारों का जवाब ये होता है भाई, भाई जानवर मार देंगे, इंसान तो इंसान है ना, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ब्रेक मारनी है।
0: ये बात क्या कह रहे यार, देखिए कितना सिंपल है। एक्चुअली ये एक सवाल था, ये मैं आगे दागना चाहता था, मगर अब आपने उसका खुलासा कर ही दिया, अपना अपनी बात बता के। क्या कहना चाहते हैं फिर भी
2: भाई? आजकल क्या कर नजरिए के लिहाज से देखा जाए ना, पैसा बहुत बहुत अहमियत रखता है, खाली बहुत नहीं बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। और जहां तक रही रिश्तेदारी की बात, आपको कोई हजारों खानदानों में से कोई एक दो खानदान ऐसा मिलेगा कि जहाँ आपके रिश्ते अच्छे आपको नजर आए कि हाँ यार ये बहुत इखलास से रह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जैसे आपको सबसे पहले भाई आए थे मेरे ख्याल से खादिम भाई थे के, कौन थे जिन्होंने, पठान भाई थे, कि उन्होंने बात की कि हमारे जो है बच्चों को हमने यही बताया कि बड़े आपके भाई हैं, नॉट अ कजन्स। तो भाई ये आजकल के मामला बहुत बहुत मैं बोलता हूँ इस हद से आगे निकल चुके हैं कि अब ये वो बातें रहे। और जिस तरह अभी गावा भाई ने बताया कि जो

0: हॉस्पिटल वगैरह में जाते रहे हैं और उन्होंने वो जो सीन्स देखे हैं, ठीक है भाई, मैंने लिटरली मैं खुद भी ये चीज देख चुका हूँ। और मैं इस वक्त ये कहता हूँ कि इंसान के पास पैसा होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आप अपने रिश्ते बचा सकते हो। ये बात मैं लिटरली कह सकता हूँ कि हाँ, अगर आपके पास पैसे है ना, कि आपके रिश्ते बच सकते हैं। इनफैक्टली अगर आपके पास पैसा नहीं है, यानी कि आप गरीब हैं, तो कुछ टाइम बाद जो रिश्ते अगर आपके साथ चल भी रहे हैं ना, तो वो भी आपसे मानूस होकर सैड पर हो जाएंगे। मैंने ये चीज भाई लिटरली फील की है, देखना तो एक दूर की बात, फील की है बकायदा।
1: क्या बात है यार, क्या बात है भाई, क्या बात है। और तो मतलब फिर क्या करें, रिश्तेदारी ना निभाएं?
0: नहीं, ना निभाने वाली तो बात नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपके पास पैसा है तो आप रिश्ते बचा सकते हैं।
1: पैसा है तो रिश्ते, अगर पैसा नहीं है तो रिश्ते बताना आजकल मुश्किल है।
0: रिश्ते बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, क्योंकि एक वक्त तक आपके रिश्ते आपका साथ देंगे कि हाँ ठीक है यार, कुछ ना, आज नहीं तो कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई आपके सबसे अजीज रिश्ते भी आपको कोसना शुरू करते हैं, और वो वक्त इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल।
1: समझा। चलिए साहब, अच्छी बात,
0: अल्लाह पाक बेहतर करे,
1: आमीन।
0: और आपके सवाल का जवाब मेरे जहन में है, अगर आप वही सवाल दोहराना चाहें तो, अदरवाइज अगर आप दूसरा भी करेंगे तो हम, आई विल ट्राई माय बेस्ट।
1: ओके, तो उसका सही जवाब दे दोगे तो उसका मजा खराब हो जाएगा। सही जवाब है पूरी पक्का है वालों में आपको या नहीं, या सोच के आए?
0: ये आपने आपने डिसाइड करना है, मैं सोच कर आया हूँ। अच्छा। बल्कि सोचा है अभी अभी, आप जना भाई से जब पूछ रहे थे उसी वक्त।
1: ओके, तो चलिए फिर बता दीजिए, अगर आपको पता है कि 1 से 100 के दरमियान कितनी बार नौ आता है?
0: एक बार भाई।
1: एक बार
0: जी।
1: क्या बात है यार, हमदा बिल्कुल गलत फंस गए। कितनी बार आता है ये सोचना जरूरी है इसके अंदर। और चलिए, कोशिश अच्छी थी,
0: थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना। एक बार 9 आया, उसके बाद 19 आया, वो 9 नहीं गिना गया। उसके बाद 99 आया, वो भी 9 नहीं गिना गया।
1: नहीं, इंक्लूडिंग
0: 99 आया तो 9 में तो नहीं गिनती होता ना भाई, क्योंकि 9 और 9 हो जाते हैं
1: यार। हाँ, मतलब अपनी बात रखने का सही तरीका तो है अब भाई, ऐसी बात नहीं है। इसमें आपने खोज निकाल ली है, रास्ता निकाल लिया एक तरीके से, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है, बट सवाल वही है, उसका जवाब जो मैं चाह रहा हूँ, मतलब टोटल टेक्निकली 9 कितनी बार आएगा, वो सवाल है। और खैर, ये एक रास्ता अच्छा है निकलने का, आपने भागने की कोशिश करी है, आप भाग सकते हैं। क्या बात है यार, चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: देखा जाए तो भाई, वो भाई का बात सही थी कि 10 या मेरे ख्याल से 11 होते हैं,
1: 10 या 11
0: मेजोरिटी मेरे ख्याल से 10 से होते हैं, 10 होंगे।
1: और भी
0: 99 में 2 बार 9 आ गया, उसके अलावा
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ ठीक,
0: उसके अलावा 8 9 10।
1: मैं चाह नहीं रहा
0: भाई,
1: आप ज्यादा सोच के और जवाब सही दे दें। क्या बात है,
0: खैर करें
1: इंशाल्लाह
0: ताला, मजा आता भाई आपकी बातें सुनकर।
1: अरे यार, मुझे आपसे मुलाकात करनी है, मुझे बाकायदा, खैर सभी से मुलाकात करनी है, कोई नाराज ना हो जाए, बट इंशाल्लाह ताला मुलाकात जरूर होगी। हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।
0: बोले हाजिर, जब बोले हाजिर,
1: इंशाल्लाह।
0: मॉर्निंग 9 o'clock से लेके इवनिंग 11 o'clock आई विल बी हियर,
1: इंशाल्लाह भाई, जरूर इंशाल्लाह। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, और हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।
0: शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो जनाब, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक में यूं गया और यूं वापस आया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए हम सबके 12 बज के सही 7 मिनट।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागत है। बिल्कुल सन एंड साउंड इस वक्त सन अपने रुबाब पे और साउंड आप लोगों की एफएम 107 पे और सरवर मिर्जा आपके साथ, जहां पर बात हो रही है आज के बहुत ही खतरनाक मौजू पे और साथ ही साथ तीन का दम जारी और सारी है और यहां पर कोई और चैंपियन हमारे साथ जुड़ गया है। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा पीछा ना छोड़ो, छोड़िए गेम के इस खेल में, चाहे भेज दे मुझे जेल में। फारिग बैठे हैं, बोले चलो भैया सर्वर भाई, हम ये सबको मुर्गा बना रहे हैं तो आज शहजादा सलीम बोले कि हमारे इधर हाथी मुर्गी भी खा जाती है पूरी कंप्लीट। हम बोले यार हम तो पहली बार सुने कि मुर्गी खा जाती है हाथी। हम बोले भैया ये भी गेम में शामिल करना पड़ेगा सर्वर भाई।
2: उसके पीछे उसका खुलासा मैं कर दे रहा हूँ ना, क्या होता है कि उसको पीस पास के टीमा निकाल के उसका पूरा, उसके बाद छोटे छोटे उसको गोले बना बना के एक तकरीबन 1.5-2 साल के खाने में खिला दिया जाता, इस तरीके से वो हाथी को कंज्यूम कर लेती है। समझे आप मेरी बात? मतलब ये मैंने ये अभी अभी जवाब दिया है मैंने।
3: आपके इलाके के है ना वो शहजादा सलीम, आपके एरिया
2: के? नहीं, ये मैंने अभी अभी जवाब दिया। नहीं शहजादा भाई फ्रॉम पाकिस्तान आई बिलीव।
3: शहजादा सलीम इंडिया के हैं भाई। अच्छा अच्छा,
2: अब वो सुनो तो सही, सुनिए तो सही, अब वो कॉल करेंगे परेशान होंगे कि भैया मेरा पासपोर्ट के बदले दे रहे हो। और कैसे हैं सर, कैसे हुई आज की सुबह और अभी तक का दिन कैसा रहा आपका?
3: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अभी जस्ट नमाज पढ़ के थोड़ा जल्दी वल्दी खाना खा के गाड़ी अभी लोड था, मैं बोला चलो भैया।
2: क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सेहत अच्छी रखे। तो आज का मौजू कुछ इस तरीके से था कि साहब शॉर्ट में, अभी क्योंकि तीन कदम में भी आगे बढ़ना है, कि रिश्ता या पैसा, क्या कहना चाहते हैं?
3: कितने इनफी जरूरी है या शेख अल्लाह, दोनों जरूरी है,
2: दोनों जरूरी
3: है, दोनों की अहमियत है, दोनों की अहमियत।
2: वाह वाह वाह, ये जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया था यार, दोनों की अहमियत है,
3: दोनों की एक अहमियत है। अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरे को वक्त पे मदद कर सकते हैं, आप सबका भी कर सकते हैं, किसी मोहताज का भी और रिश्तेदारों की भी, हद तक ही रिश्तेदारों की। तो अगर हम रिश्ता मतलब कोई जरूरतमंद है हमारा रिश्तेदार भी अगर, तो हम अगर पैसे के जरिए उसकी मदद कर सकते हैं। और इस्लाम ने हमें मुफलिसी की तरफ ये नहीं कि मतलब आप हम मतलब ये करके लेके झोला उठा के मतलब चले जाएं वहां पे मतलब जंगलों में, नहीं। ये दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब फायदा खुद यला तो फन तशरू फिल अर्द वक्त को मिन फजलिल्लाह, जब जब नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए जमीन में फैल जाओ।
2: सुभान
3: जी। तो ये जरूरी है, दोनों की अहमियत है अपने अपने जगह पे मेरे भाई। दोनों जरूरी है। तो मेरे ख्याल से मेरा तो भाई यही रहा है और भाइयों का भाई मतलब हो सकता है कुछ मुख्तलिफ हो।
2: भाई यहाँ पर मैसेज आया है फराज साहब का, कह रहे हैं कि इनका नाम क्या है जो बात कर रहे हैं?
3: रईस खान।
2: सुना फराज भाई आपने, और ये सिर्फ बातों से रईस नहीं है, ये इनकी अम्मी जान कहा करती थी।

0: हम मार्क्स बोलते थे, हम आके ही निकाल लेते
1: भाई। आपकी बात सुन के माशाल्लाह से आपका नाम जानने की कोशिश करी उन्होंने, इसलिए मैंने कहा कि बता दूं
0: क्या बात है। वाले को पालती कर कहते हैं भाई,
1: रईस रईस कहते हैं भाई। ओह माय गॉड, रईस भाई खुश रहिए और बहुत ही बढ़िया। तो चलिए रेडी हैं तीन का दम के लिए।
0: अरे भैया फंसाओगे आज।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: पहले आया था हाँ, वो सवाल आपने जो पूछा था, मेरे ख्याल से कितने बार नौ आते हैं मैं जाहिर कर दूं, मेरे ख्याल जो मेरा अपना है मुताला,
1: अच्छा
0: ये शायद मेरे ख्याल से 20 बार आता है।
1: 20 बार आता है
0: हाँ मेरे हिसाब से। आप अगर उसको आप लास्ट में दे देना, मतलब कंफर्म होगा, अभी अभी उसके नहीं करो नहीं है
1: नहीं हाँ, आप करीब हैं, आप करीब हैं एक्चुअली, आप करीब हैं हाँ, करीब बहुत करीब है।
0: चलो
1: खाना, आज खाना हजम हो जाएगा। रही सही कह रहे, चलो चलो भैया आज खाना हजम कर लेते। क्या बात है भाई, रईस भाई बहुत अच्छी बात है।
0: हमारी एक जरूरत है बस, वो आप समझ गए होंगे, हमको जिस दिन बुलाओगे स्टूडियो में इंशाल्लाह उस दिन पक्का है।
1: क्या
0: लेकिन यार स्टूडियो से पता नहीं क्यों लोग मेरे से पता नहीं क्यों भूल गए, मेरा नंबर ही यार लग रहा है।
1: आपकी प्राइस का मसला है, अभी तक प्राइस नहीं मिला गालबन, वही बताना चाह रहे हैं।
0: जी जी जी, नंबर लगता है, हम सोच रहे थे सर्वर भाई से हो
1: अब सकता तो पीछे, अब तो चौथी रकत वाले भी ले लेके चले गए रईस भाई।
0: अगर सार इंडिंग इंडिंग मिला, मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो गया, भूल गया, मैंने इंटेल भी किया था।
1: अच्छा
0: हेलो, मुझे टाइम यार, टाइम का थोड़ा मसला है मेरे भाई, टाइम का थोड़ा मसला
1: ये भी हो जाता। मैं खैर मैं आज फिर इंशाल्लाह पूछता हूँ, अगर मुझे कोई जवाब मिल जाता, मैं हमेशा पूछता हूँ जब भी आप लोग मुतालबा करते हैं, मगर जवाब मुझे भी वैसे ही मिलता है जैसे आप तक पहुँच रहा है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही दूसरा है।
0: मजा है कोई अल्लाह ताला मतलब ये बस।
1: नहीं नहीं जरूर इंशाल्लाह, नहीं भाई हक है पूरा और जरूर आप तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। ठीक है रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कनेक्ट करने के लिए और प्यारी बातें करने के लिए, मजा आ गया बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
0: शुक्रिया भाई,
1: सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि। तो ये थे रईस भाई हमारे साथ, और क्या क्या बातें और क्या क्या गाने, एक दो गाने सुन लो यार आप लोग भी। बातें वैसे मीठी ही करनी चाहिए, मेरी तो कोशिश यही रहती है, कुछ ही भी यहाँ पर यही कह रहे हैं। वाह, एंजॉय कीजिए ट्रैक, जबरदस्त गाना एंजॉय कीजिए, मुझे बड़ा पसंद है भाई, दिल से देसी। कल मिट्टी

0: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: नूर अला नूरी यहदी अल्लाह लिनूरिही मन यशा। रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
2: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूर इस्लाम,
3: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: एब्सोल्यूट सिनेमा,
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
6: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
7: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

तो मेरे और आपके हवाले से बातचीत हो रही है यहाँ। आदिब असलम, मोनाली ठाकुर।

0: तू मोहब्बत है।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड
2: आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: हाँ जी, वेलकम बैक, अहलन वसहलन, खुश आमदीद एंड स्वागतम। और बिल्कुल भाई, आज की बातचीत से ये पता चला कि अपने अपने मामलात हैं, अपना अपना हिसाब किताब है, और जिसको जिस तरह जो भी चीज़ समझ में आ जाती है वो उस तरह आगे बढ़ जाता है। बट ज़रूरी ये है कि एक दूसरे को समझते हुए ही हमें काम करना चाहिए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ कोई जुड़ गया है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ जी, हाँ जी, सलाम वालेकुम जी।
0: ओ, सुरजीत भाई हमारे साथ हैं।
1: हाँ जी, सुरजीत सिंह जी।
0: सुरजीत सिंह जी, शाह जी, आज तो टाइम निकाल ही लिया आपने हमारे साथ जुड़ने का।
1: हाँ जी, हाँ जी, टाइम निकाल लिया जी।
0: कैसे हैं और कैसे कैसा रहा अभी तक का दिन?
1: हाँ जी,
0: अभी तक का दिन कैसा गुजरा और कैसे हैं आप?
1: बस जी, आपको फोन करके हम तो सुरजीत हो गए जी।
0: सुरजीत हो गए? वाह,
1: सुरजीत, सुरजीत हो गए। सुरजीत का मतलब, सुरजीत का मतलब जीवन।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है साहब, क्या बात है चाची। उम्मीद करता हूँ तबीयत वगैरह सब अच्छी होगी और काम वगैरह भी अच्छा चल रहा होगा।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अच्छा चल रहा काम जी। और आप सुनाओ जी।
0: बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ और सब खैरियत है सर। तो आज का हमारा प्रोग्राम सुना आपने अभी तक का शाहजी?
1: पहली बार रेडियो लगाया मैंने जी।
0: अच्छा,
1: सुना आपको जी।
0: अच्छा अच्छा, तो आज हम बात कर रहे थे कि पैसा और रिश्ता क्या ज्यादा जरूरी है, क्या अहमियत रखता है आपकी लाइफ में?
1: हाँ जी, मेरी लाइफ में जी ऐसा ना सरवर जी, ना
0: जी,
1: जो आज का जो जमाना चल रहा ना, जो आज का, तो मेरे हिसाब से अगर मैं वोट दूंगा तो मैं वोट पैसे का दूंगा जी।
0: ओके ओके,
1: उसकी एक वजह है, तो पैसा खत्म फिर रिश्तेदारी खत्म।
0: पैसा खत्म,
1: अगर आपने पैसे बचा लिए तो आपने रिश्ते बचा लिए, पैसे खत्म तो रिश्ते खत्म। तो मैंने बहुत दूर देखा हुआ है जी, पैसों की तंगी देखी हुई मैंने ना, इसलिए मेरे को कुछ ज्यादा नॉलेज इसके बारे में। ठीक है, उसको जिसने जो चीज देखी है उसको ज्यादा मालूम होता है, ठीक है जी। तो जिसने नहीं देखी तो फिर उसको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं होती है।
0: क्या बात है, चलिए साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमारे साथ गेम खेलेंगे शाह जी?
1: गेम भी खेल लेंगे
0: जी। तो चलिए, तीन का दम खेलने जा रहे हैं आप, जहाँ पे मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा और उनके आपके आसान से जवाब होंगे, वो आपने देने, ठीक है?
1: हाँ जी,
0: चलिए ठीक है। मछली पानी में रहती है या हवा में?
1: हम तो पानी में देखी जी।
0: पानी में देखी है। एक साल में कितने महीने होते?
1: एक साल में महीने तो अपने 12 महीने होते जी मेरे ख्याल में, तो
0: 12 महीने होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हैं और टेबल के करीब 5 अफराद बैठे हैं, लोग बैठे हैं, अगर लड्डू सबको बराबर बराबर तकसीम करें, बांटें, तो कितने लड्डू कितने आदमियों के पास जाएंगे?
1: लड्डू कितने हैं जी?
0: लड्डू 5 हैं।
1: लड्डू 5, आदमी कितने हैं?
0: 4 हैं।
1: आदमी 4, तो एक लड्डू के 4 हिस्से कर दो।
0: अच्छा, एक लड्डू के 4,
1: एक लड्डू के 4 हिस्से कर दो, बाकी सबको एक एक दे दो।
0: क्या बात है, ये हुई ना बात सही, क्या कहने। अपने आपके लिए भी तो कुछ रखना ही रखना है भाई, जरूरी है।
1: तो पांच पांच पांच माह मैं खा लूंगा ना, ऐसा
0: ही होता है। मैं खा लूंगा।
1: और सवाल पूछ लो, कुछ गिनती मिलती है, सवाल पूछ लो कहीं।
0: गिनती का? अच्छा, गिनती का सोच के आए क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, और सवाल कर लो कोई भी, कोई काम नहीं।
0: अच्छा चलिए, कोई और सवाल कर लेता हूँ। आपने अभी सुना था जो मैंने पूछा था गिनती के हवाले से ही?
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं अभी लगाया।
0: अच्छा ठीक है, तो आप नाहर मुंह जी कहिए, कुछ कह रहे थे?
1: बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो,
0: आप,
1: बोलो, क्या बोलो
0: आप? निहार मुंह कितने अंडे खा सकते हैं? 2, 4, 6?
1: निहार मुंह बोलो यानी खाली पेट
0: जी,
1: खाली पेट कितने अंडे खा सकता हूँ मैं?
0: हाँ, निहार मुंह कहते हैं ना, कि निहार मुंह आप कितने अंडे खा सकते हैं? 2?
1: मैं को समझ में, निहार मुंह मेरे को समझ में नहीं आया।
0: मतलब सुबह सुबह एकदम निहार मुंह, बिल्कुल
1: सबसे,
0: हाँ बिल्कुल।
1: मैं तो सुबह उठते मैं तो 4 अंडे खा लेता मैं जी।
0: क्या बात है चाची, इतने प्यारे और इतने भोले। सवाल में ही कैच है एक्चुअली, और

0: इसका जवाब मैं आपको अभी तो नहीं दूंगा चाची, बट बाद में जरूर बताऊंगा, ठीक है?
1: नहीं, और बोला मैंने, आपके पहले तो तीन सवाल का जवाब मैंने दे दिया ना आपको ना।
0: अच्छा,
1: लड्डू वाला पाप डाल के तीन सवाल हो गए ना मेरे।
0: मगर ये सही नहीं आया अभी तक किसी का भी जवाब शाहजी।
1: लड्डू वाला ही सही नहीं आया?
0: नहीं, सही नहीं आया।
1: चलो फिर और पूछो, एक और पूछो।
0: अच्छा साहब, और कोई पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है?
1: फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है, मेरे ख्याल में गर्म मसाला होगा।
0: ये बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा कम से कम शाहजी इसका जवाब पहले शायद दे चुके हैं या नहीं, मगर सही जवाब
1: तो लगता जे भी गलती है लगता।
0: नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है शाहजी।
1: चलो और पूछ लो, कोई और भी पूछ लो।
0: अच्छा, और भी
1: जो किसी ने जवाब ना दिया वो पूछ लो।
0: अच्छा साहब, आज सारे के सारे सवाल के जवाब आप ही देंगे?
1: जो किसी ने ना दिया वो जवाब वो पूछ लो हमसे जी।
0: अभी तक इसमें से भी काफी सवाल के जवाब नहीं आए जो मैंने आपसे शेयर करे थे, आपने एक तो सही दे ही दिया।
1: हाँ जी, और पूछो।
0: अच्छा, और पूछ। चलिए हाँ, और पूछ लेता हूँ, सोने की ऐसी वो कौन सी चीज है जो सुनार की दुकान पे नहीं मिलती?
1: सोने की
0: ऐसी कौन सी चीज है जो सुनार की दुकान पे नहीं मिलती?
1: कंबल, खटिया, मंजा, तरपाई, चारपाई, कुछ नहीं मिलता जहाँ पर।
0: सही है शाहजी, सही है, आपने अब दो सही जवाब दिए।
1: और पूछो जी,
0: आज के लिए इतना ही था शाहजी बस।
1: आपने कितनों को बताया, देखो कभी बोलते ना शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, आज मिल गया ना जी।
0: तो आपने तो पहले ही सवाल गलत बता दिया, आपको तो पहले ही फंसा चुका मैं, जो पहला मैंने पूछा ये तो मैंने आसान पूछे शाहजी, ताकि आपको आप मुतमईन हो जाए।
1: तो और पूछो, कि और पूछो, मैं तो सबके जवाब
0: तो फिर चलिए पहले
1: तीन का आंकड़ा तो मैं तीन का आंकड़ा तो मैंने पार कर दिया ना मैं।
0: नहीं, पहले वाले का जवाब कहाँ से आया चाची, एक टेबल पर वाला जो मैंने आपसे सवाल किया।
1: हाँ,
0: उसका बताइए जवाब।
1: अगर गलत लोग और पूछ लो गई, उसमें क्या मुश्किल है।
0: आज के लिए इतना ही है शाहजी, बस इसका जवाब याद आ जाए तो दीजिएगा कॉल पे इंशाल्लाह या फिर मैसेज में,
1: ठीक है? वैसे आपने मेरा नाम गलत लिया है जी।
0: अरे तो आप तो कौन है हमारे साथ भाई, मैं तो सही आदमी से बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल में, तो मैं कुछ और समझ के बात कर रहा हूँ क्या? हाँ, तो जसविंदर सिंह है ना हमारे साथ।
1: आप पहले क्या बोले थे?
0: मैंने सुरजीत कहा था आपको।
1: हाँ, तो सुरजीत ही हूँ मैं।
0: आपने उसका खुलासा भी तो कर दिया था शाहजी।
1: अच्छा,
0: ऐसे ही हो रहा है, देखिए शुरू पहले ही सलाम से। चलिए शाहजी,
1: जो सुरजीत है ना, उसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है जीवन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी से तो मिलाया मैंने आपको
1: जिंदगी,
0: उसी से तो मिलाया मैंने आपको।
1: नहीं, मेरा नाम तो जसविंदर सिंह काला है जी।
0: हाँ, वही मैंने
1: कभी दे रंग नहीं हो सकते।
0: वो भी तो बताया सर, वो भी तो बताया।
1: चलो एक सवाल और कर लो, एक सवाल और।
0: एक सवाल और कर लो। ओके, अगर आप सेकंड पोजीशन वाले को ओवरटेक कर दें तो आप किस पोजीशन पे आ जाएंगे?
1: नहीं, कैसे कैसे दोबारा समझो, मैं आपकी बात समझा नहीं। एक तो आपको मतलब उर्दू समझ में नहीं आता।
0: अच्छा, ओ
1: यानी एक आप भी साथ में गाड़ी चला रहे हो और मैं भी साथ में गाड़ी चला रहा हूँ।
0: हाँ चलिए, हाँ ऐसे कर लीजिए, अगर सेकंड पोजीशन पे जो इसको आप ओवरटेक कर लेंगे तो आप कौन सी पोजीशन पे आ जाएंगे?
1: सेकंड पोजीशन को नहीं, तीन आदमी जा रहे हैं।
0: अब इतना अब मैं पूरा बता ही दूं उसके अंदर सवाल, तो कहीं तो फंसाऊंगा चाची।
1: जिसको मैंने पीछे किया मैं तो उसी से आगे आगे हुआ ना, बाकी तो जो मेरे से आगे वो तो ऑलरेडी आगे ना, जिसको मैंने पीछे किया।
0: कौन सी पोजीशन पे
1: मैं उससे ही आगे हूँ ना, बाकी सब से तो मैं पीछे हूँ मैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: जिसको मैंने पीछे किया बस मैं उससे ही आगे हूँ, बाकी और हजारों आगे जा रहे हैं।
0: नंबर क्या होगा?
1: नहीं उसके नहीं, सेकंड वाले को जो मैं सेकंड वाले को मैंने क्या तो मैं उसके आगे हो गया जी।
0: आगे हो गया तो
1: दो ही आदमी ना, तीसरा तो आदमी है नहीं ना कोई
0: शाहजी।
1: जहाँ तो आप है या मैं हूँ, आपको पीछे कर दिया तो मैं पहले नंबर में हो गया।
0: तो आपका जवाब क्या है, पहला नंबर?
1: नहीं, अगर आपको पीछे किया तो मैं पहले में आ गया, आप दूसरे में आ गए।
0: तो आप पहले पे आ गए,
1: पहला नंबर है, मैं आगे से पहला नंबर हूँ।
0: हाँ तो आप पहले पे आ गए ना।
1: अब आप भी पहले से, आप पीछे से, पहला नंबर है मेरा, आगे पहला नंबर है, दोनों पहले पर ही है।
0: जी आज पहला नंबर ही है। आज आज अपनी सारी बनवाने आए शुरू से आखिर तक की।
1: नहीं नहीं आप भी पहले नंबर में, आप पीछे से पहले हो गया, मैं आगे से पहले हो गया, दोनों को पहला नंबर है जी।
0: चलिए आपकी बात मान लेते हैं शाहजी, आप हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है शाहजी, बिल्कुल ठीक है, आप खुश रहिए।
1: एक और एक और,
0: अब आज के खत्म हो गए शाहजी, जितने थे सब निकाल दिए।
1: चलो
0: ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके सर। तो भाई ये थे जसविंदर सिंह काला साहब, आज सारे सवालों के जवाब दे दिए भाई ने, और खुशी खुशी भाई मैं बिल्कुल आ जाता हूँ मैसेजेस की जानिब, और मुझे इस मोबाइल पे तक कॉल आ रही है कि भाई मैसेज पढ़ लो। तो शुरू करते हैं कहाँ से, कहते मुझे भी शायरी लिख कर दे दो। ओहो कौन है हमारे साथ, सैयद मंसूर साहब हैं यहाँ पर, कहते मुझे भी शायरी लिख कर दे दो, बिल्कुल दे दी जाएगी। और अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, सैयद जमील अहमद का सलाम, वालेकुम अस्सलाम, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए, फोटो भी भेजा है जमील भाई ने मुझे, काफी दिनों बाद जुड़े, ग्रीटिंग्स फ्रॉम, ओके हाँ ओके ओके ओके, अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं मेरे साथ, ओके कहते हैं इतने टाइम्स, बिल्कुल सही जवाब है, जहीर भाई ने सही जवाब दिया है, गिनती वाला, ओके अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, आजकल लोग पैसे को मानते हैं भाई, 100 में 9 बार 11, अच्छा साहब आलम, शाह भाई थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, कहते हैं इतनी बार, ये भी सही नहीं है, यहाँ पर तो जवाब ज्यादा आए हुए हैं भाई। एमडी है हमारे साथ इमरान खान है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका सवाल उसके दो पहलू हैं, पहला आप पैसे कमाकर घर वालों को दे रहे हो तब तक सब ठीक है, सेकंड जैसे ही आपको पैसे और घर वालों की जरूरत पड़ी फिर आप तनहा पैसे से भी और लोगों से भी, ओहो हो दुनिया भर के बहने बताए जाएंगे, अच्छा बहाने बताए जाएंगे सॉरी, और मेरी वाइफ लखनऊ में 2 मंथ एडमिट थी, मुझे यहाँ से जाना पड़ा, कोई एक रात भी नहीं रुका, तब एहसास होता है कि क्या जरूरी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह इमरान भाई, अल्लाह ताला सबके साथ खैर आफियत का मामला करे, यही दुआएं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, हमजा का नंबर सेंड कर सकते हो, वालेकुम अस्सलाम अदील है यहाँ पर, बिल्कुल मुझे अब ढूंढना भी पड़ेगा, हमजा अपना हाय भेजिए जरा मुझे, कहते हैं सलाम भाई 3 बार, अच्छा कोई जवाब दिया है, रमजान का इनाम, ओके ये भी इंतजार में है, नसीम भाई हमारे साथ, नसीम भाई जरूर मिल जाएगा, रमेश भाई से आज बात नहीं हुई, गुड मॉर्निंग कहते हैं, कहते हैं सरवर जी मॉर्निंग में भेजा था मैसेज मैंने, अब पढ़ा, वेरी सॉरी, ओके हाउ आर यू 1 से 100 तक, अच्छा इन्होंने जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, और कहते हैं इतनी बार आएगा, बिल्कुल ठीक, अब्दुल मतीन हमारे साथ, मतीन भाई सही जवाब है, ओके एक एक ओके हाँ टेल आई एम राइट, बिल्कुल सही है भाई, छत्ते फड्डे जलंधर शामी दिल्ली, क्या बात है यार, और सही है आपका जवाब भी मेरे भाई, रईस भाई यहाँ पर हमारे साथ, ओके यूसुफ भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, गुड मॉर्निंग सरोज भाई कैसे हैं आप, होप वेल सन एंड साउंड, और हैप्पी मंडे मॉर्निंग, ऐसा ओके हाँ ओके मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, जो रिमाइंड कराना चाहते हैं आप, ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते, जो आज तू होते हैं मगर आज तो होते हैं मगर कल नहीं होते, अंदर की फजाओं के करिश्मे भी अजीब हैं, मीना टूट के बरसे भी तो बादल नहीं होते, होए होए होए होए होए होए यूसुफ भाई क्या कहने, जबरदस्त शायरी हो रही है यहाँ पर, ओके कहते हैं जवाब है यहाँ पर कुछ, हमजा के नंबर की बड़ी वो आ रही है भाई, नसीम कहते हैं कॉल, बिल्कुल मैं कॉल की जानिब आ रहा हूँ और जरा मैसेजेस पूरे कर दूं भाई, मेरी शादी से पहले सब कुछ सही था, पहला जितना पैसा देते थे फैमिली में अभी उतना ही दे रहे हूँ, खुश था अभी बोल रहा हूँ मैं बीवी उन लोगों को पैसे, अच्छे भारत रिश्तों के हवाले से बात कर रहे हैं, महफूज रॉबिन है हमारे साथ, और महफूज भाई की जिंदगी बदली शादी के बाद, यहाँ पर अब कोई और हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: जी

0: नहीं हो पा रहे हैं क्या कनेक्ट? हेलो
1: हेलो,
0: यस, कौन है हमारे साथ?
1: जी मैं सैयद फैजल बात कर रहा हूँ। सरवर भाई कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। फैजल भाई आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, आप बुजुर्गों की तो हम
0: अच्छा बुजुर्गों की। चलिए साहब आप खैरियत से
1: भाई? आप सरवर भाई आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, आप मेरे लिए बुजुर्ग
0: हुए। अरे चलिए साहब आपके लिए बुजुर्ग बनने के लिए मैं तैयार है। फैजल भाई क्या बात कर दी, कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
1: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत अच्छा गुजरता है।
0: अल्लाह ताला खैर
1: हो आपके। जब से FM 107 का साथ है तब से दिन अच्छा ही गुजरता है।
0: क्या बात है यार, क्या बात है। तो क्या कहते हैं, पैसा या रिश्ता क्या ज्यादा जरूरी है लाइफ में?
1: सरवर भाई मेरे हिसाब से ना दोनों इम्पोर्टेंट है।
0: ओके ओके,
1: दोनों जरूरी है क्योंकि पैसा जो है ना जिंदगी को बेहतर बनाता है और रिश्ते जो है वो खूबसूरत बनाते हैं।
0: वाह वाह वा, क्या बात है। तो कभी कोई ऐसी चीज जो शेयर करना चाहते हो और किसी को और कुछ बताना चाहते हो उसके हवाले से?
1: जी ऐसा ही, मतलब समझ लीजिए जब मतलब मेरी अम्मी तो खैर अभी नहीं है, लेकिन जब भी उनके जो हालात थे मतलब बीमारी में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो सामने आए जो बहुत मतलब उन्होंने बहुत किया, तो मैं इस चीज को मैं भी भूल नहीं सकता।
0: क्या बात है,
1: यही है मेरे लिए बस, और उतना कुछ है नहीं मतलब, लेकिन मेरे लिए कुछ लोग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत मायने रखते हैं।
0: चलिए साहब ओके। आज मुझे बड़ा भावुक भी कर दिया सबने मिलके और खुशी की बातें भी हुई। बहरहाल रेडी हैं तीन का दम के लिए?
1: बिल्कुल सरवर भाई, हमेशा हम लोग बेइज्जती कराने के लिए रेडी रहते
0: हैं। क्या बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं। तो वही सवाल चल रहा है अभी तक। बहरहाल सबसे पहले बताइए दिन के बाद क्या आता है?
1: किसके बाद?
0: दिन के बाद।
1: दिन के बाद तो सरवर भाई मेरे यहाँ रात ही आती है।
0: रात ही आती है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं?
1: हफ्ते में 7 दिन होते हैं।
0: ओके एक से लेके 100 तक 9 कितनी बार आता है?
1: एक से लेके 100 तक में
0: 9 कितनी बार आता है? नंबर 9
1: सरवर भाई देखिए वो तो है, कितनी बार आता है अगर आप डिजिट के हवाले से बात कर रहे हैं तो 20 बार आता है।
0: ओके
1: अगर आप नंबर के हवाले से बात कर रहे हैं तो सरवर भाई 19 बार आता है।
0: क्या बात है यार, क्या बात है, ये हुई बात। सही जवाब, सही जवाब।
1: ये दोनों ट्रिक है, मैं कैलकुलेशन लगा दिया था।
0: इसे तैयारी करके आए थे फैजल भाई आज तो। देखिए आपने सही जवाब दे दिया यार, आज तो तीनों के तीनों। क्या बात है भाई, बहुत खूब।
1: सरवर भाई मैं सुन रहा था शुरू से, मैं बोला नहीं उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये आपके सवाल में ट्रिक जरूर होगी।
0: नहीं बिल्कुल ठीक है और दोनों ही तरीके से आपने सही जवाब दिया है भाई, क्या कहने फैजल भाई के। कहाँ है अभी?
1: अभी सरवर भाई मैं तो अभी गराफा में।
0: गराफा में क्या हाल है ट्रैफिक का?
1: ट्रैफिक का तो नॉर्मल है सब, अभी ओके ओके है।
0: मौसम के क्या हाल है?
1: मौसम तो अपने उफान पर है और अभी नहीं थक रहे क्योंकि हमारे साथ FM 107
0: है। क्या कह रहे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा बात करके। ख्याल रखिए दुआओं में याद।
1: हम लोग का सरवर भाई क्योंकि रहना ही पड़ता है, रोड सपोर्ट वर्क है और मेरा काम है कि लोगों को मतलब वहाँ पे जहाँ पे कुछ हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो या डैमेज वगैरह हो रोड का, तो लेबर लोग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो हम लोग चलते रहते हैं, बस यही चलता रहता है कार
0: भाई। ये तो जिम्मेदारी वाला काम है और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इससे माशाल्लाह कितनी जिंदगियां बच रही हैं, इससे कितने लोगों को आराम मिल रहा है, ये इंशाल्लाह सारा सवाब जो है।
1: मेरा काम है कि मैं लोगों को पहुंचाऊं, लेकिन मैं खुद भी चला जाता हूं क्योंकि मैं देखता हूं वो लोग मेरे ही दोस्त है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैं भी हाथ बटाऊं।
0: क्या बात है, ये तो बड़प्पन है आपका बुजुर्ग, आपने मुझसे कहा, मुझे कहा और काम सारे बुजुर्गी के आप कर रहे हैं माशाल्लाह। चलिए साहब खुश रहिए, ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिए फैजल भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जरूर जरूर मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो ये थे फैजल भाई हमारे साथ और क्या कहते हैं, गाना हो जाए।

चित्रा जी और यार रहमान साहब इस गाने के अंदर बड़ा ही खूबसूरत गाना बॉम्बे फिल्म से, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, कहना ही क्या। एंजॉय कीजिए ट्रैक सन एंड साउंड पे सरो मिर्जा आपके साथ दिल से देसी।

0: क्या बात है चित्रा जी की भाई।
1: कहना ही क्या।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सर्वर मिर्जा।

0: हाँ जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागतम। एंड बिल्कुल सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप, जहाँ सन तो इस वक्त अपना काम कर ही रहे हैं और हम भी साउंड के सिलसिले से अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पर साउंड जो है आपकी गूंज रही है। आइए, वक्त हुआ जाता है, उससे पहले यहाँ पर किसी को कनेक्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? आरिफ अंसारी साहब, क्या बात है आरिफ भाई, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कहाँ हैं अभी?
1: अभी लुसेल से शटर की तरफ निकलने के लिए।
0: क्या हाल है इस वक्त रोड का और ट्रैफिक का?
1: एकदम स्मूथ चल रहा है
0: इस वक्त, ठीक चल रहा है। चलिए साहब, और कैसा रहा आज का दिन आपका?
1: अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या चार, चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं और तीन कदम के लिए रेडी? चलिए, ऑल राइट देन, आरिफ भाई के साथ खेलते हैं तीन का दम। इस वक्त आसमान का रंग कैसा है आरिफ भाई?
1: इस वक्त आसमान का रंग नीला है।
0: नीला है। कतर में कौन सी करेंसी चलती है?
1: रियाल, कतरी रियाल।
0: रियाल, क्या बात है भाई। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और अभी तक सुने आपने सवाल मेरे?
1: अभी तक सुन ही रहा था थोड़ा थोड़ा।
0: किसी एक का जवाब मालूम है?
1: एक का जवाब जो आपने वो रनिंग के लिए बोला था ना, उनको
0: जमीन के लिए?
1: नहीं नहीं, वो जो सेकंड को आप ओवर टेक करोगे तो आप कौन से नंबर पे आओगे?
0: अच्छा, उसका बताया जवाब?
1: वो आप तो अपनी बात मनवा कर ही गए।
0: जसविंदर चाची आज अपनी ही बात मनवा के गए सारी की सारी। चलिए, तो आपसे और कोई दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ फिर। चलिए साहब, आवाजों के बारे में बता सकते हैं कि कौन कैसी आवाज निकालता है? हिरन की आवाज को क्या कहते हैं, पता है?
1: आवाज वाली छोटी आवाज वाली, एक बार मैंने तीन चार बताया था।
0: हाँ। तो ये बताइए ना फिर, एक बताइए हिरन की आवाज को क्या कहते हैं।
1: नहीं बता सकता मैं।
0: अरे बहुत आसान है यार, सोचिए थोड़ा सा, बता देंगे।
1: हिरन की आवाज को क्या कहते हैं?
0: अच्छा, गधे की आवाज को क्या कहते हैं? यार आप कह रहे तीन चार बता चुका हूँ।
1: नहीं, वो बताया था मैंने, वो जो आपने बाघ का पूछा था, सांप का पूछा था।
0: किसका पूछा था?
1: ये सांप का और शेर का।
0: अच्छा, तो गधे का बता सकते हैं, गधे की आवाज को क्या कहते हैं?
1: नहीं, शेर का बता चुका हूँ, गधे का नहीं बताऊंगा।
0: शेर का तो हर कोई बता सकता है यार। अच्छा, हाथी क्या करता है बताइए?
1: हाथी तो दहाड़ता है जैसे।
0: आज शेर लड़ जाएगा हाथी से जाके। अबे कैसे धाड़ रहा भाई, धाड़ना काम तो मेरा था। सही बता लिया आपको, इसका मतलब मैंने, मुझे ये याद आ गया, आप कह रहे हैं कि मैं बता चुका हूँ। हाथी क्या करता है बताइए?
1: मैं हार मानता हूँ करोड़ भाई।
0: हैं?
1: मैं हार मानता हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, हार नहीं मानिए यार, हार नहीं मानिए। चलिए कुछ और, दूसरा सवाल पूछूं।
1: हाँ, कोई वो पजल वाली पूछ ली थी।
0: चलिए बहुत आसान पूछता हूँ, ऐसी क्या चीज है जो बढ़ भी रही है और घट भी रही है? भाई वाह वाह वाह वाह, क्या बात है आरिफ भाई।
1: अभी तो वही दिमाग में आया मेरे।
0: क्या सच्चा और पर्सनल जवाब दिया मेरे भाई ने। अरे भैया यार, मजा आ गया आरिफ भाई यार, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलिए एक और पूछ।
1: ये थोड़ा पर्सनल था
0: मगर था अच्छा। एक और बताती, चलिए आप।

0: अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं तो आपसे तो पूछना बनता है, ठीक है?
1: ओके
0: ओके देन यार आपने ये जवाब ऐसा दे दिया कि आज पूरे दिन मैं सुन के और सोच सोच के हंसता रहूंगा।
1: अच्छा है, मेरे मुझे आप आज पूरा दिन हंसेंगे कम से कम।
0: चलिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग काटते भी हैं, पीसते भी हैं और बांटते भी
1: हैं?
0: काटते हैं,
1: काटते हैं,
0: काटते हैं, पीसते हैं, बांटते हैं, लेकिन खाते नहीं है।
1: ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग काटते हैं, बांटते हैं, पीसते हैं पर खाते नहीं? मिर्ची?
0: मिर्ची?
1: हाँ।
0: खाते तो है मिर्ची,
1: डायरेक्ट नहीं खाते।
0: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, क्योंकि वक्त हो रहा है ना, लंबी बात करता आपसे, छेड़खानी और करता, मगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह जरूर जरूर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई ने जाते जाते दिन बना दिया यार, और यहाँ पर आप लोगों के लिए भी आज बात हुई पश्तो की बहुत, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलते चलते आप लोगों के लिए गाना भी प्ले कर दिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल बखैर आफियत बाइज्जत साथ खैरियत के आप लोगों से मुलाकात होगी। आई वाह, एंजॉय कीजिए जमा सरदारा, दुआओं में याद रखिए, देखते सुनते रहिए FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम कतर और दुनिया भर में FM 107 सुनने वाले तमाम लिसनर्स को सफा का बहुत एनर्जेटिक और स्पोर्टी सलाम। आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स, वो प्रोग्राम जहां हम सिर्फ स्कोर बोर्ड्स और ट्रॉफीज और मेडल्स की बात नहीं करते, बल्कि उन कहानियों तक आपको लेकर जाते हैं जो जनरेशंस को इंस्पायर करती हैं, माइंडसेट्स को चेंज करती हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में नए स्टैंडर्ड सेट करती हैं। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे स्पोर्ट के नाम है जो स्पीड, फोकस, रिफ्लेक्सेस और मेंटल टफनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। एक ऐसा स्पोर्ट जहां एक सेकंड का डिले पूरा मैच तब्दील कर रख देता है। आज हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन की, लेकिन सिर्फ बैडमिंटन नहीं, हम बात कर रहे हैं उस एथलीट की जिसने हर स्मैश को हिस्ट्री बना दिया, हर रैली को डिटर्मिनेशन का सिंबल बना दिया और हर मैच के साथ मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स को इंस्पायर किया। जी हाँ साथियों, आज का नाम है पीवी सिंधु, इंडिया की बैडमिंटन सुपरस्टार भाई, ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन और विमेन्स स्पोर्ट्स की दुनिया में रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी का एक ग्लोबल सिंबल। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कई एथलीट्स टेम्पररी फेम हासिल करते हैं साथियों, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो एरा डिफाइन करती हैं और

पीवी सिंधु उन्हीं में से एक है। साथियों, पीवी सिंधु के बारे में क्या कहा जाए, उनकी जर्नी सिर्फ मेडल्स की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रेशर हैंडल करने की स्टोरी है। जब हम बैडमिंटन देखते हैं ना साथियों, तो शायद टीवी स्क्रीन पर सब कुछ इजी लग रहा होता है, फास्ट रैलीज, पावरफुल स्मैशेस और क्विक मूवमेंट, लेकिन रियलिटी ये है कि बैडमिंटन दुनिया के सबसे डिमांडिंग स्पोर्ट्स में से एक माना जाता है। एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर को लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस, एक्सट्रीम स्टेमिना और रेजर शार्प फोकस मेंटेन करना पड़ता है, और सिंधु ने सालों तक वर्ल्ड लेवल पर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रूव किया कि भाई ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती। साथियों, पुसरला वेंकटा सिंधु की पैदाइश 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुई। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। उनके पेरेंट्स पीवी रमाना और पी विजया दोनों प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स थे। उनके फादर को अर्जुना अवार्ड भी मिला था, लेकिन सिंधु ने वॉलीबॉल के बजाय बैडमिंटन चूज किया भाई, और शायद इसी डिसीजन ने इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल कर रख दिया। सिर्फ 8 साल की एज में ही उन्होंने बैडमिंटन ट्रेनिंग स्टार्ट की और उस वक्त से ही उनकी डिसिप्लिन लेवल डिफरेंट थी। रिपोर्ट के मुताबिक भाई सिंधु रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस सेशन अटेंड करती थी। जरा सोचिए, 4 बजे जब बहुत से बच्चे अभी सो रहे होते हैं, तब एक यंग गर्ल बैडमिंटन कोर्ट पर अपने ड्रीम्स बिल्ड कर रही होती है। भाई ये होता है चैंपियन माइंडसेट। टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है साथ में, लेकिन कंसिस्टेंसी टैलेंट को ग्रेटनेस में कन्वर्ट करती है। सिंधु ने अर्ली एज से ही ऐसी कंसिस्टेंसी को अडॉप्ट किया। उनकी ट्रेनिंग लेजेंडरी कोच पुलिला गोपीचंद की एकेडमी में हुई, जो इंडिया के टॉप बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक हैं और अभी भी माने जाते हैं। डेली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इंटेंस ड्रिल्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उनकी रूटीन का हिस्सा थे, और ऑनेस्टली इसी स्ट्रगल ने उनकी मेंटल टफनेस बिल्ड की भाई। जूनियर लेवल पर ही उन्होंने अपना टैलेंट शो करना स्टार्ट कर दिया था। 2013 में सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो मेडल उनकी इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू आइडेंटिटी बना। लेकिन असली एक्सप्लोजन तब आया जब उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता भाई। उस वक्त सिंधु सिर्फ 21 यानी 21 इयर्स की थी और उन्होंने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर रख दिया था। ओलंपिक फाइनल तक पहुंचना ऑलरेडी हिस्टोरिकल अचीवमेंट था साथियों, लेकिन फाइनल में उनकी फाइटिंग स्पिरिट ने सबकी रिस्पेक्ट जीत ली। सिंधु ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली इंडिया की पहली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर बन गई भाई, और इसी के साथ उनका नाम ग्लोबल बैडमिंटन इलीट में ऑफिशियली इंक्लूड हो गया। लेकिन ग्रेट एथलीट का रियल टेस्ट एक अचीवमेंट के बाद स्टार्ट होता है। बहुत से प्लेयर्स एक मेजर सक्सेस के बाद प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, क्रिटिसिज्म इंटेंस हो जाता है और कंपटीशन टफर होता जाता है। लेकिन सिंधु ने हर प्रेशर को फ्यूल बना दिया। 2017 और 2018 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स में उन्होंने सिल्वर मेडल्स जीते। फिर 2019 में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी जब वो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतने वाली पहली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बन गई। भाई फाइनल में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ हराया, और ये विक्ट्री सिर्फ एक टाइटल नहीं थी बाबू, ये प्रूव था कि सिंधु सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि मेंटली अनस्टॉपेबल एथलीट हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हाँ, तो भाई सिंधु दुनिया की उन रेयर बैडमिंटन प्लेयर्स में शामिल हैं जिन्होंने ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स सब में मेडल जीते हैं। उनके पास मल्टीपल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स हैं, एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। अच्छा, 2020 के बारे में बात की जाए तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इसी अचीवमेंट के साथ वो इंडिया की पहली विमेन एथलीट बन गई जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते। अच्छा, इस लेवल की कंसिस्टेंसी वर्ल्ड स्पोर्ट में बहुत रेयर होती है, और इसी वजह से सिंधु को सिर्फ इंडियन एथलीट नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन माना जाता है। लेकिन नंबर्स और मेडल्स के बियॉन्ड भी उनकी स्टोरी बहुत पावरफुल है साथियों। देखिए, सिंधु की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका काम माइंडसेट है। प्रेशर मोमेंट्स में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज कंपोज्ड होती है। जब पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस उनके शोल्डर पर होती है ना, तब भी वो फोकस मेंटेन करती हैं, और ये क्वालिटी यंग एथलीट्स के लिए सबसे

फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, मेंटल बैलेंस से भी आती है भाई। आज विमेन्स स्पोर्ट्स में विजिबली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, और सिंधु ने बैडमिंटन को साउथ एशिया में मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी देने में ह्यूज रोल प्ले किया है। उनकी सक्सेस के बाद इंडिया में बैडमिंटन अकेडमीज की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई, यंग गर्ल्स ने रैकेट उठाना स्टार्ट कर दिया, पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स को सीरियसली करियर ऑप्शन के तौर पर देखना शुरू कर दिया, और ये इम्पैक्ट किसी भी एथलीट की रियल लेगेसी होती है साथियों। अच्छा, कतर में भी ना आज बैडमिंटन रैपिडली ग्रो कर रहा है। स्कूल्स, एकेडमीज और कम्युनिटी टूर्नामेंट्स में गर्ल्स पार्टिसिपेशन स्टेडली इंक्रीज हो रही है, और जब यंग एथलीट सिंधु जैसे पर्सनालिटीज को देखती है ना, तो उन्हें ये फील होता है कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के थ्रू इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, पीवी सिंधु की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि टॉप पर पहुंचना डिफिकल्ट होता है, टॉप पर डटे रहना, बने रहना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हर नए सीजन में नए चैलेंजेस होते हैं, नए एक्सपेक्टेशंस होते हैं और नया प्रेशर होता है, लेकिन सिंधु ने सालों तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रूव किया है कि ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल होता है। उनकी जर्नी हर यंग लिसनर को ये मैसेज देती है कि ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए सेक्रीफाइस, पेशेंस और सेल्फ बिलीव की जरूरत होती है, और शायद इसीलिए आज भी जब बैडमिंटन कोर्ट पर सिंधु का नाम अनाउंस होता है ना, तो सिर्फ एक प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं होती, एक इंस्पिरेशन कोर्ट पर एंटर करती। तो साथियों, अगर आप आज का एपिसोड सुन रहे हैं, तो एक मोमेंट के लिए खुद से पूछिए, क्या ग्रेटनेस सिर्फ विनिंग का नाम है, या फिर वो एबिलिटी है कि प्रेशर के बावजूद कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहने की। पीवी सिंधु की स्टोरी शायद इसी सवाल का जवाब है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107 कतर। हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107 कतर, और अपनी थॉट्स शेयर करें, चाहे तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 666-221-107 पर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्पोर्ट्स डिस्कस नहीं करते, हम उन लेजेंड्स को सेलिब्रेट करते हैं जो जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। साथियों, यकीन मानिए, कतर में बैडमिंटन सिर्फ एक रिक्रिएशनल गेम नहीं रहा, बल्कि विमेन एम्पावरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन रहा है। आज से कुछ साल पहले तक बैडमिंटन को कतर में मोस्टली एक कैजुअल इंडोर एक्टिविटी समझा जाता था। फैमिलीज वीकेंड्स पर खेल लेती थी इस गेम को, स्कूल में कभी कभी स्पोर्ट्स डे पर मैचेस हो जाया करते थे, लेकिन अब पिक्चर चेंज हो रही है। आज बैडमिंटन कतर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडोर स्पोर्ट्स में काउंट होता है, स्पेशली विमेन और गर्ल्स के लिए। साथियों, दोहा और दूसरे एरियाज में कम्युनिटी बैडमिंटन कोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। स्पोर्ट्स क्लब्स विमेन फोकस ट्रेनिंग बैचेस इंक्लूड कर रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यंग गर्ल्स अब बैडमिंटन को सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि सीरियस कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स के तौर पर भी देख रही हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टेप इनटू टुडेज मेन स्टोरी, चलिए नजर डालते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स पर जो वुमेन स्पोर्ट्स को ग्लोबली और कतर में शेप कर रहे हैं। देखिए, कतर के मल्टीपल स्कूल्स में गर्ल्स बैडमिंटन पार्टिसिपेशन स्टेडली इंक्रीज हो रही है। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सेशंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स बेसिक रैकेट हैंडलिंग से लेकर मैच डिसिप्लिन और टूर्नामेंट एक्सपोजर्स तक सीख रहे हैं। पीई क्लासेस के अंदर रैकेट स्पोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बैडमिंटन रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और मेंटल शार्पनेस इंक्रीज करता है। अच्छा, कतर फाउंडेशन, इंडिपेंडेंट स्कूल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। बहुत सी स्कूल्स अब गर्ल्स बैडमिंटन टीम्स ऑफिशियली रजिस्टर कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है भाई। जब स्कूल लेवल पर स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है ना, तभी फ्यूचर एथलीट्स डेवलप होते हैं, और कतर इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर हम फिगर्स के बारे में बात करें तो ग्लोबली बैडमिंटन दुनिया के टॉप 5 मोस्ट प्लेड स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ फीमेल प्लेयर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। एशिया में स्पेशली विमेन बैडमिंटन का क्रेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कतर भी इसी ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहा है। साथियों, दोहा में कम्युनिटी स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन में रिसेंट ईयर्स के अंदर फीमेल रैकेट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन नोटिसेबली इंक्रीज शो कर चुकी है। देखिए, लोकल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक विमेन ओनली बैडमिंटन सेशंस और बिगिनर कोचिंग प्रोग्राम्स की डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। अच्छा, नेशनल कॉम्पिटिशन्स की तरफ देखिए तो विमेन पार्टिसिपेशन एथलीट्स बैडमिंटन और इंडोर गेम्स में स्टेडली इंक्रीज कर रही हैं।
पहले लिमिटेड टूर्नामेंट्स हुआ करते थे लेकिन अब स्ट्रक्चर्ड पाथवेज डेवलप किए जा रहे हैं जहां टैलेंटेड फीमेल प्लेयर्स को एकेडमीज और हाई लेवल कोचिंग तक एक्सेस मिल सके। कतर के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अब इंक्लूसिविटी एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड बन चुका है। साथियों कम्युनिटी लीग्स भी इसी चेंज का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट बन रही हैं। दोहा में रिक्रिएशनल बैडमिंटन लीग्स और फिटनेस क्लब्स यंग गर्ल्स को एक सेफ और मोटिवेटिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सी वर्किंग वुमेन और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी इवनिंग बैडमिंटन सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ फिटनेस का मैटर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस और सोशल कनेक्शन का भी पार्ट बन गया है। देखिए कतर का फोकस यूथ डेवलपमेंट पर क्लियर नजर आता है। गवर्नमेंट सपोर्टेड इनिशिएटिव्स, एकेडमीज और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पर ज्यादा काम कर रही हैं। गर्ल्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो स्पोर्ट्स को सिर्फ टाइम पास नहीं समझें बल्कि डिसिप्लिन और ग्रोथ का प्लेटफॉर्म भी बनाएं। और बैडमिंटन इसी मिशन में एक एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल स्पोर्ट बनकर सामने आ रहा है। अच्छा अब सवाल ये है कि बैडमिंटन ही क्यों? क्यों भाई इतनी गर्ल्स इस स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? भाई इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है और पावरफुल भी है। बैडमिंटन एक फास्ट पेस्ड स्पोर्ट है जो एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर भी स्टार्ट किया जा सकता है। इंडोर एनवायरनमेंट होने की वजह से कतर के वेदर कंडीशंस में भी ये आइडियल स्पोर्ट माना जाता है। भाई इसमें एगिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन और मेंटल फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे खास बात ये कि इसमें गर्ल्स को फिजिकली एक्टिव रहने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अच्छा कतर के अंदर अब मल्टीपल स्पोर्ट्स हॉल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स वुमेन फ्रेंडली स्केड्यूल ऑफर कर रहे हैं। लेडीज ओनली कोचिंग बैचेस का कॉन्सेप्ट स्पेशली पॉपुलर हो रहा है। बहुत सी मदर्स अपनी बेटियों को बैडमिंटन क्लासेस में एनरोल करवा रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्पोर्ट डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों सिखाता है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो रिसेंटली आप देख लें कुछ सालों में देखा गया है वो ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर बैडमिंटन पार्टिसिपेशन भी ग्रो कर रही है। फीमेल स्टूडेंट्स इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक्सपोजर उन्हें लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स भी सिखाता है। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल्स नहीं देता, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बिल्ड करता है। साथियों कतर बैडमिंटन फेडरेशन और लोकल ऑर्गेनाइजर्स भी अवेयरनेस इवेंट्स और टूर्नामेंट्स के जरिए इस स्पोर्ट को प्रमोट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन्स, यूथ टूर्नामेंट्स और फैमिली स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स बैडमिंटन को पब्लिक लेवल पर विजिबल बना रहे हैं और ऑनेस्टली जब विजिबिलिटी बढ़ती है तब इंस्पायरेशन भी बढ़ती है। अच्छा आज की जो मैं कहूँगी कि यंग जनरेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जब एक यंग गर्ल किसी और फीमेल एथलीट को कोर्ट पर कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हुए देखती है ना तो उसके दिमाग में भी एक थॉट तो आता ही है कि भाई मैं भी कर सकती हूँ और वही थॉट एक फ्यूचर एथलीट क्रिएट करता है। देखिए ग्लोबली अगर हम वुमेन बैडमिंटन आइकन की बात करें ना प्लेयर्स जैसे कि पीवी सिंधु ने ये प्रूव किया है कि बैडमिंटन वुमेन के लिए एक हाईली कॉम्पिटिटिव और रिस्पेक्टेड स्पोर्ट है। इन एथलीट्स की अचीवमेंट्स ने एशिया और मिडिल ईस्ट में बैडमिंटन इंटरेस्ट को और बूस्ट दिया है। साथियों कतर में भी अब पेरेंट्स का माइंडसेट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। पहले एकेडमिक्स को ही सब कुछ समझा जाता था, अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन टुगेदर दे कैन गो हैंड इन हैंड।

के लिए लॉन्ग टर्म वेलनेस एक्टिविटी भी बन सकता है। हर प्लेयर प्रोफेशनल एथलीट नहीं बनती, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हर प्लेयर हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर जरूर बनती है। इसीलिए कम्युनिटी बैडमिंटन कल्चर ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, दोहा के अंदर जब अब फैमिली स्पोर्ट्स कल्चर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम देख रहे हैं वीकेंड बैडमिंटन सेशंस होते हैं, मॉल्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और इंडोर एक्टिविटी प्रोग्राम्स फैमिलीज को एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ इनकरेज कर रही हैं। बहुत सी लड़कियां अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ बैडमिंटन स्टार्ट करती हैं और फिर ग्रेजुअली कोचिंग लेवल तक पहुंच जाती हैं। साथियों, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से यंग गर्ल्स में सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होती है, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं। और ऑनेस्टली ये सारी की सारी चीजें लाइफ के हर फील्ड में हेल्प करती ही हैं। कोर्ट पर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, वो क्लासरूम और करियर में भी नजर आता है। साथियों, कतर विजन 2030 का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हेल्दी और एक्टिव सोसाइटी बिल्ड करना भी है। तो भाई, विमेन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इस मिशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुकी है ऑलरेडी। बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेसिबल है, इंक्लूसिव है और सस्टेनेबल है।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: आज अगर हम रियलिस्टिकली देखें ना तो वुमेन बैडमिंटन डेवलपमेंट अभी जर्नी के अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव है. इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, अवेयरनेस ग्रो कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट गर्ल्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. हर एथलीट ओलंपिक मेडल से स्टार्ट नहीं करता साथियों, मैं आपकी बात मानती हूँ. हर चैंपियन एक स्मॉल कोर्ट से स्टार्ट करता है ना, एक सिंपल रैकेट और एक नर्वस फर्स्ट मैच से ही स्टार्ट करता है ना. तो शायद इस वक्त कतर में भी कोई यंग गर्ल बैडमिंटन कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रही हो बिना ये रियलाइज किए कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है. तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक पेरेंट हैं या सिंपली कोई ऐसा इंसान है जो स्पोर्ट को अप्रिशिएट करता है ना, देन सपोर्ट वुमेन इन स्पोर्ट्स, एनकरेज गर्ल्स टू पार्टिसिपेट, सेलिब्रेट एफर्ट्स नॉट जस्ट ट्रॉफीज, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तब टैलेंट खुद सामने आ जाता है. बैडमिंटन हमें एक बहुत सिंपल लेसन देता है साथियों, शटल कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी फास्ट कभी स्लो, बिल्कुल लाइफ की तरह. लेकिन जो प्लेयर फोकस रहता है ना, वो भाई इवेंचुअली पॉइंट जीत ही लेता है. याद रखिए, कोर्ट्स सिर्फ गेम्स नहीं बनाते, कोर्ट्स कॉन्फिडेंस भी बनाते हैं. तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एथलीट की जिसने सिर्फ बैडमिंटन नहीं खेला बल्कि प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, इंजरीज और इम्पॉसिबल सिचुएशंस के अगेंस्ट फाइट की. एक ऐसी प्लेयर जिसकी काम पर्सनालिटी के पीछे स्टील जैसी डिटर्मिनेशन छुपी हुई थी. आज की हमारी स्टोरी ऑफ द वीक है इंडिया की बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु की. साथियों स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, ये हम मानते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, लेकिन सिर्फ टैलेंट किसी एथलीट को लेजेंड नहीं बनाता. देखिए लेजेंड वो बनते हैं जो प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, लॉसेस के बावजूद वापस खड़े होते हैं और इयर्स तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं. और सिंधु की स्टोरी एग्जैक्टली इसी चीज का नाम है. तो भाई टू अंडरस्टैंड पीवी सिंधु हमें हैदराबाद इंडिया जाना होगा. भाई यूं समझ लें कि 5th of July 1995 को पैदा होने वाली एक लड़की एक स्पोर्ट्स फैमिली में ग्रो करती है. उनके फादर पीवी रामाना और मदर पी विजया दोनों नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर्स थे. उनके फादर को इंडिया का प्रेस्टीजियस अर्जुना अवार्ड भी मिला था. घर का एनवायरनमेंट ऑलरेडी स्पोर्ट ओरिएंटेड था, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और फिटनेस उनकी डेली लाइफ का हिस्सा थे. अच्छा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वॉलीबॉल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की जो कि वॉलीबॉल प्लेयर्स की बेटी हो, उसके बावजूद सिंधु ने बैडमिंटन चूज किया. और ये डिसीजन बहुत अनयूजुअल था क्योंकि वॉलीबॉल उनके घर का नेचुरल स्पोर्ट था ना, लेकिन सिंधु को बैडमिंटन कोर्ट्स का स्पीड और इंटेंसिटी अट्रैक्ट करती थी. अच्छा वो बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद से बहुत इंस्पायर्ड थी, स्पेशली जब उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती. उस मोमेंट ने यंग सिंधु के दिमाग में एक ड्रीम क्रिएट कर दिया. लेकिन ड्रीम देखना इजी होता है, उस ड्रीम के लिए रोज सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल होता है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है. भाई सिंधु का ट्रेनिंग रूटीन जो था वो बहुत टफ था. रिपोर्ट के मुताबिक वो सुबह 4 बजे उठती थी ताकि प्रैक्टिस सेशंस के लिए एकेडमी पहुंच सके. हैदराबाद का ट्रैफिक और डिस्टेंस की वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें डेली लॉन्ग ट्रैवल करवाते थे. कभी कभी उनका टोटल डेली कम्यूट 50 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता था. भाई इमेजिन कीजिए, स्कूल गोइंग गर्ल सुबह अंधेरे में उठकर प्रैक्टिस करने जा रही है जब ज्यादातर बच्चे अभी सो रहे होते हैं. ये वही फेज होता है जहाँ मोस्ट पीपल गिव अप कर देते हैं, मोस्ट पीपल जस्ट इट्स टू टफ करके छोड़ देते हैं. लेकिन सिंधु और उनके पेरेंट्स ने कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी बनाया और स्पोर्ट्स में कंसिस्टेंसी ही सब कुछ होती है भाई, सबसे बड़ा सीक्रेट स्पोर्ट्स में यही होता है. अच्छा उनके कोच गोपी चंद का एकेडमी कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था. जंक फूड रिस्ट्रिक्टेड था, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस लिमिटेड थे, फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पर होता था. बहुत से प्लेयर्स मेंटली प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते थे, लेकिन सिंधु ने इस एनवायरनमेंट को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया. अच्छा बैडमिंटन देखने में तो बहुत इजी गेम लगता है, एक शटल कॉक ली, एक रैकेट लिया, नेट लिया और बस. लेकिन प्रोफेशनल बैडमिंटन दुनिया के टफेस्ट स्पोर्ट्स में काउंट होता है भाई. देखिए मैचेस में स्पीड पता है कितनी होती है, 300 किलोमीटर पर आर तक जा सकती है स्पीड. प्लेयर्स को सेकंड के फ्रैक्शंस में डिसीजंस लेने पड़ते हैं. फुटवर्क लाइटनिंग फास्ट होना चाहिए, एंड्योरेंस

एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और सबसे डिफिकल्ट चीज भाई, मेंटल कंपोजर। मैंने खेल कर देखी है भाई ये गेम, जितनी इजी लगती है ना उतनी है नहीं। अच्छा, जूनियर लेवल पर सिंधु ने बहुत इंटेंस कंपटीशन फेस की। एशिया के बैडमिंटन सर्किट्स ऑलरेडी एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव थे। चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कंट्रीज बैडमिंटन पावर हाउसेस थे भाई। हर टूर्नामेंट में टॉप लेवल एथलीट्स मौजूद होती थी। यंग सिंधु को रिपीटेडली स्ट्रॉन्गर और एक्सपीरियंस्ड ऑपोनेंट्स फेस करने पड़ते थे। अच्छा, कई मैचेस में वो हार भी गई, लेकिन हर डिफीट के बाद उन्होंने अपना गेम एनालाइज किया। भाई कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखो। उन्होंने अपना गेम एनालाइज किया, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। ये क्वालिटी उन्हें डिफरेंट बनाती थी। कुछ एथलीट्स लॉस के बाद ना इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं कि भाई अब मैं नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे वाले बैठे हैं। लेकिन सिंधु ना अलग थी। सिंधु ना अपनी लॉसेस को इम्प्रूवमेंट मैनुअल बना लेती थी। अच्छा, एकेडेमिक्स और स्पोर्ट्स बैलेंस करना भी उनके लिए चैलेंजिंग था। स्कूल असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस के को एक साथ मैनेज करना इतना इजी नहीं होता जितना हम लोग आसानी से बोल देते हैं बच्चों को। बहुत सी यंग फीमेल एथलीट्स इसी प्रेशर की वजह से स्पोर्ट्स क्विट कर देती हैं, लेकिन सिंधु का फोकस लॉन्ग टर्म था। अच्छा, फिर आया 2012, यानी कि 2012 के अराउंड बैडमिंटन एक्सपर्ट्स को क्लियर नजर आना शुरू हो गया था कि एक स्पेशल प्लेयर इमर्ज हो रही है। सिंधु ग्रेजुअली इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीतने लगी थी। उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखानी शुरू कर दी थी। और फिर भाई 2013 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो पहली इंडियन विमेन्स सिंगल्स प्लेयर बनी जो इस लेवल पर मेडल तक पहुंची। ये अचीवमेंट ह्यूज थी, ह्यूज, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स बैडमिंटन का वन ऑफ द टफेस्ट स्टेजेस में से एक होता है। लेकिन असली एक्सप्लोजन अभी भी बाकी था, और पता है वो क्या था? 2016 यानी 2016 रियो ओलंपिक्स, वो टूर्नामेंट जिसने पीवी सिंधु को ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन बना दिया। ओलंपिक्स का प्रेशर किसी भी एथलीट के लिए अनइमेजिनेबल होता है। जस्ट इमेजिन, एंटायर नेशन हैज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। तो भाई एंटायर नेशन की एक्सपेक्टेशंस शोल्डर पर होती हैं लोगों के जब लोग ओलंपिक्स खेलते हैं। मीडिया अटेंशन एक्सट्रीम होती है, हर पॉइंट हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। रियो में सिंधु ने फियरलेस बैडमिंटन खेला। राउंड आफ्टर राउंड उन्होंने टॉप प्लेयर्स को चैलेंज किया। क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल परफॉर्मेंसेस ने दुनिया को शॉक कर रख दिया। उनकी स्पीड, एग्रेशन और कोर्ट कवरेज, वो भाई आउटस्टैंडिंग था। अगर आपने नहीं देखा तो एक दफा जाकर देखिएगा जरूर। सेमीफाइनल्स में उन्होंने जापान की स्ट्रॉन्ग प्लेयर को डिफीट किया और ओलंपिक फाइनल रीच कर लिया। उस वक्त वो इंडिया की पहली विमेन बैडमिंटन प्लेयर थी जो ओलंपिक फाइनल तक पहुंची। भाई फाइनल में उनका मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मरीन से हुआ। मैच हाई इंटेंसिटी का था भाई। मरीन एग्रेसिव और एक्सट्रीमली फास्ट प्लेयर मानी जाती हैं। सिंधु ने इनक्रेडिबली अच्छी फाइट दी भाई। हर रिले में डिटर्मिनेशन नजर आ रही थी उनके। वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल हाथ कर लिया। और वो सिल्वर मेडल इंडिया के लिए गोल्ड से कम नहीं था। रियो ओलंपिक्स के बाद इंडिया में बैडमिंटन का क्रेज एक्सप्लोड हो गया। सडनली हर जगह बैडमिंटन एकेडमीज की डिमांड बढ़ने लगी। यंग गर्ल सिंधु को अपना रोल मॉडल के तौर पर देखने लगी। रियो के बाद एक और चैलेंज स्टार्ट हुआ, एक्सपेक्टेशंस। देखिए, स्पोर्ट्स में टॉप तक पहुंचना डिफिकल्ट है, लेकिन टॉप पर रहना वो भाई वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। देखिए अब हुआ क्या इससे, अब हर टूर्नामेंट में हुआ ये कि लोग सिंधु से मेडल एक्सपेक्ट करने लगे थे। हर लॉस हेडलाइन बनने लगा था। साथियों 2017 और 2018 में सिंधु मल्टीपल मेजर फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन कई बार वो सिल्वर मेडल्स पर रुक गई। कुछ क्रिटिक्स ने उन्हें ऑलवेज सेकंड तक कहना शुरू कर दिया। इमेजिन कीजिए, दुनिया का टॉप लेवल एथलीट होना और फिर भी क्रिटिसिज्म फेस करना, ये स्पोर्ट्स का क्रूअल साइड होता है साथियों। अच्छा हाँ, इसी पर सिंधु की मेंटल स्ट्रेंथ नजर आई। उन्होंने नेगेटिविटी को फ्यूल बना दिया भाई। लेकिन 2019 में उन्होंने फाइनली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड मेडल जीत कर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। स्विट्जरलैंड में हुए टूर्नामेंट में उन्होंने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई और फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को स्ट्रेंथ गेम्स में डिफीट कर दिया। इस विक्ट्री के साथ वो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन प्लेयर

0: गई। ये सिर्फ मेडल नहीं था, सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन का रिजल्ट था। थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर्स, एंडलेस ड्रिल्स, अर्ली मॉर्निंग्स, इंजरीज, लॉसेस, क्रिटिसिज्म और फिर कहीं जाकर सक्सेस। ये भी याद रखें कि इलीट एथलीट की लाइफ ग्लैमरस कम और एग्जॉस्टिंग ज्यादा होती है। ट्रैवल स्केड्यूल्स क्रेजी होते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करनी पड़ती हैं, रिकवरी सेशंस कंपलसरी होते हैं, पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती ही पड़ती है, लेकिन फिर भी एथलीट्स परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका पैशन उनके कम्फर्ट से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। साथियों, पीवी सिंधु की स्टोरी सिर्फ बैडमिंटन की स्टोरी नहीं है, ये रेजिलियंस की स्टोरी है, ये सेल्फ बिलीव की स्टोरी है, ये उस यंग गर्ल की स्टोरी है जिसने एक रैकेट उठाया और दुनिया को प्रूव किया कि काम पर्सनालिटी के अंदर भी चैंपियन मेंटालिटी हो सकती है और शायद इसीलिए मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स उन्हें एडमायर करती हैं क्योंकि वो अनरियलिस्टिक सुपर हीरो नहीं, वो रिलेटेबल लगती हैं, हार्ड वर्किंग लगती हैं, रियल लगती हैं। तो साथियों, एफएम 107 कतर के प्लेटफॉर्म से हम आज यही कहना चाहेंगे कि हर यंग एथलीट को समझना चाहिए कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। कोर्ट पर जो मेडल नजर आता है उसके पीछे सालों की अनसीन स्ट्रगल होती है। तो अगर आप भी किसी ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं ना, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो या लाइफ का कोई और गोल हो, देन रिमेंबर सिंधु'स जर्नी। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, कभी कभी आप सेकेंड प्लेस पर भी फिनिश करेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे ना तो इवेंचुअली दुनिया आपका नाम याद रखेगी। रोज थोड़ा बेटर होना ही इवेंचुअली ग्रेटनेस बनता है। तो साथियों, कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग और याद रखिए, चैंपियंस सिर्फ मेडल से नहीं, माइंडसेट से पहचाने जाते हैं। तो भाई, एफएम 107 कतर के लिसनर्स, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इंस्पिरेशन यहाँ नहीं रुकती। तो साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें जरूर फॉलो करें @FM107 कतर ऑन आर सोशल मीडिया और चाहें तो हमें फीडबैक्स भी भेज सकते हैं ऑन आर नंबर 666221 07 पर। याद रखिए, हर चैंपियन की जर्नी एक छोटी सी बिगिनिंग से स्टार्ट होती है, लेकिन डिफरेंस उस कंसिस्टेंसी से आता है जो हर दिन आपको बेहतर बनाती है। मुझे यानी सफा को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक,
3: टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30 यानी इट्स टाइम फॉर।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: हाँ जी वेलकम है, आप सभी का इस्तकबाल है और FM 107 मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। And yes, जनाब, भाई देखो ब्रांड न्यू डे और ब्रांड न्यू एपिसोड एस्केप रूम का। आप सब तैयार हैं? आज का चैलेंज बड़ा कमाल का है, मतलब जिन्हें थोड़ा सा एडवेंचर पसंद है उनके लिए एकदम ऑसम है, लेकिन जिन्हें लगता है कि थोड़ा सा सूदिंग लाइफ पसंद है मुझे लगता है उनके लिए स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाएगा। यस, क्योंकि आज हम वहाँ हैं, आज हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ एक गलत कदम हुआ और किस्सा खत्म हुआ। तो भाई बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने माइंड को एकदम फोकस्ड रखें, क्योंकि आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी ही कमाल की है। हम एक एडवेंचरस ट्रिप में जाने वाले हैं और मिलने वाले हैं बहुत सारे मगरमच्छ से, यानी कि क्रोकोडाइल से। सो बी प्रिपेयर। पहले आप अगर प्रिपेयर हैं और अभी एस्केप रूम में जुड़ गए मेरे साथ तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ना 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ कि यस वी आर रेडी फॉर द चैलेंज। और बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी जहाँ पर आज की सिचुएशन आपके सामने आएगी। फिलहाल सूदिंग सॉन्ग।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज।

0: जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
0: यस जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज का एस्केप रूम बड़ा कमाल का है। आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है और जिन्हें भी एडवेंचर पे जाना पसंद है, ऐसी जर्नीज करना पसंद है, उनके लिए आज की सिचुएशन परफेक्ट है। तो चलिए, आज की सिचुएशन ये रही। तसव्वुर कीजिए कि आप एक पुराने से लकड़ी के पुल पर चल रहे हैं क्योंकि आप गए हुए एक खूबसूरत जंगल की सैर करने और आपने कहा चलो आज इस हरियाली के बीच कुछ अच्छे सोशल मीडिया के लिए पिक्चर्स वगैरह ले लिए जाएं, कुछ यादें बना ली जाएं। एंड सडनली वो जो पुराना लकड़ी का पुल है उसमें से कट कट कट करके आवाज़ आना शुरू हुई। आप थोड़ा घबराए और आपने देखा कि वो पुल एकदम से टूटा और आप सीधा जाकर गिरे कीचड़ भरे आइलैंड पर, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। उफ, दिल की धड़कनें बड़ी तेज हैं आपकी, चारों तरफ पानी ही पानी, लहरें ही लहरें और उसमें एक दर्जन से भी ज्यादा क्या क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ। यस, ये मगरमच्छ आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आपको देख लिया है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। उफ, अब जनाब यहाँ जज्बात नहीं सिर्फ दिमाग काम आएगा और सही जवाब जो भी आपसे सवाल पूछे जाए तभी आप इस दलदली आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप को थोड़ा संभाला, थोड़ा सा गैदर किया कि चलो अब लेट्स टेक द चैलेंज। सो आइलैंड के बीच में एक घोंसला है, आपको दिखाई दिया, आप चल के वहाँ गए। वहाँ एक पुराना कागज पड़ा है, आपने उठाया और वहाँ पर आपका पहला रास्ता लिखा है। यस, ये क्लू नंबर वन है, अब इसे ध्यान से सुनिए। आपको बताना है एक पत्थर जैसा मेरा रूप पर मुझ में है जिंदगी का नूर। मतलब ये जो चीज है ये पत्थर जैसी दिखती है लेकिन इसके अंदर जिंदगी का नूर है। मैं हूं एक गोल्डन ट्रेजर बिना किसी दरवाजे के, सारे क्रोकोडाइल्स या सारे मगरमच्छ मुझसे ही निकलते हैं, गेस कीजिए मैं क्या हूं। सोचिए सोचिए, ये क्रोकोडाइल्स ये सारे मगरमच्छ कहाँ से आते हैं इस दुनिया में। इससे ज्यादा आसान पहला क्लू कोई नहीं हो सकता। कम ऑन, आई एम गोना रिपीट इट। अब आप ध्यान से सुने एक बार फिर से। एक पत्थर जैसा मेरा रूप पर मुझ में है जिंदगी का नूर, मैं हूं एक गोल्डन ट्रेजर बिना किसी दरवाजे का। ये कैसा गोल्डन ट्रेजर है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, सारे क्रोकोडाइल्स सारे मगरमच्छ मुझसे ही निकलते हैं। अब गैस कीजिए ये चीज क्या है। जनाब, पानी की जो लहरें हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अभी मगरमच्छ आराम आराम से आपके नज़दीक आ रहे हैं लेकिन अगर आपने सवालों के जवाब जल्दी जल्दी नहीं दिए तो फिर ये आप तक पहुंच जाएंगे। यस, धीरे धीरे धीरे ये मगरमच्छ पानी से तैरते हुए आपके नज़दीक आ रहे हैं और अपनी आवाज़ें भी निकाल रहे हैं। दैट्स रियली स्कैरी। ओके, सो पहले क्लू का जवाब दीजिए अपने नाम के साथ 6622107 पर, 6622107 पर। और अभी थोड़ा सा रिलैक्स करना है क्योंकि म्यूजिक आपको एनर्जी देगा। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107।

हैं, मतलब गए थे जंगल देखने के लिए, एक लकड़ी के पुल पर, पुराने लकड़ी के पुल पर चल के जा रहे थे, पिक्चर्स वीडियो बना रहे थे, एंड सडनली वो पुल टूटा और आप एक दलदली आइलैंड में जाकर गिर गए। जब आप वहां गिरे तो आपने इमेजिन नहीं किया था कि आपके सामने कौन सी चीज आ जाएगी, दैट इज चारों तरफ पानी और उसमें एक दर्जन से भी ज्यादा भूखे मगरमच्छ। हाँ भाई, अपनी डरावनी आवाज से आपको डरा रहे हैं और आपको लग रहा है अब यहाँ से निकलना है। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा संभाला और उस दलदली आइलैंड में थोड़ा खड़े हुए, मिट्टी है, कीचड़ है, मतलब टू मच, आपको लग रहा है अब करें क्या। थोड़ा सा दूर गए तो आपको एक घोंसला दिखाई दिया, घोंसले के अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिसमें क्लू नंबर 1 लिखा था, और क्लू नंबर 1 ये था कि एक पत्थर जैसा मेरा रूप पर मुझमें है जिंदगी का नूर, मैं हूँ एक गोल्डन ट्रेजर बिना किसी दरवाजे के, सारे क्रोकोडाइल्स, सारे मगरमच्छ मुझसे ही निकलते हैं, गैस करें मैं क्या हूँ। और आपने गैस करने की कोशिश की, हमें मैसेजेस आए हैं, एग, अंडा, मगरमच्छ का अंडा। हाँ, मुझे कहना पड़ेगा कि आप सब ने जो ये लिखा है ना, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, सही सही सही जवाब, एग, अंडा, मगरमच्छ का अंडा इज एब्सोल्युटली सही जवाब। और आइए देखें जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिए हैं, वो है अली, उसके बाद है सबा, उसके बाद है मोहम्मद यूसुफ खान, उसके बाद है कौन कौन है भाई, कौन कौन जुड़ते जा रहा है हमारे साथ, आरिफ, आरिफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मोहम्मद आरिफ का सही जवाब, फातिमा यूसुफ खान का सही जवाब, हुसैन का सही जवाब, अरशद का सही जवाब, और ये है मोहम्मद मुशीर आलम, इनका भी सही जवाब। सो कंग्रेचुलेशंस, आप सब ने पहला पड़ाव पार कर लिया। देखो इतना काफ़ी नहीं है, पहला क्लू जब आप सॉल्व करते हैं सो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ताकि आप आगे बढ़ सकें। अब क्रोकोडाइल्स के बच्चे अंडे से ही निकलते हैं, लेकिन आइलैंड जो है अब वो छोटा होता जा रहा है और आपको पानी को पार करना है। ओहो, ये नया चैलेंज हमारे सामने आ गया। चलें, लेकिन पार करने से पहले आपको दूसरा क्लू सुलझाना पड़ेगा। चलिए, दूसरा क्लू आपके लिए ये है, मैं पानी पर तैरता हूँ, ठीक है, मगर मछली नहीं हूँ। ध्यान से सुनिए और इमेजिन कीजिए, जब आप ऐसी जगह पर हैं, आइलैंड में हैं, जहाँ पूरी जगह पर पेड़ पौधे पानी ये सब कुछ मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये क्लू क्या हो सकता है, मैं पानी पर तैरता हूँ मगर मछली नहीं हूँ, मैं लकड़ी का बना हूँ पर मेरे ना हाथ है ना पाँव, मुझ पर कदम रखिए और अपनी सलामती सेफ्टी तक पहुँचिए। क्या हो सकता है ये, कम ऑन गाइस, थिंक फॉर द राइट आंसर, जवाब दीजिए मुझे 666-22107 पर अपने नाम के साथ, बताइए कौन सी चीज़ हो सकती है, मैं पानी पर तैरता हूँ, ये चीज़ पानी में तैर सकती है और ये लकड़ी, सॉरी ये मछली नहीं है और ये लकड़ी का बना है, ठीक है, पर इसका कोई हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, और इस पर आप कदम रखेंगे तो आपकी सलामती हो जाएगी। जस्ट गिव मी द आंसर 666-22107, 666-22107 पर अपने नाम के साथ। लेट्स सी आप में से कितने लोग ये सेकंड लेवल को पार कर पाते हैं। फिलहाल ये बेहतरीन सा गाना आपके लिए, इंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Time Check।
3: एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02, यानी वो ये वक्त है जब आपको तय करना है कि क्या आज आप एस्केप रूम के ये खतरनाक मगरमच्छ से बच के निकल पाएंगे या नहीं।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: So yes, my desi audience, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A for Amita और आज आप एक बड़े ही adventurous सफर में निकले भाई। बड़ी खूबसूरती से आप जंगल की सैर करने गए, लेकिन आप सैर कर रहे थे वो भी एक पुराने लकड़ी के पुल पर चल के। अब वो जो पुल है वो टूटा, आप सीधा जाके पहुँचे एक दलदली आइलैंड में जहाँ पर चारों तरफ पानी, कुछ पेड़ पौधे और इस तरह का माहौल है।

आइलैंड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि एक दर्जन से भी ज्यादा भूखे क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ आपकी तरफ चले आ रहे हैं। भाई देखो, यहाँ से निकलना है, सही जवाब देने पड़ेंगे सवालों के। पहला आपसे सवाल पूछा गया, क्लू नंबर वन, उसका सही जवाब था एग यानी अंडा। दूसरा आपसे सवाल पूछा गया कि मैं पानी पर तैरता हूँ मगर मछली नहीं हूँ, ठीक है। मैं लकड़ी का बना हूँ पर मेरे ना हाथ है ना पाँव। मुझ पर कदम रखिए और अपनी सलामती तक पहुँचिए। ये चीज़ पानी में तैर रही है। अब आपको इस वक्त का सही इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं हमें क्या क्या जवाब मिले हैं। हमें लिसनर्स ने लिखा है लॉग, लकड़ी का जो लट्ठा होता है ना लॉग, वो लिखा है। कुछ ने लिखा है वुडन ब्रिज, कुछ ने लिखा है वुडन बोट। ज़्यादातर लोगों ने बोट ही लिखा है, ठीक है, छोटी सी बोट, छोटी सी कश्ती। ओके, ये हमें जवाब मिलते जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं सही जवाब क्या है। सो अगर आपने लॉग, लकड़ी का लट्ठा भी लिखा है, एक बड़ा सा वुड भी लिखा है, तो भी सही है। और अगर आपने लिखा है छोटी सी बोट है, वुड की लकड़ी की नाव है, कश्ती है, तो भी सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए भाई आप सभी के लिए, क्या बात है। तो सही जवाब जिन्होंने दिए हैं, जल्दी जल्दी उनके जवाब आप तक, उनके नाम आप तक पहुंचाते हैं। सो अली है, जारा है, आरिफ है, मोहम्मद यूसुफ खान है, मोहम्मद मुशीर आलम है, और कौन है हमारे साथ, मुकुप ने भी सही जवाब दिया है, फातिमा यूसुफ ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद खलफान ने भी सही जवाब दिया है, क्या बात है, सैफुर ने भी सही जवाब दिया है, रमेश ने भी सही जवाब दिया है, और इनका नाम है मतीउल्ला, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। सो आप सभी ने ये सेकेंड लेवल भी पार कर लिया है, वेल डन। अब आगे क्या होगा, चलिए, आपने जैसे ही सही जवाब दिया, आप उस लकड़ी की छोटी सी नाव, या यूं कहें छोटा सा, मतलब सिचुएशन आपकी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये दोनों आपको आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक छोटी सी नाव आपको मिलेगी या तो लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। जैसा जवाब मिला है, जैसा जवाब दिया है ना, वैसा आपको आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक छोटी सी लकड़ी की नाव में आप सवार हो गए, आपने छलांग लगाई और ये नाव धीरे धीरे धीरे चल रही है और आपको मगरमच्छ से दूर लेके जा रही है। जितने भी मगरमच्छ आपको देख रहे हैं, बस वो देख ही रहे हैं, आप तक नज़दीक, आपके नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं। अब इस नाव में बैठ के आप किनारे तक पहुँच गए, ठीक है, लेकिन ये किनारा भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इस किनारे की जो ज़मीन है ना, वो धोखेबाज है, और ये धोखा आपको तब देना बंद करेगी जब आप सही जवाब दे पाएंगे। और सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगी कि ये जो किनारे की ज़मीन, ये जो धोखेबाज है ना, यही आपका जवाब होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुने, ना मैं पूरी तरह सॉलिड हूँ ना ही लिक्विड, आप जितने मुझसे जद्दोजहद करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उतना ही मैं आपको गहराई में खींच लूंगी। मेरा नाम अंग्रेजी में एम से शुरू होता है, अब बताइए मैं क्या हूं। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सही जवाब का फासला है जनाब, जल्दी से सही जवाब दीजिए। आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि हमारे लिसनर्स अब सही जवाब देने की कोशिश में लग गए हैं। हर कोई अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, और नॉन स्टॉप हमें सही जवाब मिलते जा रहे हैं, लेकिन आपका सही जवाब सही होना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी कि ना मैं पूरी तरह सॉलिड हूं ना ही लिक्विड, आप जितनी मुझसे जद्दोजहद करेंगे, स्ट्रगल करेंगे ना जितना मेरे साथ, उतना ही मैं आपको गहराई में खींच लूंगी। मेरा नाम अंग्रेजी में एम से शुरू होता है। Come on guys, give me the right answer. 666-22-107, 666-22-107 पर आप अपना सही जवाब दे सकते हैं अपने नाम के साथ। I'm waiting for your right answer. फिलहाल म्यूजिक का टाइम, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सोचिए और सही जवाब हम तक पहुंचाइए, ठीक है। एस्केप रूम सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी परमिता। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, एफ एम 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी

0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज के एस्केप रूम की सिचुएशन भाई बड़ी कमाल की है, मतलब एक एडवेंचरस ट्रिप में हम गए और वो हमारे लिए ही एक खौफनाक ट्रिप में बदल गई। तो हम कहाँ जाके गिरे, गए थे जंगल देखने, लेकिन हम जिस लकड़ी के पुल पर, पुराने लकड़ी के पुल पर चल के जा रहे थे, वो टूटा और हम सीधा जाके गिरे एक ऐसे आइलैंड में जहाँ पर पानी है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, एंड जो पानी है ना वहाँ पर एक दर्जन से भी ज़्यादा मगरमच्छ है। अब उनके लिए हम बड़ा ही लजीज खाना है और वो हमें देखकर धीरे धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे थे। अब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सवालों के सही जवाब दें, और जो हमने किए भी, हमने दो लेवल्स को सॉल्व किया। पहले क्लू का सही जवाब था एग, दूसरे क्लू का सही जवाब लॉग, लकड़ी का लट्ठा, बोट, ये सब बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब तीसरा क्लू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आकर सबकी गाड़ी रुक गई है, आई कैन सी कि कुछ लोगों ने सही जवाब दे दिए हैं, कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि जवाब क्या हो सकता है। फॉर देम आई एम गोना रिपीट दिस फाइनल क्लू, आपको ध्यान से सुनना है तभी आप इस खतरनाक खौफनाक आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुने,

ना मैं पूरी तरह सॉलिड हूँ ना ही लिक्विड, ओके ना मैं पूरी तरह सॉलिड हूँ ना ही मैं लिक्विड हूँ, और आप जितनी मुझसे जद्दोजहद करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उतना ही मैं आपको गहराई में खींच लूंगी। मेरा नाम अंग्रेजी में एम से शुरू होता है, मैं क्या हो सकती हूँ? गाइस कम ऑन, जिंदगी और मौत के बीच का ये आखिरी जवाब है जो आपको सही देना है, और बस सही जवाब जैसे ही आपने दिया सब कुछ बदल जाएगा। ये खतरनाक खौफनाक जो मगरमच्छ हैं ये घुर्राते घुर्राते पीछे चले जाएंगे। हाँ अभी भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन आपको इन्होंने पकड़ा नहीं है, तो जल्दी निकलना है हमको यहाँ से, ठीक है? ये लास्ट टाइम मैं दोहराने वाली और उसके बाद सीधा हम सही जवाब की तरफ जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गौर फरमाइए, क्लू नंबर 3, ना मैं पूरी तरह सॉलिड हूँ ना ही लिक्विड, आप जितनी मुझसे जद्दोजहद करेंगे उतना ही मैं आपको गहराई में खींच लूंगा या खींच लूंगी। आप सोचे मतलब ये कौन सी चीज हो सकती है जिससे आप जद्दोजहद करेंगे तो आप सीधा यू नो गहराई में चले जाएंगे, और ये अंग्रेजी में एम से होती है, क्या ये चीज? थिंक। अपना नाम और सही जवाब हमें लिख के भेजे 6622107 पर 6622107। और अभी चाय, करक, कॉफी, जूस जो भी लेना है उसे लीजिए, माइंड रिफ्रेश कीजिए और ये बेहतरीन सा गाना इंजॉय कीजिए, और फिर आपकी मेरी मुलाकात होगी आफ्टर द सॉन्ग। तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है भाई। देखो यहाँ पर आज हम एक ऐसे मरी आइलैंड में जाकर गिर गए जहाँ पर हमको मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है, चारों तरफ जो पानी है, उसमें खतरनाक एक दर्जन से भी ज़्यादा क्रोकोडाइल्स हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ के आ रहे थे। हमें यहाँ से निकलना था और निकलने के लिए ऑप्शंस हमें 3 क्लूज सॉल्व करने थे। पहले क्लू का सही जवाब था एग, दूसरे क्लू का सही जवाब लॉग या लकड़ी की बोट, और हमने ये दोनों ही लेवल्स को पार किया। तीसरा क्लू आपके लिए आया था, ना मैं पूरी तरह सॉलिड हूँ ना ही लिक्विड, आप जितनी मुझसे जद्दोजहद करेंगे उतना ही मैं आपको गहराई में खींच लूंगा। अब मेरा नाम अंग्रेजी में M से शुरू होता है, मैं क्या हूँ? ओके, और हमारे लिसनर्स ने अलग अलग जवाब देने की कोशिश की। कुछ ने लिखा है मार्श, कुछ ने लिखा है मड, कुछ ने लिखा है दलदल, कुछ ने लिखा है कीचड़, कुछ ने लिखा है भंवर। ओके, चलिए अब सीधा सही जवाब की तरफ चलते हैं। अगर आपने लिखा है भंवर, मार्श, क्विकसैंड, तो ये जो है आप नज़दीक पहुंचे थे, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब है मड, कीचड़ या फिर दलदल। वाह क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस उन सारे हमारे लिसनर्स को जिन्होंने सही जवाब दिया। मैं कहूंगी जल्दी से अपनी पीठ को थपथपा लीजिए, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। और जैसे ही आपने ये सही जवाब दिया, आप इस खतरनाक से आइलैंड से बाहर निकल आए। वाह, और ऐसा आपको लगा कि जैसे ये कोई एक खौफनाक सपना था जहां से आप बाहर निकले। आइए जल्दी से उनके नाम देख लें हमारे लिसनर्स के जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए हमको। तो मोहम्मद यूसुफ खान है, रमेश है, मुकुल है, आरिफ है, फातिमा यूसुफ है, और उसके बाद कौन है हमारे साथ, ये है अकबर अली, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दे दिया, कमाल कर दिया, वाह मज़ा आ गया। ये है शेख यासर, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, सोहेल ने सही जवाब दिया, मुवीन अहमद ने भी सही जवाब दे दिया, और कौन है भाई हमारे साथ, एक शख्स और है, यस फातिमा यूसुफ ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसी के साथ आज के जो लकी विनर हैं उनके नाम की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि हमें कोई एक शख्स ढूंढना है जिन्होंने सारे ही सवालों के सही जवाब दिए और जल्दी जल्दी सही जवाब दिए। तो उनका नाम है फातिमा यूसुफ, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, मुबारका मुबारका। सही जवाब देकर आज आप एस्केप रूम की लकी विनर बन चुकी हैं फातिमा, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, क्या बात है क्या बात है। सच में एस्केप रूम में बड़ा मज़ा आता है, और हमारी ये जो एक रेडियो की फैमिली बन जाती है ना, जब हम साथ में मिलकर हर एक पहेली को सुलझाते हैं, वाह बात ही कुछ और होती है। तो जनाब हमारे सारे लिसनर्स जो नॉनस्टॉप हमारे साथ बने रहे, सही गलत जवाब से कोई मतलब नहीं है, जवाब मिलना ज़रूरी और आपका साथ मिलना ज़रूरी है, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, है कि नहीं। और अब इसी के साथ वक्त है मुझे अब जाना होगा इजाज़त लेने का, तो आपकी मेरी मुलाकात अब कल होने वाली है 1:30 बजे, सो डोंट मिस इट। आप सीधा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 से जुड़ सकते हैं, और RJ अमिता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। और कल क्या हो सकता है, देखिए आज तो आप मगरमच्छ के बीच फंस गए, अब कल हो सकता है एक हाउस ऑफ फायर में आप चले जाएं। हाँ, ऐसी जगह जहां पर दीवारें तप रही हैं और सांस लेना मुश्किल है। लेट्स सी कि आप कैसे इस जगह से एग्जिट ढूंढ पाएंगे। बट फिलहाल मेरा एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है, तो मुझे दे दीजिए इजाजत, हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

Assalamualaikum साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और स्लाइटली माइंड चेंजिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो पहले थोड़ा अनयूजुअल लगता था, लेकिन आज दुनिया भर में एक स्मार्ट लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुका है, यानी के सेकेंड हैंड शॉपिंग। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। जरा सोचिए, क्या सोचे। हाँ, सोचिए आपको एक पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए या घर के लिए आपको कोई फर्नीचर आइटम चाहिए। हाँ, फर्नीचर आइटम आपको कुछ चाहिए। आप डायरेक्ट मॉल या ऑनलाइन स्टोर चेक करते हैं और सब कुछ शाइनी, ब्रांड न्यू और एक्सपेंसिव लग रहा होता है। फिर आप ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक या दो दफा का तो यूज होगा, इतना स्पेंड क्यों करूं। और यहां से सेकेंड हैंड शॉपिंग का आइडिया इंटरेस्टिंगली जन्म लेता है। अच्छा, सेकेंड हैंड शॉपिंग का मतलब है पहले से यूज की हुई चीजों को दोबारा यूज करना। ये सिर्फ ओल्ड या यूज चीज लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाने का स्मार्ट तरीका है। कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कई आइटम्स जो के सेकेंड लाइफ में परफेक्टली रीयूजेबल हो सकते हैं। अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में? भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है। नई चीज लेने से पहले सेकेंड हैंड ऑप्शन कंसिडर करें, मतलब सस्टेनेबिलिटी और सेविंग दोनों एक साथ प्रायोरिटाइज करना। अब बात करते हैं कि भाई सेकेंड हैंड शॉपिंग से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा तो होता है वेस्ट रिडक्शन। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे रीयूज करने से प्रोडक्शन प्रेशर कम होता है। दूसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। सेकेंड हैंड आइटम्स अक्सर सिग्निफिकेंटली सस्ती होती हैं, लेकिन क्वालिटी अब भी उनकी अच्छी ही होती है। तीसरा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कम प्रोडक्शन का मतलब है कम रॉ मटेरियल यूज और कम पोल्यूशन। चौथा फायदा है यूनिक फाइंड्स। अच्छा, ये बड़ा मजे का फायदा है, आपको ऐसे आइटम्स मिल सकते हैं जो रेगुलर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते या जो कि लिमिटेड एडिशंस होते हैं ना, लिमिटेड एडिशंस वाली चीजें भी आपको ऐसे ही मिल सकती हैं। अच्छा, अगर आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल दूं ना, तो जरा सोचिए आप एक बुक शेल्फ ढूंढ रहे हैं। बुक शेल्फ नया वाला, मुझे पता है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव आता है। नया बुक शेल्फ मार्केट में एक्सपेंसिव भी है और स्टैंडर्ड डिजाइन का भी है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में आपको सॉलिड वुड का बुक शेल्फ मिल सकता है जो पहले किसी ने यूज किया हो, लेकिन वो अभी भी अपनी परफेक्ट

0: कंडीशन में हो, और अक्सर क्वालिटी वाइज वो न्यू से भी ज्यादा बेटर लगता है भाई। होता है ये कभी कभी। लेकिन दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में सेकेंड हैंड शॉपिंग का ट्रेंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हो गई, कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए, और रीसेल प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोग अब यूज्ड आइटम्स को भी वैल्यू देने लगे हैं। कुछ लोग तो प्री लव्ड आइटम्स जो होते हैं उनको भी सेल आउट करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अगर मैं आपको दूं ना, जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। देखिए, टिप नंबर वन है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स यूज करें। सेकेंड हैंड शॉपिंग के लिए रिलायबल एप्स और स्टोर्स चूज करें। सेकेंड टिप है क्वालिटी चेक जरूरी है। किसी भी आइटम को लेने से पहले उसकी कंडीशन को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट कर लें। तीसरी टिप है प्राइस कंपेयर करें। कभी कभी सेकेंड हैंड और न्यू प्राइस में डिफरेंस चेक करना यूजफुल होता है, ये चीज दिमाग में रखें। चौथी टिप है क्लीन और रीस्टोर करें। सेकेंड हैंड आइटम्स को थोड़ा क्लीन या रीस्टोर करके नया लुक दिया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन माइंडसेट रखें। हर यूज्ड आइटम ओल्ड नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में होती हैं। अच्छा, इसका अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव आपको बताऊं तो दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ग्रो हो रहा है, जहां प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम लाइफ साइकिल तक यूज किया जा सकता है। सेकेंड हैंड शॉपिंग इस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां चीजें वेस्ट होने की बजाय सर्कुलेट होती रहती हैं। अच्छा, एक रिलेटेबल बात यह है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि नया लेना ही बेटर होता है, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें ना, तो अगर एक चीज परफेक्टली फंक्शनल कंडीशन में है तो उसे रीयूज करना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होता है। अब थोड़ा सा अगर बिहेवियरल चेंज एंगल की तरफ देखें, तो जब आप सेकेंड हैंड शॉपिंग अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को ज्यादा माइंडफुल बना लेते हैं। आप सिर्फ बायर नहीं रहते बल्कि कॉन्शियस डिसीजन मेकर बन जाते हैं। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है। नई चीज लेने से पहले सेकेंड हैंड ऑप्शंस जरूर कंसिडर करें। आज का चैलेंज ये है कि आज किसी एक आइटम के लिए जो आप प्लान कर रहे थे नेक्स्ट खरीदने का, उसका सेकेंड हैंड अल्टरनेटिव चेक करें। और अगर आप ऑलरेडी सेकेंड हैंड शॉपिंग कर रहे हैं तो किसी और को भी इस सस्टेनेबल हैबिट के लिए मोटिवेट करें। साथियों, हर नई चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन हर रीयूज की हुई चीज एक स्मार्ट डिसीजन होती है। जब हम सेकेंड हैंड शॉपिंग अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ पैसा नहीं बचाते बल्कि अपनी जमीन को भी एक नई लाइफ देते हैं। इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे कुरान पढ़ने की अहमियत के बारे में। कुरान पाक अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। इसमें जिंदगी के हर पहलू के लिए हिदायत मौजूद है। जब हम कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा दिल रोशन होता है और हमें अंदर से सुकून मिलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन असल में सिर्फ कुछ मिनट भी काफी होते हैं अगर हम रेगुलर हो जाएं। कुरान के लफ्ज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और जिंदगी में अप्लाई करने के लिए है। रोजाना थोड़ा सा कुरान पढ़ने से सिर्फ सवाब नहीं मिलता बल्कि इंसान की सोच और रवैया भी बेहतर होता रहता है। आज का अमल ये है कि दिन में कम से कम 5 मिनट कुरान की तिलावत जरूर करें और कोशिश करें कि उस पर गौर भी करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया।
3: One step to 2030.
4: आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बिल्डिंग टुमारो। यस, कल की सोच और तैयारी आज से। जी हाँ, कल का सोचना और उसे बेहतर बनाने की जो बात है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और शायद इसी बात को इसको बिल्डिंग टुमारो कहा जाता है। ये नई टर्म यूज की जाती है। इसका मतलब है कि सिर्फ हमें जो है वो बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बनाना है बल्कि एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करना है जहां लोग खुश हों, सेफ हों और सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकें। ये एक जर्नी नहीं है, ये एक डेस्टिनेशन है। आज के डिसीजंस कल की दुनिया को शेप करते हैं। आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इनोवेशन के जरिए अपना मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं। हर नया आइडिया और नई सोच एक नई ईंट की तरह है जो बिल्डिंग को मजबूत बनाती है। अगर हम आज एनवायरमेंट का ख्याल रखेंगे, रिसोर्सेज वाइजली यूज करेंगे और नॉलेज हासिल करेंगे तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बेहतर वर्ल्ड छोड़ सकते हैं। बिल्डिंग टुमारो का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एजुकेशन। जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो अपनी, सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बेहतर करते हैं और शायद सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करते हैं। एक एजुकेटेड इंसान नए आइडियाज लाता है, प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढता है और सोसाइटी को आगे लेकर जाता है। इस तरह टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज हम स्मार्ट सिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं या बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं है, हमें अपने कल्चर और वैल्यूज को

0: भी प्रिजर्व करना होता है। बिल्डिंग टुमारो का मतलब ये है कि हम अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए मॉडर्न दुनिया के साथ चलें। अगर हम बैलेंस क्रिएट कर लें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच, तो हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल सोसाइटी बना सकते हैं। जी, एनवायरमेंट का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम आज पोल्यूशन को इग्नोर करेंगे और रिसोर्सेस वेस्ट करेंगे, तो कल हमारी दुनिया या नई जनरेशन जो है वो मुश्किल में आ सकती है। इसीलिए हमें क्लीन एनर्जी, रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना ही है। छोटी छोटी हैबिट्स जैसे पानी बचाना, प्लास्टिक इस्तेमाल कम करना, यकीन मानिए फ्यूचर को सिक्योर बनाती है। आखिर में मुझे कहने में ये शर्म नहीं है कि बिल्डिंग टुमारो इज नॉट अबाउट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अबाउट बिल्डिंग बिहेवियर। जी हाँ, बिल्डिंग टुमारो सिर्फ गवर्नमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस का काम भी नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। जब हर इंसान अपना रोल समझ और पॉजिटिविटी के साथ पूरा करता है, तभी शायद एक स्ट्रॉन्ग और ब्राइट फ्यूचर बिल्ट हो सकता है। ये सफर आज से शुरू होता है, क्योंकि जो कल हम देखना चाहते हैं ना, उसकी बुनियाद आज ही हमें रखनी होगी। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से हम इस बात की शुरुआत करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। फिलहाल मेरी जिम्मेदारी, मेरा मतलब मेरा वक्त हो गया है कि मैं आपसे इजाजत ले लूं। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? Generation Talk, दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज मेरे साथ फिर से ये मुझे मौका मिला है कि दो जनरेशन आमने सामने हैं। आज सवालात भी होंगे, सच के सिवा कुछ नहीं सुना जाएगा। आज मदर डॉटर की जो जोड़ी है ये सबसे कॉम्प्लेक्स जोड़ी हो जाती है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो मैं माइक पे निकलवा लेता हूँ जो घर पे नहीं होती है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कुछ ऐसा ही हो। सो वी हैव अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
3: अस्सलाम वालेकुम
2: जी, आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम सोना है, सोना शंकर।
2: ओके, आपके नाम से लोग वाकिफ हो चुके हैं, फिर भी बता दो तुम्हारा नाम क्या है।
4: मेरा नाम सिंचल।
2: ओके, तो सिंचल तुमसे शुरू करूंगा, ठीक है
4: जी।
2: ये जो तुम्हारी जनरेशन है, तुम्हें उसकी कौन सी बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है? तुम्हें लगता है ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, बिकॉज़ यू सी पीपल अराउंड सो लाइक
4: मतलब यंगर जनरेशन ज्यादा लाइक थोड़ा मतलब डोंट स्पीक दैट ओपनली विद पीपल।
2: ओके,
4: और लाइक कुछ लोग होते हैं जो बहुत ओपनली बात करते हैं, पर लाइक जितना मैंने देखा है कि लाइक एल्डर्स यूजुअली हैव दिस गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो वो सब रिश्तेदारों के साथ जाके बात करते हैं। और लाइक हम लाइक जब

0: अभी भी छोटे बच्चे कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, जैसे निक छुप जाते हैं बच्चे.
1: तो जितने तुम्हारे रिलेटिव्स होते हैं, तुम्हारा ऐसा होता है कि कैसे बात करूं यार, मतलब अभी क्या बोलूं?
0: क्योंकि लाइक सब लाइक दादा दादी नानी और सब लोग होते हैं वहाँ पे, तो लाइक बड़े लोग उनके साथ ही लाइक बड़े हुए हैं, तो लाइक वो बात कर लेते हैं. पर हमारे और उनमें लाइक अराउंड 50 साल का डिफरेंस तो हो गए, तो बात करना उतना
2: जो हमारे टाइम पे हुआ करता था, स्क्रीन नहीं हुआ करता था. एक दो टीवी सीरियल आती थी, वो भी साथ में बैठ के देखा करते थे. तो अभी क्या है ना कि जब हम किसी के साथ जाके बैठते हैं, ट्रैवलिंग हो या आपस में रिश्तेदार फैमिली या फ्रेंड हो, तो वी ओपन अप. तो वो स्क्रीन हमारे जहन में नहीं है जो अभी बच्चों के जहन में है. आपको क्या देखना अच्छा पसंद लगता है टीवी में?
1: तो अपना ऑटोमेटिकली बातें निकल जाती
2: है. पर बच्चों को नहीं आता है, बच्चे सोचने लगते हैं कि क्या बात करें.
1: और क्या क्या इनकी अच्छी आदत है इस जनरेशन की?
2: इस जनरेशन की अच्छी आदत है कि उनको कम उम्र में काफी ज्यादा एक्सप्लोरिंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है. हर एक चीज में देयर आईक्यू लेवल इज मोर, दे आर गेटिंग मोर एक्सपोज टू लॉट ऑफ वर्ल्ड अराउंड देम, जनरल नॉलेज, ट्रैवल, देन दे गेट टू रीड बुक्स लाइक किंडल जैसा ऐप है. जो हम लोग लाइब्रेरी जाया करते थे, बुक सुन के पढ़ा करते थे, पर अभी तो
1: खत्म हो गया
2: जी, अभी तो सब कुछ फिंगर टिप्स पे. इफ दे यूज सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इन अ गुड वे टू डेवलप देयर पर्सनालिटी, देन इट्स रियली गुड फॉर देम, दे शुड गो अहेड विद दैट.
1: ओके. और तुम्हें क्या लगता है कोई घर के ऐसे रूल हैं जो तुम्हें फॉलो करने होते हैं, मम्मी ने सेट किए हुए कुछ सेट ऑफ रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो?
0: उतना कुछ रूल्स तो नहीं है, पर लाइक मोस्टली मेरा टाइम तो होमवर्क करने में ही जाता है,
1: चला जाता है.
0: तो और कुछ करने के लिए टाइम भी नहीं बचता.
1: बट डू यू हेल्प हर इन थिंग्स?
0: या आई वैक्यूम द हाउस लाइक ट्वाइस अ डे. जब लाइक यू नो मे बी इन द आफ्टरनून और इन द मॉर्निंग और वन टाइम इन द इवनिंग.
1: Oh, okay, nice.
2: Discipline. Cleanliness. अनुशासन.
1: ये अनुशासन जो है इन्हें सिखाने में टाइम लगा या फिर ये?
2: नहीं नहीं, बचपन से दोनों वेरी ओबीडियंट.
1: बड़े ही सिंसियर बच्चे हो तुम तो, क्या बात है. ओके. और इस जनरेशन से तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें लगता है नहीं हाँ मम्मी ऐसा मत किया करो, यू ट्राई टू टीच हर समथिंग जो नहीं हो पाता है, या फिर ऐसा कुछ लगता है मम्मी क्या है समझो ना मम्मी, कुछ ऐसी चीजें हैं?
0: मतलब लाइक ऑब्वियसली लाइक मैं बता सकती हूँ ड्रेसिंग स्टाइल, और लाइक वो ओवर फ्रेंडली भी बन जाती है. तो अगर लाइक मेरे क्लासमेट्स होते हैं उनसे जाके बस बात करती रहती है मम्मी, और मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें बात करनी है या नहीं.
2: ये
1: तुम्हें पता चल गया था, दिस इज हैपनिंग अराउंड यू राइट?
0: लाइक सच बताऊं तो दे वुड ट्राई टू लाइक सी कि सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ वही नहीं कि लाइक दूसरे भी क्या कर रहे
1: हैं. But do you like ask करके मम्मी बहुत हो गए करोना ऐसा ऐसा चलता है क्या?
0: Like कभी कभी वो ज्यादा देर बात करने लगते हैं और फिर दूसरे दिन दोस्त आके बोलते हैं कि यार your mummy is very talkative.
1: अरे रे रे मम्मी जी
2: कंप्लेन.
1: अच्छा मुझे ये जानना है, एक टाइम हुआ करता था पहले जब ये स्लीप ओवर्स का भी टाइम था, यू रिमेम्बर दैट? कि बहुत कम होता था स्लीप ओवर्स का, और बहुत बड़ी चीज लगती थी कि अरे ये तो मतलब कैसे तुम किसी के घर पे जा सकते हो, मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए. ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए थोड़ा अलग सिचुएशन होती है, बट लड़कों के लिए यूजुअली यू नो गो एंड स्लीप आपके घर पे चले गए, अपने दोस्त के घर पे चले गए. अभी क्या लगता है, वुड यू अलाउ हर और योर?
2: नेवर अलाउ, जरूरी नहीं है. आप लोग पूरा दिन स्कूल में टीचर्स और बच्चों के साथ फ्रेंड्स के साथ ही होते हो, हैव सम क्वालिटी फैमिली टाइम विद योर.
1: ये मैंने इसलिए पूछा कि बिकॉज़ दैट कल्चर हैज कम इन समवॉट.
2: कल्चर हैज कम इन और पीपल हैव पुल्ड इट इन.
1: या पुल्ड इट इन,
2: या क्योंकि सी ऑल द डे मदर इज बिजी विद हर स्केड्यूल, चिल्ड्रन आर बिजी विद देयर स्केड्यूल, फादर इज बिजी विद देयर स्केड्यूल, एंड अल्टीमेटली यू आर ऑलरेडी विद योर फ्रेंड्स ऑल द डे एट स्कूल. तो ये फिर से अलग से टाइम क्यों चाहिए? स्पेंड विद योर मम्मी डैडी सिब्लिंग्स फैमिली फ्रेंड्स.
1: ओके, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? बी ऑनेस्ट.
0: Like, for other people, I don't know.

0: बट लाइक इवन आई डोंट हैव दैट इंटरेस्ट कि किसी और के घर पे जाके बैठूं
1: लाइक
0: आई माय सेल्फ आल्सो डोंट वांट टू गो एंड सिट एट समवन एल्सस हाउस पर लाइक दोस्तों के साथ जाके बात करना खेलना क्योंकि लाइक काम करना भी होता है और वो भी करना होता है तो लाइक यूजुअली मम्मी बोलती है पहले काम खत्म करो फिर जाओ पर कभी कभी बोर हो जाते हैं कि मैं काम बाद में कर सकती हूँ क्या
1: यू फाइंड ऑप्शंस ना ऐसे पॉसिबल है कि नहीं पर जब कोई दोस्त आता है घर पे तो क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स मम्मी को बताती है कुछ बताती है कि अभी कोई दोस्त सारी मम्मी ऐसा करना ऐसा मत करना ऐसा कुछ है क्या
2: ऐसे कुछ नहीं
0: वो ऐसे कुछ नहीं
2: सारे बच्चे अच्छे हैं
1: क्या बात है आपने ये डिसिप्लिन जो दिया हुआ है
2: अच्छे बच्चे हैं
1: डर किसका था मम्मी का पापा का ज्यादा रहता है
0: पापा थोड़ी लीनियंट है
1: अच्छा पापा लीनियंट है उन्होंने हार मान ली है ठीक है मम्मी देख लेंगे सारा कुछ
0: हार मान ली मतलब वैसे नहीं लाइक
1: मम्मी पे छोड़ दिया है ना हाँ तो वैसा वाला है तो मम्मी इज द हेड ऑफ द हाउस राइट नाउ बिल्कुल तरीके से सबको
2: होम मेकिंग
1: तो मेक तो कर लिया आपने माशाल्लाह देखिए कितने ब्रिलियंट बच्चे हैं आपके तो इसमें कोई शक ही नहीं है
2: तो ही इज ऑल द टाइम बिजी विद हिज वर्क एंड स्केड्यूल तो कुछ मैं भी अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करूंगी
1: वंडरफुल मैंने एक सवाल मैंने पिछली बार ही पूछा था और मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि अभी क्या है सोशल मीडिया का जो दौर है देखो मैं आई विल नॉट क्रिटिसाइज टेक्नोलॉजी बिकॉज दैट साउंड्स अ लिटिल वियर्ड जब है तो है You have to live with it.
2: Yes.
1: Of course, excessively, तो कोई भी चीज बुरी होती है तो वो टेक्नोलॉजी हो सकती है मगर यहाँ पे एक सिचुएशन आती है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ Are you on social media, madam?
0: No, I do not have Instagram, Facebook, nothing.
1: Nothing at all? How come that? मतलब क्या inspiration आई कहीं से कि गई ही नहीं What happened?
0: Like inspiration like you see when you have things to do तो उतना time नहीं रहता कि हमेशा फोन निकाल के किसी से बात कर लो अगर already बात कर लिया है तो और बचा क्या है
1: क्या बात है
0: बस बोलना पड़ता है कि और बताओ क्या चल रहा है
1: और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दोस्तों में लोगों ने बनाए social media accounts
0: दोस्तों का तो almost पूरा class का group ही है पर like मेरा तो Instagram कुछ नहीं है तो क्या करूँ
1: नहीं good for you actually coming back to you अगर इनका account होता right Do you think as a parent के जरूरी होता है कि बच्चों को अपनी प्रोफाइल में ऐड किया जाए? Would you add her अगर इस सोशल मीडिया पर?
2: ऐसे ट्रस्ट तो रखना है अपने बच्चे पर सभी को दैट इज इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया अकाउंट होना या ना होना उनके पेरेंट्स या बच्चे के आपस की इच्छा है इफ यू वांट इफ योर चाइल्ड इज वेरी क्रिएटिव एंड यू वांट टू एग्जिबिट इट विद यू नो पीपल अराउंड ताकि रिकॉग्नाइजेशन मिले या द बेस्ट गो अहेड एंड यूज द सोशल मीडिया अकाउंट एंड यस कीप अ ट्रैक ऑन योर चिल्ड्रन अनलेस दे ग्रो अप टू एन एडल्ट 18 इयर्स एज तो once you know you have a confidence that yes the child is being groomed very well and they are making best use of the social media and it's going on in a good track then that's fine
1: but keeping a track as in adding them to your profile because some kids are really not comfortable with that they you must have seen kids like that together
2: some kids may be having
0: that karna
1: matlab jaise add kar liya profile pe you know for example facebook and instagram wherein parents follow their kids just because they want to see everything around
2: agar bachcha comfortable hai and he's honest he or she is honest enough they will surely allow the parents to get into their group and parents yes wo to bachcho mein involve zyada nahi honge na they will be there just there
1: कुछ बच्चे इस चीज को लेकर थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हैं कॉमेंट कर देंगे गड़बड़ हो जाएगी ऐसे भी है by the way.
2: वो पेरेंट्स का वो होना चाहिए कि यार let them give them okay हमको कॉन्फिडेंस है कि बच्चा ठीक है give them a bit freedom and don't poke into you know that is your mutual your child and parent mutual
1: acha kuch unki zid rehti hai kuch zid kar denge jis ke kabhi kiyo
2: ice cream chocolates ke liye
1: really bas itna hai
0: like I like eating snacks like acha lagta hai kyunki jab kabhi kabhi muh khali hoti hai to bas kuch
1: khana kuch chalta rehna chahiye इनका क्या खाने को लेकर नखरा आपके घर में बच्चों का
2: नहीं they are like they like all the fruits and vegetables and कभी कभी स्नैक का डिमांड रहता है जंकी जो ऑफन नहीं मिलता है सेल्डमली
1: रहना भी चाहिए थोड़ा बहुत ना तो कुछ ऐसा है जो मम्मी बहुत अच्छा बनाती है तो मुझे लगता है मम्मी से बेहतर तो मैंने कहीं नहीं खाया और मिलेगा भी नहीं
0: शायद गोभी की सब्जी है
1: गोभी की सब्जी मम्मी से बेहतर कोई नहीं बना सकता और तुमने कुछ सीखा मम्मी से कुकिंग वगैरह में
0: लाइक मैं पोहा बना सकती हूँ अंडे बना सकती हूँ दाल चावल बना सकती हूँ लाइक कुछ बेसिक्स चपाती मुझे अभी तक आटा लाइक बनाया नहीं लाइक फिर भी लाइक सीख तो सकती हूँ
1: वेरी नाइस है तो मुझसे बहुत आगे तुमको पता है मैं इस मामले में बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा हूँ सो ये मम्मी ने सिखाया है कि खुद जाके तुम्हें बोलो मम्मी

0: बताओ मुझे कैसे होता है।
1: मम्मी और पापा दोनों सिखाते हैं।
0: अरे वेरी नाइस।
1: हाँ, दोनों को सीखना चाहिए। कुकिंग इज एन आर्ट। मेन और वुमेन दे शुड नो, द चाइल्ड बॉय और गर्ल दे शुड लर्न कुकिंग। लिटिल बेसिक थिंग इज मस्ट एंड रिक्वायर्ड बिकॉज ये आगे जाके बहुत काम आएगा।
0: ऑफ कोर्स
1: फ्यूचर दे विल हैव देयर ओन हाइजीन सेल्फ होममेड फूड टू ईट।
0: मैं बताऊं, मैं बहुत अपने आप को अभी देख रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं अभी तक पानी उबालने से ऊपर गया नहीं हूं, तो कोशिश
1: कर लीजिएगा।
0: अरे वो मैंने एक दो बनाई है पर मुझे फिर अपनी चाय से नफरत हो गई है, तो इससे पहले चाय से ही ऑल इन ऑल नफरत हो जाए इसलिए मैं ट्राई नहीं करता। बट ओके, सो हु इज द बेस्ट कुक इन द हाउस? ये बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है। तो मैं तुमसे सवाल पूछूं, हु इज द बेस्ट?
2: लाइक मोर वैरायटी ऑफ डिशेस तो मम्मी बनाती है, पर पापा'स डिशेस व्हेन ही मेक्स इट, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल
0: है ना।
2: हाँ।
0: ये होता है, ये हर घर की कहानी। डू यू अग्री?
1: या या, वो तो होता है।
0: एंड लोग ये कहते हैं कि मेन आर लाइक बेटर कुक्स, दैट्स जस्ट द फैक्ट राइट देयर। या
2: रेस्टोरेंट्स में शेफ भी तो मेन होते हैं।
0: हाँ, हाँ तो देख लो तुम्हारे सामने ही है और क्या।
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107।
0: जो आज का जनरेशन है उनके ड्रीम्स बड़े अलग, थोड़े एडवांस्ड होते हैं। पहले डील करना आसान था कि दो तीन ऑप्शंस वो दे देते थे, दो तीन ऑप्शंस माँ बाप ने दे दिए एंड दे फॉलो इट।
1: यस।
0: नाउ हाउ डू यू डील विद एवरीथिंग दे टेल यू दे वांट टू डू दिस दैट एंड दिस?
1: Now the generation is getting a lot of exposure.
0: Yeah, of course.
1: Every stream is having its own importance.
0: Yeah.
1: So har stream mein, padhai ke har stream mein ek level ka opportunity hai.
0: Yeah.
1: There's a growth in every stream of education.
0: Yeah.
1: So children have to focus on what interest they have. कहाँ पे उनको अच्छा लगता है, किसमें उनको masteries gain करना है।
0: There's more flexibility.
1: Yeah, more flexibility and a lot of openings.
0: Yeah.
1: They get to choose their major interest at a very young age.
0: Yeah.
1: So it's good. It's good they have more options now.
0: पहले ऐसा होता था ना कि parents were prepared शुरुआत से ही कि okay we are doctors, we are engineers, we'll put our child into that field only.
1: Correct.
0: आप लोगों के साथ था, because once I was talking to her and she said कि because her father is a chemical engineer, right?
1: Hmm.
0: So that's she wants to become and to be a part of that same field. So was it? Brands somewhere, you were like feeding it, influencing it
1: for her. Her father is like a role model for her. So
0: very nice.
1: That's a
0: very very rare, and when it happens, it feels really good. और उस चीज़ में तुम्हारा interest किसी ने influence करके नहीं दिया, it came on your own. Is the best part. So for that, I wish you all the best. So क्या रहता है family time में इन सबको साथ में बिठाना? Is it difficult for you at home?
1: No.
0: कोई ऐसा time?
1: नहीं, साथ में हम लोग कभी लूडो स्नेक एंड लैडर खेल लेते हैं।
0: अरे वाह, nice.
1: और did lunch या weekend में lunch time पे साथ में ही बैठते हैं, तो weekdays में तो dinner सबका साथ में ही होता है।
0: अरे nice, very
1: nice. So we get to see some good programs on TV. So news तो देखना ही है, ये compulsory है।
0: अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, coming back to the social media topic. आप तो माशाल्लाह safe हैं, because she's very level headed. So please be like this, हाँ? बहुत तारीफ करके तुम्हारे बन। तो people go and post their emotions and everything on social media, which makes them sometimes over emotional, and sometimes they are not really emotional. They have become cold.
1: Maybe pretending.
0: हाँ, maybe pretending. So what is your take? And as a parent, if that happened. अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है, बट अगर ऐसा कोई बच्चा होता तो क्या क्या टैकल करने का तरीका है?
1: What I followed from my grandmother or from my mother, from my parents, is like you have to sit and talk with your child.
0: Okay.
1: Spend some time with them.
0: Mm-hmm.
1: Like the best time to talk to your child is in the night when they're with you after dinner, when you have a free time before they sleep.
0: Uh-huh.
1: Maybe you talk to them, tell them stories, create some story, and try to know more from them.
0: Okay.
1: As to what they are going through in their lives.
0: Uh-huh.
1: Help them, counsel them.
0: Uh-huh.
1: There is always a teacher in the school to help them.
0: Yeah.
1: I think every school has a very good teacher parent partnership programs, like. So we have to sort with our kids, like we have to try them, give the such atmosphere where they feel safe, where they don't speak up in public like that.
0: Okay.
1: Then everything has a remedy. Nowadays there are many therapies also. So let them open up with their parents and teachers together, maybe friends and family together can find some solution for them.
0: Yeah, sometimes it gets difficult after a while, because agar koi is habit mein hai, they're posting everything on social media, it becomes difficult to kind of hold on to it.
1: Maybe
0: right?
1: Counseling is must.
0: They really need
1: some.
0: What is your take? Have you seen people? You must have, like
2: ek kuch show tha, us show mein

0: Okay, and her mother takes away the phone from her for one day.
1: Yeah.
0: So she is like, you tell me, like, so, like, आपके आप अपने आप को देख लो, मैं भी आपसे एक दिन के लिए फोन ले लेती हूँ. तो दे बोथ लिव वन डे विदाउट अ फोन एंड देन द डॉटर इज सिटिंग देयर कंप्लेनिंग कि ओ मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, उसके लाइक उसका पोस्ट नहीं बना सकती. तो लाइक मैं दुनिया को कैसे दिखाऊँ कि मैं बबल गम फ्लेवर आइसक्रीम खा रही हूँ विथ चेरी ऑन द टॉप, वो सब. तो लाइक हर यंगर सिस्टर सिटिंग देयर एंड टेलिंग हर चीज सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि लोग भी आइसक्रीम खा चुके हैं, वो जानते हैं कि आइसक्रीम कैसे होती है.
1: तुम्हारे दोस्तों में है कोई काफी एक्टिव इस मामले में, लाइक पोस्टिंग अ प्रॉब्ली, you know, aspiring to become some social media fanatic, ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे ग्रुप में?
0: पता नहीं, क्योंकि मैं लाइक उनके पोस्ट कुछ देख भी नहीं सकती.
1: But do they talk about it? No.
0: Talk about it मतलब लाइक very talkative, लाइक अच्छे से communicate करते हैं और लाइक उनके feelings एकदम like express कर देते हैं, बस खुले आके बात कर लेते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है कुछ तो solution दो.
1: जैसे बताया अभी सिंचल ने कि they are very way too expressive.
0: Yes.
1: पहले क्या था, you have like वो एक blur line होती थी ना कि ये मैं जाके कैसे बताऊँ, मतलब it's very difficult.
2: बड़ों के सामने कैसे बात करें?
1: Yeah, you're forming sentences in your head, you still don't know what to say. Kids are way too expressive.
2: Correct.
1: So is there? Do you think it's good?
2: It's good. It's good that they are opening up. They are telling what they feel like.
1: Yeah.
2: Achha hai. But they should have some limits and boundaries framed for themselves.
1: Yeah, but pehle hota tha na ki ek aankhon ka tar rehta tha, right?
2: Haan.
1: कि एक बार देख लिया तो फिर बच्चा जो वहाँ से हिल नहीं सकता है.
2: हाँ, वो कुछ लिमिट तक सही नहीं है.
1: हाँ हाँ,
2: नॉट फॉर एवरीथिंग.
1: ओके, हाँ मैं ही जानना चाहता हूँ कि सही नहीं है, क्यों सही नहीं है?
2: कुछ अच्छे तक सही नहीं है. लेट चाइल्ड स्पीक, देन वी गेट टू नो.
1: ओके,
2: देन वी कैन यू नो फाइंड अ सॉल्यूशन और वी कैन, अगर अच्छा भी है तो शाबाशी भी दे. They need to be appreciated when they are really good in expressing something that is worth worth following, like you know when children can follow.
1: Yeah.
2: Other kid, like किसी ने बहुत अच्छा कर दिया and he has expressed like wow I did it.
1: क्योंकि पहले
2: he has to be he or she has to be appreciated.
1: दोनों तरफ से expressiveness होनी चाहिए तब जाके बात बनेगी. And you must have heard, I have met so many people इसी show के जरिए जहाँ पे लोग आते हैं वो कहते हैं कि you know, मैं अपने बाप को नहीं कह सकता कि दैट आई लव यू, मतलब इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू टेल हिम बिकॉज वो प्यार वाला डर है, यू नो, एंड दे काइंड ऑफ लाइक इट दैट वे, राइट? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
2: किड्स नीड नॉट से एवरी डे आई लव यू, दे कैन शो इट विद काइंडनेस.
1: Yeah, but
2: with
1: wo jo,
2: respect,
1: jo,
2: and once in a while, if they say it's a very good feeling,
1: yeah, once
2: them,
1: in a while,
2: let
1: yeah?
2: them tell once in a while, or maybe every day if they want to tell once or twice, yes, it's a good feeling. Let them go ahead.
1: Okay.
2: It's now, you know, nowadays, it's okay.
1: Yeah.
2: There's no such rule ke pehle jaise aise nahi baat karte. Nahi, aise nahi hai abhi. Abhi is like parents are also opening up, telling like, oh, you're my best.
1: Oh, okay.
2: You're my only good child. Like I say, like parents are also expressing.
1: Yeah.
2: आजकल okay. parents भी expressive है.
1: होना भी पड़ेगा ना, मतलब कहीं ना कहीं.
2: Most of the place अभी सब mostly nuclear families होते हैं ना.
1: हाँ, वो आजकल तो ये.
2: हाँ, तो एक दूसरे को appreciate भी करना पड़ता है.
1: And I think joint families अब मुश्किल है survival if you have
2: joint families में नानी दादी हुआ करती थी कि मेरा प्यारा बच्चा, मेरा नन्ना बच्चा.
1: Yeah. So you kind of have appreciation pouring from every corner of the house.
2: Now there's a nuclear family, so tell mama I love you, daddy I love you, bacha I love you.
1: Do you often say that?
0: Like बोलती तो नहीं हूँ पर like
1: express कर देती हूँ.
0: हाँ, कभी भी गई पापा के साथ like थोड़ा परेशान किए, थोड़ा छोटा मोटा बातचीत, like वरना जाके मम्मी के साथ like वैसे hi what you doing, कुछ तो परेशान करना ही पड़ेगा, पर like बस टाइम पास करके लाइक करते रहो, खुश रहो.
1: बेस्ट मॉम स्टोरी विद हर, एनी मोमेंट यू.
0: बेस्ट मॉम स्टोरी मतलब लाइक एवरी टाइम समथिंग गुड हैपेंस विद हर. लाइक एक मेरा कंपटीशन था, लाइक उस दिन आई हैड एन एमयूएन आल्सो, और वो एक एक्टिंग कंपटीशन था जो मुझे लाइक ब्रेक के बीच में जाके लाइक जल्दी से करके आना था.
1: ओके.
0: पर लाइक आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ एनीथिंग. तो मेरी मम्मी ने बोला कि लाइक, मैंने फोन किया था, शी टोल्ड जो भी तुमने आज एमयूएन में किया था वही जाके एक्ट आउट कर दो. मैंने वो किया और थर्ड प्लेस मिला.
1: अरे व्हाट अ पीस ऑफ एडवाइस, वेरी नाइस.
2: यस,
1: ये टैकल करने का अच्छा तरीका है, नो, एंड दिस इज प्रोबब्ली द स्टोरी दैट विल स्टिक टू योर माइंड एंड हार्ट बोथ, राइट? तो तुम्हें याद रहेगा कि ये ट्रिकरी काम आती है.

0: If you have multiple situations to handle, then you can handle everything. दोस्ती जो है पहले माँ बाप के और बच्चों की थोड़ी अलग होती थी. Now things have changed.
1: Yes.
0: Right. So do you think friendship कुछ ज़्यादा होना भी गलत है या फिर are you उसके हक में आप?
1: Friendship होना चाहिए. मेरे मम्मी और पापा दोनों दोस्त के जैसे रहते थे.
0: Okay.
1: तो
0: to your kids, I mean.
1: To my kids also.
0: Yeah.
1: Yeah, I'm strict, but I'm very friendly also.
0: Okay.
1: Yes. To some extent, I have to be strict to set limits to make them a good citizen.
0: Uh-huh.
1: And friendship, yes, I have to be every day. I try to talk to them, ask them what's going on. Kya acha laga, kya acha nahi laga. School mein kaun bachcha bahut shaitani kiya, kaun bachcha bada acha bachcha tha. Just gel with them to know what's happening with them and tell them that we are there for you during your good or bad times.
0: Right. And system kai martaba na automation mein chala jata na when you keep on asking.
1: Aur kabhi bhi bore ho jate hai bacche.
0: Yeah, that's like, what.
1: Daily ka question hai mamma. Wo bolte hai but haan aaj kuch alag hua hoga na tu bata do.
0: Sare doston ke bare mein bata aapko inke.
1: Thoda bahut to hai. Haan.
0: Thoda bahut ye keh rahi hai but do you think she knows?
2: Like, मैं आके बोलती हूँ हर रोज कुछ ना कुछ तो बोलती हूँ कि मम्मी भी कभी कभी बस कितना बोलती हूँ लाइक स्कूल का कहानी लाइक इतना लाइक पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ आज क्लास में किसी का वाटर बॉटल गिरा पूरा क्लास स्विमिंग पूल बन गया वो सब लाइक अननेसेसरी डिटेल्स मत बोला करो वैसे
0: नहीं बट अच्छी बात है ना ये देखो स्टोरी टेलिंग तुम्हारी इतनी हो चुकी है कि मम्मी को अभी कंफर्टेबल फील हो रहा है कि एटलीस्ट यू कम अप टू हर एंड से थिंग्स यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट या
1: चाइल्ड हैज टू कम एंड टॉक टू देयर पेरेंट्स
0: ऑफ कोर्स एंड
1: लाइफ में इट्स लाइक फ्यू पीपल वेयर यू कैन नॉट लाई
0: एंड कन्वर्सेशन डज एवरीथिंग
1: यस इट्स लाइक योर पेरेंट्स अ टीचर एंड अ डॉक्टर यू आर नॉट सपोज्ड टू लाई इन फ्रंट ऑफ
0: क्या बात क्या कोटेशन दी तो व्हाट्सएप पे लगाने वाली कोटेशन है आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट तो कुछ मम्मी ने अपने टाइम का बताया कुछ जैसे डू यू नो व्हाट वीएचएस टेप्स आर एंड एवरीथिंग फ्रॉम 90s ऐसा कुछ होता तुम्हारा कल्चरल शॉक लगता तुमको कुछ
2: कल्चरल शॉक मतलब नहीं क्योंकि लाइक आई हैव आल्सो यूज्ड सम ऑफ द थिंग्स
0: वेरी नाइस
2: लाइक जब अब लाइक फोटो गैलरी में फोन में लाइक देखे फोटोज देख लेते हैं तो जब नानी के घर में जाती हूँ इतने सारे एल्बम्स होते हैं पूरा परिवार आके बैठता है एल्बम खोलता है और देख लेते हैं सारे फोटोज हाँ इस फोटो में ये हुआ था
0: yeah.
2: हम ये खाना खा रहे थे ये फंक्शन था लाइक सब कुछ बोल देते हैं ना तो पूरा स्टोरी याद आती है और वो कैसेट वाले टेप्स वो भी देखे हैं मैंने वो पेंसिल डाल के वो फिराना तो मैंने भी किया है
0: अरे वेरी नाइस यार यू कनेक्टेड टू एवरीथिंग यार ये जैसे हम कहते हैं ना मैन ऑफ कल्चर वुमन ऑफ कल्चर लेडी ऑफ कल्चर वाला सीन है तुम्हारे साथ बट मुझे बहुत अच्छा ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है आप साथ मिलकर मुझे इनसे अच्छा लगा बिकॉज शी इज वेरी लेवल हेडेड अपनी एज के हिसाब से भी शी इज गुड क्योंकि कुछ बच्चे वक्त से या तो ज्यादा बड़े हो जाते हैं या थोड़े वक्त के नीचे रह जाते हैं सब देखते दे माइट बी 22 बट दे एक्ट लाइक 16 दे माइट बी 22 बट दे एक्ट लाइक 40 सो congratulations on that because you're keeping it really nice and I am really proud of you
1: so
0: ye bahut badi baat hai and keep it that way only right she will be successful there is no
1: thank
0: doubt
1: you,
0: about it
1: so,
0: to inke successful hone ke baad zimmedariyan nibatne ke baad aapko kuch apna kuch personal plan hai kya
1: well my hobby is like be up to date with current affairs
0: okay
1: and mujhe padhna acha lagta hai
0: okay
1: and I talk a lot I know that
0: no that's okay come on
1: so my hobby is like to start something that will keep me busy because okay. when children grow up
0: yeah that's what I'm asking hobby, zimmedari ho jayegi to fir ekdam se aap
1: some hobby yeah I love to gel well with kids
0: okay so something related to kids
1: small kids
0: theek hai jab bhi ye mauka aayega uske baad mummy ko ash karne dena aur tum apna ash karna theek hai but you guys have been wonderful I really love this episode thank you so much for coming man
1: thank you for the opportunity yeah. we had a very great time
0: I also yeah. likewise so thank you so much Sanjal and all the best to you
1: thank you
0: won't need that but still and all the best we wish you all the best and we wish you success in your life
1: thank you and best thank you so wishes for FM 107
0: thank you so much fam jazakallah so we're signing off from the khair lucky allah
1: thank you
3: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

0: FM 107. Time check.
1: हजरत हजरत हजरत FM 107 की घड़ी में हो गए हैं 4:01. हजरत हजरत हजरत
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: ये ना सोच रहे ना अम्मी ने इनको बताया नहीं कि जा की जगह जा होता है हजरात होता है. नहीं यार आता है सलाम वालेकुम. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में. ये शो द रिक्वेस्ट शो जहां पर आपको अपने मर्जी के गाने सुनने का मौका मिलता है. यार पूरे दिन आप सुनते रहते हैं FM 107. पूरे दिन आपकी अपने मर्जी के चलते हैं गाने. नहीं आपकी नहीं आरजे की मर्जी के गाने चलते हैं. लेकिन एक समय तो होना चाहिए जब आपकी अपनी मर्जी के गाने चले. तो ये वही शो है हजरात हजरात हजरात. तो अपन जो है आ गए ले और आपकी मर्जी के गाने भी अब आएंगे. तो बहुत से लोगों की डिमांड थी इतने दिनों में. और जब भी कोई गाने रिक्वेस्ट करने की बात होती थी तो 2-4-6 लोग ऐसे होते थे जो पुराने गानों की डिमांड कर लिया करते थे. तो आज वो समय आ गया है. आज वो वक्त आ गया है कि 90s के गाने हम प्ले कर दें. क्योंकि आज है 29 यानी 29th जून मंडे का दिन. और आपके रिक्वेस्ट पे आज हम प्ले करेंगे 90s के गाने. क्योंकि आज का थीम है 90s के गाने अपन प्ले करने वाले हैं. तो आपकी मर्जी के ये गाने होने चाहिए 90s के बाद के और 1999 तक 2000 के पहले है ना. वो 1999 के दिसंबर में हुए हो रिलीज. बस 2000 में आएगा तो फिर वो 2000 में आ जाएंगे. तो 90s के गाने आप सुन सकते हैं. और एक से एक जो लाजवाब गाने रहे हैं जो हिट गाने रहे हैं वो 90s के रहे हैं. तो 1990 की जनवरी से 1999 के दिसंबर तक जो भी सुनना चाहें हम आपको सुनाएंगे इस शो में जिसका नाम है.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ Only on FM 107, दिल से देसी.
1: तो उठा लो मोबाइल और लगाओ अपने अंगूठों से रेस और भेज दो 666-22-107 पे कि कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो. वेल कॉल आ रही है. आज कहने से पहले बात कर लेते हैं. हेलो सलाम अलैकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम है फैजान.
1: जी फैजान साहब बहुत दिनों बाद. आप वो वाले फैजान हैं जो मैसेज करते हैं या वो वाले फैजान हैं जो नए हैं?

0: नहीं नहीं मैं वही हूँ जो मैसेज करता हूँ पहले भी।
1: अच्छा पहले भी, कैसे हैं फैजान साहब?
0: जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गाना प्ले कर दें आपके ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
1: ओहो क्या चल रहा है
0: आपका गाना है
1: ये दुनिया ये महफिल। अच्छा ये तो हम चलो प्ले कर देंगे अगर मुझे मिल जाता है डेटाबेस में, लेकिन क्या ऐसा मसला चल रहा है आपकी दुनिया में?
0: बस ठीक चल रहा है, तो आज थोड़ा सा मोड भी ऐसे कहते हैं तो गुनगुना के भी सुना देते हैं थोड़ा सा।
1: अरे नहीं भाई चलिए ठीक है, वो रफी साहब का, रफी साहब का आपको आपको सुनना है ये दुनिया ये महफिल।
0: रफी साहब का
1: ये कौन से सन में इन्होंने गाया है? 1980 वाला
0: याद नहीं है लेकिन है ये
1: 90s का। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा गुनगुना दीजिए फिर अगर आपने कही दिया है तो।
0: अपनी खबर मिले ना खबर यार की मिले, दुश्मन को भी ना ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया
1: ये महफिल
0: मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
1: क्या बात है फैजान साहब,
0: मजा आ जाएगा
1: भाई। मैं मजा तो आ जाता लेकिन ये दुनिया ये महफिल मोहम्मद रफी का सॉन्ग है, हीर रांझा मूवी का ट्रैक, 1970 में आई थी ये मूवी।
0: ओहो ये तो फिर पुराना हो गया।
1: हाँ जिसके लिरिसिस्ट हैं कैफी आजमी और राजकुमार थे इस मूवी में। लेकिन आई होप कि 90s में भी इस गाने को किसी ने गाया हो क्योंकि ये बहुत ही फेमस और लेजेंडरी सॉन्ग रहा है।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो मैं ढूंढता हूँ, अगर किसी और का हुआ तो मैं प्ले कर दूंगा, लिरिसिस्ट लिरिक्स तो वही रहेंगी बट आई विल ट्राई।
0: और कमेंट्स दे रहे हैं सही था या नहीं था।
1: अरे सही, मैं हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि भाई कितने रुपए लेते हैं ये फंक्शन में महफिलों में।
0: भाई मैं हाजिर हूँ, मैं चार के बाद फ्री हूँ, मैं हाजिर
1: हूँ वो तो हाजिर तो ठीक है, पैसे कितने लेते हैं वो ये पूछ रहे लोग।
0: भाई वो मसला नहीं है, पहला शो होगा जो देंगे बिस्मिल्लाह करेंगे।
1: अच्छा ठीक, एक का मैसेज आया है कि चिकन ही खिला देंगे चलेगा?
0: नहीं इतना भी ना करें
1: कुछ तो दे दें यार।
0: गाड़ी पे आना है, फ्यूल भी लगता है भाई
1: के भैया मजदूरी जो लगेगी वो तो दो यार पूरी यार कम से कम। बिल्कुल सही फैजान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अगर होता है ये गाना तो प्ले करते हैं, बाकी आप 90s का कोई और गाना अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल प्ले कर दूंगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है,
0: थैंक यू
1: ओके मेरा भाई, थैंक यू, अस्सलाम। हाँ तो ये तो बहुत पुराना हो गया, वैसे मेरा बिल्कुल दिल है इस गाने को प्ले करने का, बाकी आपकी मर्जी के गाने मैं यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला मैसेज यही था, सलाम लिखा है फैजान साहब ने, सबसे पहले ये आए और उन्होंने कहा ये दुनिया ये महफिल अगर प्ले हो जाए तो मज़ा आ जाता, लेकिन ऐसा क्या है कि जो आपकी महफिल आपकी तरह नहीं चल रही। असीम मोहम्मद ने कहा है हाय गुड आफ्टरनून, प्लीज़ प्ले फॉर मी एनी सॉन्ग मोहरा फिल्म, आई एम असीम। मोहरा फिल्म का कोई भी सॉन्ग कह रहे हैं, ये 90s में आई थी कि 1994 में आई थी? ओके तू चीज बड़ी, हाँ यार है तो गाने इसके कर रहे ना ये, लेकिन तू चीज बड़ी है मस्त मस्त बहुत बार सुन चुके हैं। टिप टिप बरसा भाई, मतलब ये भी दिल हर कोई देता है, ऐ काश कहीं ना कजरे की धार, ये ज्यादा पुराना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक बार अगर आपने तो अब सुन लिया होगा ना कि इतने गाने, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, टिप टिप बरसा पानी, पानी तो छोड़ दो भाई हमारे इतनी गर्मी चल रही कोई फ़ायदा है नहीं, उसके अलावा ना कजरे की धार शायद यही है, इन तीनों में से अगर आप कोई कहते तो वो मैं प्ले कर दूंगा। फिलहाल एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे
1: हैं सर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप बताएं आप कैसे हैं?
2: जी अल्लाह करम मैं ठीक ठाक हूँ, दुआएं आपकी।
1: क्या नाम है आपका भाई जान?
2: जी नाम हमारा आसिफ हुआ जनाब।
1: कौन?
2: आसिफ।
1: आसिफ आसिफ भाई, आज 90s की बात हुई तो आज आपने कॉल कर ली है
2: जी, क्योंकि मुझे 90s ही गाना पसंद है सर।
1: अरे वाह, तो बताएं कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: अगर आपके लिस्ट में वो गुलामी फिल्म का एक सॉन्ग है, जेहाले मस्ती मुकम्मल अंदिश।
1: हाँ यार ये गाना बहुत ही लाजवाब अभी, लेकिन ये जेहाले मिस्किन ये है, ये बहुत ज्यादा अभी चला था मेरे ख्याल से 2024-25 में बहुत ज्यादा चला था, लेकिन ये 2023 का एक ट्रैक है, लेकिन पुराना एक ट्रैक
2: ये है सर जी, ये हमारे मोहम्मद अजीज साहब शब्बीर ने गाया है। और ये गुलामी मिथुन और अनीता राज इन पे है।
1: तो गुलामी मूवी का ट्रैक जिसे लता ने गाया है जिहाल में, इसकी
2: लता एंड शब्बीर कुमार ने गाया है।
1: शबीर तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन लता
2: की देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल।
1: अच्छा ठीक है, तो ये गाना हमारे पास है लता जी का, तो मैं ये कोशिश करता हूँ प्ले करने के लिए। ठीक है,
2: अगर चला दे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि अभी वापस लौट रहा हूँ घर की तरफ, तो सुनते भी लौट जाए।
1: तो थोड़ा सा वक्त अगर आप दें तो हम सबसे पहला गाना जो है असीम भाई की रिक्वेस्ट पे असीम भाई की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रहे, फिर नेक्स्ट आपका आएगा। ठीक है,
2: अच्छा अच्छी बात है सर जी। आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआ है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
2: आप दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।
1: कितनी देर में आप घर पहुंचेंगे?
2: 10 मिनट, अभी मैं जो है से निकला हूं अबू नकला से।
1: हाँ ठीक है, फिर तो आप क्या कहते हैं पहुंचने से पहले मैं प्ले कर दूंगा।
2: 10-15 मिनट हमारे पास है।
1: तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी कर लिएगा बस।
2: अच्छा जी, मैंने कर लिया सर जी, मैंने 120 से 80 पे कर लिया।
1: हाँ ये बात है मेरा भाई, ये तो मजा है यार, देखो एफएम 107 का ये मजा है। बस फिर ना खजरी की धार, इसके बाद आपका गाना प्ले करूंगा। ठीक है, तो देखो भाई किसी को वादा कर दिया है तो आप लोगों के मैसेज थोड़ी देर में हम लेते हैं। पहले ये गाना मैं प्ले कर देता हूँ क्योंकि असीम भाई ने कहा है ये गाना प्ले कर दो, ना गजरी की दार, ना गजरी की दार मोती का हार। ओके, दिस सॉन्ग इज फॉर यू असीम भाई, और उसके बाद हमारे जो रिक्वेस्ट आई थी अभी उनके गाने प्ले करेंगे, ज़िहाले मस्की बाय लता मंगेशकर, FM 107 पे गाना दिल से देसी।

0: एग्जैक्ट 6 मिनट का ये गाना आपने सुना एफएम 107 पे, और उम्मीद है कि गाड़ी कर धीमी कर ली होगी 80 की स्पीड पे, तो इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचे होंगे घर और ये गाना पूरा मुकम्मल सुन लिया होगा।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: दिल से देसी, और आज की रिक्वेस्ट बेहतरीन है। जिस तरह से आप लोगों ने 90s के गाने की रिक्वेस्ट करी है, लाजवाब ये गाने हैं। फिलहाल 4:20 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और भाई ऐसे गाने हैं, मुझे लग रहा है कि या तो आज जो बाहर सुन रहे हैं उनके आंखों में पानी आ जाएगा। आंखों में पानी आ जाता है तो बाहर धुंधला दिखता है, इसलिए बाबू एसी चला के रखना कि पानी सूख जाए। और या तो मैं रोकर जाऊँगा कि याद आ गई थी बस। क्या हो गया, क्यों रो रहे? नहीं बस था एक कोई। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने कह दिया कि तुझे याद न मेरी आई। ये प्ले कर दो। तो ये ऐसे गाने जो हैं, आज अगर गाड़ी चलाते हुए आपको आपके साथ वाली कार में, जहां यू नो सिग्नल पे रुकी हुई कार में कोई रोता हुए आंसू पोछता हुआ दुख जाए, तो सोच लेना एफएम 107 पे किसी ने रिक्वेस्ट करी है और वो आदमी रो रहा है इसलिए क्योंकि गाने ऐसे क्योंकि 90s के गाने काफ़ी कुछ याद भी दिला देते हैं ना। ऐसे वैसे थोड़ी ये गाने एक्चुअली में किसी इमोशन से एसोसिएट करते हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यादगार हो जाते हैं। वेल, कुछ लोगों के गाने हैं उन पर आते हैं। मुमताज़ भाई ने कहा है तू निकला छुपा रुस्तम, ये गाना प्ले कर दो। तो पहली जो फरमाइश है वो मुमताज़ भाई की मैं प्ले कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मकसूद भाई ने कहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्ले कर दो। ये थोड़ा रुक कर प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और थे, उन्होंने ये कहा है प्ले करने को, यह तुझे याद न मेरी आई, भाई अजमल भाई का। तो सबसे पहले मुमताज़, फिर अजमल, उसके बाद मकसूद भाई का गाना आएगा एफएम 107 पे, ठीक है? तो ये तीन बैक टू बैक सॉन्ग जो है मैं प्ले करने वाला हूँ। बाकी मैसेज भी जल्दी से पढ़ लेते हैं भाई, आप लोगों के गाने जो हैं जो रिक्वेस्ट किए मैं ज़रूर प्ले करूँगा, लेकिन वक्त का जो मुख्तसर होना है इसके वजह से थोड़ा सा टाइम जब कम होता है तो इतने गाने नहीं प्ले हो पाते। अरबाज का कहना है अस्सलाम वालेकुम सर, आपको किसी याद ना आई घर जाकर याद दिला देगा नहीं भाई मुझे किसी की याद नहीं है, मतलब हो जाता है जैसे फैमिली मेंबर्स कवर देख रहे हो फैमिली मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। हुसैन साहब ने कहा है गाना प्ले करने को, मौका मिलेगा तो हम फुल, अरे क्या बात है, हम बता देंगे, ठीक है। ये दिलवाले का गाना सुनना चाहते हैं, बट ये 90s का है गाना, आई विल चेक कि अगर ये गाना उसी वक्त का है तो। फिर एक और ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, मैं राशिद, कैसे हो आप? ओ प्रिया प्रिया तुम सा नहीं कोई प्रिया। राशिद भाई कौन, ये सॉन्ग प्लीज़ लगा दे, मेरा रेडियो ख़राब हो गया था बट अब ठीक करा लिया है और काफ़ी मज़ा आता है गाना सुनते सुनते ड्राइविंग में, ड्राइविंग का मज़ा लेने में। बिल्कुल यही तो लाइफ है भाई, ड्राइविंग करते हुए अच्छा गाना अगर आ जाए तो फिर इंसान जो है जो निकला हो है ना दोहा की तरफ के लिए वगैरह से, तो अलखोर भी होकर चला आए। बस गाना अच्छा हो, है ना, गाना अच्छा हो तो इंसान थोड़ा लॉन्ग ड्राइव कर भी ले, ना दिल कर रहा हो जब भी। तो राशिद भाई थोड़ा सा रुकेंगे, अपन ये गाना भी प्ले करेंगे, लेकिन पहले ये तीन गाने आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये गाना प्ले करता हूँ। फिर एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई अगर हो सके तो दिल तोड़ दिया सॉन्ग बाय अलका याग्निक, आबिदुर रहमान ने कहा है। मैं ये वाला गाना भी ढूंढ रहा हूँ, अगर ये गाना मिल जाएगा तो मैं बिल्कुल प्ले करूँगा। फिलहाल सबसे पहले जो गाना आ रहा है वो है तू निकला छुपा रुस्तम बाय मुमताज, क्योंकि मुमताज गाना नहीं, ये रिक्वेस्ट किया है मुमताज ने। उसके बाद अजमल भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना आएगा, जिसका नाम कहाँ गया, हाँ ये जिसका नाम है मेरा दिल भी कितना पागल है, नहीं ये तो मकसूद भाई का है, तुझे याद ना मेरी आई, ये था अजमल भाई का।

हाँ भाई, टिश्यू पेपर नहीं मिल रहा है, मेरे आंसू बहुत ज्यादा आ गए, कहीं दिख तो नहीं रहा है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। मतलब ये जो आस्तीन है ये तो गीली हो ही गई है। हाँ मतलब इससे मैं पूछ पा रहा हूँ, मेरा हाथ तो पहुंच जाता है। तो जहाँ मतलब ये एक जमाना है जहाँ पर बॉलीवुड सॉरी ये बॉडी दिखाने वाली दिनों में अपन इसको आंसुओं से गीला कर रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते, आपकी रिक्वेस्ट ही ऐसी है क्या, अभी आगे और आ रहा है, चिंता मत करो। अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 पे ये शो द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपकी अपनी मर्जी के गाने प्ले हो रहे हैं। और बाकी देखो लोगों ने कमेंट भी करना शुरू कर दिया है, गुड इवनिंग ब्रो, कैसे हो, इतनी दुखी सॉन्ग्स, सब खैर है ना, टिश्यू बॉक्स खोलने पर आ गया, आंसू रुक नहीं रहे। कैसर साहब के आंसू रुक नहीं रहे, कैसर साहब सिर्फ आप नहीं है इस रेस में, हम भी आगे हैं। क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें अपना कोई काम नहीं है। हेलो, गुड आफ्टरनून, पहली बार मोहब्बत की है वजीर भाई, क्या हाल खबर है, माय नेम इज नौशाद, पहली बार मोहब्बत की है, ये बिल्कुल मैं प्ले कर देता हूँ नौशाद साहब के लिए। फिर ये मैसेज है नसीम साहब का, कहते हैं मियां फज्जू घर से खा के आए हो क्या, पुराने गाने सुना रहे हो, कितनी चाहत दिल में छुपा बैठे हैं। पहले तो ये मैं गाना ही ढूंढने लग गया था, कितनी चाहत दिल में छुपा बैठे हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाला जब मैसेज पढ़ा तो पता चला ये टॉन्ट है। देखो भाई मैं साफ साफ बता दूं, घर में कोई मामला नहीं है, आज है 90s का थीम, ठीक है, उस 90s के थीम में लोगों ने डिसाइड किया है कि आज फजील को रुलाएंगे या फिर जितने भी कार चलाने वाले हैं उनकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। अभी जो घर भी पहुंच रहा है ना, खुशी खुशी पहुंच रहा होगा, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, घर पहुंचते ही बेगम पानी, पहली बार ऐसा होगा कि पानी पीछे क्या हो गया, ऑफिस में कुछ चल रहा गड़बड़।

चल रहा है क्या? तो ये रिक्वेस्ट शो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप ऐसे सैड सॉन्ग आपने रिक्वेस्ट करी, घर पहुंचे पहली बार आपके सामने ट्रे में पानी आ रहा है क्योंकि आपके आंसू में है पानी. कि ए जी सुनिए, क्या हो गया? कोई बात है क्या? आपको किसी ने कुछ कहा है? हैं, आप बताइए. मेरी बहन ने कुछ कहा है? मेरी अम्मी ने? मैं सबसे पहले सामने खड़ी हो जाऊंगी, आप बताएं हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? तो आज अगर आज आपको पहली बार पानी मिले ट्रे में तो समझ जाएगा कुछ तो गाने बेहतरीन प्ले हुए हैं आज. बाकी थैंक यू सो मच फॉर सॉन्ग. अनुज इनका नाम है, बहुत शुक्रिया भाई. मैं मेरे से तो कहा जा रहा है, मैं बस प्ले कर रहा हूँ. मजरुद्दीन ने कहा है अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, मज़ा आ रहा है 90 सॉन्ग्स सुन के, प्लीज़ कीप इट अप. थैंक यू. फिर ये है सलाम वालेकुम असलम यूसुफ भाई. फजील, वैसे तो बहुत 90s के हिट हैं, आज एक सॉन्ग बताऊंगा 90s का हिट है, बहुत ही कम सुना होगा, जो बहुत अच्छा है. एक लड़की है एक लड़का है हकीकत से, अजय देवगन और तब्बू हैं, प्ले कर दें. फजील, इतने सारे प्यारे प्यारे 90s के हिट्स हैं लेकिन ये स्लो सॉन्ग्स क्यों प्ले हो रहे हैं? यार रिक्वेस्ट, ये तो ऐसा हो गया कि उधर से यूसुफ भाई कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये तुम लोगों को पता नहीं कैसे गाने प्ले कर रहे हैं? रिक्वेस्ट है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ. तो आप जिस तरह से रिक्वेस्ट लोग करेंगे अपन वही प्ले कर देंगे. लगता है शेरनी ने कुछ सैड किया है आपको. आज शेर कोड़े खा के आया है. एम के साहब ने ये जो है टॉन्ट ले लिया. ठीक है, मैं ज्यादा इस बारे में सोचूंगा नहीं, घर से जो भी हुआ. इमरान खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, कैसे हो भाई? गाना सुनना है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही. देख रहे हैं, अब जब रिक्वेस्ट ऐसी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ. वैसे रिक्वेस्ट का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, अब हम गेम खेलने के पड़ाव पे आ चुके हैं. 4:41 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ऑलरेडी दो गाने हमने यहाँ पर बना के रखे हैं. पहली पहली बार मोहब्बत की है पहला गाना, और फिर कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया. ये दोनों गाने अच्छे हैं, आप ये कह नहीं सकते कि इसमें आंसू आ जाएंगे. ऑल दो आंसू आ सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी इन गानों से यादें कैसी जुड़ी हुई हैं. समझ रहे हो मेरी बात? बाकी तो समझदार तो बैठे हैं. सलाम भाई, एक बात बताएं, जब सॉन्ग आप प्ले करते हैं क्या आप वीडियो भी देखते हैं सॉन्ग की? नहीं मेरा भाई मुबीन, मैं इतना हूं मैं, लेकिन इतना शौकीन नहीं. मैं ये वीडियो नहीं देखता, ये तो बस देखो कितने दिन, आज 29 तारीख हो गए, तकरीबन एक महीने से शो कर रहे हैं, पहली बार 90s के सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ. और देख लो, इसीलिए नहीं प्ले करता कि ऐसे सैड सॉन्ग लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाए. आज जितने भी टिश्यू पेपर बनाने वाली फैक्ट्री है उनके काम बहुत चलेंगे कि अरे एकदम से डिमांड बढ़ गई. 29 तारीख को डिमांड बढ़ी है भाई साहब, क्या हुआ है पता लगाओ, पूरे शहर में पता लगाओ 29 तारीख को ऐसा क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई है, सेल्स अच्छी हुई है. आगे बढ़ते हैं. ये मैसेज हिशाम साहब का है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई. फिर एक और ये मैसेज है उस्मान साहब का, वालेकुम अस्सलाम. प्लीज प्ले डोंट फॉरगेट विजय पत, अजय देवगन और तब्बू सिंगर कुमार सानू, गाने का नाम क्या है? दिल दे दिया है, प्लीज प्ले. फिर राहों में उनसे मुलाकात हो गई. भाई थोड़ा सा मूवी का नाम बताएं, क्योंकि राहों में उनका मुलाकात ये वाले मिल नहीं रहे मेरे भाई. थैंक्स फॉर द सॉन्ग आसिफ, थैंक यू मेरा भाई. फिर ये हिशाम भाई का मैसेज, हाँ मैंने पढ़ दिया है. ये ऊपर चलते हुए क्या लिखा है कैसर भाई ने, बस कर दें बेहोश करेंगे अब. अरे अभी तो 18 मिनट बाकी है, बेहोश होने के बाद का जो सीन होता है कोमा. मे बी वहां तक का भी माहौल है, इसलिए लकड़ी साथ में रखना. कहते ना वो लकड़ी सूंघ लो तो सही हो जाता है, ये सब फिजूल की बातें. आगे फजील भाई, बहुत सालों बाद खुद को रास्ते पे रास्ते पे आने लगा हूं. आप अब खुदा के लिए मजीद हमारे जख्मों पर नमक न लगाओ. मुदश्शिर मंगाश. ओके, अच्छा मतलब बहुत सालों बाद अपने आप को इन्होंने पैरों पे खड़ा किया है, उस दुख और दर्द से निकले. और फजील भाई फिर से कुरेद रहे, ये आखिरी बार है कि मैं 90s का सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ. ठीक है भाई, इसके बाद मैं एकदम तड़कते भड़कते सॉन्ग कल से प्ले करूंगा. लेकिन फिर करिश्मा कपूर आ जाएंगे, फिर कोई ना कोई सॉन्ग जो है कह देगा कि भाई रुलाने वाला एक सॉन्ग हो जाए, टिश्यू पेपर बहुत दिन से बिके नहीं है. फिर यह है, नाम तो लिखा नहीं आया, अच्छा लिखा है, नईम ने कहा है प्लीज प्ले माय फेवरेट सॉन्ग, हो गया है तुझे को तो प्यार से जना. ये भी अच्छा गाना है, लेकिन ऑलरेडी 43 हो गए हमारे स्टूडियो की घड़ी में और दो गाने हमने निकाल के रखे हैं. फिर ये मैसेज है अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, एक सॉन्ग 90s का हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई, मूवी नेम यलगार. मोहिश साहब बहुत लेट हो गया है, माजरत मेरा भाई. फिर एक और है, प्लीज प्ले अब तेरे बिन जी लेंगे.

हम, या फिर ये वाला मेरे दिल भी कितना पागल है, प्ले तो हो गया यार मेरा दिल भी कितना पागल है कि नहीं? हाँ अभी तो प्ले किया, कितने सॉन्ग, मेरा दिल भी कितना पागल है 436 पे आपने कहा, हाँ तो प्ले हो गया अभी लास्ट, यही तो प्ले हुआ है। बाकी अब कल रिक्वेस्ट कर लिएगा भाई, बैक टू बैक इतने सारे रिक्वेस्ट नहीं प्ले कर सकते प्लीज़। राहू में उनसे मुलाकात हो गई, नहीं मिल रहा मेरा भाई, ये मैंने ढूंढा, विजय पथ का गाना है, अब लेट हो गया भाई, कल पक्का अगर सैड सॉन्ग हुआ तो। बाकी ये दो गाने प्ले कर रहा हूँ, ये गाना है पहली पहली बार मोहब्बत की है, ये किसने किया है देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। नौशाद साहब ने कहा है पहली बार मोहब्बत, फिर एक और ये गाना कहाँ गया, कितना प्यार तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा, किसने किया है ये, कौन है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, भाई दिख नहीं रहा हो तुम कहीं, तो नीचे चले गए नाम, मैं भूल रहा हूँ। ये है आई गेस घर से निकलता, नहीं ये भी नहीं है, कितना प्यारा, नहीं भाई मिल जाओ प्लीज, DDLJ का टाइटल सॉन्ग प्ले कर दो, नहीं भाई अब रुक जाओ, सबर सबर, इतने सारे मैसेज में कहाँ से पढूं। हाँ राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है, बशीद भाई कह रहे थे कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, बशीद के रिक्वेस्ट पे ये दो गाने आ रहे हैं आपके लिए FM 107 पे। सबसे पहले पहली बार मोहब्बत की है, जल्दी से ये सॉन्ग सुनिए और फिर आकर अपन गेम खेलेंगे।

0: बात है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ट्रैक सुना आपने FM 107 पे।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: हाँ मुझे पता है ये गाना प्ले करना है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, लेकिन उससे पहले गेम हो जाए पहचान कौन था। बिल्कुल, तो आज 90s के गाने हमने प्ले किए, तो 90s के गाने जो है मैं पहचानवाने की कोशिश करूंगा आपसे। तो ये गाना ऐसा होता है, मतलब लिरिक्स मैं प्ले करता हूं गाने की, और ये लिरिक्स बीच से कहीं से भी प्ले कर दिए जाते हैं, और आपको गाना पहचानना होता है कि गाने का असल नाम क्या है। वेल, आज क्योंकि 90s है तो मुझे लग रहा है कि ये सुपर इजी होने वाला है आपके लिए, लेकिन टफ करने की हल्की कोशिश मैंने की है। क्या आप गाना पहचान पाते हैं 90s का या नहीं, ये आज मैं देखूंगा। गाना पहचानने के लिए आपको बस इतना करना है, जो मैं म्यूजिक प्ले करूंगा उसको गौर से सुनिए और बताइए गाने का असली नाम क्या है। आप बता सकते हैं सिंगर भी कौन है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, नंबर है 666-22107। तो सबसे पहला गाना जो आज आपको पहचानना है वो है ये।

बस बस बस इसी के बाद तो माहौल फिर पता चल जाएगा आप लोग। तो सही जवाब बताइए इस गाने का नाम क्या है, आप सिंगर का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल ये मैसेज है, नाम लिखा है सिंगर का बट पूरा नाम भी नहीं लिखा और सही भी नहीं लिखा है। मैं समझ गया कि आप जिस सिंगर का नाम लिख रहे हैं वो सिंगर का नाम आपने गलत लिखा है, बट ठीक है मकसूद भाई, वो सब तो ठीक है मकसूद भाई। आपने शिकायत करी थी कि नहीं करी थी आज सुबह, आप कह रहे थे कल, तो मैंने सुना नहीं ना उधर से। श्याम भाई का मैसेज है, बिल्कुल सही मैसेज है, सही जवाब है। कैसर भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर उसके बाद हुसैन ने कहा है, अनु मलिक नहीं इसमें, ये जो आवाज़ है ये बताइए। बाकी ये मैसेज है, आज से पहले कभी इतने गर्मी में खून के आंसू नहीं रोया भाई, मेरा कोई नहीं है फिर भी याद आ गई। ये भी एक अलग दर्द है। एक गाना था बहुत जमाने पहले, मैंने सुना था, वो ही ऐसा होता था कि कोई हो या ना हो लेकिन आंसू आ जाते हैं फिर। बिल्कुल सही जवाब बताया है आपने, इनका नाम क्या है भाई का नाम जिन्होंने सही जवाब बताया, हुसैन भाई ने बिल्कुल सही जवाब बताया। बाकी ऐसे सैड सॉन्ग नहीं है यार, गाने तो अच्छे थे। दानिश भाई ने कहा है कि गाने का नाम तो नहीं लेकिन सिंगर का नाम जरूर बता दिया है, बहुत ही उम्दा। फिर एक और ये मैसेज है, मोहम्मद इमरान, इन्होंने भी सही जवाब बताया है। फहद ने भी सही जवाब बताया, बहुत ही उम्दा, क्या खेल का मुजाहरा किया है। मुबीन भाई ने भी सही जवाब बताया, यूसुफ भाई से तो मतलब उम्मीद थी ही, इन्होंने सही जवाब बताया। सलाम लिखा है गाजी साहब ने, वालेकुम अस्सलाम। गाजी भाई ऐसा लग रहे हैं कि भयंकर वाले ऑफिस में बैठे हैं, और ये वाले ऑफिस हैं जैसे मतलब आप इनके केबिन में अगर जाते तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं नहीं नहीं, प्रोफाइल पिक्चर तो एकदम कर्री लगाई हुई है। ऐसा वाला है कि ये सिर्फ मॉल से ख़रीदारी करते हैं, और वो वाला मॉल जिसमें अमीर लोग जाते हैं, गरीब लोग तो जाते भी नहीं है। अच्छा, डेस्क पे जो सामान रखे हैं उस सामान को देख

बस अब बताना है इस गाने का नाम. ये थोड़ा टफ मैंने सोचा होगा लोगों के लिए, ऑल्दो बहुत ही आसान है इस गाने का नाम पहचानना या इस गाने को पहचानना अगर आपने इसे प्रॉपर सुना हो उस वक्त उस दौर.

एक दूजे के लिए. नहीं, गलत जवाब है. मोहिशा ने कहा है लड़का. बिल्कुल सही जवाब मोहिशा. ये लड़का मोहम्मद साहब ने बताया है. बिल्कुल सही जवाब. और कैसर साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. और कौन है महबूब मेरे अच्छा ये मूवी नेम बता रहे हैं. ये अगर गाना आप बता रहे हैं तो गलत है. फिर हुसैन भाई ने सही जवाब दे दिया. अब मोहम्मद रफ़ी ने भी सही जवाब दिया है. और ये एक और भाई हैं, क्या है इनका नाम, अब्दुल एस आर के. और सही जवाब है इस गाने का ये.

0: बात है। और इसी के साथ तीसरा गाना पहचाने।
1: दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या।
0: बस बस बस बस बताइए, फहद भाई ने भी सही जवाब दे दिया है। जल्दी से बताएं इस गाने का नाम। मुबीन भाई ने सही जवाब दिया, मोही ने सही जवाब दिया है, फिर फैजल ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और यूसुफ भाई ने सही जवाब दिया, मकसूद भाई ने सही जवाब दिया है, अब्दुल एस आर के ने सही जवाब दिया है। बहुत ही उम्दा, क्या खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। कैसर साहब टाइपिंग कर रहे हैं, अभी तक आया तो जवाब नहीं है। भाई सॉरी ये लेट हो गया। आशा भोसले जी की आवाज़ थी बिल्कुल सही, ये दिल है दीवाना ये दिल। ये कहा है किसने, नाम क्या है भाई का, साबिर भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। फिर हेशाम भाई ने सही जवाब दिया, कैसर ने सही जवाब दिया, मुमताज़ ने सही जवाब दिया है कराची से, अल्ताफ ने परदेश, अल्ताफ नहीं मेरा भाई ये गाना तो नहीं है, यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और इस गाने का नाम है

आप सब ने बेहतरीन मुजाहरा किया, इसी के साथ अब बेहतरीन से गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या गेम खेला है आपने, लाजवाब। और उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में ये रिक्वेस्ट किया हुआ सॉन्ग आपके लिए, आज 90s का आखिरी दिन था भाई साहब इस महीने का अगले महीने भी आऊंगा। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अब आपसे कल शाम 4 बजे नई थीम के साथ। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। टिश्यू बॉक्स हटा दो, बस हो गया यार।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: आइए आइए बातों के सर्कस में आपका स्वागत है। अभी हम शेर को कुदाएंगे सीधा आग के रिंग में से। देर तो आइए

आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब हाजिर है। हाँ जी सलाम साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई साहब, गाड़ी में वॉल्यूम कम नहीं होनी चाहिए जरा सी भी, ठीक है? बाकी व्हाट्सएप आपको पता ही है, 666-221-07 है, बढ़िया नंबर है, इस पे आप जो है हमारे धुरे मैसेज भेज दिया करो। और आज सुबह सुबह आवारापन 2 का ट्रेलर आया भाई, भाई भाई भाई भाई मैं पता है मैं इतने नर्वस हो रहा था जैसे मेरे स्कूल का रिजल्ट आने वाला हो। मैं सोच रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, बस बढ़िया आ जाए टीजर। मौज आ गई भाई, मौज आ गई। बैकग्राउंड में तो फिर आओ का रीमेक वर्जन, वो भी मिथुन की आवाज़, ओह उफ। मैं 15-20 बार देख चुका हूँ जब से टीजर आया है, मतलब वो आजकल चल रहा ना इमरान पगलू हो गया हूँ भाई मैं। मज़ा आ गया आवारापन 2 का ट्रेलर देख के। एंड 14 अगस्त को रिलीज़ होगी, आपका भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला है। सवेरे सवेरे उठूंगा मैं, जाके देखूंगा, बढ़िया। जिसने नहीं देखा भाई ट्रेलर देख लो, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। बाकी मैसेज देख लो मैं क्या क्या आ चुके हैं मेरे पास। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग अमीर भाई। गुड इवनिंग मेरे भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया चल रहा है। ये मैसेज है नौशाद भाई का, भाई नौशाद के बाद मैसेज किया है अरबाज भाई ने, कहानी सेंड कर दीजिएगा आज। ओके आलिया मेरा भाई, हाँ जी भाई आलिया, हमजा भाई क्या हाल है? एक मैसेज है सलाम भाई जी, वालेकुम अस्सलाम भाई जी, मुबीन भाई क्या हाल है, क्या क्या एंट्री है, चस आ गई भाई, थैंक यू भाई। प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, रिंग मास्टर लिख रहे हैं। हाँ जी रिंग मास्टर, हाँ जी यूसुफ भाई क्या हाल है? और शायद भाई लिखते हैं क्या हाल है जी, बढ़िया। और अब्दुल करीम साहब, मकसूद साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं बिफोर आई कंटिन्यू आज की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा बता दूं, मैं पहले ही वार्न कर दे रहा हूं आपको, वार्निंग दे रहा हूं, फेयर वार्निंग, ओके। आज की कहानी काफ़ी टेक्निकल है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो सकती है, एविएशन की कहानी है आज की। मगर इस कहानी को बनाने में मेरे को भाई 6-7 घंटे लग गए हैं। मैं कल शाम से बैठा हूँ इस कहानी पे और इसको पूरा स्ट्रक्चर करते करते करते करते करते करते सवेरे तक ये काम ख़त्म हुआ है। एंड इस कहानी ने मतलब मेरे अंदर के स्टूडेंट को जितना जितना ज़्यादा यूज़ करना था उतना यूज़ कर लिया है। इतनी पढ़ाई लास्ट टाइम मैंने स्कूल में ही करी थी जितना इसने कराई है मुझसे। मैं बताऊँ आपको, आज आज मेरा एग्ज़ाम है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जितने भी तैयारी करके आया हूँ उस हिसाब से मुझे अभी जहाज़ उड़ाना आ गया भाई। तो इट हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट प्रिपरेशन एवर, इतनी लंबी तैयारी किसी कहानी की आज तक मैंने नहीं करी है। तो जिनको टेक्निकल टर्म्स समझने में या इसमें दिक्कत आएगी, मैं कोशिश करूँगा कि आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँ, टेक्निकल कहानी है। बट अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से सुनेंगे एंड यू कैन इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेन, तो आपको बहुत मजा आएगा। खान साहब लिखते हैं, यूसुफ भाई लिखते हैं, आई सॉ द ट्रेलर, अच्छा लगा, और हाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग टू हियर द ट्रेलर और रिव्यू ऑफ आवारापन 2। आवारापन 2 के बारे में कोई कुछ नहीं बोला भाई, आवारापन 2 एकदम बढ़िया ट्रेलर है, एक नंबर। एमी भाई ने, इमरान भाई ने एकदम आग लगा दी भाई, मजा आ गया भाई ट्रेलर देख के, चस आ गई, उफ क्या क्या ट्रेलर है वो, बैकग्राउंड में वो तो फिर

0: मत पूछो, मैं गूज़बम्स भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो डन है। अमन भाई लिखते हैं, अमन भाई वालेकुम अस्सलाम, लॉन्ग प्रिपरेशन भाई, बहुत लंबी तैयारी हुई है इस कहानी के चक्कर में। हुसैन भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आज फसील भाई ने हुसैन भाई वैसे ये 974 प्लेटफॉर्म है क्या? बिल्कुल सही जगह पे आए हैं आप नसीम साहब, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मैं पिक करने आया हूँ, आइए मेरे साथ। इस बार फर्स्ट डे फर्स्ट शो कन्फर्म भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो कन्फर्म है, कन्फर्म है। ये टीज़र जो आया है हमारा पंटू का, भाई आसरा बहन ने भी कहा, बहन आप ये वसीफ भाई को भी कहिए हम सब साथ में चलते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, क्या कहती हैं आप? ठीक है बहन, प्लान करो आप, मैं बता रहा हूँ बढ़िया सीट लेंगे, बढ़िया देखेंगे हमारा पंटू, सब साथ में मिल के, ये आप प्लान करो प्लीज़, मैं आपको खुद कह रहा हूँ। ये तो भाई 14 अगस्त को, आई रियली होप मेरे पास मॉर्निंग का कोई काम ना हो सबसे पहले मूवी देख जाओगे। वैसे भाई मेरे सर के ऊपर से है जानी, मी ऑल्सो सर के ऊपर से, नहीं नहीं सर सर के ऊपर से नहीं जाने देंगे। माजिद भाई ने मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, क्या हाल है भाई के? अटेंडेंस लगा दी आपकी भी, ओके। तो जैसे मैंने कह दिया है बिफोर आई प्ले अदकार खादर हुसैन खादिम साहब, वालेकुम अस्सलाम। सो आज की कहानी इट इज़ प्रिटी टेक्निकल और एविएशन की कहानी है, आपको मज़ा भी आएगा, मगर इस इतनी प्रिपरेशन मुझे आज तक किसी कहानी में नहीं लगी है, आई एम बीइंग रियली रियली ऑनेस्ट। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप इस कहानी को सुने ओ इतनी मेहनत करिए, नहीं, आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, इतनी पढ़ाई किसी कहानी के पीछे नहीं हुई है जितनी इस कहानी ने मुझसे कराई है। इट विल बी अ लॉन्ग स्टोरी एंड काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा, बट समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, एंड हाँ भाई आवारा पंटू का ट्रेलर टीजर, सॉरी अभी तो गाने आने बाकी हैं भाई, गाने आने बाकी हैं, टॉप 10 जब शो करूंगा ना मैं भर दूंगा, 1-5 सिर्फ वारा बन के गाने होंगे। अच्छा 5 बजे के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं, इवनिंग अफ्तार के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, 11:02 के बाद बोलते हैं, जाइएगा नहीं, एंड दुआ में जरा याद रखिएगा, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: क्या हाल है गामा जी, क्या चल रहा है?
1: बढ़िया भाई। तुम तो भाई चले जाओगे ग्रुप के लिए मूवी देखने?
0: भाई साहब
1: किस के लिए जाऊंगा?
0: हमारा पन्नी छोड़नी है भाई साहब, हमारा पन्नी छोड़ी जाएगी ना ना ना ना ना ना, देखनी है भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो।
1: तो मेरे से बताओ ना, मैं किसके लिए जाऊं? सर्वर भाई के लिए जाऊं? मैं
0: सर्वर भाई को पकड़ के ले आऊंगा, आप भी आ जाओ भाई। 14 अगस्त बुक कर लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ सारी पलटन चलेगी एक साथ।
1: अगस्त? हाँ भाई, मैं भी नहीं कहने लग रहा, अभी देख लो अगर प्रोग्राम बनेगा तो।
0: भाई सवेरे सवेरे पहला शो, क्या कहते हो?
1: सवेरे बढ़िया भाई, मजा आ जाएगा यार।
0: या तो पहला शो बना लो, ठीक है, या तो मैं नूगाऊ रात का शो एकदम लास्ट वाला।
1: यूं तो भाई आपके हाथ में आए।
0: अरे मेरे हाथ में क्या भाई, सबकी टाइमिंग देखनी पड़ती है ना।
1: तो भाई टेक्निकली तो आपके हाथ में है।
0: अरे तो फिर ठीक है गाबा जी डन हो गया, फिर लास्ट शो पक्का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर लास्ट शो, ये डिसाइड करके मेरे को बता देना।
1: ठीक है भाई,
0: ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे मिलके चलेंगे।
1: जी, भाई दिन देखा आपने कौन सा उस दिन?
0: भाई दिन तो फ्राइडे ही होगा, इंडिया में तो 14 तारीख को रिलीज हो रही है, सो फ्राइडे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली।
1: यहाँ पे मेरे ख्याल से एक दिन पहले लग जाती है,
0: एक दिन पहले लग जाती है ना। हाँ तो अगर 14 को भी लगेगी तब भी, अगर 13 को लगेगी तो थर्सडे, और 14 को रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली फ्राइडे इंडिया के हिसाब से।
1: ठीक है भाई, डन हो गया,
0: डन हो गया ना,
1: रिमाइंडर दे दूंगा।
0: डन है भाई, डन है, बता देना मेरे को, ठीक है। और गावा जी, कभी आपने कोई देसी चीज करी जिंदगी में? अभी मैं बता रहा था लोगों को, कह रहा था
1: दिल्ली की याद बताऊंगा, चंडीगढ़ की भाई।
0: भाई चंडीगढ़ की बता दो भाई, क्या हुआ है?
1: अच्छा भाई एक चीज तो आप भूल गए यार,
0: क्या?
1: दिल्ली और चंडीगढ़ में कॉमन है जो लोग शूज साफ करते हैं ना ऑन द स्पॉट।
0: हाँ अरे भाई, ये बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने। हाँ बिल्कुल
1: भाई, पता नहीं उनके पास बोतल में कौन सा केमिकल होता है,
0: हाँ हाँ,
1: विद इन 10 to 15 minutes भाई वो ऐसे चमका देते हैं ना स्पोर्ट्स शू। नॉर्मल तो चलो उसके ऊपर तो पॉलिश ही मारनी होती है जो फॉर्मल होता है, शूज वो लोग ऐसे चमकाते हैं ना, आप यकीन मानो भाई जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू शू हो आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो कुछ अलग केमिकल होता है वो। और वो पता है वो सफेद जूते भी साफ कर लेते हैं, वो बैठे होते हैं पेड़ के नीचे छांव में, बढ़िया एकदम सफेद जूतों का ऐसा चमकार मारते हैं ना, इसकी हद नहीं, मजा आ जाता है भाई।
1: भाई वो बंदा पकड़ते ही सफेद जूतों वाला सबसे पहले।
0: ज्यादा उसमें सफेदी लगाना आसान ही रहती है। कभी आपने कान साफ कराए आबा जी, कभी कहीं पर?
1: कान भाई मैंने करवाए हैं, मगर कबीर भाई हर किसी से नहीं साफ करवाने चाहिए।
0: हाँ बहुत बहुत कर्रा काम हो जाता है भाई वो, ऐसा लगता है कि ये मेरे ही कान है, इतने तो कभी मुझे सुनाई नहीं दिया। ये है उस चीज़।
1: एक्चुअली कबीर भाई चीज पता क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है अपने कान का जो पर्दा है।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: तो उसके साथ तो आप रिस्क नहीं ले सकते।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: हाँ वैसे चौड़बाजी में तो किया है, एक दो बार करवाए हैं, मगर वो पता नहीं क्या भाई जब वो करके हटते हैं ना तो आवाज ही नहीं आती।
0: हाँ वो तो है भाई, वो साफ भी तो ऐसे करते हैं, पूरी मुंडी पकड़ पकड़ के, सर पूरा पकड़ के फिर साफ करते हैं, एकदम अंदर ही घुस जाएगा कान में। वो है। और पेड़ के नीचे बाल कटवाने से कभी बाल पड़ा कभी आपका?
1: वो तो नॉर्मल चीज है यार,
0: नॉर्मल चीज है ना
1: भाई। और वहाँ पे इतना मजा आता है ना, आप यकीन मानिए जहाँ पे नाई की दुकान होगी ना,
0: हाँ,
1: तो उसके आसपास चाय वाले की दुकान भी जरूर
0: होगी। क्या याद दिला दिया यार बाबा जी, क्या याद दिला दिया, दोनों मिल बांट के चाय भी रोते हो भाई साहब, ब्रेक लेता हूँ, क्रीम लगा के चाय भी रात उसकी बात ही कुछ और है। क्या बात है, अच्छी बात है गाबा जी, आपको तो पूरा हक बनता है बोलने का कि दिल से देसी भाई, बढ़िया, ये अच्छा लगा मुझे जान के।
1: और कबीर भाई वहाँ पे चर्चा कौन सी चल रही होती है वो पता है आपको?
0: चर्चा तो भाई सारी पॉलिटिकल चल रही होती है,
1: पॉलिटिकल
0: पॉलिटिकल चल रही होती है, बीच में बात शुरू होती है, और बताओ भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोलेगा जी दो हैं जी गांव में। तो ये भी बातें होती रहती है, पर वो कॉन्वर्सेशन बड़ी रॉ होती है, उसमें कुछ बनावटी पना नहीं होता, वो सबसे खूबसूरत बात है उस कॉन्वर्सेशन
1: नहीं, वो स्क्रिप्टेड नहीं ना होती भाई।
0: हाँ
1: वो लोग क्योंकि ऐसे हैं, उन लोगों का भी तजर्बा है ना, उनके पास हर तरह का बंदा आता है, ये तो है नहीं भी एक तरह का बंदा आ गया और चला गया। जिसको बोलते हैं ना ये बंदे ने घाट घाट का पानी पिया है, उन्होंने हर तरह के बंदे देखे हैं।
0: करेक्ट करेक्ट, नहीं उसकी बात ही कुछ और है यार। पर गाबा जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये बात छेड़ी, क्योंकि एक देसी बंदे की तलाश थी मुझे, बड़ी दिल से खुशी हुई कि आपने बात बोली। बाकी अपना फोकस 14 अगस्त का बोलो ना।
1: जी बिल्कुल, एक बात और जो आपने बोला ना, वो लकड़ी के डंडे के आसपास घुमाते हैं वो मीठे वाला,
0: हाँ
1: हाँ, तो उसके जैसा ही एक और होता है वो फ्लफी सा,
0: वो
1: हमारे बुढ़िया के बाल बोलते हैं, बूढ़ी माई, बूढ़ी माई का जाता,
0: बूढ़ी माई। हाँ यस यस यस, हाँ तो वो भी तो लपेट के देते हैं।
1: जी बिल्कुल, एक वो एक देसी चीज और है यार कबीर भाई, चीजें तो बहुत हैं। एक चीज का मैं और जिक्र करता हूँ, लास्ट में जो बेर होते हैं ना छोटे छोटे लाल रंग वाले,
0: अरे भाई बड़े मजा उस वो वही बेचते थे, वो अनारदाना भी देते थे, अनारदाना और एक अलग सा उनका वो होता था पता नहीं क्या होता था, वो लाल लाल सा पाउडर बड़ा जबरदस्त होता यार, वो मजा आ जाता,
1: बड़ा जबरदस्त होता था भाई, वो शेक करके हिला के देते थे, इतना मजा आता था ना वो बेर खाने का छोटे छोटे।
0: हाँ मजा दिला दिया यार गावा जी, वहीं चला गया फिर मैं, ये टेंशन दे दी भाई आपने, पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि सबसे पहले आपने कॉल करके इस बारे में बात करी, दिल से खुशी हुई मेरे भाई।
1: भाई कसम से मेरे तभी मजा आया अपने लाडले भाई के लिए बात
0: करें। मेरा भाई
1: मना इंतजार रहेगा हमारा पंटू का भाई,
0: डन है भाई, डन हो गया एकदम, बढ़िया हो गया, बता देना ठीक है,
1: टेक्निकली फ्रॉम योर साइड भाई,
0: डन है भाई एकदम सॉलिड,
1: ओके भाई
0: ठीक है भाई, अपना ख्याल रखो। तो जी गाबा जी ने बता दिया, बाकी अगली कॉल की तरफ बढ़ेंगे, एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हो कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई एकदम, और सुनाओ
2: आज आज कैसे देसी देसी याद आ रही है
0: भाई? ये तो डेली आती है याद भाई, आप बताएं।
2: अब बढ़िया मजा आ रहा है।
0: हाँ बताओ,
2: सवाल ऐसा होना चाहिए मतलब क्या देसी चीजें आपने नहीं करी? मेरे ख्याल से लोगों ने लगभग जो अपने है देसी वाला,
0: अरे तो लोगों ने तो आधी चीजें नहीं करी इसलिए मैंने पूछा, जो करी है वही बता दो, क्या किया आपने?
2: सारी चीजें करी है, बताओ क्या नहीं किया। देखो 1993 की पैदाइश है तो लगभग ये चीजें तो हम लोगों के लिए तो नॉर्मल थी।
0: हाँ बिल्कुल
2: है कि नहीं।
0: हाँ
2: हर चीज वो जो है मतलब जैसे कि बाल कटवाना है, चलो ठीक है उधर उसके पास बाल कटवाने चले गए, वो भी उधर गली में बैठा होता है पेड़ के नीचे शीशा लगा के, उधर उसके आसन भी चल रहा है, मतलब कुछ जैसे कि अगर शहर में चले गए तो भाई चलो ठीक है उधर टीवी चल रहा है, उसने टीवी लगा रखा है, डिश लगी
0: क्या
2: है।
0: बात क्या बात छेड़ दी, क्या बात छेड़ दी भाई साहब, पूरा माहौल सेट कर दिया आपने, पूरा माहौल सेट कर दिया।
2: अगर आप आपको याद हो तो पहले गलियों में एक नीर बेचने वाला आता था, वो बड़ा मीठा सा पानी होता था यार।
0: और
2: वो भी बहुत वो अब चीज वो नहीं मिलता, वो अब नहीं मिलता,
0: अब नहीं आता भाई,
2: सारी चीजें मिल
0: जाएंगी। मैं बता रहा हूँ इनफैक्ट जो गोलगप्पे और टिक्की खाने के शौकीन है ना, उन्होंने अगर वो गली के टिक्की खा लिए होते जो जो ठेले पे लगाते थे, उनके भाई टिक्की अलग होती थी वो आलू की, इतनी फ्रेश इतनी बढ़िया,
2: सारी चीजें घर की होती थी ना उस टाइम पे, लोग बाग सब अपना उधर ही घर पे तैयार करते थे, अभी तो क्या है सब चीजें रेडीमेड मिल जाती है तो वो टेस्ट अब भूल गए।
0: हाँ वो तो नहीं मिलने वाला यार, वो तो नहीं मिलने वाला। अब कभी कभी शेफ भाई कान वान साफ कराएगा?
2: मैंने इतना ढूंढा आपके कसम से,
0: ढूंढा
2: घर का है,
0: ढूंढा
2: मैंने इतना ढूंढा उसको, मैंने मेरे को मिल जाए कहीं वो, मेरे को मिलके नहीं दिया। 3 महीने में घर पे रह के आया अभी दिल्ली में, गाँव भी गया, वो मेरे को बंदा मिला ही नहीं।
0: अरे भाई साहब आप फिर जंतर मंतर की तरफ नहीं गए होंगे? जंतर मंतर गए इंडिया गेट की तरफ?
2: नहीं यार उधर की साइड तो जाना ही नहीं होता।
0: अरे तो तभी तो वहाँ पे तो घूमते रहे मैं भाई
2: उधर की साइड यार कभी जाना ही नहीं होता, उधर की साइड बहुत कम है, शाहीन बाग से निकलना अपना ओखले से निकलना बहुत।
0: हाँ तो इधर थोड़ी मिलेंगे, वहाँ तो आदमी खड़े रहने की जगह नहीं है, वो कहाँ से लेके बैठे हैं?
2: अपनी तरफ भी आजकल उधर 40 फुटों पे घूम रहे हैं खुद दबा के
0: 40 फुटे की
2: दबा के। पहले मैंने देखे 40 फुटे पे अच्छे खासे घूमते हुए,
0: नहीं अब तो 40 फुटे का माहौल थोड़ा अलग है, पर जाना चाहिए आपको इस बार जाओ तो देखना,
2: पैर रखने की जगह नहीं उधर।
0: हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही,
2: रेस्टोरेंट उधर आ चुका है,
0: पर वहाँ जाना एक बार, इस बार छुट्टी पे जरूर जरूर जाना, मजा आ जाएगा आपको।
2: चलो इंशाल्लाह आपको घूम के आ जाएंगे, क्या मुश्किल है।
0: ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया शेफ भाई, कहानी सुनेगा बढ़िया वाली, ठीक है?
2: चलो भाई ऑनलाइन एमबी
0: डन है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रेजेंट है सर।
0: अरे सर जी बैठिए आराम से, कहानी शुरू करते हैं।
2: ओके मेरा
0: डन है मेरा भाई, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और शेफ भाई का एक मैसेज आया, हाय हेलो मिस्टर आरजे, हाउ इज इट गोइंग ऑन, ग्लैड टू हियर मैजिकल वॉइस अगेन, आप अपना तारुफ करा दें, क्या नाम है आपको वैसे? एक मैसेज आया है अमार भाई का, लिखते हैं भाई जो सब कुछ आपने किया है लगता नहीं कि आप स्कूल गए हैं। अरे बाप रे करा इतना सब कुछ करके बैठा, लगता नहीं भाई तू पढ़ा लिखा है। भाई पढ़ाई पूरी करी है आपके भाई ने, मास्टर की डिग्री है आपके भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह। मजहरुद्दीन साहब कहते हैं एयर साफ तो नहीं कराया कभी भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोस्टली लोग राजस्थानी होते हैं और कई लोगों के कान खराब भी हो गए, हमारा तो नहीं हुआ है, हमने तो बहुत कराया बढ़िया। कहते हैं अबाउट हेयर कट, हाँ ट्री के नीचे कट किए हैं ड्यूरिंग स्टडी टाइम टू सेव सम अमाउंट, बट पैसे पूसे बचाने के लिए नहीं करवाए हमने तो, मौज करने के लिए भाई। वो जो पेड़ के नीचे बाल काटते हैं ना, जो चंपी देते हैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भाई साहब, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉल आ रही है, कॉल उठा लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई एकदम,
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: बताएं मेरी जान क्या क्या,
3: ओ,
0: क्या क्या
3: आपने मुझे गाना याद करा दिया मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे से दिन आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए
0: बैठे बिठाए याद आना चाहिए भाई
3: अरे वाह वाह आपका ये कान साफ कराने वाला तो भाई ये काम मैंने बाहर से कहीं नहीं करा

0: है, लेकिन अम्मा जो थी ना हमारी है, अल्लाह पाक जिंदगी दे, सेहत दे।
1: आमीन आमीन।
0: तो अम्मा है ना हमारे ना कान पकड़ना बिठाना और बालों में लगाने वाली पिन होती थी, करके साफ करना।
1: भाई अम्मी तो बहुत ख्याल से करती हैं, कभी आपने अम्मी तो बहुत ख्याल से अम्मी तो बहुत ख्याल से करते हैं, कभी ये बाहर वालों से कराओगे ना आपको लगेगा अरे भाई क्या कान में जाएगा क्या दिमाग में बैठेगा मेरे वो पूरा खोल खाल के पूरे सर को पकड़ के ये लग जाता है, ऐसा लगता है वो पेचकस लेके आया और कुछ स्क्रू खोल रहा है कान के अंदर, वो ऐसे सफाई करते हैं।
0: सही हाँ भाई, ये एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, लेकिन बचपन की बहुत सारी यादें और बहुत सारी मस्तियां याद आती
1: है। कभी कभी पेड़ की छांव के नीचे बाल कटवाए, हाँ कैरी तोड़ के खाइए भाई, बढ़िया। इस चक्कर में तो मौज भी आ चुकी है, बढ़िया।
0: खाली कैरी खाइए। अब क्या नाम है, लड़के मिलते थे स्पेशल, पहले चूरन ढूंढना हमने बचपन में, हमारे उधर ना एक आता था सुलमान चूरन के नाम, खट्टा मीठा बिल्कुल ना बहुत बढ़िया करके लगता था, तो हमने वो स्पेशली ढूंढना और फिर पेड़ ढूंढना जिसमें आम अच्छे वाले लगे
1: हुए, तोड़ने का अलग ही मजा आता है, अचीवमेंट लगती थी
0: वो फिर तोड़ के। और स्पेशल एक लड़का घर से चोरी लेकर आया हुआ होता था, ठीक है, रोजाना एक की जिम्मेदारी होती थी कि हाँ भाई आज तूने लेकर आने, तो वो ला के उसी वक्त नीचे बैठ के आराम से काट के खा के मसाला लगा के खा के फिर हमने कोई अगला काम करना। भाई
1: ए भाई भाई भाई फील फील,
0: डंडी से टायर घुमाना पूरा इलाका घुमाते कार ले लिए हमने।
1: अच्छा ये किया है आपने, बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिन्होंने किया उन्होंने देसी बचपन जिया भाई।
0: भाई आज एक आपको अपना एक और कारनामा बताता हूँ जो आज तक मैं सबसे छुपाता आया हूँ।
1: बताओ बताओ
0: भाई। बचपन में ना एक बार ऐसे हुआ कि मैं कोई ना घर वालों को तंग किया था, घर वालों ने गुस्सा बोला आज तो बाहर खेलने नहीं जाएगा, बोला ठीक है जी नहीं जाएंगे। मैं चला गया ऊपर छत पर अपनी, और छत ने हमारा ना एक स्टोर रूम टाइप सब कमरा बना है, बाकी छत खुली है। तो अब साइकिल मिली हुई थी, साइकिल को भाई ने उल्टा किया और टायर घुमाना शुरू कर दिया। अब वो मस्तियां करते करते सूझा यार होंठ ब्राउन कैसे होते हैं।
1: अच्छा ओके,
0: साइकिल के टायर ना होंठ रगड़ दिए।
1: अरे यार ये क्या है
0: भाई, वो मजा बड़ा आ रहा था उस वक्त। मैं नीचे घर वालों को जाके दिखाऊं शीशे में, देखो मेरे होंठ ब्राउन हो गए, आप लोग भी लिपस्टिक लगाते हो, मैंने वैसे ही कर ली है।
1: अरे
0: और
1: भाई
0: जो अगले दिन सूजे है ना होंठ,
1: ये कौन सी संगत में थे भाई, कौन से लोग थे ये
0: भाई, अकेला था और कुछ सूझ नहीं रहा था, तो जो मस्ती हाथ सूझी वो कर दी।
1: अरे भाई अल्लाह मियां बचा भाई ऐसे लोगों से।
0: आज तक भुगत रहा हूँ भाई, आज तक भुगत रहा हूँ, मेरे होश अभी तक लिटरली ब्लैक शो होते हैं सामने।
1: ये तो बच्चन साहब की आवाज में बोलना पड़ेगा, अफसोस अफसोस अफसोस। पर भाई थैंक यू सो मच
0: भाई,
1: अभी वक्त थोड़ा भाग रहा है तो कहानी सुनिएगा भाई, आप भी खुश रखिए मेरे भाई,
0: मैं आपके इंतजार में बैठा हूँ भाई।
1: बस भाई शुरू करो, बस बस बस
0: भेज भी दिएगा,
1: एक कॉल मेरी जान, बस मैं शुरू कर रहा
0: हूँ इंशाल्लाह।
1: ओके मेरे भाई,
0: अल्लाह हाफिज।
1: और भाई जान के बाद अगली कॉल हम मिला रहे हैं, ये लास्ट कॉल है, इसके बाद में पड़ेगा कहानी की तरफ की दरिया भाई। एक सेकेंड, नंबर से मिला रहा, मैं लग तो ऐसा ही रहा है नंबर सही मिला रहा हूँ मैं, लेकिन मुझसे गलत मिल जाएगा तो कोई नहीं, रॉन्ग नंबर से बात कर लेंगे। वैसे जी क्या है भाई, बहुत बढ़िया स्कूल के दिनों में शरारत, एक नौ शरारत अबू साथ बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: हेलो
1: भाई, Hello. कबीर बात कर रहा हूँ एफएम 107 से।
2: हाँ जी
1: भाई, आपने बोला था कॉलिंग नंबर सेंड करो भाई।
2: किसका कॉलिंग नंबर?
1: आप ही ने तो मैसेज किया था मुझे, ये आप ही का नंबर है ना, आखिरी में 9086। तो आपके व्हाट्सएप पे आपका नाम डी ट्रैक लिखा हुआ है?
2: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ। तो भाई मैं 107 पे मैसेज किया था ना आपने, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार।
2: किस लिए मैसेज किया था मैंने?
1: आपने मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम भाई, फिर लिखा है खैरियत से, फिर आगे लिखा है कॉलिंग नंबर सेंड करो भाई। अच्छा ठीक है चलो, अल्लाह हाफिज भाई। लो भाई सही नंबर है भी रॉन्ग नंबर मिला है, ये तो कमाल ही हो गया। सब कुछ सही है, भाई ने मैसेज भी किया है। खैर पता नहीं, वेरी कंफ्यूजिंग। एक मैसेज और है, भाई आपने कुछ ज़्यादा ही देसी जिंदगी जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कति ग्राउंडेड भाई। एक गाने के बाद, सॉरी गाने के बाद नहीं, एक प्रोमो के बाद कहानी आ रही है। तब उसमें मैंने कह रही है क्या था बहन, मेरे मन में भी ये क्या था, कौन था ये, अरे ऐसे उधर आपने नहीं मेरा तो नहीं है हाँ मेरा तो पता नहीं anyway भाई के खामखा के स्वैग के बाद कहानी का वक्त आ गया so जो अभी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जैसे मैंने कहा बहुत टेक्निकल होने वाली है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है तो छः घंटे की मेहनत के बाद ही कहानी तैयार हुई है प्लीज़ प्लीज़ गुजारिश है सुन लेना अगर समझ में आ गया तो बहुत मज़ा आएगा ये कहानी हर किसी के लिए नहीं है मगर ये एविएशन की कहानी है सो प्रॉबली आपको अच्छी लग सकती है आई एम जस्ट होपिंग मिलते हैं सिर्फ एक प्रोमो के बाद
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

एक में से आया कबीर भाई, देसी जिंदगी का एक काम अभी करे हैं कि किसी ओरिजिनल नंबर को कॉल करें। पता नहीं भाई, मेरा तो कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या। एक मैसेज है, क्यों ऐसा क्यों आ रहा है भाई? ऐसा इसलिए आ रहा है कि आपने जो है ये मैसेज को टेम्परेरी ऑन कर रखो, मैं देखता हूँ कोई चक्कर है। मैंने लगता सी रियल डिसअपेयरिंग मैसेज ऑफ कर दी मैंने। डिसअपेयरिंग मैसेज ऑन है क्या? देखो अब नहीं जाएगा, अब ठीक आ जाएगा। ओके तो अब मैं स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। ऑलराइट, आई होप यू आर रेडी। कौन कौन लाइव सुन रहे हैं जरा हाथ खड़ा करें अपना। मैं अपना हाथ भी खड़ा कर रहा हूँ, बता देना इफ यू लिसनिंग टू बी लाइव। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म की एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा एकदम असली है। इट इज़ वेरी वेरी टेक्निकल। आज आप जहाँ सीख के जाएंगे यहाँ से मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आई एम रियली नर्वस, रियली रियली नर्वस। बहुत लंबी प्रिपरेशन के बाद लेट्स बिगिन। समय दुहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं आपको 10 साल पीछे ले चलता हूं, ठीक है? जरा चलते हैं 2016 और 3 अगस्त की तारीख थी। इस वक्त काफी ह्यूमिड, काफी ह्यूमिडिटी थी हवाओं में, और ये जो जगह थी ये थी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्लाइट के लिए 282 पैसेंजर्स, 282 पैसेंजर्स बोर्ड करने के लिए तैयार थे, फ्लाइट 521। इस जहाज में सवार होने के लिए तैयार जो लोग थे उसमें मोस्टली इंडियन वर्कर्स थे जो दुबई वापस लौट रहे थे छुट्टियों के बाद, और इनके अलावा 24 ब्रिटिशर्स थे, 24 ब्रिटिश लोग थे, 11 इमरातीज थे, और बाकी पैसेंजर्स थे 20 अलग अलग मुल्कों से। ये जो फ्लाइट थी ये ऑलमोस्ट दुबई तक 3.5 घंटे में पूरी होती है, और इस जहाज के अंदर एक सीट पर एक बंदा बैठा था 45B पर। इस पैसेंजर का नाम था मोहम्मद कादिर, और इनकी शर्ट की ऊपर वाली जेब के अंदर फोल्ड हुआ हुआ दुबई ड्यूटी फ्री का एक लॉटरी टिकट था। अब ये बात अपने बस जहन में बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, ठीक है? लेट्स मूव ऑन। ये जो जहाज था जो अभी तिरुवनंतपुरम से लेकर दुबई तक उड़ने वाला था, ये जहाज था बोइंग 777-300। पहली उड़ान इस जहाज ने भरी थी 7 मार्च 2003 को, मतलब तब से लेकर 2016 तक 13 सालों के इस पूरे दरमियान इसने 58,000 आर्स फ्लाइट पूरी करी थी, और ये इस फ्लीट का सबसे ज्यादा उड़ाया जाने वाला जहाज बन चुका था। सबसे ज्यादा यही उड़ा था पूरी इस फ्लीट में। इसने न्यूयॉर्क भी देखा, लंदन भी देखा, सिडनी और तमाम जगहें। तो आज मतलब 3 अगस्त 2016 को यह जहाज उड़ने जा रहा था दुबई के लिए। सुबह 10:30 बजे के करीब पुशबैक हुआ, उसके बाद टैक्सिंग करते हुए 4 मिनट बाद ये जहाज रनवे पर था। सारे पैसेंजर्स तैयार थे, ऑल ऑफ देम वर एक्साइटेड, फ्यू ऑफ देम वर रिटर्निंग बैक होम। इंजन को थ्रॉटल दिया गया और फिर जो आवाज आई गूंजती हुई इंजन की, उसके बाद ये टारमैक से उठा, रनवे से उड़ा और फिर आसमानों में। नीचे जहाज के अरेबियन सी, और क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि सुबह सुबह का वक्त था और दोपहर की तरफ बढ़ रहे थे, तो नीचे का पूरा समुद्र खिड़की से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे स्पार्कलिंग वाटर हो, चमक रहा था सूरज की रोशनी से। 3.5 घंटे की फ्लाइट के लिए ये जहाज अभी एयरबोर्न था। वैसे तो सब कुछ रूटीनली सब कुछ बढ़िया गया, एकदम शांत।

पर एक चीज और थी जो उनका इंतजार कर रही थी, वो थी दुबई के ऊपर की हवा, जिसका मिजाज कभी भी बदल सकता है और वो रैपिडली बदल रहा था एंड काफी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था। बहरहाल इनके कैप्टन से मिलाता हूं, जिस जहाज में हम अभी बैठे हैं, जिस जहाज की ये कहानी है, इसके कैप्टन की कमाल की कहानी है। कैप्टन जो थे वो 34 साल के थे, 34 ईयर ओल्ड इमाराती थे वो। उन्होंने इमिरेट्स ज्वाइन की थी सीधा स्कूल के बाद ही 2001 में, 19 साल की इतनी कम एज में ये सीधा ज्वाइन कर चुके थे। शुरू करा था इन्होंने एयरबस 330 पर, फिर इनकी 777 की ट्रेनिंग हुई 2009 में और कैप्टन बने 2015 में। मतलब ये जहाज 2016 में उड़ा इस फ्लाइट के लिए, तो एक साल पहले ही कैप्टन बने थे ताजे। 10 साल पहले लोग जहां पर करियर में होते हैं वहां पे ये बंदा पहले ही पहुंच चुका था। कुछ ना कुछ लोगों ने खास देखा होगा इस बंदे में, इसीलिए शायद ये बहुत जल्दी कैप्टन बन गए थे। खैर ट्रेनिंग के दौरान कुछ लेकिन चीजें पाई गई। ट्रेनिंग के दौरान जो है ट्रेनर्स ने कहा इस बंदे की जो फ्लेयरिंग टेक्निक है उस पर हम एक सवाल उठाना चाहते हैं। तो फ्लेयरिंग टेक्निक क्या होती है जहाज की, ये मैं आपको जरा पहले बता देता हूं। फ्लेयरिंग बेसिकली होती है, पायलट जो होते हैं ना वो जहाज की जो नोज होती है, जो नाक होती है, उसे ऊपर की तरफ रखते हैं, फिर जहाज की व्हील को जो उसके गियर हैं उसे जमीन से टच करवाते हैं, राइट, लैंडिंग के लिए, तो उसे फ्लेयरिंग कहते हैं। ये जो साहब थे जो पायलट अभी करंटली उड़ा रहे थे, इनके ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ एक चीज पॉइंट आउट करी थी लोगों ने कि ये फ्लेयरिंग जो है ये थोड़ी जल्दी कर देते हैं, इनकी खासियत है, कह लीजिए इनकी बुराई है, हालांकि इतनी बुरी चीज नहीं है ये, पर ये फ्लेयरिंग जब करनी चाहिए उससे पहले कर देते हैं। पर इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि इन्हें उड़ाने ना दिया जाए, सो इट वाज फाइन, बस इन्हें बता के छोड़ दिया गया। अब एक और बात थी इन कैप्टन साहब की, इनके रिकॉर्ड में एक साल पहले जब ये सिम्युलेटर में बैठे हुए थे और वहां पर इवेल्यूएटर्स बैठे हुए थे और उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो इवेल्यूएटर ने कहा चलो इसे थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। सिम्युलेटर्स जहां पे पायलट्स प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया। अब फोकस करने का जो सिस्टम है इनका थोड़ा अलग था। उन्होंने नोटिस किया जो इवेल्यूएट कर रहे थे कि ये जो पायलट है ये एक चीज पर फोकस करता है तो बाकी चीजें भूल जाता है। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है, एक चीज पर फोकस करना तो बड़ी अच्छी बात है, पर नहीं, पायलट को तमाम चीजों पे नजर रखनी होती है, एटलीस्ट चेक करना होता है। मगर इन कैप्टन साहब की क्या दिक्कत थी, ये प्रेशर में आके टनल विजन हो जाता है इनका, तो एक ही तरफ देख रहे हैं, एक ही चीज पे फोकस है, बाकी चीजें ऐसी तैसी में जाए। मगर फिर भी इनको पास कर दिया गया बता के कि ये तुम्हारी गलती है, अब पास तो हो गए। एक और लास्ट चीज है इन कैप्टन साहब की, एक साल पहले इन्होंने 66 फ्लाइट्स में ये पायलट फ्लाइंग रहे, मतलब ही वाज द वन फ्लाइंग। मसला ये था कि 66 फ्लाइट्स में से 9 फ्लाइट्स ही बस दुबई की थी, मतलब एक लैंडिंग हर 6 हफ्ते में अपनी कंट्री में, बहुत कम नंबर है ये। तो ऑन पेपर तो बढ़िया है मामला, पर अपने ही कंट्री में लैंडिंग इन्होंने सबसे कम करी थी। अब इनके साथ इनके फर्स्ट ऑफिसर जिनका नाम था जेरेमी वेब, ये 3 साल बड़े थे कैप्टन से, 37 ईयर ओल्ड थे, ऑस्ट्रेलियन थे, सिडनी से थे और इन्होंने एमिरेट्स ज्वाइन करी थी 2014 में। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, 77 की ट्रेनिंग जो होती है वो कंप्लीट करने के बाद, जस्ट ओवर एन ईयर एक्सपीरियंस के बाद ये आ गए थे यहां पर। एक साल पहले इन्होंने भी 58 लैंडिंग्स करी थी, 58 लैंडिंग्स, पर इन्होंने 58 में से 29 लैंडिंग्स दुबई में करी थी, मतलब कैप्टन साहब से 3 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफिसर को था। और इन दोनों ने ही, फर्स्ट ऑफिसर ने और कैप्टन ने, कभी भी एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया, कभी साथ में जहाज नहीं उड़ाया था। बहरहाल अब आ जाते हैं जहाज में, जहाज अभी एयरबॉर्न है, जा रहा है। जहाज जब उड़ता है इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। 2016 तक आते आते एमिरेट्स के साथ भी ये था, 500 से ज्यादा फ्लाइट्स हर दिन, अब तो और भी ज्यादा हैं, उड़ती थी, जिसका मतलब ये हुआ कि 500 डिपार्चर को मैनेज करना, उनके क्रू मेंबर्स, उनका फ्यूल, केटरिंग, शेड्यूलिंग, मेंटेनेंस, और ये सब कुछ अलग अलग नहीं हो रहा है, ये सब कुछ साथ में हो रहा है।
वो भी दुनिया के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक पर। सोचिए अब इतना कॉम्प्लेक्स काम मैनेज करने के लिए सब कुछ एकदम राइट टाइम राइट हाथों में होना बहुत जरूरी है। एमिरेट्स फ्लाइट 521 कुछ देर बाद जब दुबई के काफी करीब थी तो एक घंटे की दूरी पर थी लैंडिंग से। अब वो वक्त आ रहा था जब ये जहाज लैंडिंग करने वाला है और अप्रोच ब्रीफिंग की तरफ बढ़ा। दुबई का जो रनवे था, दुबई पे दो रनवे थे उस वक्त जहां पे लैंडिंग के लिए बताया गया था, 12 लेफ्ट और 12 राइट। इनको बताया गया कि 12 लेफ्ट एक्टिव है। हवाओं का कोई भरोसा नहीं था तो उनको यह भी कहा गया कि दूसरी साइड पे 30 लेफ्ट रनवे भी है जस्ट इन केस। और एटीसी वालों ने फिर इनको एक ब्रीफिंग दी। ये वाला पॉइंट नोट कीजिएगा, जहाज अभी हवा में एक घंटे दूर है, एटीसी वालों ने उन्हें ब्रीफिंग दी मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर की, मतलब कि अगर आप लैंडिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए। उन्हें बताया गया कि थ्रॉटल पे एक टॉगल स्विच होता है, वो आपको दबाना है और फ्लैप्स को थोड़ा रिट्रैक्ट करना है 20 पे, फिर आपको ऊपर जाना 3000 फीट पे। बस इतना बता दिया गया। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, हर बार बताया जाता है इन केस अगर ऐसा हो तो क्या करना है। अब ये याद रखिएगा, जब थ्रॉटल पे जो बटन है वो दबाया जाता है तो ऑटोमेटिकली जहाज पे थ्रॉटल सिस्टम होता है, बेसिकली एक लीवर होता है पायलट के हाथ के नीचे, राइट हैंड साइड के नीचे, ये फुल थ्रस्ट पे चला जाता है। मतलब मशीन को पता है कि जहाज अभी उतर नहीं पा रहा है और इसको वापस ऊपर जाके उड़ के एक राउंड लेके आना है, तो पायलट को मैन्युअली पुश करने की जरूरत नहीं होती। ओके, अब जैसी ब्रीफिंग खत्म हुई दुबई के मौसम की रिपोर्ट आना शुरू हुई। यह बड़ा क्रिटिकल मामला था। दुबई का टेम्परेचर, जो एम्बियंट टेम्परेचर था, ऑम्बियंट टेम्परेचर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, वो 48 डिग्री सेल्सियस था, 48 डिग्रीज। लेकिन जो रनवे का टेम्परेचर था, मतलब ये कॉन्क्रीट का बना हुआ ही रनवे, इसका टेम्परेचर था 67 डिग्रीज। मतलब झुलस रहा था ये रनवे, झुलस रहा था। एटीसी ने इसके बारे में ब्रीफिंग देना शुरू करी और फिर शुरू हुई वार्निंग, विंड शेयर वार्निंग। विंड शेयर वार्निंग दी जाती है जो भी फ्लाइट दुबई में लैंड कर रही हो गर्मियों के मौसम में, सुबह के 11:40 से लेकर दोपहर के 12:24 एक बजे के बीच में, और यह जहाज लैंड होने वाला था 12:24 पे, तो बीच में था, तो इसको विंड शेयर वार्निंग दी गई कि भाई विंड शेयर वार्निंग है। अब विंड शेयर वार्निंग मैं आपको बता देता हूं आसान शब्दों में। अब कैप्टन ने क्या किया, विंड शेयर वार्निंग को एक्टिव कर दिया और आपस में बात कर रहे थे कि विंड शेयर वार्निंग होगी तो क्या करना है। कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, कोई फ्लैप नहीं ऑन होगा, कोई गियर नहीं, बस पावर और ऑल्टीट्यूड। ये कैप्टन और दोनों आपस में बात कर रहे हैं इस टाइम पे, ये बात बड़ी जरूरी है, इसे याद रखिएगा। उन्होंने क्या बोला, अगर विंड शेयर वार्निंग आएगी तो कोई फ्लैप नहीं, कोई गियर नहीं, बस पावर और ऑल्टीट्यूड, इंजन ऑन रहेगा मस्त एकदम जहाज ऊपर। जो फर्स्ट ऑफिसर थे उन्होंने बोला, भाई मेरे साथ 3 महीने पहले ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था विंड शेयर का। कैप्टन ने बोला, हाँ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है दुबई में एक दो बार, विंड जरा सी शिफ्ट हुई थी, बस 10 नॉट की हवा बढ़ी थी, बस और कुछ नहीं यार, गोराउंड लेके वापिस आ गया। अब क्या है यह मसला है, दुबई में पूरे गर्मी के सीजन में विंड शेयर वार्निंग्स दी जाती हैं। कैप्टन ने खुद ये वार्निंग कम से कम नहीं तो 100 दफा सुनी होगी और 99 बारी इसको इग्नोर कर दिया होगा। दरअसल क्या होता है, जितनी बारी आपको वार्निंग कॉशन दिया जाता है और वो जरूरत से ज्यादा दिया जाए तो इंसान को लगता है कि हाँ ठीक है, अरे यार बोलते रहते हैं। जैसे कि आप जब जहाज में होते हैं और जब एयर होस्टेस आपको समझा रही होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है, आगे दो द्वार हैं, पीछे दो द्वार हैं, कितने लोग ध्यान से सुनते हैं? नहीं सुनते ना, नहीं सुन रहे होते, क्योंकि आपको लगता है हाँ हाँ ठीक है चले चले चले, पता है। दैट्स हाउ यू रिएक्ट, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं ये तो होगा ही नहीं। मगर क्या हो रहा था ना, ये भी हल्के में ही ले रहे थे इन सारी वार्निंग्स को। मगर दुबई के साउथ के डायरेक्शन में 300 किलोमीटर दूर लो प्रेशर सिस्टम बन रहा था, बहुत ताकतवर, जिसकी वजह से जो हवा का जो फ्लो होता है वो पूरे रीजन को बदल रहा था और गर्मी भी बेतहाशा थी। तो साउथ के बजाय वेस्ट में भी
दुबई से 50 किलोमीटर

दूर लो प्रेशर सिस्टम बन रहा था। अब दोनों प्रेशर जो थे वो बीच की हवा का गला घोट रहे थे। ये साइंस है, ठीक है। क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, यही होती है ना साइंस, इसे कहते हैं सी ब्रीज। अब 1-2 लेफ्ट रनवे जहां पे इस जहाज को उतरना है, विंड एक तो पीछे से आ रही है, है ना, पीछे से भी प्रेशराइज हवा आ रही है जो कि टेल विंड है, मतलब वो प्रेशर दे रही है पीछे से, एक तरीके से धक्का दे रही है। और दूसरी तरफ जब ये लैंड करेंगे तो सामने से भी हवा आ रही है, वो हेड विंड है। तो ये बीच में है दोनों हवाओं के और दोनों ही हवाओं से इनका सामना होने वाला है। ये मामला है एयर स्पीड और ग्राउंड स्पीड के बीच का। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, आप जरा इमेजिन कर लीजिए, आप एक जहाज है, एक रनवे पे बस खड़ा हुआ है, बस खड़ा हुआ है, उसके इंजन एकदम बंद है, ग्राउंड स्पीड जीरो है, सामने से हवा चलना शुरू हो जाती है एकदम से, और जो हवा की रफ्तार है वो 10 नॉट की है। दोबारा बताता हूं, एक जहाज है रनवे पे खड़ा हुआ है, इंजन बंद है, रफ्तार कितनी है, जीरो, सामने से हवा आ रही है 10 नॉट की स्पीड से, ग्राउंड स्पीड कितनी है, जीरो, पर हवा क्या करेगी, हवा जहाज के पंख के ऊपर से निकलेगी तो एयर स्पीड हो जाएगी 10 नॉट। अब इसका असर पंख पे नहीं पड़ रहा है, जहाज के विंग्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर जब जहाज हवा में होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। इसकी वजह से जहाज लिफ्ट होने लगता है, जहाज ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है, मतलब अगर सामने से हवा हेडविंड आएगा, ज्यादा तेज हवा आएगी और विंग्स के ऊपर से निकलेगी, तो जहाज यूं समझिए कि नीचे जाना ही नहीं चाहता है, ऐसे समझ लीजिए, अब वो ऊपर ही रहना चाहेगा अगर सामने से तेज हवाएं आएंगी तो। अब यही फ्लो हवा का चेंज हुआ अगर, तो एकदम से, अगर मान लीजिए पीछे से भी हवा गई, आगे से भी हवा गई, एकदम से चेंज हुआ, तो आएगा विंड शेयर, इसे कहते हैं विंड शेयर। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। अब 777-300 का सिस्टम जो है इसके लिए तैयार है, मॉडर्न जहाज है ना भाई, 2016 में तो मॉडर्न जहाज था। इसमें सिस्टम होता है, जहाज जब नीचे आता है 1200 फीट पर, नीचे आते हुए उसका जो नोज पर बिल्कुल नोक पे आगे की तरफ रेडार सिस्टम होता है, वो रेडार सिस्टम हवा को स्कैन करता है और उसमें पल्स छोड़ता है, और वो जो रेज होती हैं वो हवा के मॉइस्चर से, उसकी नमी से टकराती हैं, बाउंस करती हैं और हालात बताती हैं, है ना, और वार्निंग सिस्टम ऑन हो जाता है कि विंड शेयर, विंड शेयर, ये वार्निंग जहाज के अंदर आती है। मगर मसला क्या है, आप तो खुद कतर में रहते हैं, हम जानते हैं ऊपर बहुत खतरनाक गर्मी, अगर चिलचिलाती गर्मी है ह्यूमिडिटी के बिना तो दिक्कत होगी। दुबई एक डेजर्ट है आखिरकार, है तो टेक्निकली डेजर्ट ना, तो हवा में कोई मॉइस्चर ही नहीं है। अब रेडार जो है वो ढूंढेगा कैसे, पल्स रेज जब जाएंगे तो बाउंस ही नहीं कर पाएंगे, तो सिस्टम को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हालात है मौसम के, तो सिस्टम इस वक्त एकदम ब्लाइंड, एकदम साइलेंट। तो पायलट्स को पता ही नहीं है कि हवा का क्या रुख है, क्या हालात हैं। अब ये जहाज आगे बढ़ रहा था, 15 मिनट बजे थे जहाज को उतरने में, दुबई के आसमान के ठीक ऊपर था जहाज। इसके आगे आगे 5 जहाज और थे जो लैंडिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। पहला जहाज था बोइंग 737, वो लैंड करके अपना आराम से चला गया, मगर उसने एक चीज करी थी, उसने जो जहाज का क्रू था उसने ATC वालों को बताया कि भैया ऐसा है, थोड़ा सा विंड शेयर है यहां पे, थोड़ी सी दिक्कत है,

ये था एयर इंडिया A321, ये लैंड नहीं कर पाया, उन्होंने गो अराउंड लिया। दो मिनट बाद इमराती जहाज जो थे दो और आए, उन दोनों ने भी यही किया। तीन मिनट के अंदर दो जहाज जो है वो गो अराउंड कर चुके थे। मगर कमाल की बात देखिए कि क्रू वालों ने भी जो गो अराउंड कर रहे थे उन्होंने भी एटीसी वालों को कुछ नहीं बताया, और एटीसी वालों ने जो पहले वाले जहाज से सुना वो भी किसी को नहीं बताया। मतलब कम्युनिकेशन जीरो चल रहा है अभी। अब फ्लाइट 521 उसे कुछ पता ही नहीं है कि दो जहाज आगे उनके हालात क्या है। उसने बस ये देखा गो अराउंड करके आए, लैंड कर गए, उन्हें एटीसी ने कुछ नहीं बताया। कैप्टन जो 521 के थे, जिस जहाज की मैं कहानी सुना रहा हूं, उनके जहन में लैंडिंग की आधी तस्वीर थी, और ये आधी तस्वीर भी गलत तस्वीर थी। फ्लाइट 21 के गियर थे वो नीचे किए गए, उसके बाद फ्लैप्स को 30 पर कर दिया गया, और अब जहाज लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा था। कैप्टन जो थे वो पायलट फ्लाइंग थे, बस उनके जहन में था लैंडिंग बाकी है, सारा मामला डन है। रनवे दो मिनट की दूरी पे जहाज नीचे जा रहा था। 930 फुट पे जब जहाज आ गया ग्राउंड से, तो कैप्टन ने ऑटो पायलट को बंद किया और जहाज को मैनुअल मोड पे ले लिया। इस केस में ऑटो थ्रॉटल जो है वो ऑन रहता है, एक और ऑटो थ्रॉटल होता है पायलट के राइट हैंड साइड के नीचे, इसका कहता है कि जहाज की स्पीड को मेंटेन करना, अपने आप ऑटोमेटिकली करता है, इसको कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो पायलट अपना आराम से मैनुअली उड़ा रहा है और ऑटो थ्रॉटल जहाज की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, 152 नॉट्स पे रखे हुए वो, ये थ्रस्ट लीवर अपने आप काम कर रहे हैं। अब जहाज और नीचे आया 450 फीट पर, और अंदर आवाज आई मिनिमम, यानी कि अभी लैंडिंग बहुत करीब है। कैप्टन एकदम डेडिकेटेड कि बस अब टच डाउन करना है, पर नीचे मार्कर होता है ना रनवे पे, आपने देखा होगा मार्कर्स लगे होते हैं कि यहां पे जहाज उतरेगा। एक मार्कर जहाज के नीचे से चला भी गया लेकिन जहाज अभी तक नहीं उतरा। फर्स्ट ऑफिसर जो साइड में बैठे थे वो अंदर जहाज देख रहे थे, मगर उन्होंने भी किसी चीज को अटेंशन ही नहीं दी, उन्हें लगा ही नहीं किसी चीज पर अटेंशन देने की जरूरत है। और ये लोग ध्यान रखिएगा, मैंने शुरुआत में बताया था पीछे से हवा आ रही थी, टेल विंड अलग चल रही है। जब ये लोग 190 फीट पे आए तो कैप्टन को थोड़ा सा लगा यार ये टेलविंड थोड़ी सी है, फिर 115 फीट पे आए, हवा की रफ्तार 16 नॉट से 13 नॉट्स हो गई। मगर ये इतना आगे आ चुके थे, आपको याद है आगे वाली हवा हेडविंड वो चालू हो गई थी। अब जो हेडविंड थी वो जहाज को ऊपर की तरफ ले जा रही थी। वही बात, अब जहाज उतरना नहीं चाहता, अब जहाज ऊपर रहना चाहता है। एयर स्पीड बढ़ के 7 नॉट हुई, थ्रस्ट लीवर जो खुद काम कर रहे थे वो आगे पीछे होके अपने आप को कॉम्पनसेट कर रहा था। सिस्टम होता है ना कि अगर आप सिस्टम में कुछ गलती है तो कंप्यूटर अपने आप कॉम्पनसेट कर देता ऑटोमेटिकली, तो वही जहाज के ये जो ऑटोमेटिक थ्रस्ट लीवर थे अपने आप काम कर रहे थे। जहाज सेकेंड्स की दूरी पर था रनवे से, 20, 30, 40 रुकना था, लेकिन 40 पे जाके भाई ने फ्लेयर इनिशिएट कर दिया हमारे कैप्टन साहब ने। 40 पे नहीं करना था, याद है सिमुलेटर में इन्होंने गलती करी थी, जल्दी से फ्लेयरिंग कर दी थी जिसकी वजह से इनको मार्क्स कम मिले थे, फिर भी पास कर दिया था इन्होंने। वहां यहां पर भी यही किया, 30 या 20 फीट पर फ्लेयरिंग ऑन की जाती है, मतलब जहाज की नोज को ऊपर और लैंडिंग के लिए गियर को नीचे जमीन पर टच डाउन कराना होता है, इन्होंने वो पहले ही कर दिया। ऐसा किया और पुल बैक किया, नोज धीरे से रेस करी जहाज की, जेंटली ऊपर जाने लगी, फ्लेयर इन्होंने जल्दी इनिशिएट कर दिया, सेम गलती जो उन्होंने पहले करी थी। अब आप कहेंगे 10 फीट से क्या ही फर्क पड़ता है यार, 40 पे किया 30 पे करना था कोई बड़ी बात नहीं है, पर 10 फीट सुनने में आपको कम लग रहा है, इट डजंट मैटर टू यू, मगर जहाज के मामले में बहुत बहुत मैटर करता है, लिटरली टेलिंग यू। अब नीचे मार्कर चले जा रहे हैं, मतलब लैंडिंग के लिए होता ना कि नीचे अब जहाज लैंड हुआ तो मार्कर पे लैंड होता है, फिर आ गया था अगला मार्कर आता है तीसरा मार्कर आता है, नीचे से मार्कर फिर से निकल गया पर जहाज अभी भी उतरा नहीं। अभी तक वो ऑटो थ्रॉटल जो लगा हुआ है वो स्पीड को कॉम्पनसेट कर रहा है, जहाज की स्पीड

को मेंटेन किए हुए 152 पे, फिर जहाज आया 25 फीट पे। अब क्या होता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम को जहाज के लगता है कि लैंडिंग हो रही है, प्लेन अब रनवे पे उतरने वाला है। 25 फीट पे सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, ऑटोमेटिक है। तो जब जहाज को ये लगने लग जाता है कि चलो भाई 25 फीट आ गए, अब तो ये रनवे पे उतरने वाला है, तो ऐसे में एक और चीज होती है जहाज के अंदर। जहाज सारी की सारी पावर जो है वो खींच लेता है वापस, तो जो लीवर अभी तक स्पीड कंट्रोल कर रहा था वो पूरा नीचे चला जाता है ऑटोमेटिकली, और इंजन्स एकदम शांत हो जाते हैं एयरक्राफ्ट के। अभी इंजन्स काम नहीं कर रहे हैं, जहाज अब ग्लाइड कर रहा है लिटरली 25 फीट ऊंचे ऊंचाई पर जमीन से, बिल्कुल ग्लाइड कर रहा है, ऐसे कागज का जहाज फेंका जाता है बस वो समझ लीजिए, चंद फीट ऊपर ग्राउंड के, और नीचे एक और टचडाउन मारकर निकल गया। ये यूं हो रहा था कि प्लेन ने जैसे मना कर दिया हो धरती पर उतरने से, क्योंकि सामने से जो हेडविंड थी वो जहाज को ऊपर की तरफ रखी हुई थी। तीन चीजें इस जहाज को नीचे उतरने से रोक रही थी। पहली चीज थर्मल्स। अब थर्मल्स क्या होते हैं, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। ये हॉट एयर कॉलम्स होते हैं जो हमें और आपको नजर नहीं आएंगे, मगर ये जमीन से उठते हुए हॉट कॉन्क्रीट से उठते हैं, एक किस्म की हवा होती है, उससे कॉलम बन जाते हैं, और ये सीधा परों पर जाके लगते हैं प्लेन की, नीचे से अटैक करते हैं, तो जहाज को ऊपर की तरफ सस्पेंड करके रखते हैं। गर्मियों में, बहुत गर्मियों में ऐसा होता है। दूसरा अर्ली फ्लेयर, जब फ्लेयरिंग करनी होती है जहाज की नोज को ऊपर और व्हील को नीचे बिठाना होता है, वो 30 पे या 20 फीट पे करना था, कैप्टन साहब ने वो 40 फीट पे कर दिया था, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई और डिसेंट रेट कम होता गया। और तीसरी चीज ग्राउंड इफेक्ट, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक बड़ा सा जहाज, बड़ा ही होता है जहाज, जमीन के बेहद करीब होता है, तो नीचे से हवा, पंख के नीचे जो जहाज का विंग है उसके नीचे से हवा और पंख तक टकरा के बीच में फंस जाती है। अब जहाज की विंग और जमीन के बीच में जो हवा फंसती है वो कंप्रेस होने लगती है, निकल नहीं पाती, उसको जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक किस्म का कुशन बन जाता है, गद्दा जैसा फील होने लगता है जहाज को, और वो बाउंस करने लगता है, वो भी बहुत हाई प्रेशर गद्दा, जिसकी वजह से जहाज नीचे उतर ही नहीं पाता, वो लिफ्ट होने लगता है। अब क्या है, ये जहाज उतरने की कोशिश कर रहा है लेकिन इंजन बंद है, स्लो स्लो उड़े जा रहा है, लिफ्ट मिल रही है बीच में, कभी नहीं मिल रही है। अभी ये जहाज जो है एकदम जॉम्बी स्टेट में था, रनवे खत्म हो रहा है और जहाज अभी भी लैंड नहीं कर पा रहा है, टेल विंड खत्म हो चुकी है, दूसरी साइड से हेड विंड चालू है, ये बाउंड्री जो है ये इनविजिबल है, लेकिन अगर सिस्टम ऑन होते तो समझ में आता जो काम नहीं कर रहे थे। एकदम से टेल विंड खत्म, हेडविंड शुरू, और एयर स्पीड जो होती है वो जंप कर जाती है। ऐसे मैंने बताया था ना आपको कि अगर पंख के ऊपर से आएगी हवा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, एयर स्पीड जंप करके 12 नॉट्स ऊपर चली गई। अब प्लेन ऊपर की तरफ अपने आप को धकेलने की कोशिश कर रहा है लेकिन इंजन तो काम ही नहीं कर रहे। कैप्टन साहब जो है वो जहाज से लड़ रहे हैं उसे स्टेबलाइज करने के लिए। कैप्टन को लग रहा है कि ये थर्मल्स की वजह से, कि हवा जो है ग्राउंड से टकरा रही, उस वजह से ऐसा हो रहा है। ATC ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, और कोई आइडिया नहीं ATC को क्या हो रहा है, और पायलट जो उड़ा रहा है उसको भी नहीं पता कि क्या हो क्या रहा है। एयर स्पीड बढ़ती जा रही थी, 160 165 नॉट्स तक पहुंच गई, बढ़ती स्पीड से बड़ी उसकी लिफ्ट प्लेन की, बामुश्किल 5 फीट ऊपर था ग्राउंड से, बिल्कुल 5 फीट। अब कैप्टन ने क्या किया, कैप्टन ने थ्रॉटल आगे की तरफ करा ताकि प्लेन को एकदम एक फोर्स से झटका देके उसकी नोज को नीचे करे और जहाज एकदम बैठ जाए, मगर प्लेन ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। उन्होंने 3 बार कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। एक हवा का झोंका आया लेफ्ट हैंड साइड से, उसने जहाज को घुमा दिया, पूरा धक्का दे दिया। प्लेन को संभालने के लिए कैप्टन ने फिर से जहाज से लड़ाई करी और जहाज ने एक बैंक मारा, जिसकी वजह से हुआ ये। अब ये दिस इज अ वेरी ट्रेजिक मोमेंट। ये जहाज, ये हवाओं के झोंके और कैप्टन के जहाज से लड़ने की वजह से इसका जो राइट व्हील था, क्योंकि व्हील अभी बाहर है, गियर बाहर है, जहाज के व्हील का राइट हैंड साइड जमीन से टकराया
और ये जहाज अभी टेढ़ा, बिल्कुल टेढ़ा थोड़ी देर के लिए चला, सेकंड्स भर के लिए, उसके बाद हल्का सा हाफ अ सेकंड बाद दोनों के दोनों पहिए रनवे से टकराए और स्पीड ब्रेक्स जो हैं वो जहाज के वो डिप्लॉय हो गए। अब जहाज के दोनों व्हील जमीन पर हैं, टचडाउन हो चुके हैं, लेकिन अभी जहाज क्या कर रहा है, टप्पे खा रहा है, टकरा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जैसे बॉल टिप्पे खाती है ना वैसी, जहाज अभी जमीन से टप्पे खा रहा था लिटरली। दोनों टायर्स टकराते, जहाज ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, और ये 6-7 सेकंड तक ये चलता रहा। इमेजिन जो जहाज में होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा। द प्लेन केप्ट ऑन बाउंसिंग, 6 सेकंड तक जहाज इसी तरीके से रहा। टच डाउन का जोन जो था वो कब का जा चुका था, काफी पीछे। कैप्टन को अब होश आया, उनकी आंख खोली, उन्होंने कहा चलो गो अराउंड करते हैं। पर एक नई मुसीबत थी, बहुत बहुत नीचे थे वो गो अराउंड करने के लिए। अब अगर इतनी नीचे आने के बाद वो सोचेंगे उनको वापस हवा में लेना है, तो पंगा ये है कि वो जहाज की नोज को जैसे ही ऊपर करेंगे, जो टेल है, जो पूंछ है जहाज की, वो जमीन से टकराएगी, बुरी तरह टकराएगी, एंड जो होगा वो फिर कोई नहीं संभाल सकता। तो अब इनको ये होश आ चुका था, तो उन्होंने जेंटली नोज को ऊपर करने की कोशिश करी, एंड वही सेम परेशानी। कैप्टन साहब एक जगह फिक्सेट हो जाते हैं तो बाकी चीजों को भूल जाते हैं, जो उनकी परेशानी देखी गई थी उनकी ट्रेनिंग में। तो टनल विजन फिर से उनका आ गया और वो एक ही चीज पे फोकस हो गए, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे किसी चीज पे, बस उन्हें जहाज को ऊपर ले जाना था। और वही वो जिसका डर था, टेल हल्की सी टकराई, चिंगारी से निकली, उनके हाथ के राइट हैंड साइड के नीचे थ्रस्ट लीवर्स थे, बट कैप्टन का ध्यान ही नहीं जा रहा कि इंजन बंद है, ये थ्रस्ट लीवर्स को ऊपर होना चाहिए, वो नीचे है, पर वो बस जहाज को ऊपर ले जाने में लगे हुए। सिम्युलेटर में जैसे उनका ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं था, टनल विजन बना लिया था उन्होंने, और यही उनकी परेशानी अब असल जिंदगी में नजर आ रही थी। कैप्टन को उम्मीद थी कि एक टॉगल बटन जो होता है वो दबाऊंगा, थ्रस्ट लीवर्स एडवांस हो जाएंगे, उसके बाद जो है इंजन अपने आप रोर करेगा और हम उड़ जाएंगे। पर उनके हाथ के नीचे का लीवर ना वो देख रहे हैं, ना साइड वाला बंदा दिख रहा है, फर्स्ट ऑफिसर वो अभी भी नीचे है, एंड वो बटन को स्विच ऑन करे जा रहे हैं। हुआ ये कि जब प्लेन टप्पे खा रहा था ना, जमीन पे बार बार टकरा रहा था, ऊपर जा रहा था, टप्पे खा रहा था, प्लेन के अंदर एक मोड होता है एयर मोड। एयर मोड ग्राउंड मोड में बदल जाता है जब जहाज जो है जमीन से टच कर जाता है और बाकी सब चीजें डिसेबल हो जाती हैं। बोइंग ने यह फीचर इसलिए दिया था ताकि लैंड होने के बाद जहाज गलती से भी कोई और फंक्शन ना करे, दिक्कत ना हो। अब ऊपर जाना है, वापस उड़ाना है, तो मैन्युअली लीवर थ्रस्ट को दबाना पड़ेगा आगे की तरफ, और कैप्टन के हाथ के नीचे ही वो लीवर है। इंजन में अभी कोई थ्रस्ट नहीं है और हेड विंड सामने से जारी है। अभी ये जहाज लिटरली एक पेपर के, एक कागज के जहाज की तरह जमीन से बस कुछ ही फीट ऊपर है। इतने में कैप्टन ने ऑर्डर दिया, फ्लैप्स 20। ये सही कॉल थी अगर नॉर्मल कंडीशन होती, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना था। यू रिमेंबर इन्हीं दोनों ने बात करी थी कि विंड शेयर होगा तो क्या करना है, ना फ्लैप्स को छूना है, ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ नहीं करना है, इंजन और ऑल्टीट्यूड। ये कुछ देर पहले इन्हीं दोनों ने बात करी थी और वही भूल गए, और कॉशन भी आया था मगर सुने कौन, ध्यान देना था तब तो ये दे नहीं रहे थे, क्योंकि 100 मरतबा वो वार्निंग सुन चुके थे और इनके साथ कभी हुआ नहीं था। सीधे हाथ के नीचे इनके थ्रस्ट लीवर्स थे, ना कैप्टन ना ऑफिसर, कोई नहीं दिख रहा। 58 फीट पर जहाज जैसे तैसे हेड विंड की वजह से ऊपर की तरफ आया थोड़ा सा, और एकदम से ATC की आवाज रेडियो पर आई। उन्होंने बोला आप दोनों कंटिन्यू एंड 4000 फीट पे क्लाइम करवाइए जहाज को। अब ATC वालों को नहीं पता हालात क्या चल रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। फर्स्ट ऑफिसर ने सिस्टम में जहाज के 3000 से 4000 फीट फीड कर दिया सिस्टम पे, और देखने के बाद भी उनका ध्यान ही नहीं गया लिवर्स पे। जहाज थोड़ा सा और क्लाइम करके 85 फीट पे आ गया, मगर वहां पे जाके जहाज हवा में एक तरीके से हैंग कर गया। वर्टिकल स्पीड 0 के बाद नेगेटिव में चली गई।
कैप्टन को अभी एहसास होने लगा जैसे झूले में होता है ना, झूला एकदम से नीचे आता है, वैसी जहाज एक झटके में अभी नीचे की तरफ

जा रहा था एंड ही रियलाइज्ड के बाप रे, और अब इनकी आधी नींद खुली, असली प्रॉब्लम हाथ के नीचे वाले थ्रस्ट, दो इंजन बंद हैं। एकदम से कैप्टन को एहसास हुआ, उन्होंने फौरन अपने आप को कुछ बोला और लीवर जो उनके हाथ के नीचे थी जैसे बंद था उसे उन्होंने ऑन किया इंजन चालू करने के लिए। लेकिन ये कोई घर का पंखा नहीं है जो स्विच बोर्ड में लगाया, बटन दबाया और ऑन हो गया, ये जहाज का इंजन है और जेट इंजन एकदम से नहीं जागता है, उसे ऑन होने में, फुल पावर आने में 6 सेकेंड्स लगते हैं। और इनके पास कितने बचे हैं? 3 सेकंड। अभी सेकंड्स का खेल है। 128 नॉट की स्पीड, जहाज गिर रहा है नीचे, नोज ऊपर करने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं काम कर रहा है। इंजन जागे एकदम से 6 सेकंड्स से पहले पहले, थोड़ा सा इंजन ने अपनी पावर दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 50, 40, 30, जहाज नहीं उठ पाया। जहाज लिटरली अपनी बैली के बल, जो जहाज का पेट समझ लीजिए सेंटर, क्योंकि अभी इन्होंने गियर भी ऊपर खींच लिए थे, तो जहाज टकराया जमीन से। और जब टकराया तो राइट इंजन पहले, उसमें हल्की सी आग लगी, प्लेन ड्रिफ्ट करने लगा और लगातार फ्यूल इग्नाइट होता रहा और जहाज अपनी बैली पे, जस्ट इमेजिन के पहिए भी निकले हुए नहीं है, ये जहाज लिटरली सेंटर में ऐसे गोल गोल घूमता हुआ 800 मीटर तक और आगे गया, घूमता रहा। अंदर 300 लोग ट्रैप्ड हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठे हुए हैं और कॉकपिट में से अभी आवाज आने लगी, इवैक्यूएशन चेकलिस्ट चल रही है, इंजन जो है वापस बंद किए गए, मेडे, राइट साइड जलने लगी, एग्जिट कौन सा है, कहां से जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैमिलीज अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, कहां पे हैं, किधर हैं, बच्चे परेशान हैं, फैमिलीज आर रियली वरीड। कैबिन क्रू अपनी पूरी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट कहां से उतरे, इधर आ गए, दे वर जस्ट फाइंडिंग वेज। इवैक्यूएशन में अमूमन 90 सेकंड्स के आसपास लगते हैं, 6 मिनट लगे। 24 को माइनर इंजरीज आई, 4 केबिन क्रू वर हर्ट, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, बट एवरीवन वाज अलाइव, सबके सब जिंदा बच गए। 9 मिनट और 40 सेकंड के बाद, ये जब सब लोग बाहर आ चुके थे, तो सेंटर विंग फ्यूल टैंक जो होता है जहाज का, उसमें आग लगी एंड ये जहाज चंद ही मिनटों में एक काला कंकाल बन चुका था, लिटरली स्केलेटन, अ ब्लैक स्केलेटन। इस जहाज की इन्वेस्टिगेशन 4 साल चली और रिवील हुआ कि ATC को सब कुछ पता था पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या बताएं, एंड दे गॉट कंफ्यूज्ड, और ऐसा कंफ्यूजन कि उन्होंने किसी को भी कुछ बताना जरूरी समझा नहीं। उन्हें लगा कि पायलट आ रहे हैं, खुद ही सब कर तो रहे, कर लेंगे मैनेज, एंड दे डिड नॉट इवन शेयर वार्निंग्स। दूसरी गलती पायलट्स के सामने आई, जिनको इतनी सारी वार्निंग सुनने की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो अब हर बार पहले सुनी तो है वार्निंग ऐसे कहके आगे बढ़ जाते थे, एंड दे यूज्ड टू इग्नोर। मगर अब ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दिया गया है, सिस्टम्स और भी लगा दिए गए हैं, सिम्युलेटर्स में ये सिचुएशन को डाल दिया गया है। एंड याद है कहानी की शुरुआत में एक बंदा था 45B सीट पर, मोहम्मद कादिर, जिनकी जेब में लॉटरी का टिकट था, वो बंदा बचा और 6 दिन बाद 1 मिलियन धर्म जीता वो बंदा। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एमिरेट्स फ्लाइट 521। और अब ये किस्सा आपके हवाले है, आप बताइएगा। आई नो बहुत टेक्निकलिटीज थी, बट आई होप मैं समझा पाया हूं जितना देसी कर सकता था। 666-22107 नंबर है, 666-22107। और आप में अगर कोई एविएशन का बंदा है, आई एम रियली सॉरी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट जितना देसी तरीके से समझा सकता था मैंने कोशिश करी है, पर बाकी आपके ही हाथ में है। स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अरे बाप रे, 6:16 हो लिए भाई। इस कहानी ने मुझसे इतनी पढ़ाई करा दी है ना, जहाज उड़ाने को तैयार हुआ। एक कॉल ले लेता हूँ मैं, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
3: जी भाई,
4: हाल है बारूद भाई?
3: बस भाई, जहाज उड़ा लिया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है?
4: अरे बहुत बढ़िया भाई, थोड़ी सी और स्टडी करते तो भाई तेरा भाई तो आज मैं प्लेन ही जाता उड़ाने।
3: भाई मैं बता रहा हूँ, एक एक बटन को पड़ा हुआ है, मेरा सर दुख गया था इसको
4: तैयार करते हुए। इतनी मेहनत करते हो हम लोग के लिए भाई।
3: भाई थैंक यू
4: सो मच भाई, बहुत टेक्निकल स्टोरी थी, मजा आ रहा था सुन के। लेकिन ये इनकी ये लोग मतलब बात ना सुनने की वजह से इतना बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हुआ
3: जी मेरा भाई। कम्युनिकेशन जीरो था इन लोगों के बीच, वरना सब कुछ ठीक रहता।
4: इसलिए सुनना बहुत जरूरी होता है भाई, बात सुना करो कबीर भाई, मैं आपको बार बार बोल
3: मैं तो सुन रहा हूँ भाई, मैं तो हर बात सुन रहा हूँ।
4: स्टोरी इतनी मैं तो खो गया, मुझे लगा कि मतलब मैं बैठ के एविएशन वाली एक मूवी देख रहा हूँ।
3: हाँ भाई भाई थैंक यू सो मच, मेरा मेरा यही था कि इमेजिनेशन ऑन रहे बस।
4: अब एक और हीरो आएगा, जॉनी डीप आएगा, आयरन मैन बनेगा और बचाएगा उचाएगा एकदम। मैं पूरा फील ले रहा हूँ कि हाँ कुछ तो होगा।
3: नहीं मैं जानता हूँ ये कहानी हर किसी की समझ में नहीं आई होगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको अब मैं कितना भी तोड़ लूँ भाई, कुछ चीजें तोड़नी बहुत मुश्किल होती है। मैं क्या करूँ, जितना देसी हो सकता
4: है उतना। जितना आपने बताया बहुत ही आसान, मतलब ये तो बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझा दिया इसमें यार। कबीर भाई आप राइटर बन जाओ, आप चलो यार हॉलीवुड।
3: नहीं भाई आपको बहुत थैंक यू सो मच
4: भाई, जा रहे हो मेरे ख्याल से।
3: अरे भाई भाई
4: आपको वेट चेंज करना चाहिए
3: भाई, इस कहानी के चक्कर में साइंस भी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, मैं साइंस का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो थर्मल एनर्जी पढ़वा दी इसने भाई मुझे, ठीक है निकल गए।
4: मतलब लगा कि हाँ कुछ आज स्टोरी सुन रहे हैं एकदम, बहुत मतलब बहुत मजा आ रहा था।
3: थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा एहसान मंद हूं उस चीज के लिए भी, इतनी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: अब मैं अभी आपको मैसेज करूंगा और मुझे प्लीज स्टोरी फिर से भेजना, मैं फिर से ये सुनना चाहूंगा।
3: भेजूंगा भाई, बिल्कुल भेजूंगा भाई जान, बिल्कुल भेजूंगा, अभी भेजता हूं फौरन।
4: चले भाई,
3: ठीक है मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक और मैसेज आया है मेरे पास, ये क्या लास्ट के नहीं सुनी, अभी बहुत सारे मैसेजेस हैं। आई विल टेक वन ब्रेक, बस एक ब्रेक का, उसके बाद मिलते हैं क्योंकि 36 वाली गाने चलेगी भाई। एक गाना एंड देन विल मीट, बाकी कुछ मैसेजेस आ ही रहे हैं, एक गाने के बाद मिलते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया गाना, लिसन टू मी। एंड आई नो आज ही गानी समझना मुश्किल थी, बट आई होप जिसने इस गाने को अच्छे से सुना है या फॉलो किया है, यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। पूरी पढ़ाई करवाई इस कहानी ने मुझसे, अब कोई छोटी कहानी ढूंढनी पड़ेगी। ये दुनिया भाई बहुत बढ़िया गाना है ये।

0: ये दुनिया क्या रैप किया दोनों ने यार, फारिस भाई ने भी और तलांजो ने भी, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त।
1: ये कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
0: अब जरा कुछ मैसेज की तरफ जाता हूँ मैं। जकी भाई ने भी कहानी मैसेज किया, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, गुड इवनिंग। और वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। और लिखते हैं, इवन दो आई जॉइन एट द एंड ऑफ द स्टोरी बट इट लुक्स अमेजिंग, आई हैव बीन इन पाकिस्तान एयरफोर्स सो आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। अगर खता हुई हो कुछ बताने में तो मैं माजरत चाहता हूँ पहली। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, स्टोरी शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक मैसेज आया, कबीर भाई आपको टीचर होना चाहिए था, बहुत अच्छा लगा आपका, जजाकल्ला कलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। टीचर होना चाहिए था, अरे तो बहुत बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने। मोहन भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, फ्लाइट लैंडिंग हुआ या नहीं स्टोरी सेंड कर देना, भाग गए हो फ्लाइट की डर से। एक मैसेज, अमेजिंग भाई, थैंक यू सो मच। ऋषभ प्रेम साहब, हुसैन भाई, थैंक यू सो मच। एम के साहब ने लिखा है, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। एक मैसेज है भाई, स्टोरी के लास्ट में एक कॉल आ गई थी, उनको बोला पोर्टफोलियो सेंड करो मेरे पास ही, क्या है अच्छा ओके तबस्तु मैंने मैसेज किया है। वो लिखते हैं, ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग कबीर भाई, इतनी डिटेलिंग और पढ़ाई तो शायद पायलट से करते होंगे अपने करियर में, खुद प्लेन में होते वक्त के याद दिला दिया आपने। ऐसा ही होता है, हम प्लेन में अनाउंसमेंट सुन तो रहे होते हैं लेकिन सीरियसली नहीं लेते, और वो बंदा कितना लकी है, ही सर्वाइव्ड एंड इवन वन द लकी प्राइज। जी बहन, एंड ये होता है ना, मतलब आपको बता रहे होते हैं वो दो

0: पीछे हैं, दो द्वार आगे, मतलब कौन सुन रहा है। भाई लिखते हैं, और सलूट आपके माइंड पर, कितना स्ट्रांग है ये कहानी, तो मैं नहीं मानता कोई समझता समझा होगा। भाई बहुत लोग समझे और आपने सब आप समझ भी गए और सुना भी दिया यहाँ पर, सलूट है, थैंक यू सो मच भाई। इस कहानी को सुनकर ये समझ में आया कि लास्ट 1 मिलियन जीत गया, बाकी कहानी में जानता था हर किसी के लिए नहीं है, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। तो देखिए भाई लिखते हैं, जस्ट वाओ, थैंक्स अल्लाह फॉर नो लाइफ लॉस, वन ऑफ द रियली इंटरेस्टिंग स्टोरीज, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट सिद्दीकी साहब। एंड मैसेज क्या है, मिसेज अदी साहब ने कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैप्टन में क्या हुआ, कैप्टन को सजा दी गई भाई, रद्द कर दिया उनका लिसेंस। एक मैसेज है यूसुफ भाई का, लिखते हैं, कभी स्टोरी बहुत अच्छी ज़बरदस्त, आपके फैंस का फेवरेट जॉनरा, सांसिर रोक के स्टोरी सुनी है, गाड़ी में सुनी है, अल्लाह का शुक्र है सभी पैसेंजर्स बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप ऑफ द नॉच योर नरेशन वाज एक्सेलेंट इज ऑलवेज ज़बरदस्त, फातिमा को भी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। अरे फातिमा को पूरी स्टोरी समझ में आ गई, आई एम प्राउड ऑफ यू फातिमा, रियली रियली। आज मिस हो गई और फ्लाइट से नहीं जाऊँगा, इंडिया कार से जाऊँगा। एक कॉल भी आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भी ले लो भाई साहब, पहले
0: भाई साहब कैसे हैं आप पहले तो बताएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, दुआएं आप भाई साहब की।
0: जी भाई, कहानी सुन पाए नहीं सुन पाए?
1: नहीं भाई साहब, अभी ट्यून इन किया और मैं कंटिन्यू लगाते रहा, मैंने कहा भाई को हाथ
0: नहीं, अभी मैं मेरा ध्यान जरा मैसेज पे चला गया था इसलिए मैं देख नहीं पाया, मेरा फौरन ध्यान गया वैसे मैंने उठाया। और क्या चल रहा है भाई शाम में? बढ़िया,
1: बस बढ़िया चल रहा है भाई साहब, हवा मस्त चल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा,
0: बढ़िया हो रहा मौसम।
1: हाँ भाई,
0: एक्सपायर
1: में है।
0: बात ऐसे करो, बरसात हो रही है और तुम छई छपा छई छपा के छई कर रहे हैं। मौसम बढ़िया हो रहा है।
1: नहीं, शाम के टाइम में निकल के देखे तो मौसम बढ़िया मिले
0: अरे रे रे रे रे रे रे भाई, सुन लेते कहानी में भेजूंगा वैसे, आज की जरूर जरूर सुनना। कब जा रहे हो छुट्टी वैसे
1: भाई साहब? अगले साल को इंशाल्लाह,
0: अगले साल का तो। हाल फिलहाल जा रहे हो तो ये कहानी सुन के जाते तो मजा आता, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
1: कपिल तो बोल रहा था अगर जा रहा है 15-20 दिन के लिए, चला है मैंने, महीना जा रहा है 15-20 दिन के लिए भाई,
0: मैं घर नहीं जाऊंगा।
1: मन का 15-20 दिन के लिए कोई फायदा नहीं है, जाओ यार।
0: जाऊंगा तो सीधा लंबा जाऊंगा,
1: अरमान सब चीज अधूरे रह जा भाई।
0: हाँ ये तो है, 15-20 दिन बहुत कम पड़ते हैं, 15 दिन तो आदमी को जगने में लगता है।
1: सोने वाला इंसान, मैं तो सोने वाला प्राणी हूँ।
0: हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगेगा, तो अच्छी छुट्टी लेके जाना बढ़िया तरीके से।
1: हाँ इंशाल्लाह, अगले साल को जैसे स्कूल बंद होंगे भाई साहब, उसके नेक्स्ट डे अपना इधर से बोरिया रिश्ता बांध के गायब हो जाएगा।
0: ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। अभी बस अजान का वक्त है इसलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके
0: भाई, अपना ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और जैस भाई के बाद मैसेज किया है शेख इरफान अल कासमी साहब ने, भाई अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं सर, आज से आज के बाद पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, बस कतर में ही रहूंगा, कह रहा हूँ जाना ही नहीं भाई मुझे तो। अरवाज भाई कह रहे हैं मैं भाई गाड़ी से जाऊंगा। एक वैसे कैसे हो भाई, कमाल की स्टोरी थी, थैंक यू सो मच भाई। सलमान भाई थैंक यू। अभी क्या है कि अजान का वक्त है इसलिए मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ, बिकॉज देन प्रॉब्लम हो जाएगी। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक और मैसेज है, कह रहे हैं माशाल्लाह वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये आबिद भाई ने मैसेज किया, आबिद भाई थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक मैसेज आया, कबीर भाई आप तो पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, लाइसेंस पायलट का ले ही लूँ। इतनी पढ़ाई करने के बाद तो मुझे भी लगा उनका भाई साहब ये क्या क्या है। इस कहानी में मैंने जितने एविएशन की पढ़ाई करी ना, उस साथ इसमें साइंस भी थी, तो एक एक वर्ड को ढूंढ ढांड के पढ़ना अलग पड़ा है। तो ये मैंने, वो कहते हैं ना कि बांस वाली लकड़ी हाथों में ले तो ली थी, मैंने कहा अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो यही सुनानी है। यूसुफ भाई लिखते हैं, एविएशन की स्टोरी इस वक्त सुनाई है तब जबकि सभी लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, बिल्कुल राइट टाइम चुना ना मैंने। यूसुफ भाई बिल्कुल सही टाइम चुना है मैंने। कबीर भाई गुड स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जावेद भाई ने मैसेज किया, ओके तो इंशाल्लाह अजान के बाद फिर बातचीत होगी, कुछ दिन मिल देंगे, मगर आप भी दुआ में ज़रा याद रखिएगा, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। एंड मिलते हैं जी अब से बस कुछ ही देर में, हाँ स्टे ट्यून्ड।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु

del Tuce. गुड इवनिंग, आई होप बढ़िया जा रहा है सब कुछ. टेम्परेचर थोड़ा सा कम, ठीक ठाक है मतलब. शाम को तो बढ़िया हो ही जाया करे भाई.

0: तुम ही हो बंधु और सखा तुम ही। और ऐसी बात पे एक कॉल ले ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: वालेकुम सलाम।
0: हाँ जी भाई।
1: भाई वो आपको बताया था जहाज में फनी खराबी है, तो आपने आवाम को बता दिया? नहीं बताया भाई।
0: क्या नहीं बताया?
1: जहाज में फनी खराबी है भाई, अभी फ्लाइट उड़ेगी नहीं।
0: क्यों नहीं उड़ेगी भाई? जहाज आपका भाई उड़ाएगा भाई, क्या दिक्कत है?
1: कैसे है सर? ठीक है।
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार। आप सुनाए क्या हाल है
1: भाई? हर एक मूवमेंट पे ना जान निकाली आपने।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: जो एक्सप्रेशन दिए ना,
0: हाँ,
1: कि भाई गए, मैं तो समझा गए मर गए वहाँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का बच गए सब।
0: नहीं नहीं नहीं, एक साथ इतने सर को नहीं निपटाने वाला था मैं।
1: अच्छा, जिस वक्त आप बता रहे थे ना कि हवा के दबाव के बारे में, जो आगे से हेड से और टेल से इकट्ठी हो रही थी, मैं लो अभी यहाँ पे पिचकेंगे भाई, यहाँ पे पिचकेंगे।
0: मैं बताऊं, मुझे उसको समझाना बहुत मुश्किल था भाई, और ये समझाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कैसे समझाऊं मैं, कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। पर फिर मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ी भाई, एक पायलट साहब से तक बात करनी पड़ी है कि भाई समझाओ मुझे कैसे बताना है। तो उन्होंने बताया, बोले नाम मत लेना। मैंने कहा चलो नाम ले लूंगा आपका, पर उनके कहीं भी बात को मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी, मजा आया।
1: उससे भी मजे का सीन जब एंड में बताया ना कि लॉटरी निकल गई, वो 7 करोड़ आपका हुआ
0: जी
1: भाई, सबसे अच्छा साबित उसके लिए हुआ ये प्लान।
0: वो सोच रहा अभी तो लॉटरी टिकट लिया था, ये क्या हो रहा है? बट हो गया भाई, खत्म हो गया।
1: अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे।
0: आमीन आमीन आमीन।
1: ये है कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जना करते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए।
0: हाँ भाई।
1: और ये सबक हमारी लाइफ के लिए भी, कि बहुत सारी चीजें हम लोगों के आंखों के सामने से गुजर जाती हैं, हम लोग सुनकर छोड़ देते हैं कि यार खैर है, ठीक है, चलता तो है, लाइफ में सब ऐसा चल ही रहा है।
0: वो क्या है ना, जब तक खुद के साथ नहीं उतरा तो लोग ना रिएक्ट करते। जैसे अभी वो मैं बता रहा था ना एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल वही है, फ्लाइट में जब लोग बैठे होते हैं और सामने एयर होस्टेस समझा रही होती है कि भैया ये दो द्वार ऐसे ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, कोई नहीं सुन रहा होता। सबको लगता है हमें तो आता है,
1: शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा

0: अच्छा अच्छा क्या बात है यार कभी एविएशन में जाने का सपना था क्या, ऐसा कुछ था क्या?
1: नहीं नहीं सपना तो नहीं था, लेकिन बड़े तवज्जो से सुनता होता हूँ कि खैर हंगामी कोई सूरत अल्लाह ना करे कि कभी बने, तो अगर बन जाती है तो आप अपने साथ साथ बाकियों को भी कैसे बचाया जा सकता।
0: हाँ तो अभी आपको पता है ना अभी आपको पता है सबके सब ट्रेंड पायलट हो गए।
1: ज्यादा याद करनी पड़ेगी भाई।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सारे के सारे एकदम ट्रेंड पायलट हो गए सुनने वाले सब बोले आज ही लाइसेंस लिया जाए।
1: बहुत मजा आया,
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत मजा आया। ये कहानी लाजमी भेजिएगा, मैंने आपको टेस्ट किया मैं।
0: जज़ाकअल्लाह भाई, मैं जरूर भेजूंगा
1: और खुश रहें।
0: बिल्कुल
1: बाकी मेरा एक और छोटा सा मूड था कि आपकी वाली कहानी आपसे धराऊं कि बताऊं कि छोटे वो देखो यार वो अम्मा जा रही हैं, ये देसी लोगों को समझ नहीं आता यार, एक तो अनाउंसमेंट कर दिया पता नहीं चल रहा है। आपका आप कबीर भाई है? अरे यार कबीर भाई समझाएं यार, आप ही अपनी जबान में बता दें यार, हमारे तो सुनते नहीं है यार। ऐसा दिन चला था लेकिन मैं चलो ज्यादा तंग नहीं करते भाई को,
0: बहुत प्यार मेरे भाई, बहुत प्यार आपकी मोहब्बत, थैंक यू सो मच मेरे भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मेरे भाई। तो एज एक्सपेक्टेड अच्छी लगी आपको कहानी, तो मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करना, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: हाँ भैया बताओ क्या हाल है तुम्हारे?
2: बस बढ़िया ही बढ़िया।
0: बढ़िया बढ़िया है, चलो बढ़िया। बताओ क्या कहना चाह रहे थे?
2: नहीं बस बस वैसे ही दिल चाहता कॉल करने के लिए, अन्ना अगर मैं कल भी मैं कुछ कह रहा था अन्ना, यानी इट्स ओके इफ आई नॉट सी इवन एनीथिंग, अच्छी बात है कि इफ आई इवन जस्ट कॉल्ड यू तो दिस नाइस की यानी
0: बोलो बोलो
2: नहीं नहीं
0: अरे ऐसा लग रहा प्रिंसिपल को कॉल लगाई है सर, वो मैं कल की अगर छुट्टी मिल जाती तो बताओ तो क्या बात होगी, क्या बात होगी बताओ।
2: बस जस्ट थिंग इवन कल यू वर फाइंडिंग समथिंग लाइक यू वर लाइक केयरिंग, आई एम नॉट हीटिंग, मैं ये बात बता रहा हूँ कि जैसे कल मैंने एक चीज बताई, आपने कहा कि स्टोरी के बारे में बताओ, तो मैंने स्टोरी बताई यानी दूसरों का भी, कोई दूसरे भी लोग कहते ना जो पहले घंटे का, जैसे आपने पिछले हफ्ते टेलीविजन,
0: तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्स था वो पहले घंटे के हिसाब से भी नहीं था, समझ रहे हो, वो आउट ऑफ द लीग था एकदम, समझे। तो क्या होता है ना, देखो एक शो होता है 2 घंटे का, ठीक है, अब 2 घंटे के शो में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, राइट, तो जितनी बातें और होती हैं कंटेंट से अलहदा जो बातें होती हैं वो मैसेजेस में हो जाती हैं, है ना, तो जब उससे बिल्कुल हटके बातें होती है तो सबको शौक लगता है, अरे ये बात तो हो ही नहीं रही थी, ये कहाँ से बात आ गई, समझ रहे हो, तो एक फॉर्मेट होता है उसका, एक प्रोटोकॉल होता है उसका,
2: उसका एक फॉर्मेट होता है। इवन मैं बहुत कोशिश भी कर रहा था कॉल करने का लेकिन वो हो ही नहीं रहा।
0: चलो लग गई तुम्हारी कॉल,
2: क्या था लेकिन कल भी लग गई थी, आज भी लग गई थी,
0: मुबारक हो,
2: ये खुशी की बात है क्योंकि मैं अभी बाहर भी हूँ, तो वरना अगर अगर जैसे मोबाइल से भी देखते हो ना, तो मैंने भी एक बार सफा को बोला था कि एक डिले होता है, यानी जैसे कोई बंदा कॉल एंड करता है ना, फिर जैसे ऑन एयर ही कॉल शुरू हो जाता है, मोबाइल में ऐसे होता है कि कॉल बंद होता है,
0: मैं समझ गया हाँ पता है मुझे,
2: डिले होता है
0: ऑब्वियसली, ठीक है फिर बस इतना कहना था, थैंक यू सो मच मोहम्मद, और फिर इंशाल्लाह बात होगी, जब तुम सुनोगे तो सुन के फिर कॉल करना, ठीक है, ओके चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो हो गई बात। एक और मैसेज है, भाई कह रहे हैं अरबाज भाई सर मैं ये सोच रहा था कि आप पर पैसे इन्वेस्ट करूं, आपके लिए एक जहाज खरीदूंगा मैं बराए कर अरे यार लास्ट वाला पढ़ ले सकता हूँ, एक एक कॉल और आ रही है, फिर मैं प्रिंस भाई कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी भाई साहब
3: मेरा नंबर नहीं आया।
0: अरे नहीं भाई ऐसी कैसी बात कर दी आपने, बताइए।
3: बिजी चल रहे थे ना भाई।
0: अरे माजरत माजरत कमाल भाई, माजरत मेरे भाई, बताइए कैसी लगी कहानी आपको?
3: कहानी बहुत जबरदस्त थी भाई,
0: बहुत चली,
3: इसलिए मैसेज भी डाल दिया,
0: थैंक यू सो मच,
3: बहुत जबरदस्त कहानी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
3: एक जहाज को जो है आज पहली बार जो है हमने आंख बंद करके देखा,
0: अरे थैंक यू भाई,
3: जंप करते हुए भी देखा, गोल घूमते हुए भी देखा,
0: टप्पे
3: करते हुए भी,
0: टप्पे गाते हुए भी देख लिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं और
3: सुना रहे थे ना कि वो 0 और 10% का जो बता रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि बहुत पहले की बात है, एक बार ऐसी हुआ था कि मैं कुछ खेल रहा था,
0: अच्छा
3: मुंबई के अंदर क्रिकेट ही खेल रहा था।

0: तब अंदर की हवा और बाहर की हवा जैसे बोलते हैं ना ढेकार आती है
1: यस यस यस
0: और बाहर सांस लेने की हवा अचानक आपस में टकरा गई थी तीन दिन तक हिचकी नहीं बन रही थी
1: भाई यही होता है वो ये बता रहा हूँ ना ये यही तो साइंस है और ये एक्चुअली पढ़ाया तो बचपन में ही गया है लेकिन मैं कोई साइंस का स्टूडेंट तो नहीं तो मैंने कहा चलो एक बार पढ़ लेते हैं तो जितना मेरे समझ में आया मैंने उसको उतनी आसानी से बताने की कोशिश करी बट आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को समझ में आ गया
0: पढ़ाई को जो है ना जब आप रनिंग में मतलब जो है जैसे जैसे उम्र ढलती है ना वो चीज बाद में समझ में आती है
1: करेक्ट
0: कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है कि पढ़ाई के टाइम पे समझ में आती है कोई चीज ऐसी होती है कि जो नहीं समझ में आती है
1: हाँ.
0: वो बाद में समझ में आती
1: है हाँ exactly यही हुआ है मेरे साथ अब जाके समझ में आई है साइंस अब जाके समझ में आई है पर मुझे अच्छा लगा कि आप कुछ चल गई कमल भाई कहानी आई एम रियली रियली हैप्पी मेरे भाई
0: बहुत ध्यान से भाई एकदम सुकून से एक रूम में बंद होके सुकून से सुन रहा था
1: भाई मुझे बहुत
0: मेरे अपने रूम में एक जन टीवी देख रहे थे पिक्चर देख रहे थे मतलब तुम बैठो मैं जा रहा हूँ कबीर भाई को सुनने
1: अरे मेरा भाई बहुत प्यार बहुत प्यार
0: बहुत अच्छी कहानी
1: थैंक यू सो मच भाई दिल से शुक्रिया आपका
0: आपके लिए इसलिए जो है ना आपके लिए मैसेज भी डाल दिया
1: डन डन डन मैं भेजूंगा अभी कहानी कुछ देर में ठीक है
0: ओके
1: ठीक है मेरा भाई ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ उनके बाद एक मैसेज आया भाई कहते हैं कबीर भाई मतलब आज मेरा वो शक भी खत्म हो गया क्योंकि जहाज में सफर करना मुझे डर लगता था आज साबित हुआ कतर से पाकिस्तान अब रोड से जाना पड़ेगा बाय द वे स्टोरी वाज फैंटास्टिक मुदस्सर बंगेश भाई ने मैसेज किया है और एक ज़रा मैं कॉल लगा लेता हूँ ये लास्ट कॉल ऑफ द शो कितने 0 नंबर में ओके तो काफ़ी VIP किस्म का नंबर है एक मैसेज आया एक सर मेरे ख्याल से सो रहा मम्मी ने मार मार के उठाया बिल्कुल सही अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर मेरे भाई
1: कैसे हैं प्रिंस भाई क्या चल रहा है
2: अरे वैसे ही है भाई जैसे आप छोड़ के गए थे
1: अच्छा फिर ठीक है फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया तो प्रिंस भाई कैसे लगे आपको कहानी
2: अरे भाई मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ
1: जी जी बताइए
2: एक नहीं दो चीजों में
1: जी जी बताइए
2: पहली चीज ये है कि मेरे मुझसे एंडिंग छूट गई
1: तभी
2: सवाल मेरा स्टार्टिंग में था कि आखिर टिकट का मसला हुआ क्या
1: तभी हाँ तो टिकट का मसला ये हुआ कि आखिर में वो जीत गया भाई 6 दिन बाद इस फ्लाइट के 1 मिलियन धर्म जीता था वो
2: बढ़िया
1: जी
2: और दूसरी चीज के आपके पास मास्टर्स की डिग्री है
1: हाँ जी भाई
2: सच में
1: जी जी जी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जी जी जी जी जी क्या हो
2: मास्टर के पास किसकी डिग्री है
1: मास्टर की डिग्री तो छीन के आया हूँ मैं मैंने कहा सर इधर लाओ आप किस काम की
2: डिग्री है
1: आप ही किस काम की मुझे दो यार आप छोड़ो यार मैंने कहा ठीक है
2: मास्टर की डिग्री तो आप ले आए फिर मास्टर के पास किसकी डिग्री है भाई
1: कुछ नहीं वो आराम से उन्होंने कहा मेरे रिटायरमेंट का वक्त है ये डिग्री तुम रख लो तो दे दी जी भाई तो ये हादसा हुआ है तो हाँ मेरी शक्ल से लगता नहीं है मास्टर्स हूँ मैं पर ये है
2: शक्ल से तो मेरी भी कुछ भी नहीं लगता लेकिन होता बहुत कुछ है
1: होता बहुत कुछ ये सही है ऐसा ही होना चाहिए डिसीविंग लुक्स
2: अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करना जो मिले हैं उनको खुद ही पता चल जाएगा
1: ये हुई बात
2: में मजा आता है
1: हाँ नहीं वो एक पुराना कोई शेर है पता नहीं क्या उसमें है ना कि तार में जो है करंट होना चाहिए वरना बिना बिजली के तार को तो लोग दांतों से छील दिया करते हैं
2: बेशक भाई
1: क्या फिट हुई लाइन वाइज
2: भाई क्या लाइन मारी
1: है ना
2: सॉरी बोलिए
1: तो ये आप जो है कहीं पर स्टेटस में लगाइए बढ़िया काम की लाइन है ये पर आपको कहानी भेजूंगा
2: आपने कह दिया इंशाल्लाह
1: कहानी में भेजूंगा
2: जरूर भेजना भाई क्योंकि मुझे इसकी एंडिंग सुननी है
1: जरूर जरूर
2: बिल्कुल एकदम एंड में सबसे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कॉल आया था
1: अच्छा ओहो फिर तो अच्छी बात है कि आपने छोड़ दी कहानी कोई मसला नहीं मैं आपको भेजूंगा फिर
2: हाँ भाई
1: डेफिनेटली भेजूंगा आपको
2: जब ये उसका क्या कहते हैं उसका बेली टच हो रहा था ना
1: हाँ हाँ
2: जमीन पे
1: हाँ हाँ
2: वहाँ पे मुझे कॉल आ गई
1: बिल्कुल मतलब क्लाइमेक्स पे कॉल आई आपको
2: क्लाइमेक्स पे लाइट चली गई
1: अरे चलो कोई नहीं वो क्लाइमेक्स सुनेगा और बाकी कहानी के बारे में बताएगा बड़ा जरूरी है मेरे लिए जानना
2: बढ़िया भाई
1: थैंक यू भाई बहुत
2: क्या प्रोग्राम है फिर अवर अपन 2
1: भाई अवर अपन 2 डन है मतलब इसमें कोई प्लानिंग नहीं है ये ऑटोमेशन में जहाज मेरा
2: मैं यही सोच रहा था
1: हाँ.
2: कि सबने प्लान तो बना लिया
1: हाँ.
2: कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो
1: हाँ.
2: मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन से थिएटर में
1: भाई मैं मोस्ट प्रोबली मेरे घर के पास वाला या फिर ये सूखा के वाला दोनों में से एक
2: पता चला सब अपने अपने हिसाब से सारे अपने अपने हिसाब से थिएटर में बुक कर रहे हैं सभी पहुंचे लेकिन मिला कोई नहीं
1: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं वो प्रॉपर प्लानिंग हुई भाई अवर अपन 2 तो देखनी है विदाउट फेल

0: और मेरा
1: भाई ट्यूसडे आ रहा है 14th।
0: नहीं भाई ट्यूसडे नहीं है भाई, ट्यूसडे नहीं है। हाँ 14 को तो इंडिया में रिलीज हो रही है, दैट मीन्स फ्राइडे है, लॉन्ग वीकेंड होता है ना, तो दे आर रिलीजिंग ऑन 14th ऑफ अगस्त।
1: रियली?
0: तो हाँ यस यस यस। सो यहाँ
1: अगस्त
0: है,
1: नेक्स्ट मंथ देख रहा था।
0: नहीं नहीं नेक्स्ट मंथ 14th ऑफ अगस्त। अभी तो गाने आएंगे इसके इस हफ्ते
1: इंशाल्लाह,
0: तो फ्राइडे पड़ेगा उस दिन, क्योंकि इंडिया में रिलीज फ्राइडे को होती है ना, तो फ्राइडे रिलीज है
1: जी। ओके राइट भाई
0: जी, तो इसीलिए
1: पाकिस्तान के सारे लोग आजाद होके सबसे पहले आवारापन देखने
0: जाएंगे। अरे पहली वाली आवारापन पाकिस्तान में बहुत बड़ी हिट थी, बहुत बड़ी हिट थी, एंड आई थिंक इमरान हाशमी ने वहां पे कुछ एक मोबाइल फोन का एड भी किया था पाकिस्तान में आफ्टर आवारापन।
1: मैंने देखा नहीं है।
0: हाँ तो वो
1: वैसे भी हमारे पाकिस्तानी भाइयों के एड इतने बेहतरीन होते हैं, इतने लाजवाब होते हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं।
0: अरे रे रे रे, हमारी तरफ भी ऐसे ही बनने लगे हैं भाई, क्या बताएं हम।
1: अब भाई ये पड़ोसी हैं, भाई हैं,
0: तो सेम ही
1: होंगे। आपके पड़ोसी हैं, यानी मेरा एक्चुअली मैटरनल सब उधर ही से, इंडिया से ही है, और कुछ कुछ पाकिस्तान से, बाकी तो फादर के साइड से सब सऊदी वगैरह वहां से है। तो
0: वक्त आ गया, और आप कहानी भेजूंगा तो जरूर सुनिएगा, ठीक है?
1: जरूर भेजना भाई, कहानी सुनने में बड़ा ही मजा आ रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या करें, क्लाइमेक्स के टाइम पे लगा मैंने टिकट के पूरे पैसे नहीं दिए।
0: ना ना कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज रहा हूँ,
1: क्लाइमेक्स से उठा लिया गया,
0: मैं आपको भेज रहा हूँ बस।
1: टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ब्रदर,
0: थैंक यू सो मच, यू टू, थैंक यू सो मच। कॉम्प्लीमेंट ग्रेट, सेंड मी द स्टोरी भाई, दिस इज सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट आरिफ भाई, बहुत सारा भर भर के प्यार। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 कतर, और मुझे भी ढूंढ सकते हैं दुहा वाला कबीर FM107, वहाँ पे सरप्राइज बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, सो आप जुड़ जाएंगे तो बेहतर है, कुछ अलग हिडन स्टोरीज भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह कल आपसे 5 बजे वापस मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: आओ जी आओ. अस्सलाम वालेकुम. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे. आइए आइए आइए आइए भाई साहब. बहुत बाहर ठंड हो रही है. कब कभी छूट रही नहीं 50 डिग्री में. ऐसी खतरनाक ठंड. तो भाई इस गर्मी में प्लीज अपना ख्याल रखिए. मैं तो शो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई. गाड़ी में कोई भी प्लास्टिक की बोतल मत रखना भरी हुई. ना तो परफ्यूम रखना और ना ही साथ में किसी किस्म का लाइटर वाइटर. ठीक है, ये पहले ही मैं डिस्क्लेमर से शुरुआत कर रहा हूँ. वेलकम टू कतर 2026 बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्लीज गो आउट एंड एंजॉय. क्या मेरी तरह घर पे. मैं भी जा रहा हूँ, बेचारा हूँ सभी. तो कतर 2026 वो शो है जिसमें मैं दोहा वाला कबीर आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ इवेंट्स हो चुके हैं जो आपकी नजरों से गायब हो गए और कौन से इवेंट्स होने वाले हैं. बहुत सारा लेखा जोखा लेकर आया हूँ मैं. तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो हो रहे होंगे as I am speaking to you right now, और बहुत सारे हो चुके होंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन विद सेम चीज. स्टेकेशन कर लो भाई, स्टेकेशन प्लीज. जाइए वीकेंड पे सबसे पहले सारे इवेंट छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली को लेकर, या अकेले या गर्ल्स आउट नाइट आउट कुछ तो करें भाई. ख्वातीन इसमें हमसे बहुत बेहतर होती है. लड़कों का क्या है, वो तो मिल लिए चाय पी ली खत्म हो गया हमने. जो जो ख्वातीन है वो अच्छे से मैनेज कर लेती हैं. तो व्हाई नॉट गर्ल्स नाइट आउट के लिए बहुत सारी जगहें हैं, या फिर जो स्टेकेशन है उसमें लड़कियों के ग्रुप के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं. वो देखें ऑल द फीमेल्स. शाउट आउट टू ऑल द फीमेल्स. आप बहुत बहुत बहुत बहुत मेहनत करती हैं माशाल्लाह. और आप जो है आगे जाएं, मजे करें, आप अपने ग्रुप बनाइए और निकल जाइए स्टेकेशंस में कपल्स के लिए, ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए. बॉयज आई एम रियली सॉरी, हमारे कुछ नहीं है. चाय पियो बेटे चाय. और बाकी इवन इफ यू सिंगल, आप जाइए मजे कीजिए. स्टेकेशंस आर देयर बहुत सारे होटल्स हैं कतर में, और हर होटल की खासियत है, हर होटल के पास ऑफर है. और हर होटल कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको रोके रखेगा. यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं है कतर में, अल्हम्दुलिल्लाह वाला सिस्टम नहीं है जहाँ पे सिर्फ फैंसी से चादर रख दी और फैंसी से पर्दे लगा दी. ना, होटल्स आर रियली रियली फैंसी ब्रो, और बजट में होते हैं. सो डू एंजॉय दैट फर्स्ट. बाकी अब मैं इवेंट बताना शुरू करता हूँ. एंड उससे भी पहले एक लास्ट चीज प्लीज. सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज जुड़िएगा. और अगर आप मुझसे भी अभी तक नहीं जुड़े हुए तो मेरे समझ नहीं आया क्यों, मुझे ढूंढने की कभी चाहत नहीं आई. इधर से टाइप करो सर्च इंजन में जाके दोहा वाला कबीर .FM 107. ओके शुरू करें. तो देखिए इस महीने एक बड़ा ही खास इवेंट है जो शायद आप सुन रहे होंगे तो पता नहीं खत्म हो चुका होगा या हो रहा होगा. इस इवेंट का जो इस इवेंट को कराने वाले जो लोग हैं वो है DFI सिनेमाज यानी दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट. और इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. इनको पता भी नहीं. नहीं पता है. ये एक लौते लोग हैं जिनके फैन है, जिनके मैं फैन हूँ, और इंस्टीट्यूट है उसका मैं फैन हूँ. तो ये इंस्टीट्यूट बहुत कमाल का है. यहाँ पे काफी टैलेंटेड राइटर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स, कंटेम्प्रेरी राइटर्स, सिनेमाटोग्राफर सब आते हैं. और इस बार उन्होंने रखा है कंटेम्प्रेरी रिलीजेस, और वो लेकर आ रहे हैं जॉर्जियो एम उनकोव्स्की, सन डांस विनिंग डीजे जिनका नाम है डीजे अहमद. ये म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट ऑडिटोरियम में 24 से 27 जून को परफॉर्म करेंगे, ऐसे डेट बताई गई है. आई थिंक जब आप सुनेंगे तो परफॉर्म कर चुके होंगे. एंड ये परफॉर्मेंस की वीडियोस आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं DFI की, बिकॉज DFI इस पूरे साल में और भी बहुत सारे इवेंट करने वाला है. तो बेसिकली एक विलेज है इन मैसेडोनिया, एंड वहां से भी एक फिल्म निकल के सामने आई है. उस फिल्म को दिखाया जाएगा, एंड बहुत कमाल की फिल्म है. फिल्म फॉलोज 15-year-old अहमद जो कि म्यूजिक ओपन करता है, एक अपनी जगह बनाता है, आज़ादी के साथ आगे बढ़ता है और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है. वो जो एहसास होता है ना सेल्फ एक्सप्रेशन का, आगे बढ़ते रहने का, वो इस मूवी में आपको जरूर मिलेगा. एक सनडांस विनिंग मूवी है जिसका नाम है डीजे अहमद, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इस म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में फॉर्म दिखाई जाएगी. प्लीज इफ यू हैव सीन इट जरूर जरूर शेयर कीजिएगा. एंड म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट कतर 24-27 जून 7 बजे से 9 बजे. सो आई बिलीव आप ये देख चुके होंगे जिन्होंने देख लिया, बहुत बढ़िया. पर निराश ना हो अगर आप नहीं जा पाए, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो DFI की तरफ से होंगे. ऐड कर देता हूँ DFI दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फिल्म मेकिंग के कोर्सेज भी रखते हैं. सो इफ यू गो ऑनलाइन एंड चेक विद देम, यू नेवर नो कि आपके अंदर का जो फिल्मोग्राफर है, आप कुछ सीखना चाहते हैं इनसे. इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दे आर अमेजिंग बंच ऑफ पीपल. तो आप उनसे इस बारे में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव डन इट. तो मैं चाहूंगा कि आप भी मन करे तो ट्राई कीजिएगा. ओके, बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ. अब अगला इवेंट जो है वो है दोहा थिएटर फेस्टिवल का. 38th दोहा थिएटर फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं थिएटर अफेयर्स सेंटर और द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो 21 जून को कमेंस किया गया है. बहुत कमाल का इवेंट रहा है ये. इसके बहुत सारे इवेंट्स आने वाले वक्त में भी आपको मिलेंगे, बट फॉर नाउ 3 प्ले हुए बाय एमेच्योर ग्रुप्स जिन्होंने अलमयासा थिएटर में परफॉर्म किया कतर के QNCC. इसके अलावा ओपनिंग प्ले हुआ अंडर द रबल जिसको दोहा थिएटर ग्रुप ने परफॉर्म किया, विच इज रिटन बाय यासिर अल हसन एंड वाज डायरेक्टेड बाय फाले फायज. और जो फेस्टिवल था उसको ओपन किया एक और ग्रुप ने जिसका नाम है द कतर थिएटर ग्रुप, और उसको नाम दिया था द डिवाइडिंग सिटी एंड वाज रिटन बाय तालिब अल बूस और डायरेक्टेड बाय मोहम्मद यूसुफ अल मुल्ला. और ये एक ओपनिंग एक्ट रहा बीते हफ्ते. इट वाज जस्ट अमेजिंग. बहुत बढ़िया माहौल सेट करते हैं लोग यार ये फेस्टिवल में. उन्होंने कंक्लूड किया, जब फेस्टिवल कंक्लूड किया तो ब्लैक हील विच इज रिटन बाय विच इज डन बाय द अल वतन थिएटर ग्रुप, उन्होंने परफॉर्म किया. इट वाज रिटन डायरेक्टेड बाय शेवल क्वारी एंड परफॉर्मेंस इसकी बहुत बहुत जबरदस्त रही है. थिएटर का जो कल्चर है वो कतर में रहना चाहिए. आई ऑलवेज से दिस, मुझे 10 साल हो चुके हैं कतर में एंड आई ऑलवेज ऑलवेज से दिस ऑन रिपीट के अभी एक लैंग्वेज बार आ जाता है बीच में. ऑफकोर्स हम सोचते हैं कि हमें अरबी नहीं आती तो हम कैसे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर इफ़ यू कैन लर्न अरबिक एंड आपके अंदर थिएटर का जरा सा भी कीड़ा क्योंकि मेरे अंदर है तो होना चाहिए. थिएटर कतर में रहना चाहिए, ये आर्ट फॉर्म डाई आउट नहीं होना चाहिए. एंड आई एम सो हैवी कि कतर ने इनिशिएटिव लिए हैं कि ये फॉर्म जिंदा रहे, बिकॉज कतर के पास सारा का सारा साजो सामान है इसको जिंदा रखने के लिए. क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए है, एक्टर चाहिए है, देसी एक्टर चाहिए है, फॉरेन एक्टर चाहिए है, लोकेशन है, सब कुछ तो है. बार बार के थिएटर्स हैं. तो आई रियली होप कि कतर में चीज बढ़ती रहे और आगे चलती रहे, बिकॉज कतर टोटली डिजर्व्स इट. और दोहा थिएटर फेस्टिवल जो हुआ ये सबसे पुराने थिएटर्स सबसे पुराने उसमें आता है कतर के थिएटर में. इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट थिएटर है ना. हाँ, फर्स्ट है भाई, फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल है ये रीजन का और बहुत कमाल का फेस्टिवल है ये. ये सेलिब्रेट करता है 38th एडिशन को इस साल जो कंप्लीट हुई है, एंड ये अपने रोल को आगे बढ़ाता रहेगा ताकि जो कल्चर है वो एनरिच होता रहे. लोग थिएटर के जरिए, प्लेस के जरिए एक एक्सप्रेशन को, एक आर्टिस्टिक अप्रोच को समझ पाए. ऐसे बहुत सारे प्लेस और भी होंगे जो अलमया थिएटर में होंगे, दुकान हॉल थिएटर में होंगे, अलग अलग जगहों पे होते रहेंगे, मगर ये जो प्लेस हैं इन पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये अरेबिक में होते हैं मोस्टली, एंड इस बार भी अरेबिक में हुए. तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि कतर में आके इफ यू लर्न वन लैंग्वेज तो आपके पता नहीं कितने दरवाजे खुल जाते हैं और ऐसे कई सारे इवेंट आप विटनेस कर सकते हैं बाय जस्ट ब्रेकिंग इनटू द लैंग्वेज. तो अरेबिक एक ऐसी लैंग्वेज है तो अगर आपने सीख ली तो आपके काम वाम तो हो ही जाते हैं आसानी से, कॉन्वर्सेशन आसान हो जाता है और ऐसे इवेंट्स आप इंजॉय कर पाते हैं. अभी मत कहिएगा और तुमने कौन सा सीख लिया, मैंने भी नहीं सीखा, कंप्लीटली अग्री, बट इसके वीडियोज और फोटोज देख के मुझे लगता है कुछ तो बढ़िया हुआ है, कुछ तो बहुत ही बढ़िया हुआ है. और थिएटर को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी मुल्क के लिए. जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे में दिल्ली है, दिल्ली का है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, पुणे का FTI है, ये सब थिएटर को जिंदा रखे हुए है ना. और एक्टिंग की कोई भाषा नहीं है, यू कैन सी कि बंदा किसी और भाषा में भी बोल रहा है, किसी और जुबान में भी बोल रहा है, एक्ट आउट कर रहा है, तो समझ जाते हैं एक्टिंग बुरी है या अच्छी है. एंड आई कैन क्लियरली टेल कि इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इन तमाम थिएटर्स की जो कतर में परफॉर्म करते हैं. This is amazing. Okay, moving on to another event. Qatar 2026. अगला इवेंट है 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम का, जो कि स्क्रीन करने जा रहे हैं कतर के सारे वर्ल्ड कप मैचेस. 2026 के ग्रुप मैचेस यहीं पर हुए हैं एंड अगर आपने मिस कर दिया तो हेड ओवर टू कतर मैचेस, वॉच इट इन 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम. ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ था तो अगर आपने नहीं दिखा है भाई सैडली आपने बहुत मिस कर दिया है. आई नो कतर की गेम्स थे पुराने वाले अच्छे नहीं रहते अभी रिसेंट वाले, मगर कतर वर्सेस बोस्निया अगर आपने देखा है यहाँ पर तो अपने फोटो जरूर शेयर कीजिएगा. बहुत बहुत बहुत बहुत जबरदस्त जो ये क्या कहते हैं दिखाने वाला जो सीन है, मैचेस दिखाने जो सीन है कतर में, ये हमेशा बहुत ही ख्याल रखते हैं, लग्जरी के बीच में बैठ के देखने का जो मजा, उसकी बात ही कुछ और है। और यहाँ पर अगर आपने मैचेस नहीं देखे तो कहीं और देखे होंगे, तो कहीं और देखे तो वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा 666-22-107 पे। एंड मैं इन्वाइट करूंगा सबको सोशल मीडिया हैंडल्स पर आया करें, सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत जरूरी है ताकि हम और आप जुड़े रहें, हमारी बातें होती रहें। बहुत सारे इवेंट ऐसे होंगे जो मुझसे मिस हो जाएंगे, भाई मैं दो आंखें 12 हाथ तो हूं ही ना, तो मुझसे मिस होंगे, तो कुछ जो मिस हो जाएंगे तो आप बता दिया करें, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar और आप मुझसे भी डायरेक्टली रابطہ कायम कर सकते हैं, दोहा वाला कबीर, एंड वी कैन गेट इन टच विद अस, एंड मुझसे भी बात कीजिएगा, फिर बताइए कोई इवेंट अगर मिस हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू अनदर

इवेंट। अगला इवेंट तो बहुत सारे लोग गए भाई साहब, पेटियां पेटियां उठा के ले गया है, पेटियां पेटियां। तो ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला इंडिया के रिमार्केबल सिलेक्शन ऑफ प्रीमियम मैंगो का, जहां पे कई सारी वैरायटी दिखाई गई और मैंगो से इंस्पायर्ड प्रोडक्ट्स भी रखे गए। इसकी बात कर रहा हूं मैं, मैंगो फेस्टिवल की भाई साहब। मैंगो फेस्टिवल बढ़िया वाला फेस्टिवल है भाई, बढ़िया वाला फेस्टिवल, शानदार। और जो वैरायटी इन्होंने प्रेजेंट करी है सुक वाकिफ में, बड़ी कमाल करी। तो ईस्टर्न स्क्वायर सुक वाकिफ अगर आप गए हैं 18 जून से 27 जून के बीच में, तो आप जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर सब कुछ है और हर किसी के लिए। आप फैमिली फ्रेंडली एक्सपीरियंस चाहते हैं, आइए, दोस्तों के साथ आइए, सब मिलेगा आपको। आम का अचार, आम की मिठाई, स्पेशल प्रोडक्ट्स, आम खुद मिलेगा, आम के जूसेस, आम से क्या क्या बनता है सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और आम तो है ही, उठा के ले जाओ, पे करने के बाद उठा के ले जाओ प्रीमियम आम, घर जाकर बढ़िया खाओ भाई। और जिसने भी आज तक भाई, मैं तो यही कहूँ, अगर तुमने आज तक भाई रोटी के साथ आम नहीं खाया ना, तुमने कुछ नहीं खाया फिर। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया, दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो आम के साथ रोटी अगर कभी आपने ट्राई नहीं करी है, देसियों जागो, जागो, और अपने घर के लोगों को जो देसी नहीं रहे उनको जगाओ और खिलाओ, उनको एक्सपीरियंस कराओ, कितनी कमाल की चीज है। तो ये आपके पास चांस है एक्सपीरियंस करने का। अगर आप नहीं एक्सपीरियंस किया, मिस आउट कर दिया, कोई नहीं, आम तो बाहर भी मिलते हैं भाई। और ये फेस्टिवल बहुत कमाल करा है। एंड इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, हमारे साथ फोटो जरूर शेयर कीजिएगा, हमें भी बताएं कि आपने वाले कौन से वाले आम उठाए। क्योंकि कुछ लोग मैं जानता हूँ बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ये आम होता है, निफो आम होता है, चौसा आम होता है, लाल फंजो होता है, सारे आम की वैरायटी पता होती है, लंगड़ा होता है, हमें तो यही पता है, तीन ज्यादा नहीं आते यार, पता तो और भी है, दिमाग में भी तीन ही आए। एनीवे, तो ईस्टर्न स्क्वायर सुक वाकिफ में हुआ इवेंट मैंगो फेस्टिवल, और ये 18 जून से 27 जून के बीच में हुआ, शाम के साथ शाम के 4 बजे से शाम के रात के 10 बजे तक। तो बहुत बहुत ग्रैंड इवेंट रहा ये, और यहाँ पे ना सिर्फ प्रोडक्ट शोकेस किए गए, बल्कि वो जो बड़े बड़े हाइपर मार्केट हैं जिनकी, जहाँ पर आम आते हैं स्पेशली इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। एंड दे वर शोकेसिंग इन दिस फेस्टिवल, इट वाज जस्ट अमेजिंग मैन, अमेजिंगली डन। एंड आई थिंक मैंगो फेस्टिवल के बाद एक दिन फालसा फेस्टिवल भी आना चाहिए, विच रिमाइंड्स मी कि अभी तक मैंने फालसे खरीदे नहीं है। अगर आपने गर्मी में फालसे नहीं खाए या आपको पता ही नहीं है फालसे क्या होते हैं, तो हो कैसे नहीं पता भाई साहब, फालसे खा के देखिए आप, ये जामुन का छोटा कजन है, इतने कहूंगा आपसे मैं। बढ़िया होता है, हमारे यहाँ तो वो लगते थे, क्या कहते हैं, अरे वो आवाजें लगती थी, काले काले फालसे, बड़े रसीले फालसे। ये भी एक इवेंट हो सकता है आपकी जिंदगी में, बता रहा हूँ मैं आपको, इन गर्मियों में फालसे खाइए। बहुत सारी मार्केट्स हैं जो आपको ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे मिलेंगी, वहां पे जाके आप लीजिए, उनसे बोलिए फालसे चाहिए मुझे, खा के देखिए आप, मजे आ जाएंगे आपको। दिस विल बी अनदर इवेंट इन योर लाइफ ऑल टुगेदर, यू विल फील लाइक अरे भाई ये तो टेस्ट मैंने डिस्कवरी नहीं किया था। एंड आप इतने दीवाने हो जाएंगे कि आपको गर्मी सर्दी हर जगह चाहिए होगा, हर टाइम चाहिए होगा, मिलेगा सिर्फ गर्मी में। इसका जूस बनाइए, हेल्दी रहिए, ये गर्मी के लिए बहुत मुफीद है भाई, इसका जूस भी। तो फालसे का फेस्टिवल तो नहीं है, लेकिन फालसे आप जरूर खाइए इस गर्मी में, दिस कैन बी योर ओन इवेंट, और बच्चों को भी खिलाई, बहुत सही है भाई। फालसे के तो मैं हमेशा हिमायती रहता हूँ, और मैं तो अगर फालसे मुझे वकील हायर करेंगे तो मैं उनकी तरफ। नहीं खाया आप, नहीं पता ना, इसी बात का डर था मुझे, खाइए आप प्लीज, अगले इवेंट की तरफ बढ़ते। आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अगला इवेंट है बच्चों के लिए, बच्चों 5 से 12 साल के आए। तो समर कैंप 2026 वापस आ चुका है दोहा क्लब में, और इस टाइम और भी ज्यादा भाई, हर साल हमेशा इसका मयार बढ़ता ही रहता है और बढ़ता आ रहा है। तो इस बार 22 जून से 31 अगस्त 2026 को ये इवेंट समर कैंप 2026 तैयार रहेगा, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक। यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज हैं, एज ग्रुप बच्चों का मैंने बता दिया है 5 से 12। इसमें स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, अक्वा एरोबिक्स है, लिटिल मास्टर शेफ है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, और सब ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट्स थोड़े लिमिटेड हैं, विच आई अंडरस्टैंड, इतना सारा कैसे भरेंगे बेचारे, पर आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ, नो प्रॉब्लम, रजिस्टर कीजिए आप। ये जो कैंप है ये संडे टू थर्सडे ओनली है, तो दाना क्लब में आप रजिस्टर कर सकते हैं, या आप इनके कॉन्टेक्ट में हैं, इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरनेट पर नंबर वंबर मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा वहाँ जाइए दाना क्लब में, एंड वहाँ पे जाके रजिस्टर कीजिए 22 जून से 31 अगस्त तक, सुबह के 8 से दोपहर के 2:30 बजे। और ये कमाल का इवेंट है बच्चों के लिए। समर कैंप्स हम अक्सर हॉलीवुड की पिक्चरों में देखते आए थे भाई, कतर में आके मुझे जो है इनको

0: बड़े बड़े फॉर्म में देखने का मौका मिला। और अब हॉलीवुड की पिक्चरों के समर कैंप मुझे बहुत सस्ते लगते हैं भाई, कतर ने लेवल ही बढ़ा दिया है। तो अगर अभी घर में बच्चे हैं और छुट्टियां चल रही हैं उनकी, और आप चाहते हैं वो भी किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बने जहां पे वो कुछ सीख ही लें, इसमें मार्शल आर्ट्स इज वन ऑफ द की फीचर्स जो कि बड़ा हिट चल रहा है मार्केट में। एंड लिटिल मास्टर शेफ, बहुत सारे बच्चे, दे आर वेरी गुड कुक्स, दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस, क्योंकि इसकी कैटेगरी क्या थोड़ी छोटी होती है ना, तो इस कैटेगरी में सीखने के लिए बहुत ज्यादा है और इसके स्लॉट्स भी इजीली मिल जाते हैं। बाकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट से एजुकेशनल गेम्स भी रखे गए ताकि बच्चे इंगेज्ड रहें। हर बच्चा तो ऑब्वियसली, 5 साल का बच्चा कैसे कुकिंग करने उतर जाएगा, कर रहा है तो मैं हैरत में हूँ भाई, फिर मेरी गलती है। पर 5 से 12 साल के बच्चों के लिए समर कैंप रखा गया है ताकि वो इंगेज्ड रहें, आपको भी आराम मिले, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, ठीक है भाई। तो 22 जून से 31 अगस्त सुबह के 8 से दोपहर के 2:30 दाना क्लब में जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, स्लॉट्स अवेलेबिलिटी पे ध्यान दें, थोड़े से कम स्लॉट्स रहेंगे इसके लिए, बट इफ यू आर इनटू इट समर कैंप्स में आपको बच्चों को भेजना है, डालना है, उनके साथ जाना है, बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। आगे बढ़ते हैं।
1: Qatar 2026।
0: हाँ तो जी, एक बहुत ही बढ़िया इवेंट जो कि पोस्टपोन हो गया, पहले अप्रैल में होने वाला था, उसके लोग इंतजार कर रहे थे कब होगा कब होगा कब होगा, तो म्याऊ बिल्ली की आवाज निकलती है, really sorry. तो म्याऊ, हाँ अब निकली। तो ये एक ओरिजिनल इवेंट जो ओरिजिनल डेट पे था उसकी ओरिजिनलिटी बरकरार है, बस डेट थोड़ी सी आगे कर दी गई है। इसका नाम है नोवा पॉ फेस्टिवल। बिल्ली की फोटो नजर आएगी इसके उस पर, बड़ी बड़ी प्यारी सी बिल्ली, बड़ी प्यारी सी बिल्ली है, तो ये नजर आ जाएगी। ये इवेंट अब रीशेड्यूल कर दिया गया है 27 से 28 नवंबर को, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। पर अभी से बता दूं जिन लोगों को डेट्स लग रही थी कि अप्रैल में हो ही चुका, नहीं, पहले जो डेट्स थी वो 3 से 4 अप्रैल की थी, अभी 27-28 रख दी गई है, 2 दिन पहले 3 और 4 अप्रैल को थी। तो नोवा पॉ फेस्टिवल वर्ल्ड 2026 कतर का पहला इंटरनेशनल पेट फेस्टिवल है, ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है, पहली मर्तबा होने जा रहा है, एक और बेंचमार्क। सो ये पहला इंटरनेशनल पेट फेस्टिवल होगा, इसमें फैमिलीज, पेट लवर्स, टूरिस्ट सब हिस्सा ले सकते हैं, सब आइए, सब देखिए। और ये फीचर करेगा वर्ल्ड क्लास डॉग्स को और कैट्स को अंडर WWF एंड WCF स्टैंडर्ड्स, और हाईलाइट करेगा फैशन वॉक्स, ग्रूमिंग कॉन्टेस्ट, एजिलिटी शोज, और साथ में आपको इम्प्रेसिव कैट डोम भी नजर आएगा, फ्लाइंग बलून भी है इसमें, 10,000 से ज्यादा कह रहा हूँ मैं विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं ऑलरेडी इस फेस्टिवल के लिए, क्योंकि बाहर जब ये फेस्टिवल होता है तो लोग दीवानों की तरह जाते हैं। तो और आप भी कहते हैं कि या आई एम अ पेरेंट, आई हैव एन एनिमल, इट्स लाइक अ चाइल्ड टू मी, तो आपको जरूर पहुंचना चाहिए। एंड इफ यू आर अ पेट लवर इन जनरल, वैसे भी बिल्ली बहुत सारे लोगों ने पाली हुई है यहाँ पर, एंड इफ यू हैव डॉग्स एट होम, ये भाई बहुत बढ़िया फेस्टिवल है आपके लिए ही है, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका जाना तो बनता ही है। इसके साथ साथ फेस्टिवल में एक जो कॉम्बिनेशन है, इट इज एन एमलगेमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, कॉम्पिटिशन है, एंटरटेनमेंट है, खाना तो है ही, अडॉप्शन ड्राइव्स भी रखी गई हैं, विच इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस इवेंट। सो अडॉप्शन ड्राइव्स के जरिए भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं कोई जानवर अगर आपको अच्छा लगता है, और बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्यूटी पटूटी जानवर आते हैं, बहुत प्यारी बिल्लियां हैं और बिलोटे हैं, तो देख लीजिएगा आप, एंड इस पेट फ्रेंडली टूरिज्म का हिस्सा आप बन सकते हैं। कतर ने अपना को पोजिशन वैसे भी कर लिया है कि रीजनल हब है वो पेट फ्रेंडली टूरिज्म के तौर पे, और कतर की इसी कोशिशों के बाद ये मुमकिन हुआ है कि पूरी दुनिया अब लोहा मानती है, और इसलिए इवेंट पहली मरतबा कतर में होने जा रहा है, एक कल्चरल और एक टोटल इन एंड आउट फैमिली एक्सपीरियंस के लिए। तो लोकेशन होगी इसकी पेट्स पार्क द पर्ल दोहा, और ये 27 और 28 नवंबर को होगा, अभी टाइम है, बट स्टिल इफ यू वांट टू मार्क इट इन योर कैलेंडर और प्रोबेबली मार्क इट समवेयर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं भी भाई साहब मार्क कर लीजिए, तो वहां पे आप मार्क कर सकते हैं। दिस इज नोवा पॉ फेस्टिवल, रात के 12 बजे ये होगा, और ये होगा पेट्स पार्क द पर्ल कतर में 27-28 जून। आई होप यू हैव मार्क द डेट्स बिकॉज जरूरी है, अभी से बता दिया है मैंने, बताता रहूंगा वैसे बीच में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ,
1: Qatar 2026।
0: अब अगला जो इवेंट है वो कतर की सस्टेनेबिलिटी, कतर के टारगेट की तरफ है, कतर 2030 का जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते हुए एक और हफ्ता, कतर सस्टेनेबिलिटी वीक। ये एक नेशनल कैंपेन है पूरे कतर को साथ लेके चलने के लिए, एंड दिस इज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मकसद है कि कम्युनिटीज एकजुट हो, एक साथ इस मकसद के लिए आगे बढ़े, और एक वाइड रेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज रखी जाए ताकि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और शोकेस किया जाए कि कतर ने कहां से कहां तक प्रोग्रेस किया है इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी।

0: थी, कुछ काम होते हैं हमारी नजरों के सामने नहीं हो रहे होते, मगर फिर एकदम से सामने आते हैं, बोलते हैं अरे ये कब हुआ, ये कब किया कतर ने, और कतर हमें हमेशा ऐसे अच्छे सरप्राइज देता रहता है। एंड अगेन कतर इज वर्किंग टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, वो हम कब से देख रहे आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और माशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी स्टेडियम्स ने दिखाया कि सस्टेनेबिलिटी के साथ खेल भी किए जा सकते हैं। एंड अभी ये जो सस्टेनेबल वीक है ये भी चलती रहेगी, और सस्टेनेबल वीक में जैसे मैंने कहा इसका मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए, एंड ये वीक एक किस्म का प्लेटफॉर्म है ताकि प्रमोट कर सके नेशन के टारगेट को, नेशन के विजन को, और कम्युनिटी इंगेजमेंट हो सके और नेशन एक साथ आ सके। सो अर्थना सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर दे आर रियली प्राउड टू अनाउंस कि वो 11th एडिशन लेके आ रहे हैं ऑफ कतर सस्टेनेबिलिटी वीक, और ये पिछले जो गए हैं इनके इवेंट्स लास्ट 10 ईयर्स से, उनकी जो शोहरत है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो कामयाबी है उसके बेसिस पे, बिकॉज 1 million से ज़्यादा मेम्बर्स इसका हिस्सा बने इस इनिशिएटिव का, इस एक्टिविटी का अक्रॉस कतर, और ये वीक लॉन्ग जो कैंपेन है, नेशनल कैंपेन, ये रहेगी 31 अक्टूबर से 7 नवंबर। इसके जॉइन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस सब इससे रहने वाले हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स आएंगे, बिजनेसेस हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो अक्रॉस कतर हैं, एंड एक नेशन वाइड एफर्ट है इसके पीछे ताकि कतर ये दुनिया को दिखा सके किस तरीके से एनर्जी को बचाया जा सकता है, अर्थ को बचाया जा सकता है। बहुत सारे इनिशिएटिव फॉर इवेंट है, एंड अगर आप इसे पार्टनर बनना चाहें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और एक्टिविटी जो है वो रिलेटेड होनी चाहिए किसी ना किसी एस्पेक्ट से ऑफ सस्टेनेबिलिटी। एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू की जाएंगी और पब्लिश की जाएंगी इन 3 working days। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा कतर सस्टेनेबिलिटी वीक जब आप टाइप करेंगे। इसकी लोकेशन अलग अलग जगह, कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं है, अलग अलग जगहों पर इवेंट होगा। अगेन बता दूं 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक रात के 12 बजे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड थिंग्स इन कतर, और मैं कहूंगा इसका हिस्सा आप जरूर जरूर बने। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट।
1: कतर 2026।
0: अब देखिए ओलंपिक डे जो कि 27 जून को है, आई थिंक जब सुनोगे तो बनाया जा चुका होगा ओलंपिक डे 27 जून को, कतर ने भी सोचा कि मनाया जाए एट प्लेस वंदोम। 5 किलोमीटर का इंडोर वॉक रख दिया, 5 किलोमीटर का। सो इफ यू हैवंट डन इट, ये रिमाइंडर है कि आप वॉक वैसे भी कर सकते हैं, इवेंट की जरूरत नहीं है, पर ये इवेंट जो हो रहा है कतर में ये रिमाइंड कराता है कि ऐसे अगर इवेंट हो तो आप इनका हिस्सा जरूर जरूर बने। यू कैन वॉक, यू कैन जॉग एंड बी अ पार्ट ऑफ IOC's लेट्स मूव कैंपेन। ये रखा गया है, इवेंट रखा गया इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन, और इस इवेंट के जो फीचर्स हैं उन्हें बता दूं मैं, 5 लैब्स हैं पूरे प्लेस वेंदोम में, और रजिस्ट्रेशन सुबह के 8:30 बजे ओपन हुआ और किक स्टार्ट हुआ है 9 बजे ग्राउंड फ्लोर गेट 1 पैलेस प्लेस वेंदोम में। एंड इसी के साथ शो के तो मैं एकदम पहुंच गया, लेकिन कुछ चीजें, एक दो इवेंट्स और जो बताना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा जो एक चीज है नजरअंदाज हो जाती है, मैंने भी बहुत सारी की है, वो है स्टेकेशन का मामला। स्टेकेशन में मेरी बात हुई थी एक हमारी लिसनर है, उन्होंने बोला कि अकेलों के लिए क्या है जी, बैचलर्स के लिए तो सब कुछ है ही, आप ग्रुप बना के जाए ना, अकेले जाना क्यों है, ग्रुप बना के जाए, आप देखिए क्या मजा आएगा आपको, वीकेंड पे निकल जाए। बहुत सारे से स्टेकेशन ऑप्शन है कतर में जहां पर आपको ग्रुप में मजा आएगा, वहां आपको पार्टनर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ही मजा नहीं आएगा। Why am I saying this? घर नहीं जाना क्या मुझे, बराबर समझ कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बैचलर्स के लिए कुछ है ही नहीं, भाई मैं भी बैचलर रहा हूँ यहाँ पे, आई नो हाउ इट इज, सब कुछ है कतर में अवेलेबल, और अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। सो प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज विजिट ऑल दीज प्लेसेस, एंजॉय योरसेल्फ व्हाइल बीइंग इन कतर। ये मौका जो है आपको ताउम्र याद रहना चाहिए, जब तक आप कतर में हैं कुछ नहीं छूटना चाहिए भाई, छोटी कंट्री लेकिन शानदार कंट्री का फायदा ही ये है, जो कंट्री आपको इतना सब कुछ दे रही है फिर आप क्यों ऑफर को ठुकराएंगे। तो जो जो आता रहेगा हम बताते रहेंगे, आपके पास हो आप हमें बताते रहें, और कहानी इस तरह से हमारी बढ़ती रहे। स्टेकेशन इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई थिंक यू शुड कीप एन आई ऑन, क्योंकि ये वीकेंड पर ही आप निपटा सकते हैं। लंबी छुट्टी लीजिए वो आपके ऊपर है, बट आप वीकेंड के साथ साथ इसे निपटा सकते हैं। एन एस सी के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको जो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, स्पेशल ऑफर्स जो हैं वो लगे हैं ऑनलाइन भी, और साथ साथ आप जाके देखेंगे तो ये आपको कतर के भी अलग अलग जगहों पर दिख जाएंगे, बिकॉज देर आर टन्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। तो अगर आप इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ बनिए और जाइए कतर के इवेंट्स में शरीक होइए। सिर्फ फोटोज देखने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई साहब, करना पड़ेगा आपको, ये बड़े जरूरी इवेंट हो जा रहा है भाई, ठीक है। तो एक और इवेंट मैं इसकी तरफ बढ़ना चाहूंगा बिकॉज दिस विल दिस इज करंटली हैपनिंग. इस इवेंट के बारे में बता देता हूँ. तो ये जो इवेंट है ये है 15 सालों का जश्न ऑफ मतहफ, जिन्होंने एक नया लुक दिया है म्यूजियम को और उन्होंने परमानेंट कलेक्शन चार्टिंग रखा है. ये उसका पिवोटल रोल है कि वो जो है हिस्ट्री ऑफ अरब मॉडर्निज्म वो उसे हाईलाइट करे दुनिया के सामने. ये एग्जीबिशन है पूरी की पूरी जो कि शुरू हो चुकी है पिछले साल से 31 अक्टूबर से और ये चलने वाली है 8 अगस्त 2026 तक. ये एग्जीबिशन हर एक मोमेंट को कैप्चर करती है जिसकी वजह से आज अरब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा है और मॉडर्निज्म आया है, येट उसकी रूट्स आज भी स्ट्रांग है. सबसे बड़ा एग्जांपल जहां आप रह रहे हैं कतर. कतर अपनी रूट्स के साथ स्ट्रांग है और फिर भी मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलना जानता है और यही बैलेंस है जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा. मतहफ के जो रीजन्स हैं एज एन आर्टिस्टिक हब ऑलरेडी सेट हैं कतर में. इट इज़ लेड बाय द पायनियरिंग एफर्ट्स ऑफ हिज एक्सलेंसी शेख हसन बिन मोहम्मद बिन अली अल थानी. एंड इसके साथ साथ ये जो एक लेगेसी है ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड नॉलेज का जो सिग्निफिकेंस है उसको भी ये दर्शाता है. तो इसकी टाइमिंग्स बड़े सिंपल हैं. टाइमिंग्स एक बार रिपीट कर देता हूँ, दो बार सुना दूंगा ताकि आपको याद रहे. संडे को सुबह 9 से शाम 7, मंडे को बंद रहेगा, प्लीज मंडे को ट्रैक करना ही नहीं. ट्यूजडे को सुबह के 9 से 7 और बाकी दिन भी यही है फ्राइडे को छोड़ के. फ्राइडे दोपहर के 1:30 से शाम के 7. तो ये एक और इवेंट है जो चल रहा है. इट इज एन ऑन गोइंग इवेंट और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं. ऐसे ही एक और इवेंट है विच इज ऑन गोइंग राइट नाउ. इसका नाम भी वही है, ये भी म्यूजियम के अंदर है और ये भी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है ऑफ अरब म्यूजियम ऑफ इस्लामिक ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिन्होंने ओपन किया है रेजोल्यूशंस. ये 30 अप्रैल से 22 अगस्त तक है अक्रॉस द म्यूजियम्स आट्रियम और ग्राउंड फ्लोर गैलरीज 1 से 7. एग्जीबिशन जो है इस वाले एग्जीबिशन का मकसद है कि जो फॉर्मर एयर्स रहे हैं जिसमें लार्ज स्केल स्कल्पचरल वर्क आता है वो भी दिखाया जाएगा. इसमें एक रेनाउंड आर्टिस्ट है, काफी मशहूर आर्टिस्ट है, इराकी आर्टिस्ट है इस्माइल फताह, और उनका काम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस इफ यू आर इनटू आर्ट एंड एवरीथिंग. स्पेशली अगर आप पेंट वेंट करते हैं यू कैन गेट अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं उसको इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज. एक और इवेंट है जिसपे मेरी नजर बनी हुई थी और ये छोटा इवेंट है लेकिन बहुत मोटा इवेंट है. ये इवेंट 2 जून से शुरू हुआ है, इसी महीने शुरू हुआ है और 2 फरवरी 2027 तक. ये मुआतर गैलरी नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के अंदर है और ये इवेंट है बहुत शानदार. ये एग्जीबिशन 3 एक्सेप्शनल ऑटोमोबाइल्स को दिखाती है, इनोवेशन परफॉर्मेंस और कल्चरल के साथ. ये 3 फैक्टर्स हैं जहां पर आपको नजर आएंगे. ये डिफरेंट एरर्स ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को दिखाती है एंड ये इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनेंगे. तो जितने भी गाड़ी के शायकीन हैं वो जरूर यहां पर आए. डिस्प्ले पर रखी गई है फरारी और रोडस्टर, तो ये दोनों गाड़ियों देख सकते हैं. इसमें मर्सिडीज बेंज भी है. कैसे बोलते हैं मखीद, I won't even try this accent. तो ये एग्जीबिशन कैसा बन सकते हैं. आप संडे मंडे वेंसडे सैटरडे सुबह के 9 से शाम के 7 और ट्यूसडे को ये बंद रहेगा, थर्सडे को 9 से 9 रहेगा और फ्राइडे को 1:30 से 7 रहेगा. ठीक है जी, तो ये था कतर 2026. अगर आपको कुछ कहना है, आपके जहन में कुछ इवेंट्स है या कहीं पर आप हो क्या है तो प्लीज प्लीज हमें बताएं सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए FM107 Qatar. एंड इवेंट्स क्या है ना कि होते रहेंगे पर ये जो स्टेकेशन का आइडिया मैंने शुरुआत में और बीच में आपको बताया इसको मिस आउट बिल्कुल मत कीजिएगा. दीज आर वेरी वेरी की फीचर्स. ऑल्सो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप पोस्ट करें, कहीं पे आप हमारे बताने के बाद गए तो प्लीज प्लीज जाएं वो भी बताएं. इन द कमिंग वीक कतर के बहुत सारे ऑफर्स शॉपिंग के वो लगने वाले हैं. ऑनलाइन ऑलरेडी जगह जगह पर हैं तो आप इस समर के सीजन में उसका भी पूरा फायदा उठाएं. एंड एक एडवाइस है, हालांकि मेरा दिन बनता नहीं एडवाइस, मैं खुद भी इस एडवाइस को बहुत कम मानता आया हूं पर अभी मैं जाग गया हूं. कतर में स्पेशली इफ देर आर इवेंट्स स्मॉल और लार्ज एंड इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली टेक योर फैमिली विद यू एंड एंजॉय योरसेल्फ बहुत ज्यादा, वरना आप कहते हुए लोग सुनेंगे अरे मैं तो आ गया 2 साल के लिए यार, 8 साल हो गए मुझे यहीं पे. तो कहीं आपकी टोन ऐसी ना हो जाए, इसलिए लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड प्लीज विजिट जहां पर भी आपको मौका मिलता है, कहीं भी आपको इवेंट दिखता है, एक छोटा मोटा इवेंट भी. आप सोच रहे हैं मैंगो फेस्टिवल में कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं, वो इसलिए ना क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी आउट एंड सी समथिंग यूनिक. तो अगर कोई नया आया कतर में तो उसका वेलकम करता हूँ. बिफोर आई एंड द शो, वेलकम टू कतर एंड एंजॉय योरसेल्फ. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे शहर का सफर शुरू करने जा रहे हैं

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा, और आज हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम मोहनजोदड़ो के असल सफर से गुजरते हैं। वो सफर जो शुरू होता है लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना पिज्जा डिलीवरीज, लेकिन फिर भी लोगों ने एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाई जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही है। साथियों, मोहनजोदड़ो असल में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का हिस्सा था, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी तहजीब कहते हैं। ये तहजीब 3300 BC से लेकर 1300 BC तक रही। अगर आप सोचें तो ये लगभग 2000 साल का सफर है, मतलब एक पूरी दुनिया की कहानी। साथियों, जब मेसोपोटामिया में लोग अपनी पहली लिखाई का सिस्टम बना रहे थे,

और इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, तब इंडस वैली के लोग अपने शहर की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब ये तहजीब वर्ल्ड क्लास लेवल पर थी भाई। इस सिविलाइजेशन का पीक यानी उसका गोल्डन पीरियड था 2600 BC से 1900 BC के दरमियान का, और इस पीरियड में मोहनजोदाड़ो अपने शानदार दौर में था, बिल्कुल जैसे आज के दौर में न्यूयॉर्क या टोक्यो है। अब भाई सवाल ये उठता है कि अगर हमें कैसे पता चला कि मोहनजोदाड़ो जैसा शहर कभी था भी, तो भाई इसका जवाब छुपा है 1922 के ईयर में। अब से सिर्फ 100 साल पहले ही उस वक्त R.D. बैनर्जी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट जो कि ब्रिटिश इंडिया में काम कर रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सी ब्रिक्स और स्ट्रक्चर्स मिले जो कि उन्हें आम गांव की इमारतों जैसे नहीं लग रहे थे। जब उन्होंने और एक्सकेवेशन की तो समझ आया कि नीचे एक पूरा पूरा शहर छुपा है। जरा सोचिए, एक किसान खेती करते वक्त मिट्टी खोद रहा है और नीचे 500 साल पुराना शहर निकल आए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था मोहनजोदाड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट ने और खुदाई की और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने से एक लॉस्ट सिटी का पर्दा उठाया गया। साथियों, अगर मोहनजोदाड़ो के नाम के बारे में बात की जाए तो भाई इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी में मतलब है मुर्दों का टीला। शुरू में जब लोकल लोग यहाँ आते थे और मिट्टी के नीचे से पुरानी हड्डी, मिट्टी के बर्तन और अजीब चीजें मिलती थी, तो उन्होंने इसे मुर्दों का टीला कह दिया। लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि असल में ये एक पुरानी आबादियों का मरकज था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शहर का आगाज और तरक्की कैसे हुई। तो साथियों, मोहनजोदाड़ो को अगर आप देखें तो लगता है कि ये शहर किसी इंजीनियर ने मैप के साथ डिजाइन किया था। हर चीज प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। यहाँ की सड़कें सीधी सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि इसे देखकर पता चलता है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं था, इंडस वैली में और भी बड़े बड़े शहर थे जैसे हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा। लेकिन मोहनजोदाड़ो सबसे ज्यादा फेमस पता है क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिली थी। अच्छा, इन लोगों की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो के लोगों ने अपना लिखाई का सिस्टम डेवलप किया जो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्होंने अपना वेट और मेजरमेंट सिस्टम भी बनाया हुआ था ताकि ट्रेड में आसानी हो। और भाई, दुनिया का सबसे पहला ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये अभी आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये याद रखें कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब दुनिया के ज्यादातर लोग अभी शिकार और झुग्गियों में गुजर बसर कर रहे थे। अभी की तरह कुछ भी मॉडर्न नहीं था। अच्छा, अगर इनके ट्रेड और दोस्ती के बारे में बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो के लोग सिर्फ अपने शहर तक लिमिटेड नहीं थे, उनकी नजर दूर तक थी। एक्सकेवेशन से ये पता चलता है कि वो मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है, यहाँ तक ट्रेड करते थे। जरा सोचिए, 4000 साल पहले मोहनजोदाड़ो का एक आदमी अपना माल लेकर मेसोपोटामिया जा रहा है और वहाँ के लोग उसे वाह वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त क्राफ्टमैनशिप है, ये कहकर उसका माल खरीद रहे हैं। ये प्रूफ है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज की बात नहीं है साथियों, ये सिस्टम पहले भी था। पहले भी लोग इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे। अच्छा, अगर कल्चर और सोसाइटी के बारे में बात की जाए तो तारीख से हमें ये भी पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग बहुत ऑर्गेनाइज थे। उनके पास सोशल हायरार्की थी भाई, मतलब कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब, लेकिन एक चीज कॉमन थी, सब सफाई और प्लानिंग का ख्याल रखते थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मर्द और औरतों दोनों की जिंदगी में गहने, कपड़े और कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट थे। हर घर के अंदर प्रॉपर किचन और बाथरूम होता था, मतलब फैमिली लाइफ ऑर्गेनाइज थी वही बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये लोग अपनी रिचुअल्स और रिलीजन के लिए भी बहुत सीरियस थे। और इनके पास जो ये ग्रेट बात मिला है ना, ये इसी बात का सबूत है कि ये लोग एक साथ इकट्ठा होते थे और रिचुअल्स किया करते थे। साथियों, मोहनजोदाड़ो को अगर आप आज देखें तो लगता है कि ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन सोचिए, अपने दौर में ये शहर दुनिया के टॉप 3 शहरों में से एक था, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो दुनिया के रिसर्च स्कॉलर्स ने कहा

भाई ये तो इंसानियत की पहली सिलिकॉन वैली है। ये शहर तो अपने वक्त से हजारों साल आगे था और हकीकतन ये बात बिल्कुल सच है। साथियों यही लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आके आपसे करेंगे और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर मोहनजोदड़ो के बारे में। सुनते रहिए सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन FM 107।

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक गुमशुदा शहर के बारे में जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। साथियों, अब आते हैं मोहनजोदाड़ो के सबसे जबरदस्त बात पर, यानी उस शहर की प्लानिंग। आप जरा सोचिए, 4000 साल पहले लोगों ने ऐसे शहर डिजाइन किए जो आज भी बहुत से मॉडर्न सिटीज को शर्मिंदा कर दें। साथियों, मोहनजोदाड़ो की पहचान थी उसकी सीधी और क्रॉस होती हुई सड़कें। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सड़कें एक ग्रिड सिस्टम में बनी थी, मतलब हर स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट को 90 डिग्री पर कट करती थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आप न्यूयॉर्क या मैनहट्टन के मैप को देख लें, बिल्कुल सीधा और बॉक्स पैटर्न। अब आप सोचिए, ये सिस्टम 20th सेंचुरी में फेमस हुआ, लेकिन मोहनजोदाड़ो वाले इसे 4500 ईयर्स पहले यूज कर रहे थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सड़कों की चौड़ाई भी प्लान के मुताबिक थी। बड़ी सड़कें लगभग 9 मीटर वाइड थी और छोटी गलियां 1.5 से 2 मीटर तक की थी। मतलब ट्रैफिक रूल्स भी यूज हो रहे थे भाई। हाँ, बस फर्क इतना था कि उस वक्त वहाँ गाड़ियां और रिक्शे नहीं थे, ना ही कोई हॉर्न बजाने वाले अंकल। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं घरों के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के बारे में। एक्सकवेशन से ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के घर बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे। ये ब्रिक्स स्पेशली आग में पकाई जाती हैं ताकि मजबूत हो जाएं। अच्छा, ये भी देखने में आया कि कुछ घर 2 स्टोरी तक भी थे। हर घर में कोर्टयार्ड होता था जहाँ खानदान इकट्ठा होता था। अच्छा, मजे की बात ये कि भाई वेंटिलेशन का भी प्रॉपर सिस्टम था। छोटे छोटे विंडोज और ओपन स्पेसेस जो हवा को अंदर लाती थी। और सबसे जबरदस्त बात पता है क्या थी? हर घर में प्राइवेट बाथरूम और किचन होता था। जी हाँ, बाथरूम 4000 साल पहले भी होते थे और वो भी ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड। अच्छा, अब जो मैं बात कहने लगी हूँ ना, वो बात सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करती है। वो है मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम। साथियों, यहाँ हर घर का एक छोटा सा प्राइवेट ड्रेन था। ये ड्रेन्स बड़े ड्रेन्स में गिरते थे जो स्ट्रीट्स के नीचे होते थे। इन ड्रेन्स को कवर्ड रखा जाता था ब्रिक्स या स्लैब से, ताकि उनमें से स्मेल और गंदगी बाहर ना आए। हर कुछ फासले पर मैनहोल्स भी थे भाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशंस यूज करती हैं सफाई के लिए। इस बात से ये साबित होता है कि उन लोगों को हाइजीन और हेल्थ का बहुत ख्याल था। वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते थे कि सफाई सिर्फ सुकून का जरिया नहीं बल्कि सेहत का भी हिस्सा है। इसी के साथ अगर बात की जाए द ग्रेट बाथ की, तो भाई इसे शहर का दिल कहा जा सकता है। आपने ग्रेट बाथ का नाम तो जरूर सुना होगा साथियों। ये मोहनजोदाड़ो की सबसे फेमस डिस्कवरी है, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा बात, जिसका साइज था लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। भाई ये बात ब्रिक से बनाया गया था और उस पर एक तरह की वाटरप्रूफ कोटिंग की गई थी ताकि पानी लीक ना हो। पानी भरने और निकालने का प्रॉपर सिस्टम भी मौजूद था। बाथ के चारों तरफ रूम्स थे। शायद इसे लोग कपड़े बदलने या रेस्ट करने के लिए यूज किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं था बल्कि एक रिचुअल सेंटर था। यहाँ लोग शायद रिलीजियस या कम्युनिटी पर्पसेस के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। जरा सोचिए, मोहनजोदाड़ो वाले भी अपने दौर में स्पा का मजा ले रहे थे भाई। अच्छा, अगर पब्लिक और प्राइवेट वेल्स के बारे में बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो में पानी का सिस्टम भी लाजवाब था। एक्सकवेशंस में 700 से ज्यादा वेल्स मिले हैं, मतलब हर चंद घरों के बाद एक वेल होता था। वेल मतलब कुआं भाई। कुछ कुएं तो प्राइवेट थे जो सिर्फ एक फैमिली के लिए थे और कुछ कुएं पब्लिक थे जहां आसपास के लोग पानी शेयर किया करते थे। इस बात से ये पता चलता है कि पानी की सप्लाई मोहनजोदाड़ो में प्रॉपर मैनेज होती थी। साथियों, कितनी अजीब सी बात है ना कि आज के दौर में जहां लोग पानी के टैंकरों का इंतजार करते करते थक जाते हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो वाले, भाई मोहनजोदाड़ो वालों को ये प्रॉब्लम नहीं थी जो आज के दौर में अक्सर सिटीज में फेस की जाती है। अच्छा, इनके पास मार्केट्स और शॉप्स भी पाई गई हैं। साथियों, हर शहर की तरक्की का सबूत होता है उसकी मार्केट्स। मोहनजोदाड़ो में भी मार्केट्स और शॉप्स मौजूद थी एक्सकेवेशन में शॉप्स और स्टोरेज रूम्स मिले हैं जहां ग्रेन्स और सामान रखा जाता था। यहां पर लोग पॉटरी, ज्वेलरी, कॉटन और टूल्स की खरीदो फरोख्त करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनके पास स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम था। मतलब 4000 साल पहले भी उन्होंने चीटिंग और कम तोलने को कंट्रोल करने का सिस्टम बना लिया था भाई। साथ ही मोहनजोदड़ो दो मेन हिस्सों में डिवाइडेड था। सिटाडेल यानी ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी। ये शहर का VIP एरिया था जहाँ रूलर और ऑफिशियल्स बैठकर फैसले किया करते थे। और दूसरा हिस्सा था लोअर टाउन यानी नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर आम लोग रहते थे। घर यहाँ प्रॉपर प्लान के मुताबिक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में कुछ घर और उनके दरमियान सड़कें होती थीं। मतलब ये कि मोहनजोदड़ो एक तरह का मॉडर्न जोनिंग सिस्टम था, बिल्कुल वैसे जैसे आज के मास्टर प्लान सिटीज होते हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठा होगा कि भाई 4500 साल पहले स्ट्रीट लाइट्स तो थी ही नहीं, तो रात को क्या होता था, रात को ये लोग कैसे गुजारा करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि घरों और सड़कों पर छोटी छोटी जगहें बनाई गई थी जहाँ मशाल या दिए रखे जाते थे। जरा सोचिए, रात को जब शहर अंधेरे में डूबा हुआ होता होगा तो लोग दिए और मशाल जलाकर सड़कों पर चलते होंगे। ये एक तरह की एंशिएंट नाइट लाइफ भी होती होगी। अगर मोहनजोदड़ो की प्लानिंग का कंपैरिजन आज के शहरों के साथ करें तो कुछ चीजें हैरान कर देती हैं साथियों। जैसे कि मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम से ये पता चलता है कि आज के कई शहर ऐसे हैं जिनसे इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर था। हर घर के साथ एक बाथरूम और अटैच किचन भी था जो यूरोप में 18th सेंचुरी में कॉमन हुआ। ग्रिड प्लानिंग आज के अमेरिका और यूरोप की मॉडर्न सिटीज की पहचान है, लेकिन मोहनजोदड़ो में ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले से था। मतलब मोहनजोदड़ो के इंजीनियर्स अगर आज जिंदा होते तो शायद उनको सिटी प्लानिंग अवार्ड मिल चुका होता। चलिए साथियों, अब थोड़ी इमेजिनेशन की दुनिया में चलते हैं। चलिए जरा आंखें बंद करके सोचिए, दिन का वक्त है, मोहनजोदड़ो की बड़ी सड़कें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। सड़कों के दोनों तरफ घरों के दरवाजे खुले हुए हैं, अंदर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। बाजार में लोग ज्वेलरी, कॉटन और वगैरह वगैरह चीजें खरीद रहे हैं। और दूर एक पब्लिक बाथ के पास लोग इकट्ठा होकर रिचुअल्स कर रहे हैं। यही थी मोहनजोदड़ो की जिंदगी, प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न। अच्छा, अगर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात की जाए साथियों, तो मोहनजोदड़ो के लोगों की डेली रूटीन भी काफी मॉडर्न थी। कॉटन के कपड़े पहनते थे। ये दुनिया के सबसे पहले सिविलाइजेशंस में से एक थे जहां कॉटन का यूज शुरू हुआ था। इनकी औरतों को गहनों का शौक था जो कि गोल्ड बीड्स और शेल से बनाए जाते थे। ये लोग खाने में चावल, गंदम और दाल खाते थे। मछली और गोश्त का भी इस्तेमाल किया जाता था भाई। गेम्स खेलते थे जिसमें डाइस गेम्स मौजूद थी। एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ पर बच्चों के लिए टॉयज भी मिले थे जिनसे बच्चे खेला करते थे। और अगर ट्रेड के बारे में बात की जाए तो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड हुआ करता था। उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स भी मौजूद थे। मोहनजोदड़ो के लोग बहुत सफाई पसंद थे। उनके घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी मौजूद थे। मतलब ये कि एयर कंडीशन घरों का एक प्रिमिटिव वर्जन था। साथियों, एक्सकेवेशन में बहुत सी चीजें मिली हैं जो आज दुनिया भर के म्यूजियम्स में रखी गई हैं, जैसे कि डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक छोटी सी स्टैच्यू जिसमें एक लड़की एक हाथ कमर पर रखकर खड़ी है। ये प्रूफ है कि आर्ट और डांस उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उसी के साथ साथ ग्रेट बाथ में सबसे फेमस डिस्कवरी हुई, एक बड़ा पब्लिक बाथ जिसमें पानी की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। यहाँ पर हंड्रेड ऑफ सील्स भी मिली है जिसमें अननोन स्क्रिप्ट लिखी गई हैं। और तो और टूल्स और टॉयज भी मौजूद हैं। डाइस, पॉटरी, वेट्स और ज्वेलरीज भी मिली हैं। ये डिस्कवरीज हमें ये बताती हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों की सोसाइटी काफी ऑर्गेनाइज्ड और क्रिएटिव थी। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें ये हैं साथियों कि मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम आज भी कुछ पाकिस्तानी सिटीज से बेहतर है। डांसिंग गर्ल स्टैचू सिर्फ 10.8 सेंटीमीटर की है, लेकिन उसकी फेम दुनिया भर में है। मोहनजोदड़ो के लोग वेजिटेरियन भी थे और मीट लवर्स भी। ये दुनिया का सबसे पहला शहर है जहां अर्बन प्लानिंग और सिविल इंजीनियरिंग हुई। एक्सकेवेशन के बावजूद उनकी स्क्रिप्ट्स अभी तक रीड नहीं की गईं। मतलब हम अभी तक उनके असल सीक्रेट्स नहीं जान पाए। साथ ही मोहनजोदड़ो की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही राजदार भी है। एक तरफ ये शाहकार अपनी एडवांस प्लानिंग और बेहतरीन लाइफ की वजह से दुनिया भर के हिस्टोरियंस को हैरान कर देता है और दूसरी तरफ इसका अचानक खत्म हो जाना सबको कंफ्यूज भी कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना तरक्की याफ्ता शहर एक दिन अचानक कैसे गायब हो गया। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास क्लियर एविडेंस की शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी थ्योरीज पेश की हैं। चलिए इन थ्योरीज को थोड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लोर करते हैं। एक थ्योरी है जिसमें बड़े से फ्लड के बारे में बात की जाती है, यानी बड़ा सारा सैलाब। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के बिल्कुल पास बना था। इस थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि दरिया इंडस ने इस शहर को जिंदगी भी दी और शायद उसका सैलाब बन के अंजाम भी लिख दिया। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ जगहों पर मिट्टी और डेब्रीज ऐसी मिली हैं जो यूं लगता है कि पानी लाकर छोड़ गया हो, मतलब कि शायद एक मैसिव फ्लड आया और इस शहर को तहस नहस कर चला गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर फ्लड आया भी था तो पूरा शहर क्यों खाली हो गया, क्यों लोग वापस नहीं आए। हो सकता है फ्लड बार बार आता हो और लोग तंग आकर कहीं चले गए हों। ये तो सिर्फ एक थ्योरी है। अच्छा, दूसरी थ्योरी रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज और दरिया का रुख बदलने से। तो भाई बात ये है कि आज से 4500 साल पहले भी क्लाइमेट चेंज था। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग का जमाना बहुत पुराना है, ये सदियों से चलती आ रही है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इंडस रिवर ने अपना रुख बदल लिया था। शहर की जिंदगी चला करती थी, अगर उसका रुख बदल जाए तो लोगों के पास रहने का रीजन ही खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर के पास मार्केट और पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो आप भी वहाँ से घर छोड़कर किसी और नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे ना। बिल्कुल वैसे ही मोहनजोदड़ो के लोग भी दूसरे इलाकों की तरफ माइग्रेट कर गए होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ तीसरी थ्योरी है इन्वेडर्स और अटैक की थ्योरी। मतलब सर जॉन मार्शल, जिन्होंने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया, उनका मानना था कि शायद कोई फॉरेन इन्वेडर्स आए और शहर तबाह कर दिया। ये थ्योरी आर्यन इन्वेजन से जुड़ी हुई है। कुछ स्केलेटन्स मोहनजोदड़ो में मिले जिसमें ऐसा लगता है कि लोग अचानक मरे, जैसे कोई झगड़ा हुआ हो या किसी ने अटैक कर दिया हो। मगर अब नई रिसर्च कहती है कि ये थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन या फायर के मार्क्स नहीं मिले। मतलब अगर अटैक होता तो शहर में जलने के सबूत भी होते। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चौथी थ्योरी भी है भाई, बीमारी और एपिडेमिक। एक और थ्योरी ये कहती है साथियों कि शहर में बीमारी एपिडेमिक जैसे प्लेग या कोई और डिजीज फैल गई। इमेजिन कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम जैम हो गया, गर्मी ज्यादा हो गई, साफ पानी कम हो गया और फिर कोई डेडली बीमारी फैल गई। लोग बचने के लिए शहर छोड़कर आगे बढ़ गए और कुछ लोग वहीं मर गए। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्केलेटन्स मिले हैं जो इतनी अजीब पोजीशंस में मिले हैं कि लगता है कि लोग अचानक ही मर गए। मतलब उन स्केलेटन्स का हाल कुछ ऐसा बयान करता है कि उन्होंने कहीं भागना था लेकिन वो रस्ते में ही गिर गए। एक और थ्योरी है जो कि सबको चौंका कर रख देती है, एटॉमिक ब्लास्ट हाइपोथेसिस। ये थ्योरी थोड़ी फिल्मी लगती है लेकिन डिस्कस काफी होती है। कुछ रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है कि मोहनजोदड़ो के कुछ स्केलेटन्स में रेडियो एक्टिव लेवल नॉर्मल से ज्यादा थे और कुछ जगह स्टोन्स ग्लास की तरह पिघले हुए मिले हैं। कुछ लोगों ने इसे एक एंशिएंट एटॉमिक एक्सप्लोजन की वजह कहा है, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एग्जैगरेशन है और प्रॉपर सबूत इस बात को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, ये कहानी सुनने में किसी साइंस फिक्शन की मूवी जैसी जरूर लगती है। साथियों, इन सब थ्योरीज के बावजूद सच ये है कि एग्जैक्ट वजह आज तक मिस्ट्री ही है। मोहनजोदड़ो के लोग कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए, इसका कोई 100% जवाब नहीं दे सकता। बस जो बचा है वो उनकी अमेजिंग बिल्डिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम, स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स हैं, जो आज हमें उस वक्त की कहानी सुनाते हैं। साथियों, अगर फ्लड थ्योरी सही है तो मोहनजोदड़ो दुनिया का पहला क्लाइमेट रेफ्यूजी सिटी था। अगर आपको लगता है कि इन्वेजन थ्योरी सही है, तो भाई शहर के लोगों को इतना एडवांस होने के बावजूद अपनी सिक्योरिटी की टेंशन नहीं थी क्या? और अगर आपको लगता है कि एपिडेमिक थ्योरी सही है, तो इसका मतलब ये है कि 4500 साल पहले भी लोग मास्क पहनो या ना पहनो वाली डिबेट कर रहे होंगे। और अगर आपको एटॉमिक ब्लास्ट थ्योरी सही लगती है, तो भाई हॉलीवुड ने इंडियाना जॉन्स और एवेंजर्स से पहले ही स्क्रिप्ट मोहनजोदड़ो से कॉपी कर ली होगी। साथियों, मोहनजोदड़ो का खत्म होना आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। शायद फ्लड, शायद क्लाइमेट चेंज, शायद डिजीज, शायद अटैक, या फिर कुछ ऐसा जो अभी तक हमें पता ही नहीं चला। लेकिन इसी राज ने मोहनजोदड़ो को और भी फैसिनेटिंग बना दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा मिस्ट्री उतना ज्यादा इंटरेस्ट। भाई आज मोहनजोदड़ो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1980 से, और हर साल यहाँ टूरिस्ट आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन निग्लेक्टेंस की वजह से ये साइट डैमेज हो रही है। ज्यादा विजिटर्स और पॉल्यूशन से स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूनेस्को इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ड्रोन मैपिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ताकि मोहनजोदड़ो को सेव किया जा सके। मोहनजोदड़ो इंसानी तखलीक का एक लाजवाब चैप्टर है। ये शहर हमें ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से ही क्रिएटिव और इंटेलिजेंट रहा है। 4500 साल पहले के लोग भी हमारी तरह ही ख्वाब देखते थे, एंटरटेनमेंट एंजॉय किया करते थे, सफाई को पसंद किया करते थे और प्लानिंग भी करते थे। आज हम मोहनजोदड़ो से ये सीख सकते हैं कि अगर हम अपने शहरों की प्लानिंग और सफाई का ख्याल रखें, तो हम भी एक मॉडर्न और सस्टेनेबल सोसाइटी बना सकते हैं। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि इंसानियत ने कितना लंबा सफर तय किया है। साथियों, मोहनजोदड़ो का सफर सिर्फ पुराने पत्थरों और मिट्टी का शहर तक नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसे दौर में ले जाता है जहां इंसानियत ने अपने ख्वाब और ज़हनियत से नया निजाम बनाया। ये शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था, आज भी दुनिया को हैरान करता है। उनकी प्लानिंग, सैनिटेशन सिस्टम और तरतीब आज के मॉडर्न शहरों को भी शर्मिंदा कर देती है। जरा सोचिए, 4500 साल पहले लोग प्रॉपर ड्रेनेज, स्ट्रेट स्ट्रीट्स और स्टैंडर्ड साइज ब्रिक यूज किया करते थे। मोहनजोदड़ो हमें ये दिखाता है कि इंसान अगर मिलकर काम करे, तो वो कितना सस्टेनेबल और ऑर्गेनाइज्ड शहर बना सकता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी काम और बैलेंस पर मबनी थी। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बजाय ट्रेड, कल्चर और कम्युनिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। ये सब प्रूव करता है कि प्रोग्रेस का असल राज कोऑपरेशन और कलेक्टिव विजडम में छुपा होता है। लेकिन वक्त के साथ ये शहर मिट्टी के नीचे दब गया। शायद क्लाइमेट चेंज या नदी का रुख बदलने की वजह से, मगर सबक ये है कि इंसान के बनाए हुए निजाम उस वक्त तक रहते हैं जब तक इंसान खुद उनकी कदर करता है। आज जब हम अपने मॉडर्न शहरों में पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और प्लानिंग की कमी का सामना करते हैं, तो मोहनजोदड़ो हमें ये याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी और डिसिप्लिन से ही शहर आबाद रहते हैं। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक वीरान शहर नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि इंसानियत ने जो सीखा था, उसे दोबारा जिंदा करना होगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: Anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: Cricket हो
4: and he's hooked that away. That's 4 runs.
3: Football हो या कोई और बड़ा sporting action, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM। It's
5: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
2: स्पोर्ट्स की FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही رابطہ करें आज ही رابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: दोस्तों साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना

0: ना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। आज हम कुरान करीम के एक नहायत अहम पहलू पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं और वो है कुरान की तासीर, उसकी समात का असर और एक मुसलमान पर कुरान का हक। तारीख इस्लाम का एक नहायत ईमान अफरोज वाकया अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतालिक है। जब मक्का में हालात सख्त हो गए, कुरैश ने मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी और अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया कि वो किसी दूसरी जगह जाकर अपने रब

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे हुमाम अल अमीन के बारे में। हुमाम अल अमीन कतर के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक हैं जो अपनी वर्सैटिलिटी और मेहनत की वजह से मशहूर हैं। हुमाम ज़्यादातर लेफ्ट बैक की पोजीशन पर खेलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मिडफील्ड में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुमाम की फुटबॉल समझ, तेज़ रफ्तारी और डिफेंसिव डिसिप्लिन उन्हें कतर की कौमी टीम का एक कीमती मेंबर बनाती है, और फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगर जो उन्होंने जगह बनाया तो दैट्स द रीज़न कि ही इज़ वेरी मच डिसिप्लिन प्लेयर। हुमाम अल अमीन ने कतर के फुटबॉल सफ़र में कई यादगार लम्हात देखे हैं। उन्होंने AFC एशियन कप 2019 जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर मुल्क के लिए फ़ख्र हासिल किया, और इस टूर्नामेंट में कतर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और एशिया की बेहतरीन टीम बनकर उभरी। हुमाम ने अपनी डिफेंसिव मजबूती और अटैकिंग सपोर्ट से टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में भी हुमाम कतर की टीम का हिस्सा रहे। उनकी क्रॉसिंग, बॉल कंट्रोल और मैच के दौरान लगातार मेहनत कोचेज और सपोर्टर्स दोनों को मुतासिर करती है। क्लब सतह पर भी उन्होंने मुश्तकिल परफॉर्मेंस देकर अपनी अहमियत साबित की है। हुमाम अल अमीन को कतर के मॉडर्न फुटबॉल दौर के नुमाया खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है, और वो नए फुटबॉलर्स के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम एक नहायत ही अहम मौजू यानी हीट स्ट्रेस या गर्मी के दबाव के बारे में बात करेंगे, जो ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में हर उम्र के फर्द को मुतासिर कर सकता है। हीट स्ट्रेस इस वक्त पैदा होता है जब जिस्म ज़्यादा गर्मी जज्ब करता है और ख़ुद को ठंडा रखने की सलाहियत खोने लगता है। ये सूरत हाल शदीद गर्मी, नमी, धूप में ज़्यादा वक्त गुजारने या जिस्मानी मुशक्कत के बायस पैदा हो सकती है। हीट स्ट्रेस की जो चंद अलामत हैं वो ऐसे हो सकती हैं कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा हो, शदीद प्यास लग रही हो, थकावट या कमज़ोरी महसूस हो, चक्कर आना शुरू हो जाएं, सर दर्द और मतली या उल्टी आप आना महसूस करें और आपके मसल्स में खिंचाव पैदा हो, और अगर फौरन तवज्जो ना दी जाए तो ये हालत हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी ख़तरनाक सूरत हाल में तब्दील हो सकती है। रिस्क पर जो अफराद हैं वो मजदूर जो बाहर काम करते हैं, इसी तरह से जो तामीराती कारकुन हैं, प्लेयर हैं या बुज़ुर्ग अफराद हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या डायबिटीज़ या दिल और गुर्दों के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा ऑन रिस्क होते हैं। गर्मी के असरात से महफूज रहने के लिए चंद बहुत ही आसान सी तदाबीर हैं। दिन भर में मुनासिब मकदार में पानी पीते रहे, चाहे प्यास महसूस ना हो। धूप के औकात ख़ास तौर पर दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक आप गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। हल्के रंग और ढीले सूती कपड़े पहने, सायादार या ठंडी जगहों पर वक्फे लेते रहिए। कैफीन वाले मशरूबात और बहुत ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल कम कीजिए। घर और काम की जगह पर मुनासिब हवा और ठंडक का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। और अगर किसी भी शख्स में, जैसे कि हमने अलामत बताई हैं, अगर इस तरह जाहिर हों तो उसे फौरन ठंडी या सायादार जगह पर ले जाइए। जो इजाफी कपड़े हैं वो कम कर दीजिए। पानी या ORS उन्हें पिलाइए, और अगर वो होश में हो तो गीला कपड़ा या ठंडे पानी की पट्टियां जिस्म पर रखिए। और अगर हालत बेहतर ना हो या फिर बेहोशी जो है वो हो जाए या बुखार बहुत ज़्यादा हो तो फौरन तिबी इमदाद हासिल कीजिए। लिसनर्स, हीट स्ट्रेस एक काबिल बचाव मसला है। मुनासिब एहतियात, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और गर्मी से बचाव के इकदाम आप और आपके ख़ानदान को महफूज रख सकते हैं। याद रखिए, गर्मी की शिद्दत को कभी भी मामूली ना समझिए। अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए और सेहतमंद रहिए।
0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107. FM 107. दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और स्लाइटली माइंड चेंजिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो पहले थोड़ा अनयूजुअल लगता था, लेकिन आज दुनिया भर में एक स्मार्ट लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुका है, यानी के सेकंड हैंड शॉपिंग। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। जरा सोचिए, क्या सोचें? हाँ, सोचिए आपको एक पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए या घर के लिए आपको कोई फर्नीचर आइटम चाहिए। हाँ, फर्नीचर आइटम आपको कोई चाहिए। आप डायरेक्ट मॉल या ऑनलाइन स्टोर चेक करते हैं और सब कुछ शाइनी, ब्रांड न्यू और एक्सपेंसिव लग रहा होता है। फिर आप ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक या दो दफा का तो यूज होगा, इतना स्पेंड क्यों करूं। और यहां से सेकंड हैंड शॉपिंग का आइडिया इंटरेस्टिंगली जन्म लेता है। अच्छा, सेकंड हैंड शॉपिंग का मतलब है पहले से यूज की हुई चीजों को दोबारा यूज करना। ये सिर्फ ओल्ड या यूज चीज लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाने का स्मार्ट तरीका है। कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कई आइटम्स जो के सेकंड लाइफ में परफेक्टली रीयूजेबल हो सकते हैं। अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में? भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है। नई चीज लेने से पहले सेकंड हैंड ऑप्शन कंसीडर करें, मतलब सस्टेनेबिलिटी और सेविंग दोनों एक साथ प्रायोरिटाइज करना। अब बात करते हैं कि भाई सेकंड हैंड शॉपिंग से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा तो होता है वेस्ट रिडक्शन। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे रीयूज करने से प्रोडक्शन प्रेशर कम होता है। दूसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। सेकेंड हैंड आइटम्स अक्सर सिग्निफिकेंटली सस्ती होती हैं, लेकिन क्वालिटी अब भी उनकी अच्छी ही होती है। तीसरा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कम प्रोडक्शन का मतलब है कम रॉ मटेरियल यूज और कम पोल्यूशन। चौथा फायदा है यूनिक फाइंड्स। अच्छा, ये बड़ा मजे का फायदा है, आपको ऐसे आइटम्स मिल सकते हैं जो रेगुलर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते या जो के लिमिटेड एडिशंस होते हैं ना, लिमिटेड एडिशंस वाली चीजें भी आपको ऐसे ही मिल सकती हैं। अच्छा, अगर आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल दूं ना, तो जरा सोचिए आप एक बुक शेल्फ ढूंढ रहे हैं। बुक शेल्फ नया वाला, मुझे पता है अच्छा खासा एक्सपेंसिव आता है। नया बुक शेल्फ मार्केट में एक्सपेंसिव भी है और स्टैंडर्ड डिजाइन का भी है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में आपको सॉलिड वुड का बुक शेल्फ मिल सकता है जो पहले किसी ने यूज किया हो, लेकिन वो अभी भी अपनी परफेक्ट कंडीशन में हो, और अक्सर क्वालिटी वाइज वो न्यू से भी ज्यादा बेटर लगता है। भाई होता है ये कभी कभी। लेकिन दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में सेकेंड हैंड शॉपिंग का ट्रेंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हो गई, कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए और रीसेल प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोग अब यूज्ड आइटम्स को भी वैल्यू देने लगे हैं। कुछ लोग तो प्री लव्ड आइटम्स जो होते हैं उनको भी सेल आउट करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अगर मैं आपको दूं ना, जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। देखिए, टिप नंबर 1 है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स यूज करें। सेकंड हैंड शॉपिंग के लिए रिलायबल एप्स और स्टोर्स चूज करें। सेकंड टिप है क्वालिटी चेक जरूरी है। किसी भी आइटम को लेने से पहले उसकी कंडीशन को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट कर लें। तीसरी टिप है प्राइस कंपेयर करें। कभी कभी सेकेंड हैंड और न्यू प्राइस में डिफरेंस चेक करना यूजफुल होता है, ये चीज दिमाग में रखें। चौथी टिप है क्लीन और रीस्टोर करें। सेकेंड हैंड आइटम्स को थोड़ा क्लीन या रीस्टोर करके नया लुक दिया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन माइंडसेट रखें। हर यूज्ड आइटम ओल्ड नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में होती हैं। अच्छा, इसका अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव आपको बताऊं, तो दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ग्रो हो रहा है, जहां प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम लाइफ साइकिल तक यूज किया जा सकता है। सेकेंड हैंड शॉपिंग इस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ चीजें वेस्ट होने की बजाय सर्कुलेट होती रहती हैं। अच्छा, एक रिलेटेबल बात यह है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि नया लेना ही बेटर होता है, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें ना, तो अगर एक चीज परफेक्टली फंक्शनल कंडीशन में है तो उसे रीयूज करना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होता है। अब थोड़ा सा अगर बिहेवियरल चेंज एंगल की तरफ देखें, तो जब आप सेकंड हैंड शॉपिंग अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को ज्यादा माइंडफुल बना लेते हैं। आप सिर्फ बायर नहीं रहते बल्कि कॉन्शियस डिसीजन मेकर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, नई चीज लेने से पहले सेकेंड हैंड ऑप्शंस जरूर कंसिडर करें। आज का चैलेंज ये है कि आज किसी एक आइटम के लिए जो आप प्लान कर रहे थे नेक्स्ट खरीदने का, उसका सेकंड

0: अल्टरनेटिव चेक करें। और अगर आप ऑलरेडी सेकेंड हैंड शॉपिंग कर रहे हैं तो किसी और को भी इस सस्टेनेबल हैबिट के लिए मोटिवेट करें। साथियों, हर नई चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन हर रीयूज की हुई चीज एक स्मार्ट डिसीजन होती है। जब हम सेकेंड हैंड शॉपिंग अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ पैसा नहीं बचाते बल्कि अपनी जमीन को भी एक नई लाइफ देते हैं। इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर। मैं हूँ आपकी RJ माविश खान। आज हम बात करेंगे कुरान पढ़ने की अहमियत के बारे में। कुरान पाक अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। इसमें जिंदगी के हर पहलू के लिए हिदायत मौजूद है। जब हम कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा दिल रोशन होता है और हमें अंदर से सुकून मिलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन असल में सिर्फ कुछ मिनट भी काफी होते हैं अगर हम रेगुलर हो जाएं। कुरान के लफ्ज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और जिंदगी में अप्लाई करने के लिए है। रोजाना थोड़ा सा कुरान पढ़ने से सिर्फ सवाब नहीं मिलता बल्कि इंसान की

0: सोच और रवैया भी बेहतर होता रहता है। आज का अमल ये है कि दिन में कम से कम 5 मिनट कुरान की तिलावत जरूर करें और कोशिश करें कि उस पर गौर भी करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बिल्डिंग टुमारो. यस, कल की सोच और तैयारी आज से. जी हाँ, कल का सोचना और उसे बेहतर बनाने की जो बात है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है. और शायद इसी बात को इसको बिल्डिंग टुमारो कहा जाता है. ये नई टर्म यूज की जाती है. इसका मतलब है कि सिर्फ हमें जो है वो बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बनाना है, बल्कि एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करना है जहां लोग खुश हों, सेफ हों और सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकें. ये एक जर्नी नहीं है, ये एक डेस्टिनेशन है. आज के डिसीजंस कल की दुनिया को शेप करते हैं. आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इनोवेशन के जरिए अपना मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं. हर नया आइडिया और नई सोच एक नई ईंट की तरह है जो बिल्डिंग को मजबूत बनाती है. अगर हम आज एनवायरमेंट का ख्याल रखेंगे, रिसोर्सेज वाइजली यूज करेंगे और नॉलेज हासिल करेंगे, तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बेहतर वर्ल्ड छोड़ सकते हैं. बिल्डिंग टुमारो का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एजुकेशन. जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो अपनी, सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बेहतर करते हैं और शायद सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करते हैं. एक एजुकेटेड इंसान नए आइडियाज लाता है, प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढता है और सोसाइटी को आगे लेकर जाता है. इस तरह टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आज हम स्मार्ट सिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं या बना रहे हैं. लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं है, हमें अपने कल्चर और वैल्यूज को भी प्रिजर्व करना होता है. बिल्डिंग टुमारो का मतलब ये है कि हम अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए मॉडर्न दुनिया के साथ चलें. अगर हम बैलेंस क्रिएट कर लें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच, तो हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल सोसाइटी बना सकते हैं. जी, एनवायरमेंट का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है. अगर हम आज पोल्यूशन को इग्नोर करेंगे और रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, तो कल हमारी दुनिया या नई जनरेशन जो है वो मुश्किल में आ सकती है. इसीलिए हमें क्लीन एनर्जी, रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना ही है. छोटी छोटी हैबिट्स जैसे पानी बचाना, प्लास्टिक इस्तेमाल कम करना, यकीन मानिए फ्यूचर को सिक्योर बनाती है. आखिर में मुझे कहने में ये शर्म नहीं है कि बिल्डिंग टुमारो इज नॉट अबाउट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अबाउट बिल्डिंग बिहेवियर. जी हाँ, बिल्डिंग टुमारो सिर्फ गवर्नमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस का काम भी नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है. जब हर इंसान अपना रोल समझ और पॉजिटिविटी के साथ पूरा करता है, तभी शायद एक स्ट्रॉन्ग और ब्राइट फ्यूचर बिल्ट हो सकता है. ये सफर आज से शुरू होता है, क्योंकि जो कल हम देखना चाहते हैं ना, उसकी बुनियाद आज ही हमें रखनी होगी. चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से हम इस बात की शुरुआत करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे. फिलहाल मेरी जिम्मेदारी, मेरा मतलब मेरा वक्त हो गया है कि मैं आपसे इजाजत ले लूं. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
0: One step to 2030. Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 से एंड वेलकम टू फ्रॉड अवेयरनेस। आज आपको अवेयर कराऊंगा एक ऐसे स्कैम के बारे में जो कि बड़ा यूनिक है। देखिए, अगर आपको स्कैम्स से मुकाबला करना है तो आपको इन्हीं की तरह सोचना पड़ेगा। ये जितने भी नक्कालों से सावधान कहते हैं ना, तो इनकी तरह सोचेंगे तभी आप इनसे बच पाएंगे। यही ट्रिक है, मगर वी विल मेक इट ईजियर फॉर यू। अच्छा, जिस स्कैम के बारे में आज बात करने वाला हूं, ये है ऑनलाइन मार्केट प्लेस से जुड़ा हुआ। आपको कई सारी चीजें आप लेने की आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन। सेकंड हैंड चीजें तो खरीदने की आदत अब कुछ ज्यादा ही अपने उरूज पर है। आपको छोटे से छोटे एक जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर से लेकर बड़े से बड़ी चीज, सोफा, टीवी सेट, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। और सेकंड हैंड चीजें आजकल कतर में माशाल्लाह बहुत बढ़िया मिलती है। लेकिन यहां पर होती है एंट्री, धमाकेदार एंट्री इन स्कैमर्स की, जो इस चीज का फायदा उठाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे पोस्ट को आप शक की नजर से देखें, लेकिन होगा दरअसल क्या, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप थोड़ा धोखा खा सकते हैं। होगा ये कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बड़ा सा टीवी देख लिया 98 इंचेस फॉर एग्जाम्पल, और आपको उसका जो रेट है मार्केट में नजर आ रहा, भाई ये तो बहुत महंगा है। पर जब आपने इसे मार्केट प्लेसेस में देखा जहां पे सेकंड हैंड बिक रहा है, वहां आपको लगा ये तो बहुत फायदे का सौदा है, जरा मैं फटाफट मैसेज कर दूं। और आप जल्दी से मैसेज करेंगे, पूछेंगे क्या ये अवेलेबल है, फौरन 10-15 मिनट में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। इससे भी पहले वो बोल देंगे हाँ जी अवेलेबल है, और आप बोलेंगे ठीक है मुझे ये देखना है, तो आपको बाकायदा एक लोकेशन भी दी जाएगी। मगर वो लोकेशन कोई घर वर ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आपको बोलेंगे जी ये फलाना फलाना जगह पे पहुंच जाइए, और वो आपको नजर आएगा कि शायद यहाँ पे रहता नहीं है, बस आया हुआ है। आपको वो प्रॉब्ली एक लॉबी या फिर किसी जगह पे बुला के अगर दिखाएंगे तो, वर्रा तो आपको इससे भी बड़ा स्कैम का शिकार बनाने की कोशिश में वो आपसे बोलेंगे ठीक है तो आप एक काम करें, ये थोड़ा प्रोडक्ट जो है बाहर से मंगाना पड़ता है हमें, हमारे लोग ना रिवर्बिश करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपको रिझाने के लिए, और उसके बाद बोलेंगे कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, बस आप एक काम करो डिलीवरी के प्राइस मुझे अभी दे दो, ये प्रोडक्ट ना एक्चुअली बाहर बनता है। ऐसी ऐसी बातें करके आपसे एडवांस पेमेंट ये लोग ले लेंगे। आपको लगेगा ठीक है 1000 की चीज़ है तो मैं अगर 100 रियाल दे दूंगा तो क्या ही चला जाएगा, और आप 100 रियाल दे देंगे। उसके बाद आप कहेंगे भैया प्रोडक्ट, बोले हाँ हाँ बस बस बस बस पहुँच जाएगा, बस बस बस पहुँच जाएगा। ये छोटे छोटे निक्के निक्के जो स्कैम्स हैं ये बड़े खतरनाक हैं। आप शायद 100 रियाल देने के बाद थोड़ा लड़ झगड़ के, चिल्ला के, ब्लॉक करके, आप ब्लॉक होके आप शांत बैठ जाएंगे, लेकिन ये लोग चुप नहीं होंगे। आप की तरह बहुत सारे और 100-100 रियाल देने वाले लोगों को ये पकड़ेंगे और कमाई करेंगे। तो प्लीज जब आप सेकंड हैंड चीज लेने के लिए जाएं तो बच के रहें। अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन करने का आसान तरीका है सिंपल। जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट पे अगर लिखा हुआ है कि भैया ये लोकेशन के बिना ही है, आपको फोन पे ही बात करके बुक करना पड़ेगा, तो बच के रहिए। यू नीड अ प्रॉपर लोकेशन। प्रॉपर मतलब प्रॉपर लोकेशन जहां पे आप जाके फिजिकली प्रोडक्ट देख सकें। उसके अलावा अगर आपको और सेफ्टी को डबल डाउन करना है, व्हेन यू मीट देम आस्क फॉर कतर आईडी, दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इसके अलावा एक और बड़ी खास चीज है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट, कोई नायाब प्रोडक्ट, नायाब का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई महंगा प्रोडक्ट काफी सस्ता मिल रहा है, तो आप उसे शक की नजरों से देखना शुरू कर दें। क्या वजह है, ऐसा क्यों है, और इसलिए आपका फिजिकली जाकर देखना जरूरी हो जाता है। सो घूम फिर के बात वहीं आ रही, पर अब बताता हूं अगर आप इसमें फंस गए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने प्रोडक्ट के पूरे पूरे पैसे दे दिए और आप फंस चुके हैं, प्रोडक्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, आपको रिफर्बिश्ड ऑर्डर का वादा किया गया था, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने बैंक कार्ड को आपने कर देना है फौरन ब्लॉक और चेंज। दूसरी बात, अगर आपने अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव यूज्ड योर कतर आईडी अगर आपसे मांगी गई है, क्योंकि ये लोग वो भी मांग लेते हैं, और इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप पर अभी तक इन्हें ब्लॉक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि फिर ये एक और दूसरा स्कैम भी चालू कर सकते हैं। यूजिंग योर नंबर एंड यूजिंग अनदर नंबर दे विल सेंड यू थिंग्स, आपको अलग अलग चीज़ें भेजेंगे जो ओपन करते ही दे विल स्टार्ट फिशिंग योर अकाउंट। तो प्लीज व्हाट्सएप नंबर तक अगर आप बात लेकर आ रहे हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, डू नॉट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन टू देम। उन्हीं की तरह सोचें. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर. सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदने के लिए जाएंगे, बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड खुला हर चीज मांगिए. आप कतर आईडी मांगिए, लोकेशन मांगिए, जाकर देखिए. कोई जल्दी नहीं है. प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके मन में आएगा कि हाथ से निकल गया तो क्या होगा. निकल जाने दीजिए, लेकिन जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड अगर आप भी किसी नायाब फ्रॉड से आपका राब्ता होता है, लेट अस नो सोशल मीडिया हैंडल्स पे FM 107 कतर.
0: स्कैम अलर्ट.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ, हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मूवमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुए और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, हजारों फैंस की गरज जो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के दौरान सुनाई दी थी, आज भी मुल्क की गलियों और स्टेडियम में गूंज रही है। जबकि महीने गुजर गए हैं और मुकाबले खत्म हो चुके हैं, लेकिन कतर का फुटबॉल स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स से प्यार कोई नई बात नहीं बल्कि मुल्क की तारीख का एक बार बार दोहराया गया पहलू है। और आज हम आपको ले चलते हैं वापस उसी जगह पर जो कतर के पहले स्टेडियम की पहचान बना, यानी खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। ये वही जगह है जहां फुटबॉल का असली जज्बा शुरू हुआ था। सामईन, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कतर के खेलों की दुनिया में पहली बुनियाद की शक्ल।

1976 में इस स्टेडियम का आगाज हुआ और उस वक्त ये मुल्क का सबसे बड़ा और मॉडर्न स्टेडियम माना जाता था। इसी जगह ने न सिर्फ लोकल लीग्स और मैचेस देखे बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की मेजबानी भी की। समाइन, फैंस के लिए ये स्टेडियम एक मरकजी नुक्ते की अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ उनके जज्बात, उनकी चीखें और उनके स्लोगन्स सब कुछ गूंजते हैं। दोस्तों, खलीफा स्टेडियम ने एशियन गेम्स 2006 का शानदार मंजर देखा, AFC एशियन कप के यादगार मैचेस देखे और आखिरकार वर्ल्ड कप 2022 के दौरान अपनी शान और बढ़ावा सबको दिखाया। इस स्टेडियम की सबसे खास बात उसका आर्किटेक्चर है, जहां हर सीट ऐसे डिजाइन की गई है कि फैन खुद को ग्राउंड के करीब महसूस करें। रात के वक्त इसकी फ्लड लाइट्स और इसकी शानदार छत यानी कैनोपी इसे एक नया रूप देती है, जहां जज्बात और रोशनियां मिलकर एक अनोखा मंजर बनाती हैं। दोस्तों, कतर की नई नस्ल के लिए खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेन्यू नहीं बल्कि उनकी हिस्ट्री, कल्चर और फुटबॉल से मोहब्बत का जिंदा निशान है। हर मैच जो यहाँ खेला गया, हर गोल जो यहाँ मारा गया और हर जीत जो यहाँ सेलिब्रेट हुई, सब मिलकर इस स्टेडियम को एक ऐसी दास्तां बना देते हैं जो हमेशा याद रहेगी। कहते हैं कि कतर में फुटबॉल का जुनून खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम से शुरू हुआ और फिर पूरे मुल्क के दिलो दिमाग में बस गया। दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि ऐसा निशान है जो कतर की स्पोर्ट्स हिस्ट्री, तरक्की और मुस्तकबिल की उम्मीदों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस स्टेडियम के अंदर एक वर्सेटाइल स्पोर्ट्स हॉल और 10,000 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल एक बड़ा रिटेल एरिया भी है। यही वजह है कि 1970 से लेकर आज तक इसे कतर का प्रीमियर फुटबॉल वेन्यू माना जाता है। AFC के अहम मैचेस, अरब कप की यादगार लम्हे और वर्ल्ड कप 2022 का शानदार दौर सब ने इस स्टेडियम की शान में इजाफा किया है। 1976 में जब स्टेडियम का फॉर्मली आगाज हुआ तो उस वक्त यहाँ सिर्फ 20,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी थी, मगर 2010 में जब कतर ने वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी जीती तब स्टेडियम को नए दौर की जरूरियात के मुताबिक एक बड़े और मॉडर्न रूप में तब्दील करना जरूरी हो गया। 2014 में स्टेडियम की रेनोवेशन शुरू हुई जिसका प्रोजेक्ट मशहूर आर्किटेक्चरल फर्म दर अल हंदसा ने संभाला। रेनोवेशन के दौरान सिर्फ स्टैंड्स को ही अपग्रेड नहीं किया गया बल्कि कैपेसिटी को बढ़ाकर 45,000 से ज्यादा सीट्स तक ले जाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान फैंस की कंफर्ट पर दिया गया, एक इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम और ऐसी रूफ कवरिंग जो स्टेडियम का 70% हिस्सा ढक लेती है डिजाइन में शामिल की गई। दोस्तों, 2017 में स्टेडियम दोबारा फॉर्मली ओपन हुआ और ये वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार होने वाले सबसे पहले स्टेडियम्स में शुमार हुआ। ये सिर्फ एक तजदीद नहीं थी बल्कि कतर की टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की कमिटमेंट का सबूत था। डेवलपर्स ने हर स्टेज पर कटिंग एज सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस यूज की, डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन और फिर ऑपरेशन तक, ताकि स्टेडियम का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मिनिमम हो। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम आज भी एक मिसाल है कि कैसे रिवायात, तजुर्बा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलकर एक ऐसी जगह बना देते हैं जो ना सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बल्कि मुल्क की कल्चर और इनोवेशन का मरकज बन जाता है। दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने ना सिर्फ कतर की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक अहम मकाम बनाया बल्कि दुनिया भर के स्टेडियम्स के लिए भी मिसाल कायम की है। ये दुनिया का पहला स्टेडियम है जिसे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असिस्टमेंट सिस्टम GSAS से 4-star रेटिंग मिली है, जो इस बात का सबूत है कि कतर ने एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को खेल के साथ साथ बराबर अहमियत दी है। ये स्टेडियम अरब और एशियन फैंस के जज्बात का मरकज रहा है और आज भी ग्लोबल तौर पर इसकी पहचान एक नया रंग रखती है।

भाई यहाँ सेलिब्रेशंस भी हुए, कोरोनेशंस भी, और वो यादगार विक्ट्रीज भी जो फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। स्टेडियम ने कई बड़े फैंस की चीख पुकार सुनी, जिनमें सबसे मशहूर एल क्लासिको फ्रेंडली मैच 2010 का था, अर्जेंटीना और ब्राजील के दरमियान। इस मैच का मंजर लाजवाब था जब अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया और फैंस की चीखों से स्टेडियम गूंज उठा। दोस्तों, खलीफा स्टेडियम की शान उसकी दो शानदार आर्च हैं, जो दूर से ही इसे पहचान देती हैं। साथ ही साथ इसमें लगाया गया इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ताकि फैंस और प्लेयर्स दोनों हर वक्त बेहतरीन तजुर्बा महसूस कर सकें। ये स्टेडियम सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, बल्कि एस्पायर जोन का दिल है, जहां एस्पायर एकेडमी फॉर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस, हमद एक्वाटिक कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, स्पोर्ट्स मेडिसिन हॉस्पिटल और दूसरे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज शामिल हैं। ये तमाम चीजें मिलकर इस एरिया को एक पूरा स्पोर्ट्स सिटी बना देती हैं। 2017 में दोबारा रीओपनिंग के बाद खलीफा स्टेडियम ने अपनी पहचान और बढ़ावा और मजबूत किया। स्टेडियम एक शॉर्ट पेडेस्ट्रियन वॉकवे के जरिए 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट म्यूजियम से भी कनेक्टेड है। ये कनेक्शन इस बात की निशानी है कि खलीफा स्टेडियम सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो अपनी रोशन तारीख और मुस्तकबिल की चमक दोनों को एक साथ जिंदा करती है। तो दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की एक और खास पहचान उसकी कैपेसिटी और खूबसूरत नेचुरल टर्फ है। ये स्टेडियम तकरीबन 40,000 फैंस को समेट सकता है, और इसमें लगाया गया टर्फ पूरी तरह नेचुरल है, जो कतर के गर्म मौसम को बर्दाश्त करने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखता है। यह हाइब्रिड टर्फ है, एक ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप हुआ और दूसरा यहीं कतर में लोकल तौर पर तैयार किया गया है। इस टर्फ को स्टेडियम में लगाने से पहले एस्पायर जोन फाउंडेशन की टर्फ नर्सरी में 9 महीने तक उगाया गया, जब तक ये 14 mm की आइडल लेंथ तक नहीं पहुंच गया। उस वक्त इसे स्टेडियम में ट्रांसफर और इंस्टॉल करने का प्रोसेस शुरू हुआ। स्टेडियम का टोटल फ्लोर एरिया 7,448 स्क्वायर मीटर्स है, जो टर्फ के लिए एक बड़ा और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। समीन, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने सिर्फ लोकल स्पोर्टिंग इवेंट्स और खास ओकेशन ही होस्ट नहीं किए, बल्कि ये वही स्टेडियम था जहां से कतर ने अपनी रेडीनेस वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करने के लिए ऑफिशियली अनाउंस की थी। एक और लाजवाब रिकॉर्ड भी खलीफा के नाम है और वो ये कि वर्ल्ड रिकॉर्ड रीटर्फिंग इसी के नाम है। जहां यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक रीटर्फिंग 18 घंटे में होती है, खलीफा स्टेडियम ने ये काम सिर्फ 13.5 घंटे में मुकम्मल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस प्रोजेक्ट में 80 से ज्यादा मशीन्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ और नर्सरी जो स्टेडियम से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां से 8,250 स्क्वायर मीटर्स नेचुरल ग्रास ट्रांसपोर्ट की गई। फिर इसे स्टेडियम में 90 से ज्यादा वर्कर्स और एम्प्लॉइज ने मिलकर इंस्टॉल किया। ये प्रोसेस 16 अप्रैल 2017 को सुबह 5 बजे शुरू हुआ और रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर दिया गया। साथ ही स्टेडियम के आसपास के इलाके में सालों के दौरान नई बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज का इजाफा हो गया, जो आज एस्पायर जोन के नाम से जाना जाता है। ये एरिया अब एक पूरा सेंटर ऑफ स्पोर्ट एक्सीलेंस बन चुका है, जहां से सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्पोर्ट्स इनोवेशन और एक्सीलेंस की मिसाल कायम होती है। तो ख्वादीनों हजरात, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की एक और बड़ी खसूसियत उसका लोकेशन है। ये स्टेडियम एक ऐसे इलाके में वाकई है जहां सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के तमाम पहलू एक साथ मिलते हैं। एस्पायर जोन के दिल में बसाया गया ये स्टेडियम आसपास के स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का हिस्सा है, जो इसे एक मुकम्मल स्पोर्ट हब बना देती है। भाई, फैंस के लिए इस स्टेडियम तक पहुंचना बहुत आसान है। एक तरफ आपको यहां के मशहूर और बड़े शॉपिंग मॉल्स मिलते हैं जो स्टेडियम के करीब ही वाकई हैं। दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन की करीबी ने इसे सबसे एक्सेसिबल स्टेडियम्स में शामिल कर दिया है। चाहे कोई लोकल फैन हो या इंटरनेशनल विजिटर, सबके लिए ये जगह एकदम कन्वीनियंट है। ये लोकेशन ना सिर्फ मैच डे एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाती है बल्कि फैंस के लिए एक पूरा दिन का सफर तैयार करती है, जहां वो शॉपिंग कर सकें, रेस्टोरेंट्स का लुत्फ उठा सकें और फिर स्टेडियम में अपनी टीम के लिए चेयर कर सकें। इस तरह खलीफा स्टेडियम सिर्फ एक स्पोर्टिंग वेन्यू नहीं बल्कि एक कम्युनिटी और लाइफ स्टाइल सेंटर भी बन गया है। दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की कहानी असल में कतर की स्पोर्ट्स की कहानी है। ये वो मकाम है जहां मुल्क के सबसे यादगार और दिल को छू लेने वाले लम्हे लिखे गए हैं। 2011 में जब AFC एशियन कप हुआ तो इस स्टेडियम ने 6 जबरदस्त मैचेस की मेजबानी की, जिसमें फाइनल मैच भी शामिल था। ये लम्हा कतर के फैंस के लिए एक बड़ी यादगार था क्योंकि पूरे एशिया की नजरें इसी ग्राउंड पर थीं। फिर 2017 में जब रेनोवेशन के बाद स्टेडियम दोबारा खोला गया तो सबसे पहला बड़ा इवेंट था अमीर कप का फाइनल। फैंस की चीख पुकार और सेलिब्रेशन ने स्टेडियम को दोबारा से जिंदा कर दिया। वहीं 2021 में खलीफा स्टेडियम ने फिर अपना रंग दिखाया जब ये अरब कप का हिस्सा बना और दोबारा एक एक्साइटिंग फाइनल का मरकज रहा। और फिर आया वो दौर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वर्ल्ड कप 2022। खलीफा स्टेडियम ने ना सिर्फ मैचेस होस्ट किए बल्कि अपनी शान के साथ पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया। यहां 8 मैचेस हुए जिसमें एक अहम थर्ड प्लेस प्लेऑफ भी शामिल था। लेकिन दोस्तों, ये स्टेडियम सिर्फ फुटबॉल तक ही महदूद नहीं, इस स्टेडियम की एक बहुत ही रोशन और बड़े लेवल की एथलेटिक हिस्ट्री भी है। यहाँ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी होस्ट हुई और हर साल का मशहूर दोहा डायमंड लीग इवेंट भी इस स्टेडियम की शान है। यानी खलीफा स्टेडियम असल में एक ऐसा मंजर पेश करता है जहां फुटबॉल और एथलेटिक्स दोनों ही अपने इंतहा पर नजर आते हैं। ये स्टेडियम हर मैच, हर रेस और हर इवेंट के साथ अपने अंदर एक नई दास्तान लिखता रहा है। ख्वातीनो हजरात, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की पहचान उसके आर्क्स हैं। पहले एक शानदार आर्क स्टेडियम की शान हुआ करती थी, लेकिन रेनोवेशन के दौरान इसे ना सिर्फ रिप्लेस किया गया बल्कि एक दूसरी आर्क से कॉम्प्लीमेंट भी किया गया। आज दोनों आर्क्स मिलकर इस स्टेडियम की असली शान और नेशनल आइडेंटिटी बन गए हैं। 1976 से लेकर आज तक खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम को कतर का नेशनल स्टेडियम माना जाता है। ये सिर्फ एक ग्राउंड नहीं बल्कि एक निशान है जो मुल्क के स्पोर्ट्स के सफर, उनके जज्बात और उनकी रूहानियत को जिंदा करता है। हर जेनरेशन के फैंस ने यहाँ अपनी चीख पुकार छोड़ी है और ये स्टेडियम उन सब का गवाह है। दोस्तों, इस स्टेडियम का हिस्टोरिक रिवैम्प भी अपनी जगह बहुत खास है, जो आर्किटेक्ट दारल हंदसा ने 1970 में असल स्टेडियम डिजाइन किया था। वही फर्म ने दोबारा इसे नए दौर के लिए तैयार किया। इस तरह स्टेडियम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। और फिर आया वर्ल्ड कप कतर 2022, जिसने ना सिर्फ स्टेडियम बल्कि पूरे मुल्क की किस्मत बदल दी। आज भी उस वर्ल्ड कप के एंथम्स लोकल और इंटरनेशनल रेडियो स्टेशंस पर बज रहे हैं और हर धुन के साथ एक याद ताजा होती है। इस टूर्नामेंट ने साबित कर दिया कि कतर अब ग्लोबल स्पोर्टिंग स्टेज का एक सेंट्रल किरदार है। कतर में स्पोर्ट्स का क्रेज सिर्फ एक दौर तक महदूद नहीं रहेगा, ये एक एवर ग्रोइंग थीम है जो वक्त के साथ और बढ़ता रहेगा। खलीफा स्टेडियम अपने आर्क्स, अपनी हिस्ट्री और अपनी शान के साथ इस सफर का हमेशा मरकज रहेगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी पहली चीज होनी चाहिए जो आप कतर में देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो को एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
5: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
0: FM 107 दिल से देसी।

0: One Hits Music Station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।